0: दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ क्या है। दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती है, किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता, तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है।
1: इस बीच एक सियासत राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले के कार्यक्रम में ना शामिल होने को लेकर भी हो रही है। लगातार दूसरे साल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस अहम सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में नहीं पहुंचे। 2024 को 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था, जहां राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे थे। ऐसे में राहुल के नदारद होने को एक बार फिर सीट अरेंजमेंट के विवाद से जोड़ा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: लाल किले से पीएम मोदी ने जेन जी हो या जेन अल्फा सबके लिए सौगात का ऐलान किया। एआई ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। ऊंचे होने
1: जेनजी हो या जेन अल्फा, संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी।
2: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में, क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते, क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी?
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
3: चारों तरफ देश में हंगामा है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो। मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।
4: जेन जी वोटर्स पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ गया। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेन जी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां हर तरह के और तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं।
5: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेन जी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेन जी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेंजी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
6: जेंजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं।
5: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
6: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
7: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
5: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही हैं। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी, विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
8: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेके युवा संवाद?
9: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारे भविष्य हैं, ये हमारे कल हैं और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
5: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
10: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वह अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
5: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईटी की तैयारी करने वालों को आईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
7: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी, और पढ़ाने वाले कौन होंगे, पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
5: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहां भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
11: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी, और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं, तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो, जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
5: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
11: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं, तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है।
12: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी, और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजाकर, मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
5: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेन जी को मिल रहे समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर सता रहा है।
11: खबर ये भी है कि जेन जी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेन जी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं, यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेन जी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेन जी के पिता के नाम से, यानी कि जेन जी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
5: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं के वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दम रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा।
13: जय जेनजी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेनजी और जेनजी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेनजी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
14: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि आखिर जेनजी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेनजी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल ये जानते हैं कि जेनजी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेनजी चौपाल, जेनजी तिरंगा यात्रा और जेनजी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
13: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेनजी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेनजी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेनजी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेनजी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेनजी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेनजी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेनजी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही है। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेनजी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेनजी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेनजी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
15: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
14: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेनजी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेनजीज को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है? ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
13: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में है 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक हैं, तीनों बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2-2 जेंजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
16: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
17: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
18: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
17: नहीं सर।
18: 12th किससे की हो?
17: 12th सर मेरा PCM से रहा।
18: कंपाउंड क्या होता है?
17: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
18: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
17: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
18: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल के जिक्र पर सुलगी सियासत का अफसर की तलाश में ऐसे लोग कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सल। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब ऐसी कोई कोशिश नहीं। अटारी बॉर्डर पर जोश, जुनून और जज्बे का दिखाई दिया रंग, बीएसएफ ने भरी जश्न, आजादी की हुंकार, तिरंगे में रंगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। रांची में आंदोलनकारी छात्रों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं तो 20 को करेंगे सीएम आवास का घेरा, परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच पर अड़े, आज राहुल गांधी और सोरेन का करेंगे पुतला दहन। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से मांगी माफी, कहा अगर भावनाएं आहत हुई तो मुझे खेद है, नलसार विवाद में बढ़ा था बवाल।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूँ शशि शर्मा। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया और विकसित भारत के लक्ष्यों को दोहराया भी। सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में बड़ा खास रहा। पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में सियासत भी जोरदार देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
1: वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।

0: लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो साथ में महिला सैन्य अधिकारी नजर आईं और पीएम ने भाषण में महिला आरक्षण पर विपक्ष से साथ आने की अपील की।
1: मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता आग्रह करता आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।
0: पीएम की महिला आरक्षण को लेकर इस अपील पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है।
2: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं कर रहे आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने की परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे।
3: महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको दो शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी।
0: उधर पीएम मोदी ने नक्सल के सफाए का जिक्र किया तो वहीं दिमागी नक्सल से लड़ाई की बात कही।
1: हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
4: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
5: पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ, क्या दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती, किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता, तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है।
0: इस बीच एक सियासत, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले के कार्यक्रम में ना शामिल होने को लेकर भी हो रही है। लगातार दूसरे साल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस अहम सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में नहीं पहुंचे। 2024 को 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था, जहां राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे थे। ऐसे में राहुल के नदारद होने को एक बार फिर सीट अरेंजमेंट के विवाद से जोड़ा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: जेंजी वोटर्स पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ चुका है। जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेंजी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं।
7: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेंजी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेंजी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेंजी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
8: जेंजी और जेनरल

0: साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
0: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
2: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
1: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही हैं। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी, विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
3: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेके युवा संवाद?
4: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारे भविष्य हैं, ये हमारे कल हैं और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
1: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
5: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईटी की तैयारी करने वालों को आईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
2: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएस

0: सी क्लियर किया।
1: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहां भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
2: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
1: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
2: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
3: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज़्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज़्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। अगर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
1: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेन जी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर सता रहा है।
2: खबर ये भी है कि जेन जी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेन जी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेन जी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेन जी के पिता के नाम से, यानी कि जेन जी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
1: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: इस देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं का वोट तो हर पार्टी को चाहिए ही, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दमखम भी रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है।
5: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी है। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेन ज़ी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
2: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि आखिर जेन ज़ी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेन ज़ी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि जेन ज़ी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेन ज़ी चौपाल, जेन ज़ी तिरंगा यात्रा और जेन ज़ी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
5: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेन ज़ी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेन ज़ी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेन ज़ी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेन ज़ी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेन ज़ी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेन ज़ी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेन ज़ी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही हैं। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेन ज़ी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन ज़ी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेन ज़ी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
0: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
2: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेन ज़ी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेन ज़ी को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है, ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेन ज़ी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेन ज़ी को उनका हक मिलता है।
5: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जनजी हैं। पूरे देश में कुल 4131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जनजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जनजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जनजी विधायक तमिलनाडु में है 4, इनमें से 3 टीडीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जनजी विधायक हैं, तीनों बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2-2 जनजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहां ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
7: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: बार सर्दी जुखाम होता है क्या? लगातार सर दर्द से परेशान रहते हैं? क्यों हो जाती हैं ये छोटी छोटी बीमारियां और क्या है इन बीमारियों का ज्योतिषीय समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
2: भाइयों का मनोविज्ञान क्या है?
3: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
2: नहीं सर।
3: 12th किससे की हो?
2: 12th सर मेरा PCM से रहा।
3: कंपाउंड क्या होता
2: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
3: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
2: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
3: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल के जिक्र पर सुलगी सियासत का अवसर की तलाश में ऐसे लोग कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सल। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं की। रांची में आंदोलनकारी छात्रों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं हुई तो 20 को करेंगे सीएम आवास का घेरा, परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच पर अड़े, आज राहुल गांधी और सोरेन का करेंगे पुतला दहन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से माफी मांगी, कहा अगर भावनाएं आहत हुई तो मुझे खेद है, नलसार में बढ़ा था विवाद। और इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही, कई इमारतें जमींदोज, अब तक 47 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, विकसित भारत के लक्ष्यों को दोहराया। सप्त सिंधु से सप्त धरा मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया। 15 अगस्त का कार्यक्रम एक और मायने में बड़ा खास रहा। पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की धुन सुनाई दी, लेकिन इस पर दिल्ली में सियासत भी जोरदार देखने को मिली।
1: कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने की इन तस्वीरों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला, जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
1: बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई गई।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई
1: नहीं। वंदे मातरम पर यह घमासान उस वक्त शुरू हुआ है जब वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को हाल ही में राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके समापन पर भी वंदे मातरम बजाया गया था। वहीं आज पहली बार लाल किले में भी राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। संसद में वंदे मातरम बिल पारित के बाद अब 15 अगस्त पर इसके घमासान की पहली सियासी किश्त सामने आई है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।

0: लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तो साथ में महिला सैन्य अधिकारी नजर आई और पीएम ने भाषण में महिला आरक्षण पर विपक्ष से साथ आने की अपील की।
1: मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है।
0: पीएम की महिला आरक्षण को लेकर इस अपील पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है।
2: कानून बन चुका है, राहुल गांधी जी बाबा ही तो कहते हैं जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं, हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे, इसके मायने की परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे।
3: महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको दो शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी।
0: उधर पीएम मोदी ने नक्सल के सफाए का जिक्र किया तो वहीं दिमागी नक्सल से लड़ाई की बात कही।
1: हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचाना होगा।
4: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
5: पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताओ क्या है, दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती है, किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता, तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है।
0: इस बीच एक सियासत, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किले के कार्यक्रम में ना शामिल होने को लेकर भी हो रही है। लगातार दूसरे साल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस अहम सरकारी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में नहीं पहुंचे। 2024 को 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था, जहां राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे थे। ऐसे में राहुल के नदारद होने को एक बार फिर सीट अरेंजमेंट के विवाद से जोड़ा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: जेंजी वोटर्स पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ चुका है। जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेंजी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं।
7: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेंजी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेंजी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेंजी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
8: जेंजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं।
7: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
8: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
9: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
7: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही हैं। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
10: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद,
11: जी आप देख रहे हैं जिस, और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
7: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
12: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वह अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
7: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईटी की तैयारी करने वालों को आईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
9: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी, एक घंटा देगा एसपी, एक घंटा देगा, क्योंकि इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
7: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहां भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
13: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
7: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
13: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेंजी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
14: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेताजी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना, मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
7: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर सता रहा है।
13: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
7: समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: इस देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं का वोट तो हर पार्टी को चाहिए ही, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दमखम भी रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है।
15: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेंजी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
13: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस समझ में आ गया है कि आखिर जेंजी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेंजी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि जेंजी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेंजी चौपाल, जेंजी तिरंगा यात्रा और जेंजी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
15: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेंजी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेंजी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेंजी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेंजी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेंजी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेंजी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेंजी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही है। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान, तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेंजी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेंजी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेंजी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
16: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
13: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेंजी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेंजीज को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है, ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
15: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4,131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में है 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक हैं, 3 बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2 जेंजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं थी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
17: क्या आपको बार बार सर्दी जुखाम होता है? क्या लगातार सरदर्द से परेशान रहते हैं? क्यों हो जाती हैं ये छोटी छोटी बीमारियां और क्या है इन बीमारियों का ज्योतिषीय समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल के जिक्र पर सुलगी सियासत का असर की तलाश में ऐसे लोग कांग्रेस का पलटवार, पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सल। वंदे मातरम पर चढ़ी नई जंग, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और खड़गे ने किया राष्ट्रगीत का अपमान, कांग्रेस का जवाब, ऐसी कोई कोशिश नहीं। रांची में आंदोलनकारी छात्रों की चेतावनी, मांगे पूरी नहीं हुई तो 20 को करेंगे सीएम आवास का घेरा, परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच पर अड़े, आज राहुल गांधी और सोरेन का करेंगे पुतला दहन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने लॉ छात्रों से माफी मांगी, कहा अगर भावनाएं आहत हुई तो मुझे खेद है, नलसार विवाद में बढ़ गया था विवाद। और इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही, कई इमारतें जमींदोज हुई, अब तक 47 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि जो छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान करती हैं उसका कारण क्या है

के हिसाब से उसका निवारण क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 4:42 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, हम सब के जीवन में छोटी छोटी बीमारियां आती रहती हैं और जाती रहती हैं। कुछ लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं और कुछ लोग हमेशा छोटी छोटी बीमारियों से जूझते रहते हैं। तो छोटी छोटी बीमारियों के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, शरीर के स्वास्थ्य का जो मुख्य ग्रह है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, वो सूर्य है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर की सुरक्षा का स्वामी है मंगल। चंद्रमा और कमजोर मंगल दोनों मिलकर छोटी छोटी बीमारियां जीवन में देते हैं और कभी कभी इसमें बुध और शुक्र की भूमिका भी होती है। अगर कुंडली में सूर्य या मंगल दोनों में से एक भी ग्रह अगर बेहतर हो तो आदमी को छोटी छोटी बीमारियां बिल्कुल परेशान नहीं करती। और मुख्य रूप से अगर कुंडली में सूर्य प्रबल है तो आप जीवन भर अच्छा स्वास्थ्य पाएंगे, आपकी शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर रहेगी। अलग अलग बीमारियों के कारण और निवारण पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले। और सावन के पावन महीने में भाग्य को बेहतर करने के लिए बताएंगे एक सावन सूत्र। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।
मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। देखिए, सबसे ज्यादा जो समस्या लोगों को पकड़ती है और बच्चों को पकड़ती है वो है सर्दी, जुकाम और खांसी। होती क्यों है और इसके लिए ज्योतिष का उपाय क्या है? आम तौर पर सर्दी जुकाम जैसी समस्या जो तुरंत होती है ये मुख्यतः चंद्रमा से और कभी कभी मंगल से संबंध रखती है। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, ऐसे लोगों को अपने सोने जगने का ध्यान रखना चाहिए। देर रात तक जगने से और देर तक सुबह सोने से बचना चाहिए। चांदी का एक गिलास ले लें, चांदी के गिलास से नियमित रूप से पानी पिए या पीने के पानी के बर्तन में एक चांदी का सिक्का डाल करके रखें। ऐसा करने से चंद्रमा का तत्व मजबूत होगा और ये पानी निरंतर पीने से आपको सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या नहीं होगी। दूसरी समस्या जो लोगों को बहुत जल्दी होती है वो है त्वचा की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा में दाने निकलना, खुजली होना, कील मुहासे होना, ये भी बड़ी जल्दी होता है। होता क्यों है? मुख्य रूप से त्वचा की समस्या होती है बुध की वजह से और आंशिक रूप से त्वचा की समस्या होती है मंगल और सूर्य की वजह से। अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या हो तो ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। जिन लोगों को त्वचा की समस्या होती है ऐसे लोगों को नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य की रोशनी में जल चढ़ाने के बाद एक मिनट आधे मिनट खड़े रहिए। कांसे का एक छल्ला बुधवार की शाम को अपनी कनिष्ठिका अंगुली में, अपनी छोटी उंगली में धारण करिए। इससे भी त्वचा की समस्या को कंट्रोल करना आसान होगा। कुछ और छोटी मोटी बीमारियों की बात करेंगे आगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा,

आपका मजबूत होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

सिंह राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

आएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनुपमा जी ने मुंबई से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। 15 जनवरी 2008 का जन्म है, 9:15 प्रातः, धारवाड़, कर्नाटक। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का करियर कैसा रहेगा, उसका क्या इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा और भविष्य कैसा रहेगा। अनुपमा जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा भी शुक्र की चल रही है। इंजीनियरिंग में इसी साल एडमिशन हो जाएगा, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनकी कुंडली के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि इनको जीवन में चीजों को पाने में संघर्ष करना होगा। इनको शिक्षा और करियर में संघर्ष ना करना पड़े इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहना दें और रोज इनको बोलें कि सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा। एक और समस्या बड़ी जल्दी और बहुत सारे लोगों को होती है, वो है आंखों की समस्या। आंखों से पानी गिरना, आंखों में खुजली होना, आंखों में ड्राइनेस रहना। आंखों की समस्या होती किस कारण से है? देखिए, आंखों की समस्या के लिए मुख्य रूप से सूर्य जिम्मेदार होता है। ये समस्या मुख्यतः सूर्य से संबंध रखती है। आंखों की लेंस का संबंध होता है शुक्र के साथ, तो कभी कभी इसका संबंध शुक्र से भी होता है। अगर आंखों की रोशनी की समस्या है तो प्रातः काल नंगे पैर घास पर चलना चाहिए।

खून दांतों से बिल्कुल नहीं चबाने चाहिए, और अगर आंखों से पानी गिरने की समस्या है तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने पीठ करके कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आंखों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक और समस्या बड़ी कॉमन तौर से लोगों के जीवन में आती है, वो है दर्द की समस्या। हड्डियों का दर्द, शरीर का दर्द और सर का दर्द। अगर शरीर में दर्द की शिकायत है तो कारण क्या है? हड्डियों का दर्द और शरीर दर्द की समस्या सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हालांकि शरीर के अलग अलग जगहों के लिए इसमें विभिन्न ग्रहों का योगदान भी होता है। अगर हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती हो तो दोनों पैर के अंगूठे में हल्का सा टाइट चांदी का छल्ला धारण करिए। अगर बाकी जगह दर्द रहता हो तो छोटी उंगली के नीचे के हिस्से को 5 मिनट तक दबाइए, दर्द से राहत मिलेगी। अगर आपको लगातार माइग्रेन रहता हो, सर में दर्द की शिकायत रहती हो तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य की रोशनी में पीठ करके कम से कम 5 मिनट रोज सुबह बैठिए। आपके शरीर का दर्द कम होगा, माइग्रेन जैसी समस्या से आपको राहत मिलेगी। कुछ और समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवाद हो सकता है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी बुखार चढ़ जाता है या नॉर्मली उनके साथ बुखार बना रहता है। ऐसा होता क्यों है और इसका उपाय क्या है? देखिए, आपके शरीर में कहीं भी अगर ज्यादा गड़बड़ी होगी तो ये बुखार के रूप में सामने आएगी। वास्तव में बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये आपके शरीर में कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, इस बात की सूचना है। अगर बुखार नियमित रूप से रहता हो तो शरीर को विषमुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या तरीका होगा? हर रविवार को बिना अनाज का केवल जल पीकर या फल खाकर उपवास रखें और रोज सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खाएं। अगर आपको नियमित बुखार रहता हो और सप्ताह में एक दिन केवल लिक्विड लेकर आप उपवास रखें, आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक होगा और आपके बुखार की समस्या दूर हो जाएगी। एक और समस्या भी लोगों को काफी होती है, वो है पेट की समस्या। गैस होना, एसिडिटी होना, कब्ज होना, कारण क्या है? देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा से पाचन तंत्र की, डाइजेशन की और पेट की समस्या पैदा होती है। कारण बड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर बृहस्पति और चंद्रमा और कभी कभी सूर्य आपकी पेट की समस्या के लिए जिम्मेदार होता है। तांबे का बर्तन अपने पास रखें, रात भर उसमें पानी रखें, सुबह उस पानी को पिएं, या तांबे का एक गिलास रखें और तांबे के गिलास से पानी पिएं। नियमित रूप से हरे रंग के वस्त्रों का अगर आप प्रयोग करें तो इससे भी लाभ होगा। जो लोग तनाव ज्यादा पालते हैं, जो लोग टेंशन ज्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों को एसिडिटी ज्यादा होती है। तो अगर आपको एसिडिटी ज्यादा होती है तो अपना तनाव कम करने की, घटाने की कोशिश करनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती वस्तु संभाल कर रखें।
गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में भी सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि सूर्य देव को जल केवल तांबे के लोटे से अर्पित करना चाहिए, क्या ऐसा सही है? देखिए, सूर्य देव को जल लोटे से जरूर अर्पित करना चाहिए ताकि लोटे के किनारे को देख करके आप सूर्य की किरणों को ग्रहण कर सकें। ये लोटा स्टील का, पीतल का, तांबे का कोई भी हो सकता है, मिट्टी का पात्र भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सूर्य देव को केवल तांबे के लोटे से जल अर्पित किया जाए। सूर्य देव को आप स्टील, पीतल या कांसे के लोटे से भी जल अर्पित कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, धन के खर्चों पर ध्यान दें। नंबर 6, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, धन लाभ के योग हैं। नंबर 9, चोट चपेट से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक

रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है किसी चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि के लिए, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि के लोगों को, बेवजह के तनाव हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्थी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ काम मत करिएगा। आज भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो चलिए बताते हैं आपके भाग्य को चमकाने का एक महा उपाय सावन सूत्र में।

में समस्या रहती हो तो सावन में भी और सावन के बाद भी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करें, आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान पर मचा सियासी घमासान। पहले बीजेपी ने इसे वंदे मातरम का अपमान बताया, अब कांग्रेस ने से माफी की भी मांग की गई। कांग्रेस ने गाने में किसी भी तरह की बाधा डालने और उसके अपमान के आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमलावर होते हुए कहा, वंदे मातरम का अपमान भारत का अपमान है, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। AIMIM के नेता वारिस पठान ने भी प्रतिक्रिया दी, कहा वंदे मातरम का सम्मान करते हैं लेकिन किसी को भी इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बीएसपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद को इतनी बड़ी पार्टी बताती है लेकिन वंदे मातरम का गायन भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल बयान और महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष का निशाना, कहा स्वतंत्रता दिवस के मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री और कांग्रेस के कामों का आश्रय लेने का उनके ऊपर आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, यह उनकी हताशा को स्पष्ट करता है। अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, आत्मविश्वास की कमी, घबराया हुआ और डगमगाता हुआ प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेंजी के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए कहा, देशद्रोह नहीं और सरकार की नीतियों ने युवाओं की अंधी गली में धकेला। खड़गे ने कहा, आजादी का असली मतलब है सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं बल्कि गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय और डर से भी आजादी। खड़गे ने सरकार पर नफरत फैलाने वाले अभियान चलाने के भी आरोप लगाते हुए कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान को देश की समृद्धि और शांति के लिए जरूरी बताया। गुरु बाबा रामदेव ने सरकार को शिक्षा और भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ चेतावनी दी, कहा इसे घपले से ठीक नहीं होगा, उन्हें दोबारा विरोध करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया, कहा यूपी में सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन पुनः शुरू की जाएगी और 40,000 रुपए पेंशन दिए जाएंगे। चुनाव लड़ने के बारे में जग्गा रेड्डी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, कहा अगर राहुल गांधी राम हैं तो जग्गा रेड्डी हनुमान, माननी पड़ेगी बात। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हुआ। सुधार मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाने का भी ऐलान कर दिया। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठाई। सदर अस्पताल में 5 दिनों के भर्ती देवेंद्र 5 दिनों से भर्ती देवेंद्रनाथ महतो की भूख हड़ताल 14वें दिन भी जारी। उन्होंने अस्पताल में अपने बेड को छोड़कर कॉरिडोर की जमीन पर लेटकर धरना जारी रखा। भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट देवेंद्रनाथ महतो की 15 अगस्त को रांची के सदर अस्पताल में पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। तिरंगा यात्रा में जाने की जिद पर अड़े थे। विधायक टाइगर जयराम महतो ने इस मुद्दे को लेकर सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। पूरे मामले को विधानसभा के माध्यम से उठाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोया समेत सभी एनालॉग डेयरी उत्पाद शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान कई नमूनों में अलग अलग तरह की मिलावट पाए जाने की बात सामने आई है। कई जिलों में दूध और दूध उत्पादों में मिलावटखोरी के निशान भी पाए गए। बंगाल के कूचबिहार में 3 संदिग्ध ISI के एजेंट गिरफ्तार है। STF का दावा, भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेज रहे थे, नकली नोट भी बनाया करते थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि लोगों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ संपर्क हो सकते हैं। अदालत ने तीनों को ही 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र में कमर्शियल वाहन चालकों के लिए मराठी बोलना अनिवार्य करने के नियम में आज से नियम लागू हो जाएगा। राहुल गांधी ने 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा यह बीजेपी की विकृत मानसिकता है, बलात्कारियों और अपराधियों को बचाती है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने रिसोर्ट में अंकिता के कमरे को जांच से पहले गिराए जाने का भी संदिग्ध बताया है। कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर से संघ को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आजादी की लड़ाई में RSS की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा, संघ बताए उसने देश में किस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। प्रियांक खड़गे ने RSS पर हमला बोलते हुए कहा कि संघ 50 ऐसे नाम बता सकता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी हो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, 6 ID और गोला बारूद बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। नलसार विवाद के बीच BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने स्टूडेंट से माफी मांगी, बोले अहंकार का सवाल नहीं है, कानून छात्राओं की भावनाएं अगर आहत हुई हैं तो मुझे खेद है। बीसीआई चेयरमैन ने कहा कि कभी भी छात्र आहत महसूस करते हैं तो उनकी शिकायतों और चिंताओं को पूरी तरह से सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कलाकार ने यूपी में बुलडोजर एक्शन की तारीफें की। सीएम योगी ने दिया दिलचस्प जवाब, बोले मैं गा नहीं सकता, बुलडोजर चलवा सकता हूं। आसनसोल में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई, 14 घायल हुए, 6 की हालत गंभीर है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। पुलिस ने दोनों ही पक्षों को मौके से हटाया था और इलाके में लगातार गश्त की जा रही है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की सतर्कता से जांच। 80वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजबानी की। स्वतंत्रता दिवस पर दिखाई दिया खास जमावड़ा, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज पहुंचे राष्ट्रपति भवन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी संग एट होम रिसेप्शन में पहुंचे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने एस जयशंकर अश्विनी वैष्णव भी इसमें मौजूद थे। पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन बने खास मेहमान, राष्ट्रपति भवन में मिला विशेष निमंत्रण, 650 मेहमानों को मिला न्योता। राष्ट्रगान के साथ एट होम रिसेप्शन की शुरुआत हुई, राष्ट्रपति भवन में गूंजा वंदे मातरम। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत हुई, वेल्स को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे, रत्संजय ने पेनल्टी पर गोल करके टूर्नामेंट में भारत के लिए खाता भी खोला। लद्दाख में बीआरओ का नया रिकॉर्ड, 19,400 फीट पर पहली बार तिरंगा लहराया। मेघला बना दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरबेल रोड। मेघला दर्रे पर गुजर देशभक्ति का जज्बा, बीआरओ की माउंटेन टेमर्स ने किया कमाल, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दुबई का बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंगों से रोशन हुआ। भारत यूएई मजबूत दोस्ती, दोनों ही देशों के बीच गहरे होते रिश्तों का प्रतीक बना। बारिश के बाद शिमला का दिलकश नजारा, ड्रोन कैमरे में कैद हुई खूबसूरत तस्वीरें। कोहरे की चादर में लिपटी मशोबरा की पहाड़ियां, बादलों के बीच दिखाई दिया मनमोहक दृश्य। पहाड़ों पर छाई धुंध ने बढ़ाई खूबसूरती, बादलों से ढकी पहाड़ियों का अद्भुत नजारा नजर आया। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवकों को बचाया, तेज बारिश के बीच दमोह झरना देखने आए थे, मझधार में फंस गए थे। असम के गुवाहाटी में जमकर बारिश हुई, शहर के कई इलाकों में जलभराव ने रोकी वाहनों की रफ्तार। सिक्किम में भी भारी बारिश के बाद भूस्खलन ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। ग्यालशिंग में प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। चमोली हादसे में एचसीसी मजदूरों ने किया आपदा प्रबंधन मंत्री का घेरा, कंपनी प्रबंधन से मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजे दिलाने की मांग की गई। पीपलकोटी टनल हादसे में मुआवजे की मांग पर श्रमिकों का मंत्री से सवाल, जमकर नारेबाजी। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत हुई, 1 लापता, प्रशासन साइट पर रेस्क्यू जारी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाजदेव बागो बांध का बढ़ा जलस्तर, प्रबंधन ने एहतियातन गेट खोले। हरदेव नदी में छोड़ गया 25,000 क्यूसेक पानी, नदी की जद में आने वाले 34 ग्राम पंचायतों को जारी किया गया अलर्ट। कटिहार में भीषण हादसा, कार और ट्रक की भिड़ंत में 2 कांवड़ियों की मौत से 3 घायल। लातेहार में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, एक कंटेनर वाहन ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी थी, बाद में सवारी टेम्पो को भी टक्कर मारी। जलंधर में छुट्टी पर आए आर्मी जवान ने पत्नी का किया बेरहमी से कत्ल, किसी को शक न हो पत्नी के छत से नीचे गिरने की कहानी भी बनाई। सोनीपत में दिनदहाड़े बेखौफ डंपर चोरों ने पुलिस की गाड़ी में भीषण टक्कर मारी, 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। सीतापुर में 3 दिन से लापता युवती का शव मिला, तीनों ही आरोपी गिरफ्तार, दरोगा निलंबित। अलवर में फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी थी, 5 जिलों की 25 दमकल गाड़ियों ने 8 घंटे में काबू पाया, 25 से 30 करोड़ का नुकसान हुआ। पटना में ज्वेलर्स के ऑनर्स को बदमाशों ने गोली मारी थी, दुकानदार बदमाश के साथ भिड़ गया था, अपराधी हथियार छोड़कर फरार हुए। भोपाल के न्यू मार्केट में नटवर लाल गिरफ्तार, खुद को नगर निगम का ऑफिसर बताकर 10 दुकानदारों को चूना लगाया था। गुजरात के सूरत में मिलावटखोरों पर प्रशासन का एक्शन, मिलावटी गाय का घी बनाने वाली फैक्ट्री में लाखों का माल जब्त किया गया। फैक्ट्री से पाम ऑयल और वनस्पति तेल से बनाया जा रहा था नकली गाय का घी, सूरत पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। भारत श्रीलंका के बीच गोल्ड टेस्ट का आज दूसरे दिन है, पहले दिन के स्कोर 288 पर 2 विकेट से आगे खेलना शुरू करेगी टीम इंडिया। श्रीलंका के मैदान पर कल खराब रोशनी के चलते 73 ओवर का ही मैच खेला गया था। देवदत्त के साथ ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद। पहले दिन कल देवदत्त ने 178 गेंदों पर 131 रन की पारी खेली। देवदत्त ने जड़ा था करियर का पहला शतक। शानदार बैटिंग कर रहे केएल राहुल क्रैम्प की परेशानी के चलते 77 रन पर रिटायर्ड हर्ट हुए। 27 रनों पर बैटिंग करते रहे ऋषभ पंत। वर्ल्ड टेस्ट के पहले दिन बारिश के चलते 2 बार रोका गया था मैच। मुकाबले पर आज भी रहेगा बारिश का साया। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। शुक्रवार को रिलीज हुई आवारा पंचू और आवारा बटवारा 1947 दो दिनों में बंपर कमाई। 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा उठाते हुए आवारा पंचू ने दो दिनों में किया है 44 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। इमरान हाशमी के फैंस लुटा रहे हैं प्यार। पहले दिन आवारा पंचू से पिछड़ रही है सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947। शनिवार को कमबैक किया लेकिन दो दिनों में 19 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। 15 अगस्त के दिन बटवारा 1947 के कलेक्शन में 60% का दिखाई दिया भारी उछाल। फैंस कर रहे हैं सनी देओल के और प्रीति जिंटा के दमदार अभिनय की तारीफ। आज रविवार को सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगी जोरदार टक्कर। दोनों ही फिल्मों को मिलेगा वीकेंड का फायदा। पूर्वी इंडोनेशिया में शनिवार सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से अब तक 47 की मौत 50 से ज्यादा घायल। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम जारी। दक्षिणी स्पेन के ग्रेनाडा शहर में 5 तीव्रता का तूफान और भूकंप। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कई घरों और कारों को पहुंचा नुकसान। इसराइल ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में किए हवाई हमले। कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। कई घायल। मरने वालों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने सत्ता में अपनी वापसी के 5 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी सहित कई और नेताओं ने काबुल में समारोह में हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के दावे को ईरान ने खारिज किया। कहा केवल तेहरान ही यह तय करेगा कि रणनीतिक जलमार्ग खुला रहेगा या नहीं। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के 81 साल पूरे होने पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा हमें युद्ध से हुई तबाही को कभी नहीं भूलना चाहिए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसी देश उत्तर कोरिया से दुश्मनी खत्म करने और बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील की है। कहा दोनों ही कोरियाई देशों को अस्थिर युद्ध विराम शांति व्यवस्था लाने की जरूरत। स्पेन ने अपने सीमावर्ती इलाकों स्यूटा में पुलिस और सेना की मौजूदगी बढ़ा दी। मोरक्को में बड़ी तादाद में प्रवासियों के घुसने की आशंका को देखते हुए कदम उठाया गया। जापान की राजधानी टोक्यो के पूर्व में मौजूद शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। सैकड़ों घर और गाड़ियां पानी में डूबी। कम से कम 5 लोगों की मौत। कई घायल। दक्षिण पश्चिमी स्पेन के जंगलों में भीषण आग लगी। 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका प्रभावित हुआ। सैकड़ों दमकल कर्मी और हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
4: बिजली का बिल पेड
5: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
5: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
2: इतना माही वे।
6: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
7: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
6: Vimal, bolo zuba kesri.
8: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
9: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
10: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
9: नहीं सर।
10: 12th किससे की हो?
9: 12th सर मेरा PCM से रहा।
10: कंपाउंड क्या होता
9: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
10: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
9: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
10: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: are with you, friends.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आप तस्वीरों में देखें, ये है प्राथमिक विद्यालय कुशमोरा और हम यहाँ जब दाखिल होते हैं तो यहाँ साफ सफाई देखने को मिलती है और शायद ही आपने किसी बेसिक शिक्षा स्कूल में टाइल्स लगे देखे होंगे, आपको यहाँ पर टाइल्स लगे नजर आएंगे। यहाँ कोई खुदरी जमीन, मिट्टी या खड़ंचा, ईंट पत्थर नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर आप देखें तो एक तरीके से ये पूरे टाइल्स यहाँ लगे हुए हैं। इसके अलावा ये प्रिंसिपल रूम है। इसके अलावा आपको अब मैं क्लासरूम में ले जाऊंगा और आप खुद चौंकेंगे कि क्या ये सरकारी स्कूल है। आइए मेरे साथ, ये देख सकते, आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक क्लासरूम चल रही है। तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने क्लास पढ़ रहे हैं, साइंस का ये सब्जेक्ट है, इनके पास किताबें हैं। और अगली तस्वीर है इस प्रोजेक्टर की। ये प्रोजेक्टर है और ये एलईडी
2: स्मार्ट बोर्ड
1: है। तो ये एलईडी स्मार्ट बोर्ड है, आप समझे कि कितना आगे बढ़ सकते हैं अगर चाह लें। अब आपको हम यहाँ ला रहे हैं, यहाँ पर भी क्लासरूम चल रही है और ये देखेंगे तो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से ये जो टीचर है वो पढ़ा रही हैं। ये एक सब्जेक्ट है जिसको वो पढ़ा रही हैं। आकार के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है इस प्रोजेक्टर के माध्यम से। ये बड़ी बड़ी मशीन्स आप देखिए, यहाँ पर ये प्रोजेक्टर है, यहाँ पर ये मशीन्स लगी हुई हैं। मैं क्योंकि बीच में आ गया तो मेरी भी तस्वीर इसमें पीछे से आ गई। प्रोजेक्टर्स का ये काम होता है और ये कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं है। हम इस वक्त मोहनलालगंज के मीरानपुर प्राइमरी स्कूल आए और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ आपको गंदगी का अंबार दिखाई पड़ेगा। पहले आपको ये दिखा देता हूँ, ये एंट्री पॉइंट है मीरानपुर सरकारी स्कूल का, आप देखें। और आप बाहर की तरफ देखेंगे, ये स्कूल का एंट्री पॉइंट है। सामने दो गाड़ियां लगी हुई हैं और ये देखिए सामने एक बड़ा सा नाला, तालाब, इसको क्या कहें। यहाँ घूमते जानवर, ये गंदगी, कितनी बीमारियों का जड़ जो है, ये पूरा का पूरा तालाब नुमा नाला है। आप वॉशरूम कैसे आते हैं? वॉशरूम आने का रास्ता ये है। इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं, इतने पुराने दरवाजे हैं और काफ़ी ज़्यादा बदबू है। इस इमारत की आप देखिए, ये देखिए ये हालत सरकारी स्कूल के वॉशरूम की है। ये कब गिर जाएगा, ईंट तक अंदर की दिखने लगी है, जाले यहाँ लटके हुए हैं। मैं पानी अगर पीना चाहूँ तो इसमें पानी नहीं निकल रहा है, कोई पानी नहीं है। सफाई के नाम पर ये चींटियाँ हैं जो छोटे छोटे बच्चों को कैसे काटेंगी, कितना काटेंगी, कोई नहीं जानता। यहाँ पर एक नल लगा है जहाँ पर टैप नहीं है, यानी कि इस पर जो नली होती है वो नहीं है। यहाँ पर तो टोटियाँ ही गायब हैं, एक दो तीन। ये गर्मी का मौसम है, फिलहाल यहाँ पर एक क्लास चल रही है। यहाँ की ज़मीन किस तरह की है, क्या किस तरह की इमारत पुरानी है, नीचे देखिए आप, सारी जो नीचे की ईंट हैं वो सब दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपर दिखा दें क्लासरूम की हालत इस वक्त क्या है। टीचर्स जो हैं, टीचर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स दिन रात अपना एक करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिससे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संवरे। ये जितनी लोग हैं ये भी दिन रात एक करके पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी मेहनत का क्या जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नोटबंदी और खड़गे पर राष्ट्रगीत के लगाए आरोप, कांग्रेस का इनकार, कहा रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई, पूरा बजा था वंदे मातरम। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान पर विपक्ष हमलावर, कांग्रेस बोली पहले किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सल। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई तो सीएम आवास का घेराव करेंगे। कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए आज राहुल गांधी का जलाएंगे पुतला। नलसार विवाद पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने माफी मांगी, कहा अगर भावनाएं आहत हुई तो मुझे खेद है, चीफ जस्टिस से डिग्री न लेने पर लॉ छात्रों को दी थी धमकी। और इंडोनेशिया में भूकंप में मौत की तबाही से मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 47, कई इमारतें जमींदोज, 7.7 तीव्रता वाले भूकंप से त्राही त्राही कई इलाके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अटल जी को उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं।
1: राष्ट्रपति महोदया जी, श्री द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे भारत की उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, आप सभी गणमान्यों का आगमन सदैव अटल पर हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय एवं अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष श्री एम वेंकैया नायडू जी का आगमन भी सदैव अटल पर हो चुका है। अब माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं।

0: राष्ट्रप्रथम की भावना श्रद्धेय अटल जी के रग रग में थी। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि के माध्यम से अर्पित किए। अब हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधा कृष्णन जी अपनी पुष्पांजलि श्रद्धेय अटल जी को अर्पित करेंगे। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पर भारी है, ये अकेला देश है जिसके पास श्री अटल बिहारी हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी के प्रति नतमस्तक होते हुए अब हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुष्पांजलि द्वारा श्रद्धेय अटल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति व श्री वेंकैया नायडू जी हमारे मध्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को नतमस्तक होते हुए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल जी के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नतमस्तक होते हुए, स्मरण करते हुए हमारे सभी के प्रिय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके पश्चात हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी श्री रामनाथ कोविंद जी श्रद्धेय अटल जी के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नतमस्तक होते हुए स्मरण कर रहे हैं।
1: तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि आज के दिन मतलब 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था और सदैव अटल पर तमाम ये बड़े भारतीय राजनीति के चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं।
0: आप एक सुप्रसिद्ध गायक हैं, पिछले 20 वर्षों से देश विदेश।
1: इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और तमाम जो भारतीय राजनीति के बड़े चेहरे हैं, सरकार के जो बड़े चेहरे हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर।
2: देखिए, बिल्कुल सरकार के ही नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर जो सर्वोच्च नेता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी आर राधाकृष्णन, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, तमाम ये वो लोग हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया है। और अटल बिहारी वाजपेयी एक भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सर्वमान्य नेता है जो पार्टी को लेकर आगे चले और पार्टी को आगे बढ़ाया। और तीन बार जो है उन्होंने प्रधानमंत्री पद की जो है वो शपथ ली। अगर आप देखेंगे तो गठबंधन की राजनीति कैसे की जाती है, कैसे गठबंधन की राजनीति के साथ जो है 5 साल सरकार चलाई जा सकती है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है देश की जनता को बताया था। 1998 से 2004 तक उन्होंने 24 दलों की गठबंधन की सरकार चलाकर ये देश के सामने एक गहन उदाहरण प्रस्तुत किया था कि कैसे गठबंधन की राजनीति में अपने अपने हितों को छोड़कर देश हित के लिए सरकार चलाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट किया जो सफल हुआ। और उसके बाद आप देखिए, चाहे वो यूपीए सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, जिसमें जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सरकार के सर्वोच्च नेता है, ये उन्होंने प्रूव करा। और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जो है, अगर आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो अपनी ही पार्टी में लोकप्रिय नहीं थे बल्कि ये कहें कि अन्य पार्टियों में भी वो लोकप्रिय थे। और ये हमेशा कहा जाता था जब भी संसद में डिबेट होती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन पार्टी खराब है। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही हाजिर जवाब थे, वो
1: बिल्कुल हिमांशु अजात शत्रु उन्हें कहा गया। और जिस तरीके से, जिस सामंजस्य की आप बात कर रहे हैं, बार बार कहा जाता है कि हमेशा उस तरह की शख्सियत प्रासंगिक रहेगी लोकतंत्र में।
2: देखिए बिल्कुल लोकतंत्र में और लोकतंत्र के कई उदाहरण जो है अटल बिहारी वाजपेयी के हों। अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार जीवन गए तो उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी चूंकि कवि भी थे, कवि हृदय थे, कई बार उनका अगर कहें कि राजनीति में अगर कुछ चीजें खराब हुई तो उसको उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए जो है देश के सामने रखा। इमरजेंसी में जेल में रहते हुए उन्होंने कैदी कविराई की कुंडलियां नामक किताब लिखी और उसके बाद अगर आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है हार नहीं मानूंगा
1: जी।
2: तो इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी अपनी अभिव्यक्ति जो है वो जाहिर करते रहे और तमाम विषयों पर उन्होंने कविता भी लिखी, लेकिन वो एक हाजिर जवाब राजनेता के तौर पर थे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सत्ता जो लोक अपवाद के कारण आए उसको मैं चिमटे से भी नहीं छूना चाहूंगा। ये खुद वाजपेयी ने 1996 में जब वो 13 दिन के
1: बिल्कुल हिमांशु पोखरण से लेकर करगिल तक भारत की रणनीतिक ताकत की नींव को मजबूत करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सदैव अटल पर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।

0: और आगे बढ़ेंगे और अब सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या और खास इस बुलेटिन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वंदे मातरम के सम्मान अपमान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है कल से ही और बीजेपी खड़गे को घेर रही है। तो वही कांग्रेस नेता राष्ट्रगान को लेकर बीजेपी को कानूनी नोटिस थमा चुके हैं। साथ ही साथ आपको बुलडोजर के बारे में भी बता दें, सीएम योगी के सामने जब छत्तीसगढ़ के कलाकार ने कहा कि आप बाबा बुलडोजर हैं तो योगी ने क्या जवाब दिया, ये भी हम आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो सियासी घमासान तेज हो गया उसके बारे में, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के गायन के दौरान सोनिया गांधी ने इशारों और साथ ही नेताओं की बातचीत की तस्वीरों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, आरोप लगाने शुरू किए। कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि वंदे मातरम का पूरा सम्मान किया गया था, पूरा संस्करण गाया भी गया था, तमाम आरोप झूठे हैं। बीजेपी नहीं बीएचपी की तरफ से भी माफी की मांग की गई है, जिस पर कांग्रेस अब हमलावर है। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन, किस पर उठे सवाल? क्या सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के पूरे गायन पर आपत्ति जताई? वंदे मातरम के गायन पर क्यों गरमाई सियासत? स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण के बाद वंदे मातरम का गायन हुआ, लेकिन गायन के दौरान सोनिया गांधी के कुछ इशारों और नेताओं की बातचीत की तस्वीरों ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेता वंदे मातरम के पूरे गायन के दौरान गंभीर नजर नहीं आए।
1: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
0: बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने साफ किया कि वो वंदे मातरम का पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाया गया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोनिया गांधी पर लगाए जा रहे आरोपों को भी खारिज कर दिया।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
0: दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के रवैये को शर्मनाक बताया है। जश्न से शुरू हुआ वंदे मातरम का विवाद अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद 15 अगस्त को इसके घमासान की पहली सियासी किश्त भी सामने आ गई है। आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी और आरएसएस पर हमला कर

0: का कभी सम्मान न किया हो, वो आज तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। सच्चाई तो यह है, भाजपा और आजादी बिलो में एक दूसरे के विपरीत हैं। इनका राष्ट्रवाद एकरंगी है, लेकिन हमारा आपका बहुरंगी है। हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी हैं। और सच्चाई तो यह है कि तिरंगे से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे साथी जानते होंगे कि कई स्थान इनके ऐसे थे जिस पर कभी तिरंगा नहीं लगा, ना आजादी से पहले ना आजादी के बाद।
1: वंदे मातरम अपमान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है, तो वहीं कांग्रेस के सांसद ने कहा है कि बीजेपी को तिल का ताड़ बनाने की आदत है।
2: कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
3: मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहां पर खड़े थे वो, और धूप काफी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए। तो बस इतनी बात थी। उसी को एक, जिसको कहते हैं तिल को ताड़ बनाना, भारतीय जनता पार्टी की आदत है। हर चीज़ को कभी बात खड़ा करना, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी लाना। तो हकीकत ये थी कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी के लिए एक व्यवस्था करना चाह रही थी ताकि वो गिर ना जाए।
1: तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है, लेकिन राष्ट्रगान के मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय को कांग्रेस ने लीगल नोटिस भेज दिया है। 13 अगस्त को रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम का वीडियो शेयर करके बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि राष्ट्रगान बज रहा था और राहुल गांधी लोगों से मुलाकात कर रहे थे, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि वीडियो को एडिट करके जानबूझकर बीजेपी ने अधूरा राष्ट्रगान लगाया है, जो अपमानजनक है, और इसीलिए कांग्रेस ने बीजेपी से बिना शर्त माफी की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। कल सीएम योगी कलाकारों से मिल रहे थे, और इस दौरान छत्तीसगढ़ से आए कलाकार ने कहा कि आप तो बाबा बुलडोजर हैं। इस पर सीएम योगी ने दिलचस्प जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत लोगों पर बुलडोजर चलाना पड़ता है।
4: पूरे छत्तीसगढ़ में आपको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है।
5: अच्छा,
4: छत्तीसगढ़ को प्रणाम है आपको।
5: धन्यवाद जी। तो बुलडोजर पसंद है ना?
4: असत्य पर सत्य की जीत होना जरूरी है।
5: हाँ, मैं देखे, आप गा सकते हैं, आप गाते हैं, मैं गा नहीं सकता, कम से कम बुलडोजर तो चलवा ही सकता हूं गलत लोगों को।
1: झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने अब सीएम सोरेन को खुली चुनौती दे दी है। वहीं दूसरी तरफ सीएम सोरेन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा।
6: झारखंड में छात्रों का आंदोलन तेज। क्या होगा अगला कदम? क्या सरकार और छात्रों के बीच बढ़ेगा टकराव? क्या 20 अगस्त को आंदोलन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेगा? क्या छात्रों के अल्टीमेटम से सरकार पर बढ़ेगा दबाव? झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अब आंदोलनकारी छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया है। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई।
7: हमारी जो मांग है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के और 11 to 13 जेपीएससी को लेकर के, रद्द

0: मतलब रद्द, जेपीएससी 11 to 13, जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच। 20 तारीख तमाम झारखंड के छात्रों से, अभिभावकों से, सभी से हम यह आह्वान करते हैं, आइए कल से ही आना शुरू कीजिए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती 20 तारीख तब तक हम सीएम आवास से नहीं उठने वाले हैं। 20 तारीख को सीएम आवास घेरने का ऐलान जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच कर रहा है।
1: रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग खुलकर सामने आई है।
0: माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, यह मंच पहली बार यह मांग कर रहा है कि अगर आपसे सीजीएल और 11 to 13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दें।
1: युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मामले में छात्रों ने सरकार से जवाबदेही तय करने के साथ साथ ठोस कार्रवाई की मांग की है। वहीं छात्रों ने आंदोलन को और तेज करने की तैयारी कर ली है। छात्रों ने राज्य के सभी 24 जिलों में सीएम सोरेन समेत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पुतले फूंकने का ऐलान किया है।
2: पुतला दहन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होने वाला है और जो उनको समर्थन दे रहे कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी का भी 2400 जिला में
1: इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने और उनकी मेहनत को व्यर्थ न जाने देने का वादा किया।
3: विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके।
1: छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने छात्रों की मांगे नहीं माने जाने पर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी है। झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। छात्रों के द्वारा दिए गए 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव के अल्टीमेटम पर सभी की निगाहें रहेंगी। उससे पहले सोरेन सरकार छात्रों की समस्या का हल निकाल पाती है या नहीं, ये भी चर्चा का विषय बना रहेगा। आज तक ब्यूरो।
4: साथ ही आपको बता दें कि रांची में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को लेकर सदर अस्पताल में हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। आरोप ये है कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने से पुलिस ने उन्हें रोका जबरदस्ती। इस दौरान पुलिस और उनके बीच में धक्कामुक्की हुई जिसमें उन्हें चोटें भी लगी हैं, दावा किया जा रहा है। विधायक जयराम महतो ने मामले को विधानसभा में उठाकर सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगने की बात कही है।
5: साथियों, जिनमें भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो जी जो सदर अस्पताल रांची में भर्ती थे और वो बार बार कह रहे हैं कि हमको स्वस्थ लग रहा है, हमको ठीक लग रहा है, हमको ठीक लग रहा है, हमें धरना स्थल पर जाने दीजिए, हमें धरना स्थल पर जाने दीजिए, हमें आज की तिरंगा मार्च में शामिल होने दीजिए, और उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल में नजरबंद किया जा रहा है, तो यही सवाल है कि कैसी आजादी? आजादी का मतलब केवल विदेशी ताकतों से, विदेशी शासन से आजाद होना नहीं था। आजादी का मतलब था भूख से आजादी, भय से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, लाचारी, गरीबी, बेबसी से आजादी, अन्याय से, जुल्म से, शोषण से आजादी। आज आप जुल्म कर रहे हैं।
4: पश्चिम सिक्किम में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं और आपको बता दें कि रिम्बी और साथ ही सिंगलिताम इलाके में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया जिससे आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में सुरक्षा इंतजामों के साथ साथ सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। पश्चिमी सिक्किम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से भरभराकर पूरा का पूरा पहाड़ का मलबा नीचे आया है। अच्छी बात रही है कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ और नाचो के सिनालित इलाके में सड़क निर्माण स्थल पर मलबा आने की वजह से 3 मजदूरों के मौत की खबर है, जबकि एक मजदूर अभी भी लापता है। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहीं लगातार बारिश और मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के चलते राहत और बचाव की टीमों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी और बुरी मुश्किलें आती हैं कि पूरा का पूरा रास्ता बह जाता है और लोगों तक रेस्क्यू या राहत पहुंचाना और ज्यादा मुश्किल भरी बात रहती है। इंडोनेशिया के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि विनाशकारी भूकंप यहां पर आया है। शनिवार को 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप ने इंडोनेशिया में भारी तबाही मचा दी है। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी के मुताबिक भूकंप और उसके बाद आए कई झटकों में कम 47 लोगों की जान जा चुकी है। भूस्खलन के चलते सड़कें बंद हैं, संचार व्यवस्था पूरी तरह से बाधित है। सबसे ज्यादा प्रभावित नेगेको इलाके तक राहत और बचाव की टीम अभी नहीं पहुंच पाई है। और अब बात करेंगे स्पेन के बारे में, जहां कई दिनों से जंगलों में आग लगी हुई है, तांडव देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से, तेज हवाओं की वजह से, जंगल की आग और ज्यादा बेकाबू होती जा रही है। देखते ही देखते आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में लिया है। चारों तरफ धधकती हुई लपटें हैं, उड़ता हुआ धुआं है, लोगों में दहशत है। स्पेन के जंगलों में भीषण आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है। आग तेजी के साथ फैलने की वजह से आसपास के इलाकों की चिंता लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसे, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती है जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
7: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
8: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: बिजली का बिल पेड
13: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
14: कैसे?
13: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
14: इतना माही वे।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
2: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
1: नहीं सर।
2: 12th किससे की हो?
1: 12th सर मेरा PCM से रहा।
2: कंपाउंड क्या होता है?
1: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
2: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
1: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
2: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

वंदे मातरम पर चिड़ी नई जंग। बीजेपी के बाद बीएचपी ने सोनिया और खड़गे पर राष्ट्रगीत का अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस का इनकार, कहा रोकने की कोई कोशिश नहीं की, पूरा बजा था वंदे मातरम। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान पर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस बोली पहले किसानों और युवाओं को, प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सल। चिदंबरम बोले दिमागी नक्सल होने पर गर्व। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई तो सीएम आवास का घेराव करेंगे। कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए आज राहुल गांधी का जलाएंगे पुतला। नलसार विवाद पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने मांगी माफी का। अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद, चीफ जस्टिस से डिग्री न लेने पर लॉ छात्रों को दी थी धमकी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनके नेतृत्व में दी देश को नई दिशा। सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर समेत कई नेताओं ने किया नमन।

कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान पर मचा सियासी घमासान। पहले बीजेपी ने इसे वंदे मातरम का अपमान बताया था, अब बीएचपी ने कांग्रेस से माफी की मांग की है। कांग्रेस ने गाने में किसी भी तरह की बाधा डालने और उसके अपमान के आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा, वंदे मातरम का अपमान भारत का अपमान है, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। AIMIM नेता वारिस पठान ने भी प्रतिक्रिया दी, कहा हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं लेकिन किसी को भी इस गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद को इतनी बड़ी पार्टी बताती है लेकिन वो वंदे मातरम का गायन भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल बयान और महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा, कहा स्वतंत्रता दिवस के मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के कामों का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा उनकी हताशा को स्पष्ट दिखाता है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, आत्मविश्वास की कमी, घबराया हुआ प्रधानमंत्री, डगमगाया हुआ प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेंजी के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए कहा यह देशद्रोह नहीं है, सरकार की नीतियों ने युवाओं को अंधी गली में धकेल दिया। खड़गे ने कहा आजादी का असली मतलब है सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति ही नहीं बल्कि गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय, डर से भी मुक्ति। खड़गे ने सरकार पर नफरत फैलाने वाला अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की मोहम्मद की दुकान को देश की समृद्धि और शांति के लिए जरूरी बताया। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकार को शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ चेतावनी दी, कहा इस घपले को ठीक किया जाए वरना उन्हें दोबारा से आंदोलन करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया, कहा यूपी में सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन शुरू होगी और 40,000 रूपये दिए जाएंगे। चुनाव न लड़ने के बारे में जग्गा रेड्डी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, कहा अगर राहुल गांधी राम है तो जग्गा रेड्डी हनुमान है, माननी पड़ेगी बात। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन और तेज हुआ, सुधार मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाने का भी ऐलान किया है। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए छात्रों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठाई। सदर अस्पताल में 5 दिनों से भर्ती देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल के 14वें दिन भी जारी, उन्होंने अस्पताल में अपने बेड को छोड़ दिया है, कॉरिडोर की जमीन पर लेटकर धरना जारी रखा। भूख हड़ताल कर रहे छात्र एक्टिविस्ट देवेंद्र नाथ महतो की 15 अगस्त को रांची के सदर अस्पताल में पुलिस के साथ झड़प हुई थी, तिरंगा यात्रा में जाने की जिद कर रहे थे। विधायक टाइगर जयराम महतो ने इस मुद्दे को लेकर सोरेन सरकार पर निशाना साधा, कहा पूरे मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण पर और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया, पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोया समेत तमाम एनालॉग उत्पाद बंद। निरीक्षण के दौरान कई नमूनों में अलग अलग जगहों पर मिलावट पाई गई थी और कई जिलों में दूध और दूध उत्पादों में मिलावटखोरी के निशान मिले। बंगाल के कूचबिहार से 3 संदिग्ध आईएसआई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ के दावे में कहा गया भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे जा रहे थे, नकली नोट भी बनाया करते थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इन लोगों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ भी संपर्क साधा हुआ था। अदालत ने तीनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र में कमर्शियल वाहन चालकों के लिए मराठी बोलना अनिवार्य करने वाला नियम आज से लागू हो जाएगा। राहुल गांधी ने 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा यह बीजेपी की विकृत मानसिकता है, बलात्कारियों और अपराधियों को बचाती है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, गंभीर आरोप भी लगाए, उन्होंने रिसोर्ट में अंकिता के कमरे की जांच से पहले गिराए जाने का मामला भी उठाया और उसे संदिग्ध बताया। कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर से संघ को कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा संघ बताए कि उसने देश के किस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा, क्या संघ 50 ऐसे नाम बता सकता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी हो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकानों के भंडाफोड़, 6 आईडी और गोला बारूद बरामद किया गया, सर्च ऑपरेशन जारी। ननसार विवाद में बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने लॉ स्टूडेंट से माफी मांगी, बोले अहंकार का सवाल ही नहीं है, यदि कानून छात्रों की भावनाओं से आहत हुई है तो उन्हें खेद है इस बात का।
बीसीआई चेयरमैन ने कहा कि जब कभी भी छात्र आहत महसूस करते हैं तो उनकी शिकायत और चिंताओं को पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कलाकार ने यूपी में बुलडोजर एक्शन की तारीफ की। सीएम योगी ने दिया दिलचस्प जवाब, बोले गा नहीं सकता तो गलत लोगों पर बुलडोजर चला सकता हूं। आसनसोल में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई, 14 की घायल होने की खबर, 6 की हालत गंभीर है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस ने दोनों पक्षों के मौके से हटा दिया था और इलाके में लगातार गश्त की जा रही है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच जारी है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजबानी की। स्वतंत्रता दिवस पर खास जमावड़ा नजर आया, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम दिग्गज राष्ट्रपति भवन पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी के साथ पहुंचे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए शामिल, राजनाथ सिंह और जयशंकर, अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन बने खास मेहमान, राष्ट्रपति भवन में मिला विशेष निमंत्रण, 650 मेहमानों को मिला न्योता। राष्ट्रगान के साथ एट होम रिसेप्शन की शुरुआत हुई, राष्ट्रपति भवन में गूंजा वंदे मातरम। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत हुई, वेल्स को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे, संजय ने पेनल्टी पर गोल करके टूर्नामेंट में भारत के लिए खोला खाता। लद्दाख में बीआरओ का नया रिकॉर्ड, 19,400 फीट पर पहली बार लहराया गया तिरंगा। मिगला बना दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड, मिगला दर्रे पर गूंजा देशभक्ति का जज्बा। बीआरओ की माउंटेन टेमर्स ने किया कमाल, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दुबई का बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंगों से रोशन हुआ। भारत यूएई मजबूत दोस्ती और दोनों देशों के बीच गहरे होते रिश्तों का प्रतीक बना। बारिश के बाद शिमला का दिलकश नजारा, ड्रोन तस्वीरें सामने आई, कोहरे की चादर में लिपटी मशोबरा की पहाड़ियां। बादलों के बीच दिखा मनमोहक दृश्य, पहाड़ों पर धुंध ने बढ़ाई खूबसूरती, बादलों से ढकी पहाड़ियों का अद्भुत नजारा दिखा। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवकों को बचाया, तेज बारिश के बीच दमोह झरना देखने के लिए लोग मझधार में फंस गए थे। असम के गुवाहाटी में जमकर बारिश हुई, शहर के कई इलाकों में जलभराव ने रोकी वाहनों की तस्वीर। सिक्किम में भी भारी बारिश के कारण भूस्खलन ने लोगों की चिंता को बढ़ाया, ग्यालशांग में प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के निर्देश दिए। चमोली हादसे में एचसीसी मजदूरों ने किया आपदा प्रबंधन मंत्री का घेरा, कंपनी प्रबंधन से मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई। पीपलकोटी टनल हादसे में मुआवजे की मांग पर श्रमिकों का मंत्री से भी सवाल, जमकर नारेबाजी। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड का से बड़ा हादसा हुआ, 3 मजदूरों की मौत की खबर, 1 लापता, प्रशासन साइट पर रेस्क्यू में जुटा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हजदेव बागो बांध का बढ़ा जलस्तर, प्रबंधन ने एहतियातन 7 गेट खोले। हरदेव नदी में छोड़ा गया 25,000 क्यूसेक पानी, नदी की जद में आने वाले 34 ग्राम पंचायतों को अलर्ट जारी किया गया। कटिहार में भीषण हादसा, कार और ट्रक की भिड़ंत में 2 कांवड़ियों की मौत की खबर, 3 घायल हुए। लातेहार में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर, 1 कंटेनर वाहन से पहले एक बाइक को टक्कर मारी, बाद में सवारी टेम्पो को भी टक्कर मारी। जलंधर में छुट्टी पर आए आर्मी जवान ने पत्नी का किया बेरहमी के साथ कत्ल, किसी को शक ना हो इसलिए पत्नी को छत से नीचे गिराया और कहानी बनाई। सोनीपत में दिनदहाड़े बेखौफ डंपर चोरों ने पुलिस की गाड़ी में भीषण टक्कर मारी, 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। सीतापुर में 3 दिन से लापता युवती का शव पाया गया, 3 आरोपी गिरफ्तार, दरोगा निलंबित। अलवर में फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी, 5 जिलों की 25 दमकल की गाड़ियों ने 8 घंटे में काबू पाया, 25 से 30 करोड़ का नुकसान। पटना में ज्वेलरी ओनर को बदमाशों ने गोली मारी थी, दुकानदार बदमाश के साथ भिड़ गया था, अपराधी हथियार छोड़कर फरार हुए। भोपाल के न्यू मार्केट में नटवर लाल गिरफ्तार, खुद को नगर निगम का ऑफिसर बताकर 10 दुकानदारों को चूना लगाया था। गुजरात के सूरत में मिलावटखोरों पर प्रशासन का एक्शन, मिलावटी गाय का घी बनाने वाली फैक्ट्री से लाखों का माल जब्त किया गया। फैक्ट्री में पाम ऑयल और वनस्पति तेल से बनाया जा रहा था नकली गाय का घी, सूरत पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने छापा मारा।
भारत श्रीलंका के बीच गोल टेस्ट का दूसरा दिन है। पहले दिन के स्कोर पर 228 पर दो विकेट के आगे खेलना शुरू करेगी टीम इंडिया। श्रीलंका के मैदान पर कल खराब रोशनी के चलते 73 ओवर का ही मैच हो पाया था। देवदत्त के साथ ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद। पहले दिन कल देवदत्त ने 178 गेंदों पर 131 रन की नाबाद पारी खेली। देवदत्त ने जड़ा करियर का पहला शतक। शानदार बैटिंग कर रहे केएल राहुल क्रैम्प की परेशानी के चलते 77 रन पर रिटायर्ड हट हुए। 27 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत। गोल्ड टेस्ट के पहले दिन बारिश के चलते दो बार रोका गया था मैच। मुकाबले पर आज भी रहेगा बारिश का साया। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है शुक्रवार को रिलीज हुई आवारापन 2 और बटवारा 1947, दो दिनों की बंपर कमाई। 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा उठाते हुए फिल्म आवारापन 2 ने दो दिनों में किया 44 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। इमरान हाशमी के लिए फैंस लौटा रहे हैं प्यार। पहले दिन आवारापन 2 से पिछड़ गई थी सनी देओल की फिल्म बटवारा। शनिवार को कमबैक किया, दो दिनों में 19 करोड़ की कमाई की। 15 अगस्त के दिन बटवारा 1947 के कलेक्शन में 60% का उछाल देखा गया। फैंस कर रहे हैं सनी देओल और प्रीति जिंटा के दमदार अभिनय की तारीफ। आज सिल्वर स्क्रीन को जोरदार टक्कर की उम्मीद, दोनों ही फिल्मों को मिलेगा वीकेंड का फायदा। पूर्वी इंडोनेशिया में शनिवार सुबह 7.7 तीव्रता के भूकंप से अब तक 47 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम जारी। दक्षिणी स्पेन के ग्रेनाडा शहर में 5 तीव्रता का भूकंप आया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कई घरों और कारों को पहुंचा नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इसराइल ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले किए, कम से कम 7 लोगों की मौत, कई घायल हुए। मरने वालों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने सत्ता में अपनी वापसी के 5 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। विदेश मंत्री आमिर खान, मुताकी सहित कई और नेताओं ने काबुल में समारोह में हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के दावे को ईरान ने खारिज किया। कहा कि तेहरान ही यह तय कर सकता है कि रणनीति का जलमार्ग खुला रहेगा या बंद। जापान के प्रधानमंत्री सुनायता काइची ने दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के 81 साल पूरे होने पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, हमें युद्ध से हुई तबाही को कभी नहीं भूलना चाहिए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसी देश उत्तर कोरिया से दुश्मन खत्म करने और बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील की। कहा, दोनों ही देशों को स्थिर युद्ध विराम करना चाहिए। स्पेन ने अपने सीमावर्ती इलाके स्यूटा में पुलिस और सेना की मौजूदगी बढ़ा दी। मोरक्को से बड़ी तादाद में प्रवासियों के घुसने की आशंका को देखते हुए लिया गया फैसला। जापान की राजधानी टोक्यो के पूर्व में मौजूद शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, सड़कों और गाड़ियों में भर गया है पानी। कम से कम 5 की मौत, कई घायल। दक्षिण पश्चिमी स्पेन के जंगलों में भीषण आग लगी। 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका प्रभावित हुआ है। सैकड़ों दमकल कर्मी और हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि जो छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान करती हैं उसका कारण क्या है और ज्योतिष के हिसाब से उसका निवारण क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 4:42 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, हम सब के जीवन में छोटी छोटी बीमारियां आती रहती हैं और जाती रहती हैं। कुछ लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं और कुछ लोग हमेशा छोटी छोटी बीमारियों से जूझते रहते हैं। तो छोटी छोटी बीमारियों के पीछे कौन से ग्रह होते हैं पहले ये समझते हैं। देखिए, शरीर के स्वास्थ्य का जो मुख्य ग्रह है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, वो सूर्य है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर की सुरक्षा का स्वामी है मंगल। चंद्रमा और कमजोर मंगल दोनों मिलकर छोटी छोटी बीमारियां जीवन में देते हैं और कभी कभी इसमें बुध और शुक्र की भूमिका भी होती है। अगर कुंडली में सूर्य या मंगल दोनों में से एक भी ग्रह अगर बेहतर हो तो आदमी को छोटी छोटी बीमारियां बिल्कुल परेशान नहीं करती। और मुख्य रूप से अगर कुंडली में सूर्य प्रबल है तो आप जीवन भर अच्छा स्वास्थ्य पाएंगे, आपकी शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर रहेगी। अलग अलग बीमारियों के कारण और निवारण पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले की सफलता मिले, और सावन के पावन महीने में भाग्य को बेहतर करने के लिए बताएंगे एक सावन सूत्र। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।
मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। देखिए, सबसे ज्यादा जो समस्या लोगों को पकड़ती है और बच्चों को पकड़ती है वो है सर्दी, जुकाम और खांसी। होती क्यों है और इसके लिए ज्योतिष का उपाय क्या है? आम तौर पर सर्दी जुकाम जैसी समस्या जो तुरंत होती है ये मुख्यतः चंद्रमा से और कभी कभी मंगल से संबंध रखती है। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, ऐसे लोगों को अपने सोने जगने का ध्यान रखना चाहिए। देर रात तक जगने से और देर तक सुबह सोने से बचना चाहिए। चांदी का एक गिलास ले लें, चांदी के गिलास से नियमित रूप से पानी पिएं या पीने के पानी के बर्तन में एक चांदी का सिक्का डाल करके रखें। ऐसा करने से चंद्रमा का तत्व मजबूत होगा और ये पानी निरंतर पीने से आपको सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या नहीं होगी। दूसरी समस्या जो लोगों को बहुत जल्दी होती है वो है त्वचा की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा में दाने निकलना, खुजली होना, कील मुहासे होना, ये भी बड़ी जल्दी होता है। होता क्यों है? मुख्य रूप से त्वचा की समस्या होती है बुध की वजह से और आंशिक रूप से त्वचा की समस्या होती है मंगल और सूर्य की वजह से। अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या हो तो ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। जिन लोगों को त्वचा की समस्या होती है ऐसे लोगों को नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य की रोशनी में जल चढ़ाने के बाद एक मिनट आधे मिनट खड़े रहिए। कांसे का एक छल्ला बुधवार की शाम को अपनी कनिष्ठिका अंगुली में, अपनी छोटी उंगली में धारण करिए। इससे भी त्वचा की समस्या को कंट्रोल करना आसान होगा। कुछ और छोटी मोटी बीमारियों की बात करेंगे आगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

सिंह राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

आएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनुपमा जी ने मुंबई से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। 15 जनवरी 2008 का जन्म है, 9:15 प्रातः, धारवाड़, कर्नाटक। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का करियर कैसा रहेगा, उसका क्या इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा और भविष्य कैसा रहेगा। अनुपमा जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा भी शुक्र की चल रही है। इंजीनियरिंग में इसी साल एडमिशन हो जाएगा, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनकी कुंडली के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि इनको जीवन में चीजों को पाने में संघर्ष करना होगा। इनको शिक्षा और करियर में संघर्ष ना करना पड़े इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहना दें और रोज इनको बोलें कि सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा। एक और समस्या बड़ी जल्दी और बहुत सारे लोगों को होती है, वो है आंखों की समस्या। आंखों से पानी गिरना, आंखों में खुजली होना, आंखों में ड्राइनेस रहना। आंखों की समस्या होती किस कारण से है? देखिए, आंखों की समस्या के लिए मुख्य रूप से सूर्य जिम्मेदार होता है। ये समस्या मुख्यतः सूर्य से संबंध रखती है। आंखों की लेंस का संबंध होता है शुक्र के साथ, तो कभी कभी इसका संबंध शुक्र से भी होता है। अगर आंखों की रोशनी की समस्या है तो प्रातः काल नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। नाखून दांतों से बिल्कुल नहीं चबाने चाहिए। और अगर आंखों से पानी गिरने की समस्या है तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने पीठ करके कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आंखों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक और समस्या बड़ी कॉमन तौर से लोगों के जीवन में आती है, वो है दर्द की समस्या। हड्डियों का दर्द, शरीर का दर्द और सर का दर्द। अगर शरीर में दर्द की शिकायत है तो कारण क्या है? हड्डियों का दर्द और शरीर दर्द की समस्या सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हालांकि शरीर के अलग अलग जगहों के लिए इसमें विभिन्न ग्रहों का योगदान भी होता है।
अगर हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती हो तो दोनों पैर के अंगूठे में हल्का सा टाइट चांदी का छल्ला धारण करिए। अगर बाकी जगह दर्द रहता हो तो छोटी उंगली के नीचे के हिस्से को 5 मिनट तक दबाइए, दर्द से राहत मिलेगी। अगर आपको लगातार माइग्रेन रहता हो, सर में दर्द की शिकायत रहती हो, तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य की रोशनी में पीठ करके कम से कम 5 मिनट रोज सुबह बैठिए। आपके शरीर का दर्द कम होगा, माइग्रेन जैसी समस्या से आपको राहत मिलेगी। कुछ और समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवाद हो सकता है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी बुखार चढ़ जाता है या नॉर्मली उनके साथ बुखार बना रहता है। ऐसा होता क्यों है और इसका उपाय क्या है? देखिए, आपके शरीर में कहीं भी अगर ज्यादा गड़बड़ी होगी तो ये बुखार के रूप में सामने आएगी। वास्तव में बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये आपके शरीर में कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, इस बात की सूचना है। अगर बुखार नियमित रूप से रहता हो तो शरीर को विषमुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या तरीका होगा? हर रविवार को बिना अनाज का केवल जल पीकर या फल खाकर उपवास रखें और रोज सुबह
खाली पेट तुलसी के पत्ते खाएं। अगर आपको नियमित बुखार रहता हो और सप्ताह में एक दिन केवल लिक्विड लेकर आप उपवास रखें, आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक होगा और आपके बुखार की समस्या दूर हो जाएगी। एक और समस्या भी लोगों को काफी होती है, वो है पेट की समस्या। गैस होना, एसिडिटी होना, कब्ज होना, कारण क्या है? देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा से पाचन तंत्र की, डाइजेशन की और पेट की समस्या पैदा होती है। कारण बड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर बृहस्पति और चंद्रमा और कभी कभी सूर्य आपकी पेट की समस्या के लिए जिम्मेदार होता है। तांबे का बर्तन अपने पास रखें, रात भर उसमें पानी रखें, सुबह उस पानी को पिएं, या तांबे का एक गिलास रखें और तांबे के गिलास से पानी पिएं। नियमित रूप से हरे रंग के वस्त्रों का अगर आप प्रयोग करें तो इससे भी लाभ होगा। जो लोग तनाव ज्यादा पालते हैं, जो लोग टेंशन ज्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों को एसिडिटी ज्यादा होती है। तो अगर आपको एसिडिटी ज्यादा होती है तो अपना तनाव कम करने की, घटाने की कोशिश करनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती वस्तु संभाल कर रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में भी सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।

जरूर अर्पित करना चाहिए ताकि लोटे के किनारे को देख करके आप सूर्य की किरणों को ग्रहण कर सकें। ये लोटा स्टील का, पीतल का, तांबे का कोई भी हो सकता है, मिट्टी का पात्र भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सूर्य देव को केवल तांबे के लोटे से जल अर्पित किया जाए। सूर्य देव को आप स्टील, पीतल या कांसे के लोटे से भी जल अर्पित कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, धन के खर्चों पर ध्यान दें। नंबर 6, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, धन लाभ के योग हैं। नंबर 9, चोट चपेट से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है किसी चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि के लिए, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि के लोगों को, बेवजह के तनाव हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन

क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्थी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ काम मत करिएगा। आज भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो चलिए बताते हैं आपके भाग्य को चमकाने का एक महा उपाय सावन सूत्र में।

शक्ति में समस्या रहती हो तो सावन में भी और सावन के बाद भी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करें, आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: और यह खबर है पश्चिम बंगाल से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के पूर्व डेप्यूटी स्पीकर और टीएमसी के 5 बार विधायक रह चुके आशीष बनर्जी का शव लटका हुआ मिला है। बीरभूम के रामपुर हाट में उनके घर के पास बने पार्टी ऑफिस में फंदे से लटका हुआ उनका शव पाया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो बंगाल के पूर्व डेप्यूटी स्पीकर का शव पार्टी ऑफिस में लटका हुआ पाया गया है। तुरंत ही पुलिस को इतला दी गई और उसके बाद आपको बता दें कि आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल से बड़ी और अहम खबर आ रही है, पूर्व डेप्यूटी स्पीकर और टीएमसी के 5 बार विधायक रह चुके हैं आशीष बनर्जी, उनका शव लटका हुआ पाया गया है। बीरभूम के रामपुर हाट में उनके घर के पास जो पार्टी का ऑफिस बना हुआ था उसमें फंदे से लटका हुआ। आपको ये भी बता दें कि इस खबर के बाद तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि परिवार और आसपास के लोगों से इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी तपस सिंह जुड़ गए हैं। तपस, क्या जानकारी मिल रही है, कुछ साफ हो पाया है पुलिस की तरफ से या आसपास के लोगों की तरफ से कोई जानकारी दी गई है?
4: जी देखिए, फिलहाल आशीष बनर्जी जो फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं उनके मौत को लेकर ये माना जा रहा है कि ये सुसाइड का केस हो सकता है, खुदकुशी हो सकती है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें बकायदा ये बताया जा रहा है कि वो किसी भी सूरत किसी गलत काम के साथ जुड़े हुए नहीं थे। ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस अलग अलग जिलों में करप्शन के खिलाफ अपना मोर्चा खोली है तो उससे के किसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है कि किस वजह से उन्होंने ये मौत उनकी ये मौत हुई है, क्योंकि कल देर रात उनके घर वालों का मानना है कि वो स्वाभाविक थे और घर वालों से बातचीत भी कर रहे थे, तो ऐसा कोई भी घटना नहीं हुई थी पिछले 1-2 दिन में जिसके वजह से वो ये इतनी बड़ी कदम उठाए। लेकिन फिलहाल जो पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है, वो आने के बाद और भी ज्यादा पुलिस की ओर से बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक सुसाइड केस को मानकर ही एक ये तफ्तीश शुरू की गई है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर पुलिस की ओर से कोई भी बयान आना बाकी है।
3: तपस, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि क्या इस तरह की कोई जांच या किसी भी तरह के आरोप लगाए गए थे उन पर, आसपास के लोगों से या घर के लोगों से कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया हो, और ये कब की घटना है?
4: जी देखिए, आशीष बनर्जी एक ऐसे शख्स रहे हैं जिनके साथ सारे राजनेताओं का संबंध बड़े अच्छे रहे हैं, लोगों के बीच उनका जो एक्सेप्टेंस है वो भी काफी अच्छा रहा है, गहरा रिश्ता रहा है लोगों से, और कभी भी उनकी छवि पे कोई भी कीचड़ कभी उछाल नहीं पाया है। लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों पर जो तफ्तीश हो रही है, क्या उसके साथ इनका इस खुदकुशी का कोई तार जुड़ा हुआ है, इसका तफ्तीश इस समय पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक साफ तौर पर उनका नाम किसी भी करप्शन चार्जेस में सामने नहीं आया है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया तपस इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसानों के बारे में, क्योंकि किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद खनौरी बॉर्डर पर सख्ती कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है पूरी तरह से। दाता सिंह वाला के पास फिर से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक दल के साथ दिल्ली कूच का ऐलान कर चुका है। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने नेतृत्व में की बात कही है, किसानों का पैदल मार्च करने की बात कही गई थी। खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को इसीलिए कड़ा कर दिया गया है, किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। दिल्ली कूच से पहले बॉर्डर पर तनाव बढ़ा हुआ है और पहले की ही तरह एक बार फिर से हरियाणा की तरफ से जाने वाले रास्तों को बंद किया गया है। किसानों के मार्च के बाद क्या बॉर्डर पर स्थिति बनेगी, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। तो किस तरीके से बैरिकेड्स लगाकर इन रास्तों को रोका गया है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता कमल जी जुड़ गई, उनका हम रुख करेंगे। कमल जी, क्या जानकारी है, कहाँ है ये तमाम किसान, और अब इन तमाम बैरिकेड्स के लगने के बाद किसान नेताओं की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या प्लानिंग है आगे की?
5: देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा इसके हम नॉन पॉलिटिकल है, उन्होंने ऐलान किया था कि वो खनौरी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली जाएंगे और जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यूएस और इंडिया के बीच में डील होने वाली है उसके ऊपर उनके पास आपत्ति थी। उससे पहले भी आपको बता दें कई किसान संगठन है, उन्होंने समय मांगा था शिवराज चौहान से, तो ये काफी बातें चल रही हैं। उसी बीच में 55-56 किसानों ने ये ऐलान कर दिया था कि वो दिल्ली जाएंगे खनौरी बॉर्डर के रास्ते होते हुए, तो वहां पे अब बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और उससे पहले भी हमने देखा है किस तरह से किसान भरे हैं, चाहे हम बात करें चंडीगढ़ पुलिस के पास एक पक्का मोर्चा बनाने की बात भी की जा रही है कई किसान संगठनों के द्वारा, खासतौर पे पहली सितंबर से चंडीगढ़ में, तो एमएसपी की मांग हो चाहे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के खिलाफ हो, तो ये सारी जो मांगे हैं वो सिलसिलावार तरीके से उठाई जा रही है। और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल उनमें से वो है जो सिंघू बॉर्डर पे भी काफी समय बैठा था, तो खास तौर पे एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, क्योंकि ये एक डिसीजन है कि वो क्या उनको दिल्ली में इजाजत दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा की तरफ से अब बैरिकेड लगाए गए हैं तो संकेत बिल्कुल साफ है कि आगे बढ़ने का की इजाजत नहीं दी जाएगी और खास तौर पे इनको यहीं पे रोक लिया जाएगा। अब इससे पहले हमने देखा कि कई बार भिड़ंत हुई है किसानों और पुलिस के बीच में, यहाँ पे वाटर कैनन और टेयर गैस भी चले हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या कोई अपील करके शांतिपूर्ण तरीके से ये मसला हल किया जा सके।
3: बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, तेलंगाना के संगारेड्डी में सीएम रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी और जग्गा रेड्डी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने खुद को राहुल गांधी को भगवान राम बताते हुए कहा है कि उनके फैसले के खिलाफ वो कभी भी नहीं जाने वाले। तो राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया गया है, आपको बता दें रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी और जग्गा रेड्डी को लेकर अपनी बात रखी है और साफ कहा है उन्होंने कि राहुल गांधी उनके भगवान हैं, भगवान राम, और इसीलिए उनके फैसले के खिलाफ, उसके अगेंस्ट वो कभी नहीं जाएंगे।
1: నిలబడేది నిలబడింది నిలబడతేడ నిలబడేది ఆయన చేతుల లేదు, అది రాహుల్ గాంధీ గారు నిర్ణయిస్తాడు. ఆయన రాముడైతే ఈయన హనుమంతుడు, మీకు తెలుసు కదా, రాముడు ఆజ్ఞ హనుమంతుడు, గీత కూడా దాటాడు, చిన్న లైన్ కూడా దాటాడు.
3: उधर पश्चिम सिक्किम में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। रिम्बी और साथ ही साथ सिंगल लिताम इलाके में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से भारी मलबा सड़कों पर आ गया जिससे आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर उस समय कुछ गाड़ियां या लोग नहीं थे, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल जानकारी यह है कि सड़क को खाली कराने का, साफ कराने का काम प्रशासन की तरफ से शुरू करवा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में लैंडस्लाइड से एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि नाचो के सिनालित इलाके में सड़क निर्माण स्थल पर मलबा आ गया, 3 मजदूरों की मौत हो गई इससे। और आपको यह भी बता दें कि एक मजदूर अभी भी लापता बताया जा रहा है। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार बारिश और ज्यादा मुश्किलों को बढ़ा रही है। भौगोलिक स्थितियां भी ऐसी हैं कि राहत और बचाव के काम में बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। तस्वीरें देखिए जरा किस तरीके से फ्लैश फ्लड के बाद पानी भी बढ़ गया है और जबरदस्त मलबा आने की वजह से 3 मजदूरों के दबकर जान जाने की खबर है और एक मजदूर अभी भी लापता बताया जा रहा है। और अब बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में, क्योंकि विनाशकारी भूकंप यहां पर आया। शनिवार को 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप की वजह से इंडोनेशिया में भारी तबाही मची। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी के मुताबिक कम भूकंप और उसके बाद आए कई झटकों में कम से कम 47 लोगों की जान चली गई है। भूस्खलन के चलते सड़कें बंद है, संचार व्यवस्था पूरी तरह से बाधित है। सबसे ज्यादा प्रभावित है नेगेक्यो इलाका। राहत और बचाव की टीमें यहां लगातार लगी हुई है। मुश्किलें हैं लगातार लोगों को मलबे से निकालने में, क्योंकि 47 की जान जा चुकी है। कई लोग अभी भी और मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं, उनके लिए रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। तो इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप और उसके बाद कई झटके महसूस किए गए। भारी तबाही इस भूकंप के बाद तमाम इलाकों में देखी गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए हेडलाइंस।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग। बीजेपी के बाद बीएचपी ने सोनिया गांधी और खड़गे पर राष्ट्रीय गीत के अपमान के आरोप लगाए। कांग्रेस का इनकार, कहा रोकने की कोई कोशिश नहीं, पूरा बजा था वंदे मातरम। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान पर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस बोली पहले किसानों और युवाओं को, प्रधानमंत्री ने कहा था नक्सल। चिदंबरम बोले दिमागी नक्सल होने पर गर्व। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने। सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई तो सीएम आवास का घेराव करेंगे। कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए आज राहुल गांधी का जलाएंगे पुतला। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ गई है सख्ती। दाता सिंह वाला के पास फिर से बैरिकेडिंग, डलेवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च। और अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी, कहा उनके नेतृत्व ने देश को नई दिशा दी। सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर समेत कई नेताओं ने किया नमन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: चमोली हादसे में एचसीसी मजदूरों ने किया आपदा प्रबंधन मंत्री का घेराव। कंपनी प्रबंधन से मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई। पीपलकोटी टनल हादसे में मुआवजे की मांग पर श्रमिकों का मंत्री से सवाल, जमकर नारेबाजी। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत हुई, एक लापता, प्रशासन साइट पर रेस्क्यू जारी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हसदेव बागो बांध का बड़ा जलस्तर, प्रबंधन ने एहतियातन 7 गेट खोले। हरदेव नदी में छोड़ा गया 25,000 क्यूसेक पानी, नदी की जद में आने वाले 34 ग्राम पंचायतों को अलर्ट जारी किया गया। बारिश के बाद शिमला का दिलकश नजारा, ड्रोन कैमरे में कैद हुई है खूबसूरत तस्वीरें। कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आई मशोबरा की पहाड़ियां। बादलों के बीच दिखा मनमोहक दृश्य, पहाड़ों पर छाई धुंध ने बढ़ाई खूबसूरती, बादलों से ढकी पहाड़ियों का अद्भुत नजारा। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवकों को बचाया, तेज बारिश के बीच दमोह झरने को देखने के लिए मझधार में फंस गए थे। असम के गुवाहाटी में जमकर बारिश हुई, शहर के कई इलाकों में जलभराव ने रोकी वाहनों की रफ्तार। सिक्किम में भी भारी बारिश की वजह से भूस्खलन ने लोगों की चिंता को बढ़ाया। ग्यालशिंग ने प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के निर्देश दिए। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के साथ ही अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री रहने का अनुमान। मौसम विभाग की ओर से आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश की चेतावनी, पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी दिखेगा असर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 21 अगस्त तक कई जगहों पर बारिश हो सकती है, उमस भरी गर्मी से थोड़ी सी राहत। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में भी मॉनसून एक्टिव, 21 अगस्त तक कई हिस्सों में गरज और चमक के साथ बारिश। समंदर में तेज हवाओं के साथ बदले का मौसम, आईएमडी ने 20 अगस्त तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल बयान और महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ने उन पर निशाना साधा, कहा स्वतंत्रता दिवस के मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के कामों का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा यह उनकी हताशा को स्पष्ट करता है। अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा आत्मविश्वास की कमी, घबराया हुआ और डगमगाता हुआ प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेनजी के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए कहा यह देशद्रोह नहीं है, सरकार ने युवाओं को अंधी गली में धकेला। दक्षिण पश्चिम स्पेन के जंगलों में भीषण आग लगी, 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके प्रभावित हैं, सैकड़ों दमकल कर्मी और हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। स्पेन के जंगलों में भीषण आग का तांडव, तेज हवाओं ने बढ़ा दी है लपटों की रफ्तार को, धधकते हुए जंगल और धुएं से दहशत, बड़े इलाके में तेजी से फैल रही आग। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी, बोले असाधारण राजनेता और दूरदर्शी नेता थे अटल जी, उनका सुशासन और जनकल्याण का विजन हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर किरण रिजिजू ने श्रद्धांजलि दी, बोले अटल जी हमारे दिलों, विचारों, संस्कारों में सदैव जीवित रहेंगे। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस पोस्ट के बाद दिमागी नक्सल शब्द को लेकर चर्चाएं तेज। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान पर मचा सियासी घमासान। पहले बीजेपी ने इसे वंदे मातरम का अपमान बताया, अब बीएचपी ने कांग्रेस से माफी की मांग की। कांग्रेस ने गाने में किसी भी तरह की बाधा डालने और उसके अपमान के आरोपों को खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा, वंदे मातरम का अपमान भारत का अपमान है, देश उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी दी है प्रतिक्रिया, कहा वंदे मातरम का सम्मान करते हैं लेकिन किसी को भी इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद को इतनी बड़ी पार्टी बताती है लेकिन वो वंदे मातरम का गायन बर्दाश्त नहीं कर सके। खड़गे ने कहा, आजादी का असली मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है बल्कि गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय और डर से भी आजादी है। खड़गे ने सरकार पर नफरत फैलाने वाले अभियान को चलाने के भी आरोप लगाते हुए कांग्रेस की मोहम्मद की दुकान को देश की समृद्धि और शांति के लिए जरूरी बताया। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकार और शिक्षक में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ चेतावनी दी, कहा इस घपले को ठीक किया जाए, उन्हें भी दोबारा विरोध करना पड़ सकता है नहीं तो। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया, कहा यूपी में सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन पुनः शुरू होगी, 40,000 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव न लड़ने के बारे में जग्गा रेड्डी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, कहा अगर राहुल गांधी राम है तो जग्गा रेड्डी हनुमान है, माननी पड़ेगी बात। राहुल गांधी ने 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी की विकृत मानसिकता है बलात्कारियों और अपराधियों को बचाना। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने रिसोर्ट में अंकिता के कमरे की जगह को पहले से गिराए जाने को भी संदिग्ध बताया। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर से संघ को कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि संघ बताए उन्होंने देश के किस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा, क्या संघ 50 ऐसे नाम बता सकता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी हो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, 6 आईडी और गोला बारूद बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। जेपीएससी और जेएसएससी सुधार मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाने का भी ऐलान किया है। सीबीआई जांच की मांग पर भी अड़े छात्रों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। सदर अस्पताल में 5 दिनों से भर्ती देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल 14वें दिन भी जारी है। उन्होंने अस्पताल में अपने बेड को छोड़कर कॉरिडोर की जमीन पर लेटकर धरना दिया। भूख हड़ताल कर रहे छात्र एक्टिविस्ट देवेंद्र नाथ महतो 15 अगस्त को रांची के सदर अस्पताल में पुलिस से झड़प हुई, तिरंगा यात्रा में जाने से रोकने पर विवाद। विधायक टाइगर जयराम महतो ने इस मुद्दे को लेकर सोरेन सरकार पर निशाना साधा का, पूरे विधानसभा के माध्यम से इस मामले को उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया। पनीर, क्रीम, छेना, घी और खोया समेत सभी एनालॉग डेयरी उत्पाद शामिल हैं इसमें। निरीक्षण के दौरान कई नमूनों में अलग अलग तरह की मिलावटी पाए जाने के बाद सामने आई, कई जिलों में दूध और दूध उत्पादों में मिलावटखोरों के निशान मिले। बंगाल के कूचबिहार में 3 संदिग्ध आईएसआई एजेंट गिरफ्तार, एसटीएफ का दावा, भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेज रहे थे, नकली नोट भी बनाते थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि लोगों का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संपर्क है। अदालत ने तीनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र में कमर्शियल वाहन चालकों के लिए मराठी बोलना अनिवार्य करने वाला नियम आज से लागू। नलसार विवाद के बीच बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने लॉ स्टूडेंट से माफी मांगी, बोले अहंकार का सवाल ही नहीं, यदि कानून छात्रों की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है। बीसीआई चेयरमैन ने कहा, जब कभी भी छात्र आहत महसूस करते हैं तो उनकी शिकायतों और चिंताओं को पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कलाकार ने यूपी में बुलडोजर एक्शन की तारीफ की, सीएम योगी ने दिलचस्प जवाब दिया, बोले गा नहीं सकता तो गलत लोगों पर बुलडोजर तो चलवा सकता हूं। आसनसोल में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हुई, 14 के घायल होने की खबर, 6 की हालत गंभीर है, मौके पर भारी पुलिस तैनात। पुलिस ने दोनों ही पक्षों को मौके से हटाया, इलाके में लगातार गश्त जारी है, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजबानी की। पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन बने खास मेहमान, राष्ट्रपति भवन में मिला विशेष निमंत्रण, 650 मेहमानों को न्योता। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत हुई, वेल्स को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे, संजय ने पेनल्टी पर गोल करके टूर्नामेंट में भारत के लिए खाता खोला। मेघला दर्रे पर गूंजा देशभक्ति का जज्बा, बीआरओ की माउंटेन टेमर्स ने किया कमाल, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। लखनऊ के तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 2 घंटे की मशक्कत के बाद बुझाया गया। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 की मौत। सूरत के बीच पर शराब पार्टी का भंडाफोड़ हुआ, 22 लोगों की गिरफ्तारी, महंगी कार सामान को जब्त किया गया। हिमाचल के हमीरपुर में डॉक्टर राजेंद्र कंवर ने 80 करोड़ की संपत्ति राज्य सरकार को दान दी है, लोगों के लिए मिसाल बने। करनाल में बड़ा हादसा, हाई टेंशन तारों से टकराया श्रद्धालुओं से भरा हुआ टैंकर, 12 से ज्यादा झुलसे, वाहन में आग लगी। कटिहार में भीषण हादसा, कार ट्रक की भिड़ंत में 2 कांवड़ियों की मौत हुई, 3 लोगों के घायल होने की खबर। लातेहार में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, एक कंटेनर वाहन ने पुल पहले एक बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद सवारी टेम्पो को टक्कर मारी। जलंधर में छुट्टी पर आए आर्मी जवान ने पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर डाला, किसी को शक ना हो इसलिए पत्नी को छत से नीचे गिराया। सोनीपत में दिनदहाड़े बेखौफ डंपर चोरों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। सीतापुर में 3 दिन से लापता युवती का शव मिला, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी, दरोगा निलंबित। अलवर में फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी, 5 जिलों की 25 दमकल की गाड़ियों ने 8 घंटे में काबू पाया, 25 से 30 करोड़ का नुकसान। पटना में ज्वेलरी शोरूम के ओनर को बदमाशों ने गोली मारी थी, दुकानदार बदमाश से भिड़ गया था, अपराधी हथियार छोड़कर फरार हुए। भोपाल के न्यू मार्केट में नटवर लाल गिरफ्तार, खुद को नगर निगम का ऑफिसर बताया करता था, 10 दुकानदारों को लगाया था चूना। गुजरात के सूरत में मिलावटखोरों पर प्रशासन का एक्शन, मिलावटी गाय का घी बनाने वाली फैक्ट्री से लाखों का सामान जब्त किया गया। फैक्ट्री में पाम ऑयल और साथ ही वनस्पति तेलों से बनाया जा रहा था नकली गाय का घी, सूरत पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। भारत श्रीलंका के बीच गोल्ड टेस्ट का दूसरा दिन है, पहले दिन के स्कोर 288 पर 2 विकेट के आगे खेलना शुरू करेगी टीम इंडिया। श्रीलंका के मैदान पर कल खराब रोशनी के चलते 73 ओवर का ही हुआ था खेल, देवदत्त पडिक्कल के साथ ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद। पहले दिन कल देवदत्त पडिक्कल ने 178 गेंदों पर 131 रन की पारी खेली, देवदत्त ने जड़ा करियर का पहला शतक। शानदार बैटिंग कर रहे केएल राहुल क्रैम्प की परेशानी के चलते 77 रन पर हुए थे रिटायर्ड हर्ट, 27 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत। ऑल टेस्ट के पहले दिन बारिश के चलते 2 बार रोका गया था मैच, मुकाबले पर आज भी रहेगा बारिश का साया। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, शुक्रवार को रिलीज हुई आवारा पन 2 और बटवारा 1947 2 दिनों में बंपर कमाई। 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा उठाते हुए फिल्म आवारा पन 2 ने 2 दिनों में 44 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, इमरान हाशमी पर फैंस लुटा रहे हैं प्यार। पहले दिन आवारा 2 से पिछड़ रही थी सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947, शनिवार को कमबैक किया, 2 दिनों में 19 करोड़ की कमाई। 14 अगस्त के दिन बंटवारा 1947 के कलेक्शन में 60% का उछाल देखा गया, फैंस कर रहे हैं सनी देओल और प्रीति जिंटा के दमदार अभिनय की तारीफ। आज रविवार को भी सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, दोनों फिल्मों को मिलेगा वीकेंड का फायदा। पूर्व इंडोनेशिया में शनिवार सुबह 7.7 तीव्रता के भूकंप में अब तक 47 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा घायल, मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी। दक्षिणी स्पेन के ग्रेनाडा शहर में 5 तीव्रता का भूकंप आया, स्थानीय प्रशासन ने घरों और कारों को नुकसान की बात कही, अभी तक हताहत होने की खबर नहीं है। इसराइल ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले किए, कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर, कई घायल हुए, मरने वालों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने सत्ता में अपनी 5वीं साल पूरे होने पर जश्न मनाया, विदेश मंत्री सहित कई और नेताओं ने काबुल में हुए समारोह में हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के दावे को ईरान ने खारिज किया, कहा केवल तेहरान ही तय करेगा कि रणनीतिक जलमार्ग खुला रह गया नहीं। ईरान ने ट्रंप पर कसाया तंज, लिखा हॉर्मुज पार करने की हिम्मत नहीं है, फिर भी अमेरिका का इलाका घोषित करना चाहते हैं। खाड़ी देशों में ट्रंप के खिलाफ बढ़ गई नाराजगी, अमेरिका के सहयोगियों में सुरक्षा नीति को लेकर बढ़ाया अविश्वास। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसी देश उत्तर कोरिया से दुश्मनी खत्म करने की और टेबल पर बातचीत करने की बात कही, कहा दोनों ही कोरियाई देशों को अस्थिर युद्ध विराम शांति व्यवस्था लाने पर विचार करना चाहिए। स्पेन ने अपने सीमावर्ती इलाकों में स्यूटा पुलिस और सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है, मोरक्को में बड़ी तादाद में प्रवासियों के घुसने की आशंका को देखते हुए लिया गया फैसला। जापान की राजधानी टोक्यो में पूर्व में मौजूद शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, सैकड़ों घरों और गाड़ियां पानी में डूबी, कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर, कई घायल। और सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो सियासी घमासान तेज हो चुका है उसके बारे में, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के गायन के दौरान सोनिया गांधी के इशारों और नेताओं की बातचीत की तस्वीरों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वंदे मातरम का पूरा सम्मान किया गया था और पूरा संस्करण गाया भी गया। इस मामले में बीजेपी आधे अधूरे वीडियोस को लोगों के सामने रख रही है। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन, किस पर उठे सवाल? क्या सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के पूरे गायन पर आपत्ति जताई? वंदे मातरम के गायन पर क्यों गरमाई सियासत? स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण के बाद वंदे मातरम का गायन हुआ, लेकिन गायन के दौरान सोनिया गांधी के कुछ इशारों और नेताओं की बातचीत की तस्वीरों ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेता वंदे मातरम के पूरे गायन के दौरान गंभीर नजर नहीं आए।
2: एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है।
0: बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने साफ किया कि वो वंदे मातरम का पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाया गया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोनिया गांधी पर लगाए जा रहे आरोपों को भी खारिज कर दिया।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो बस।
0: दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के रवैये को शर्मनाक बताया है। जश्न से शुरू हुआ वंदे मातरम का विवाद अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद 15 अगस्त को इसके घमासान की पहली सियासी किश्त भी सामने आ गई है। आज तक ब्यूरो। वंदे मातरम अपमान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस सांसद ने कहा है कि बीजेपी को तिल का ताड़ बनाने की आदत है।
4: कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान भारत माता का अपमान है। उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
5: मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहां पर खड़े थे वो, और धूप काफी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए, तो बस इतनी बात थी। उसी को एक, जिसको कहते हैं तिल को ताड़ बनाना, भारतीय जनता पार्टी की आदत है। हर चीज़ को कभी बात खड़ा करना, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी लाना, तो हकीकत ये थी कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी के लिए एक व्यवस्था करना चाह रही थी ताकि वो गिर ना जाए।
0: और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की जिस पर सियासी घमासान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले पर से दिए गए दिमागी नक्सल वाले बयान पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने निशाना साधा है। पी चिदम्बरम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। तो जबरदस्त तरीके से हंगामा वैसे भी जारी है इस पूरे मामले को लेकर, इस बयान को लेकर। कांग्रेस पहले ही इस पर निशाना साध रही है और अब आपको बता दें कि पी चिदम्बरम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। तो कांग्रेस की तरफ से पहले कहा गया था कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री की तरफ से किसानों और तमाम स्टूडेंट्स को नक्सल कहा जा चुका है और अब दिमागी नक्सल्स की बात कही जा रही है और इस बात को लेकर लगातार हंगामा कांग्रेस की तरफ से जारी था और अब कहा गया है पी चिदम्बरम की तरफ से एक्स पर लिखा गया है कि उन्हें गर्व है कि वो दिमागी नक्सल है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: बिजली का बिल पेड
4: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
5: कैसे?
4: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
5: इतना माही वे।
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
3: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
2: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
4: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
5: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
6: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
7: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
2: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।
8: सो सॉरी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
4: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
3: नहीं सर।
4: 12th किससे की हो?
3: 12th सर मेरा PCM से रहा।
4: कंपाउंड क्या होता है?
3: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
4: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
3: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
4: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मातरम पर छिड़ी नई जंग। बीजेपी के बाद बीएचपी ने सोनिया गांधी और खड़गे पर राष्ट्रगीत के अपमान के आरोप लगाए। कांग्रेस का इनकार, कहा रोकने की कोई कोशिश नहीं, पूरा बजा था वंदे मातरम। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई तो सीएम आवास का करेंगे घेराव। कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए आज राहुल गांधी का जलाएंगे पुतला। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी सख्ती, दाता सिंह वाला के पास फिर बैरिकेडिंग, डल्लेवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च। ममता बनर्जी के करीबी पूर्व डेप्यूटी स्पीकर आशीष बनर्जी का टीएमसी दफ्तर में फंदे से लटका हुआ मिला शव, हड़कंप मचा। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। और अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनके नेतृत्व ने देश को दी नई दिशा। सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर समेत कई नेताओं ने किया नमन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। भारत माता की जय,
1: भारत माता की जय।
2: देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा ही देश की सेना को मजबूत बनाता है।
0: वह खून कहो किस मतलब का,

0: पिछले युद्धों से मिले अनुभवों से हमारी रणनीति और तकनीकी में लगातार बदलाव हो रहा है।
1: न्यू जनरेशन वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स जो हमारी भारतीय सेना में अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे युद्ध प्रणाली में जो गति है और इफेक्ट है, दोनों में बदलाव आ गया है। ये कॉम्बैट वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर है जो रियलिस्टिक ट्रेनिंग को सिमुलेट करता है।
2: यहाँ पर हमने बेसिक ड्रोन फ्लाइंग के लिए हमने यहाँ पर दो प्रकार का ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया हुआ है।
3: एक सैनिक को देश के प्रति मर मिटने की भावना, साहस, नेतृत्व और फाइटिंग स्पिरिट उसके सबसे बड़े हथियार हैं।

रहा है और बदल रहे हैं उस युद्ध को जीतने वाले हमारे महायोद्धा। नमस्कार, मैं वंदे मातरम, मैं हूँ श्वेता सिंह। वंदे मातरम के 24 साल पूरे हुए और ऐसे हम आपको आगे जीतने के लिए बदल रहे हैं। अलग अलग योद्धाओं से परिचय कराएंगे। आज हमारी भारत की पैदल सेना आर्मी की कितनी भी बदल जाए, जब तक हमारे इन्फेंट्री सोल्जर, हमारे पैदल सैनिक तिरंगा नहीं लाते हैं, तब तक जीत पूरी नहीं हो सकती।

0: रणभूमि का एक शाश्वत नियम है, युद्ध चाहे मिसाइलों से शुरू हो या आसमान से गिरते बमों से, अंतिम विजय का तिरंगा हमेशा वही सैनिक गाड़ता है जिसके कदम जमीन पर पड़ते हैं।
1: वॉर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वॉरफेयर कीप्स चेंजिंग, कि वॉर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन हमें नए वॉरफेयर की तरफ समझना चाहिए और जो दुश्मन या हमारे में चेंजेस आते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है।
0: भारतीय इन्फेंट्री वो अजेय ढाल है जिसने हर दौर में अपने पराक्रम से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम बनाया है, जान की बाजी लगा दी है पर देश की सीमाओं पर आंच नहीं आने दी है।
2: देश की रक्षा के लिए कर्तव्य, सम्मान और सर्वोच्च बलिदान देने की भावना और अपने आप में एक अलग पहचान देता है।
0: लेकिन 21वीं सदी का युद्ध क्षेत्र पूरी तरह बदल चुका है। आज की जंग केवल बारूद और गोलियों की नहीं रही बल्कि तकनीक, नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा ड्रिवन वॉरफेयर की बन चुकी है।
3: न्यू जनरेशन वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स जो हमारी भारतीय सेना में अभी इस्तेमाल हो रहे हैं उससे युद्ध प्रणाली में जो गति है और इफेक्ट है दोनों में बदलाव आ गया है।
0: वंदे मातरम के 14वें सीजन में हम आपको दिखाएंगे कि हमारी सेना भविष्य के युद्ध के लिए खुद को किस तरह तैयार कर रही है। आज का भारतीय सैनिक केवल अपनी पारंपरिक वीरता पर निर्भर नहीं है बल्कि आधुनिक तकनीकों, घातक हथियारों और डिजिटल संचार प्रणाली से पूरी तरह लैस है।

0: भारतीय थल सेना ने अपनी पारंपरिक रणनीतियों को भावी युद्ध की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह रीडिजाइन किया है। अब हमारे पैदल सैनिक केवल सैनिक नहीं बल्कि एक पूरा कॉम्बैट नेटवर्क है। ये पराक्रम और आधुनिकता का एक ऐसा बेजोड़ संगम है जिसने भारत की इन्फेंट्री को दुनिया की सबसे खूंखार और मारक पैदल सेना में तब्दील कर दिया। हम आपको देश के हर मोर्चे पर तैनात सैनिकों के हाथों को मजबूत करते हथियार और शक्तिशाली बनाते प्रशिक्षण से रूबरू कराएंगे और इसे एक सूत्र में पिरोने के लिए हम पहुंचे देश की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स में। क्योंकि जब हम इस रेजिमेंट के 1775 से 2026 का सफर दिखाएंगे तो 3 सदियों के फासले में सशक्त भारतीय सैनिकों की झलक आप खुद ब खुद देख पाएंगे। युद्ध के मैदान में जब एक भारतीय सैनिक उतरता है तो उसकी मारक क्षमता ही जीत और हार के उस अंतर को तय करती है। आज भारतीय सेना का एक जवान केवल एक बंदूकधारी जवान नहीं है बल्कि वो अपने आप में एक पूरी की पूरी युद्ध प्रणाली है। जहां तक हथियारों का सवाल है, भारतीय इन्फेंट्री के एक सैनिक के पास आज अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। युद्ध में विजय हासिल करने के लिए जवानों के जज्बे के साथ साथ उनकी उंगलियों के नीचे मौजूद ट्रिगर की ताकत भी मायने रखती है। भारत ने अपनी इन्फेंट्री को आधुनिक तकनीक से लैस करने के साथ साथ उसके हथियारों के पूरे बेड़े का कायाकल्प कर दिया है। भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे घातक असॉल्ट राइफल्स और सपोर्ट वेपन्स को अपनी पंक्तियों में शामिल कर लिया है। आज हमारे जवानों के हाथों में सिग सॉयर से लेके AK-203 असॉल्ट राइफल्स सुशोभित हैं।
1: AK-203 ये एक इंडिजिनस वेपन है जो भारत में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ये भी एक लॉन्ग रेंज वेपन है जो काफी कारगर साबित होता है। 7.62 mm 6 और ये भी लंबी दूरी का हथियार है, काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी प्रभावशाली है। जो हमने पिछले विभिन्न एक्सरसाइजों में हमने इसका आंकलन किया है तो ये भी काफ़ी बढ़िया हथियार शामिल हुआ है।
2: इसका नाम है AK-203 असॉल्ट राइफल। ये पहले सेना के अंदर AK-47 का इस्तेमाल किया जाता था, अभी इसका लेटेस्ट वर्जन AK-203 को सेना के अंदर शामिल किया गया है। AK-47 के बनिस्पत इसका रिकॉइल कम और एक्यूरेसी ज़्यादा होने के कारण हम लंबे रेंज पर निकलने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। इसके साथ 5 मैगजीन आते हैं, उससे हम लड़ाई में ज़्यादा एमिनेशन कैरी कर सकते हैं और इसका फायर पावर भी बढ़ जाता है।
0: AK-203 असॉल्ट राइफल्स भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित है। ये रूस के सहयोग से बन रही है। भारतीय जवानों को क्लोज क्वार्टर बैटल यानी आमने सामने की लड़ाई में अचूक बढ़त दिला रही है। AK-203 अपनी अनुकूलता, अटूट मजबूती और सटीक मारक क्षमता के लिए जानी जाती है, जो उत्तर पूर्व के घने जंगलों से लेकर लद्दाख के बर्फीले मैदानों तक हर परिस्थिति में बिना रुके फायर कर सकती है। इसके अलावा भारतीय सेना फ्रंटलाइन ट्रूप्स, स्पेशल फोर्सेस, घातक प्लाटून के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब की राइफलें इस्तेमाल करती है। अब जो LMG इस्तेमाल में है उसका रेट ऑफ फायर पहले के मुकाबले कहीं अधिक है।
1: नेगेव LMG जो कि एक लाइट मशीन गन है, ये लंबी दूरी का हथियार है और काफी कारगर और एक्यूरेट वेपन साबित होता है युद्ध प्रणाली में।
0: साथ ही जो नाइट विजन और थर्मल वेपन साइट्स हैं, वो बेहद कारगर हैं।
3: ये एक स्पोटोस्कोप है, आप लोगों ने बाइनोकुलर के बारे में सुना होगा, जिसमें संतरी कंटिन्यूसली बाइनोकुलर से देखते हुए सर्वेलेंस करता है। दिन के समय सर्वेलेंस करने के लिए एक संतरी को कंटिन्यूसली इसके ऊपर खड़े रहने की जरूरत है। संतरी बंकर के अंदर हो सकता है, बाहर बर्फ गिर रही है, एकदम हार्श वेदर है और टेम्परेचर बिल्कुल लो है, इसको हम बाहर लगा सकते हैं ओपन के अंदर, किसी छुपाव वाले इलाके के अंदर। संतरी टैब के सहारे बंकर में बैठ के पूरी सर्वेलेंस कर सकता है।
4: अच्छा।
3: और दुश्मन की एक एक एक्टिविटी को नोटिस कर सकता है।
0: इसके अलावा स्नाइपर्स के क्षेत्र में भी भारतीय सेना ने एक बड़ी छलांग लगाई है। नए उपकरणों ने भारतीय सेना की काउंटर स्नाइपिंग क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे मीलों दूर छिपा दुश्मन भी अब सुरक्षित नहीं है। सिर्फ व्यक्तिगत हथियार ही नहीं, बल्कि इन्फेंट्री को सपोर्ट देने वाले हथियारों को भी पूरी तरीके से अपग्रेड किया गया है।
2: ये एक स्नैपर है, इसका नाम है 8.6 mm साको स्नैपर राइफल। अभी इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर बाइपॉड की सुविधा दी गई है, इसके अलावा इसके अंदर बोल्ट एक्शन है, जिसके वजह से क्या है, इसके अंदर पुर्जे की मूवमेंट नहीं होती, जिसके वजह से क्या है,

0: की सुविधा दी गई है, जिसकी वजह से दिन के समय जिस प्रकार से हम साइट लगा के फायर करते हैं उसी हिसाब से क्या है इसके अंदर नाइट के समय भी हम TI साइट लगा के उसको हम फायर के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात के समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: नए जमाने के ये हथियार साफ संदेश देते हैं कि भारत ने अपनी पैदल सेना को इतना लीथल और घातक बना दिया है कि अब दुश्मन के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा।
2: इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को क्वीन ऑफ द बैटलफील्ड माना जाता है। क्वीन क्यों? क्योंकि जिस तरीके से चेस के खेल में जो रानी होती है वो चुस्त शक्तिशाली निर्णायक चालें चल सकती है, उसी तरीके से होती है इन्फेंट्री। अब भारतीय इन्फेंट्री को लेकर, उनके बल को लेकर, उनकी ताकत को लेकर किसी तरह का संशय नहीं, लेकिन युद्ध के बदले स्वरूप में किस तरीके से ये खुद को ढाल चुके हैं वो भी अपने आप में अनोखा है।
1: हथियार चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो, उनकी असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें इस्तेमाल करने वाले हाथ कितने प्रशिक्षित हैं। आधुनिक समय के युद्ध अब केवल मैदानों या पहाड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जंग अब शहरों की तंग गलियों, ऊंची इमारतों और साइबर स्पेस तक फैल चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने अपनी इन्फेंट्री के प्रशिक्षण में भी कई बदलाव किए हैं। अब पारंपरिक शारीरिक अभ्यास के साथ साथ जवानों को सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी और हाइब्रिड वॉरफेयर ड्रिल्स का कड़ा अभ्यास कराया जा रहा है।
2: तकनीक के साथ एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो बहुत तेजी से बदलती है, और तेजी से बदलती हुई तकनीक के लिए आपको प्रशिक्षित भी उतनी ही तेजी से होना है। तो इस तरह से जब ड्रोन्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप केवल सामान्य रूप से जो लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक कैमरे के रूप में, उसको केवल एक कैमरे के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि आज के युद्ध में ये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है। अब अगर हम उन सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स को देखें, उस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को देखें, तो वो उतनी ही महंगी टेक्नोलॉजी भी है, महंगी तकनीक भी है, और अगर आप सीधे फील्ड में जाकर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसका सीधा मतलब हो जाता है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाता। तो अब कॉस्ट इफेक्टिव रखने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि आप इस तरह के सिम्युलेटर्स पे ट्रेनिंग लें, और खासकर जब हम अटैक ड्रोन्स की बात करते हैं तो वो सिंगल यूज होते हैं। तो एक सैनिक इस कुर्सी पर बैठकर एक सिम्युलेटर पर इस तरह की ट्रेनिंग लेकर उस असली युद्ध भूमि के लिए तैयार हो जाता है।
1: वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर ये सैनिक इस कमरे में होते हुए भी एक ऑपरेशन का अनुभव हासिल कर रहे हैं। असली गोलियों के बिना ही वास्तविक युद्ध जैसा अभ्यास कर रहे हैं। आज की ट्रेनिंग सैनिकों की मानसिक और तकनीकी क्षमता को निखारने पर केंद्रित है। जवानों को दुश्मन के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हमलों को समझने, अपने संचार चैनलों को सुरक्षित रखने और युद्ध के दौरान मिलने वाले बड़े डेटा में से काम की जानकारी तुरंत चुनने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
3: भविष्य के योद्धा को फिजिकल रूप से फिट नहीं बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ और तकनीकी रूप से सक्षम होना भी जरूरी है। उसको आधुनिक बैटलफील्ड में ड्रोन्स, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना आना जरूरी है।
1: भारतीय सेना का ये नया ट्रेनिंग मॉडल ये सुनिश्चित करता है कि हमारा सैनिक मानसिक, शारीरिक और रणनीतिक रूप से हर तरह के आधुनिक युद्ध को जीतने के लिए हमेशा तैयार रहे।
4: आधुनिक युद्ध भूमि का एक फलसफा है, जो पहले देखेगा वो जीतेगा, और इसी को आत्मसात करते हुए भारतीय सेना ने ड्रोन को अपनी ट्रेनिंग में, अपने ऑपरेशंस में पूरी तरीके से शामिल किया है। आपको हमने बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स तो कई बार दिखाया जहां पर सैनिक अलग अलग तरह के अवरोध से

0: जरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये अपने आप में अनूठा एक ड्रोन ऑब्स्टिकल कोर्स है। यानी कोई भी दीवार, कोई भी छत, कोई भी इलाका भारतीय सैनिकों को इन ड्रोन्स को आगे बढ़ाने से रोक नहीं सकता। आज के युद्ध में ये बहुत निर्णायक है।
1: भारतीय सेना की छोटी इन्फेंट्री टुकड़ियों से लेकर बड़ी बटालियनों तक हर स्तर पर ड्रोन्स का इस्तेमाल अब सामान्य हो चुका है। इसने हमारे सैनिकों को बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी आंखों से न दिखने वाले इलाकों में भी पूरी तरह हावी होने की ताकत दी है।
2: ड्रोन ऑब्स्टिकल कोर्स मतलब होता है, यहाँ पे हमने बेसिक ड्रोन फ्लाइंग के लिए हमने यहाँ पे दो प्रकार का ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया हुआ है, फेज वन और फेज टू। फेज वन में हमारे पास में यहाँ पे चार ऑब्स्टिकल हैं, जैसे कि सबसे पहले रूफ टॉप ऑब्स्टिकल, नंबर दो पे हमारा टनल ऑब्स्टिकल, नंबर तीन पे लूपहोल ऑब्स्टिकल, नंबर चार पे हमारा होम एंट्रेंस ऑब्स्टिकल।
3: मतलब ये रूफ टॉप ऑब्स्टिकल है तो उसमें ऊपर से एंटर कर जाएगा, जैसे टनल में बीच से जाएगा आपका ड्रोन।
2: अच्छा, यस मैम। और फेज टू में हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट ड्रोन ऑब्स्टिकल है, जिसमें फर्स्ट में हमारे पास में है लॉबी एंट्रेंस ऑब्स्टिकल। अगर हमें किसी भी रूम एंट्रेंस में घुसने के बाद में अगर हमें लॉबी एंट्रेंस करना है तो यहाँ पे किस प्रकार से करना है, हम यहाँ पे ड्रोन की ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे रूम एंट्रेंस ऑब्स्टिकल है और सराउंड सर्कल ऑब्स्टिकल है।
1: इन्फेंट्री जवान अब अपनी हथेली, जेब या छोटे बैग में आ सकने वाले माइक्रो और नैनो ड्रोन्स का इस्तेमाल भी करते हैं।
4: मैं ऑफिसर टीम में ड्रोन ऑपरेटर की भूमिका को निभाता हूँ और यहाँ ये ड्रोन ब्लैक हॉर्नेट नैनो है, जिसको कि हम क्लोज टारगेट रेकी और डॉग क्लेंस और रूम इंटरवेंशन में यूज करते हैं। यह बहुत ही हल्का और लो नॉइस प्रोड्यूस करता है और यहाँ इतना छोटा है कि हम इसको छोटी सी छोटी जगह में ले जाके सर्वेलेंस कर सकते हैं।
1: ये तकनीक सैनिक को बिना अपनी जान जोखिम में डाले किसी भी जगह छिपे दुश्मन की सही संख्या, उसके पास मौजूद हथियारों और उसकी लोकेशन की लाइव वीडियो हासिल करने की सुविधा देता है। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन्स किसी भी मौसम में और शून्य से नीचे के तापमान में भी लगातार निगरानी कर सकते हैं।
5: ये एक हमारा सर्विलेंस ड्रोन है जिसकी डे और नाइट कैपेबिलिटी है। ये आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और इस ड्रोन ने हमें ऑप सिंदूर में काफी हद तक हेल्प की है, ताकि हम अपने टारगेट्स और अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सके।
1: इन्फेंट्री के ड्रोन्स सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है, वो हमला करने में भी सक्षम है। भारतीय सेना ने कामिकाजी ड्रोन्स को भी अपनी इन्फेंट्री का हिस्सा बनाया है। ये लॉयटरिंग म्यूनिशन हवा में लंबे समय तक मंडरा सकते हैं और जैसे ही दुश्मन का कोई टैंक, बंकर या गाड़ी दिखता है, ये मिसाइल की तरह सीधे उससे टकरा कर उसे नष्ट कर सकते हैं। इस तकनीक ने भारतीय इन्फेंट्री को दुश्मन पर दूर से ही सटीक और विनाशकारी हमला करने की वो शक्ति दे दी है, जिसने पारंपरिक पैदल युद्ध के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया। ये एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है, जो कि एक्सट्रीम परिस्थितियों में बहुत कारगर है। एक्सट्रीम परिस्थितियां यानी पहाड़ी क्षेत्र, हाई ऑल्टीट्यूड, जहां पर तापमान बहुत अधिक ठंडा हो सकता है, वहां भी ये ड्रोन सर्वोच्च क्षमता पर काम करते हैं।
6: हमारी भारतीय सेना में पिछले कुछ सालों से भिन्न भिन्न प्रकार के ड्रोनों को बड़ी संख्या में शामिल किया गया है।
3: और ये मेड इन इंडिया भी है?
6: जी जी, जो सब ड्रोन है मेड इन इंडिया, सभी हमारे भारतीय कंपनी द्वारा बनाए गए हैं।
3: अच्छा, तो ये किस किस तरह की ड्यूटीज के लिए ये काम आते हैं, क्या इनके फीचर्स हैं?
6: जी, सभी ड्रोन जो है दिन और रात के समय सर्वेलेंस करने की ड्यूटी में काम आते हैं। इन सभी ड्रोनों में दिन और रात के समय में लगने वाले कैमरे लगे हुए हैं। जैसे ये ड्रोन है, इसमें दो प्रकार के पेलोड लगे हुए हैं, डे पेलोड और नाइट थर्मल पेलोड। डे पेलोड की 20 गुना तक की जूमिंग कैपेसिटी है, जिससे हम दुश्मन की एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं और अपने एआर की रिस्पॉन्सिबल एरिया की निगरानी कर सकते हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ड्रोन्स ने दुश्मन के क्षेत्र में विध्वंस किया था और दुश्मन के इरादों को भांप कर अपने क्षेत्र की रक्षा भी की थी।
0: जितना जरूरी है एक मशीन के आधुनिकीकरण को देखना, उतना ही जरूरी है मशीन के पीछे के उस व्यक्ति के शौर्य को पहचानना। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए वंदे मातरम।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: आगे आगे
5: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
9: बिजली का बिल पेड,
10: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
11: कैसे?
10: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
11: इत्ता माही वे।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
13: इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: बिजली का बिल पेड
2: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
3: इतना माही वे।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पर छिड़ी नई जंग। बीजेपी के बाद बीएचपी ने सोनिया गांधी और खड़गे पर राष्ट्रगीत के अपमान के आरोप लगाए। कांग्रेस का इनकार, कहा रोकने की कोई कोशिश नहीं, पूरा बचा था वंदे मातरम। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई तो सीएम आवास का करेंगे घेरा। कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए आज राहुल गांधी का जलाएंगे पुतला। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी सख्ती, दाता सिंह वाला के पास फिर बैरिकेडिंग, डल्लेवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च। ममता बनर्जी के करीबी पूर्व डेप्यूटी स्पीकर आशीष बनर्जी का टीएमसी दफ्तर में फंदे से लटका हुआ मिला शव, हड़कंप मचा। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। और अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनके नेतृत्व ने देश को दी नई दिशा। सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर समेत कई नेताओं ने किया नमन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: इतिहास गवाह है और वर्तमान में चल रहे युद्ध गवाह हैं कि मिसाइलें आसमान से वार कर सकती हैं, टैंक जमीन को थर्रा सकते हैं, लेकिन जब तक एक इन्फेंट्री का जवान जमीन पर अपने देश का झंडा नहीं गाड़ता है तब तक एक युद्ध का निर्णय नहीं आता है। यह सही है कि इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, यानी कि पैदल चलने वाली सेना, लेकिन आज के युद्ध में तेजी की भी जरूरत है और इसीलिए क्रांतिकारी बदलाव हमारी इन्फेंट्री के व्हीकल्स यानी उनके वाहनों में भी किए गए हैं।
4: कॉल वन, स्टैंड बाय।

0: जो सेना दुश्मन के हमला करने से पहले या उसके जवाब में जितनी तेजी से अपनी सेना को सही जगह पर तैनात कर सकती है, जीत उसी की होती है। भारतीय इन्फेंट्री ने अपनी मोबिलिटी, अपनी गतिशीलता को कई गुना बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक वाहनों का अभेद्य बेड़ा तैयार किया है।
1: आजकल इंडियन आर्मी का फोकस है, क्योंकि ये टेरेन काफी हार्श है और ट्रेचरस है, तो नए न्यू जनरेशन इक्विपमेंट इंडक्ट करने पे काफी फोकस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये QRFV व्हीकल है, ये स्पेशल पर्पज व्हीकल है जो कि माइंड प्रोटेक्टेड और बुलेट प्रूफ व्हीकल है। जब भी कोई ऑपरेशन के लिए सेना को निकलना होता है तो इसमें से हमारे जवान तैनात होते हैं, और इसके बाद इससे इनको एक प्रोटेक्शन मिलता है और ये आड़ के पीछे फिर सपोर्ट लेते हुए निकलते हैं और अपनी कार्रवाई करते हैं आगे की।
2: मतलब एक चलता फिरता बंकर के तौर पर मैं इसे देख सकते।
1: बिल्कुल।
0: सीमा पर सुपर हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में तेजी से पहुंचने के लिए सेना ने ऑल टेरेन व्हीकल्स और विशेष लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स को बड़ी संख्या में तैनात किया है। सैनिकों को दुर्गम पहाड़ों पर भारी भरकम वजन उठाकर पैदल लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए भी कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे ये रोबोटिक म्यूल्स। आज हमारी इन्फेंट्री मैकेनाइज्ड मोबिलिटी के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां अत्याधुनिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये वाहन नदियों, दलदल, बर्फीले मैदानों को बिना किसी रुकावट के पार कर सकते हैं।
3: ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसमें लड़ाई के दौरान स्टिक्स, जो कि इन्फेंट्री है, अपने क्रू, तीन क्रू के अलावा 7 की स्टिक, जो कि लड़ाई में नीचे उतर के दुश्मन के बंकरों पे अटैक करते हैं या असॉल्ट करते हैं, उनको अंदर बिठाया जाता है। आप देख सकते हैं कि लाइनअप हो रखा है। इस BMP की खासियत ये है कि ये एक तो हल्की है, 14 टन की है, और यहाँ पहाड़ी इलाकों में पासेस में आराम से ऊपर जा सकती है। उसके अलावा इसमें टैंकों को बर्बाद करने के लिए ATGM दिया गया है।
2: सब इस व्हीकल के बारे में बताएं, क्योंकि ज्यादातर समय तो यहाँ पर स्नो रहता है पूरे इलाके में।
4: जी। ये मैम, ये पोलारिस 550, हाँ। ये पोलारिस कंपनी से बना हुआ है। ये सेना में इसलिए दिया गया है कि मोबिलिटी बढ़ाने के लिए,
2: हाँ।
4: जहाँ पे 4-व्हील व्हीकल जा नहीं पाता है, वहाँ पे ये ले जाके हम आराम से ट्यूब्स को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं।
2: अच्छा, मतलब जब पूरा बर्फ रहती है
4: जी,
2: तो उसमें बहुत
4: जी और स्टार्टिंग में जो -डिग्री है, हाँ। उसमें भी आसानी से स्टार्ट हो जाता है।
2: हाँ।
4: जो एविएशन का फ्यूल इसमें डालते हैं, इसीलिए
2: अच्छा
4: -डिग्री में भी वो आसानी से स्टार्ट हो सकता है।
0: मोबिलिटी के इस बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पैदल सैनिक बिना थके पूरी ऊर्जा और पूरे गोला बारूद के साथ सीधे युद्ध के क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। भारतीय इन्फेंट्री की ये सुपर फास्ट मोबिलिटी सुनिश्चित करती है कि देश की सीमाओं पर किसी भी आपात स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया तुरंत, घातक और निर्णायक होगी।
2: भारतीय सेना का स्वर्णिम इतिहास रहा है, हमने कठिन से कठिन परिस्थितियों में युद्ध लड़े हैं, जीते हैं, लेकिन बदलते समय के साथ पारंपरिक रणनीतियां काफी नहीं होती हैं, और तब जन्म लेती हैं वो विशेष रणनीतियां और वो खास दस्ते जिनके सामने दुश्मन थर्रा उठता है।

0: और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के इस दौर में भारतीय सेना ने एक ऐसी विशेष स्ट्राइक फोर्स का गठन किया है जो पारंपरिक इन्फेंट्री और एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच के अंतर को पाटती है। नाम है भैरव और नाम के अनुसार ही ये बटालियन दुश्मन के मन में भय पैदा करने और उसका सर्वनाश करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। भगवान शिव का शक्तिशाली और उग्र रूप है भैरव, काल के स्वामी, अधर्म के संहारक और उन्हीं से प्रेरित है भैरव के ये योद्धा।
1: क्रिटिकल रिक्वायरमेंट थी और एज पर द डिकेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जिसके अंदर की एक बहुत ही क्रिटिकल गैप, ऑपरेशनल गैप को ब्रिज किया जा रहा है, जो कि पैरा एसएफ और नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन के बीच में स्थित रहेगी। टास्क के मुताबिक इसका आकार नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन से छोटा रखा गया है, बट इनके पास काफ़ी ज़्यादा न्यू जनरेशन वेपन्स और इक्विपमेंट दिया गया है, जिससे कि हम इफेक्टिव ऑपरेशन और टारगेट एरिया पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
0: इन सैनिकों को कमांडो ट्रेनिंग हासिल होती है, इन्हें अत्याधुनिक उपकरणों में दक्षता हासिल है, ये ड्रोन्स के इस्तेमाल में पारंगत हैं, इनका गठन सबसे कठिन इलाकों में तैनाती के लिए है। भैरव बटालियन तकनीकी रूप से समृद्ध है, इन्हें मल्टी डोमेन ऑपरेशन और एयर डिफेंस जैसी आधुनिक वॉर टेक्निक में ट्रेनिंग दी जाती है। हर सैनिक को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग है, ये नाइट ऑपरेशंस में खास महारत रखते हैं। भारतीय सेना में फिलहाल भैरव की 15 बटालियन रेज की गई है, लेकिन जरूरत को देखते हुए इस संख्या को 25 तक बढ़ाने की योजना है। भैरव बटालियन की सबसे बड़ी खासियत इसका लीन एंड लीथल, यानी छोटा लेकिन बेहद घातक और फुर्तीला स्वरूप है। इस यूनिट में चुने गए जवानों को बहुत ही कठिन शारीरिक, मानसिक और तकनीकी प्रशिक्षण से गुजरना होता है। ये सैनिक न केवल हैंड टू हैंड कॉम्बैट और सर्जिकल ऑपरेशंस में माहिर होते हैं, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर ऑपरेशंस और एडवांस्ड ड्रोन पायलटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। ये फोर्स भारतीय सेना के उस नए विचार का प्रतीक है, जहां युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता, गति और अचूक प्रहार से जीता जाता है। शक्तिशाली देश वो होता है जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के कंधों का सहारा नहीं लेता। हम बात आत्मनिर्भरता की कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की कर रहे हैं। भारतीय इन्फेंट्री के कायाकल्प को हम देखें तो उसके मूल में भारत की आत्मनिर्भरता भी है। आपने देखा इन सैनिकों को शूटिंग रेंज पर फायरिंग में यही दक्षता दिखाते हुए, लेकिन उसकी नींव इस मेड इन इंडिया। भारतीय रक्षा क्षेत्र में आई स्वदेशी क्रांति हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बख्तरबंद आर्मर, नाइट विजन गॉगल्स, आधुनिक संचार उपकरण, ड्रोन्स और असॉल्ट राइफल्स का एक बड़ा हिस्सा भारत अपने रक्षा उद्योग DRDO और प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप्स द्वारा बना रहा है। मेक इन इंडिया की इस मुहिम ने भारतीय सेना को न केवल आधुनिक बनाया है, बल्कि इसे रणनीतिक रूप से अधिक स्वायत्त और आत्मविश्वासी भी बनाया है। भारत की मेक इन इंडिया मुहिम में केवल सरकारी कंपनियां नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनियों की भूमिका भी बहुत बड़ी है।
2: हम स्वागत करना चाहेंगे सैमटल एवियोनिक्स के MD और CEO का, और आपसे मैं सबसे पहले आज ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम आत्मनिर्भरता देखते हैं, इतने सालों से बहुत चीजों के हिसाब से हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में जब सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस की बात होती है, तो प्राइवेट क्षेत्र की भूमिका क्या होती है?
3: श्वेता जी, पहली बार आज हमारे सारे दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक इससे बेटर डे नहीं हो सकता था इस कॉन्वर्सेशन को करने के लिए। जहां तक कि प्राइवेट सेक्टर का सवाल है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 2001 में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई इस क्षेत्र में, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने इसको, ऐसे बोलना चाहिए, दरवाजे खोले प्राइवेट सेक्टर के लिए. और देखा जाए तो ये जर्नी 25 साल में काफ़ी दूर तक आई है, और स्पेशली पिछले 12 साल में जब से मोदी जी ने इसको एक मेक इन इंडिया के रूप में पुश करना शुरू किया और आत्मनिर्भरता की इम्पोर्टेंस समझनी शुरू करी, तो बहुत आगे तक ये हम पहुंच गए फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कि जो प्रोडक्ट्स अब बनते हैं वो रियली में इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, कई क्षेत्रों में इस डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं. उसका मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा दर्शकों को. असली इंडिजिनाइजेशन जिसे बोलते हैं लोकल प्रोडक्ट, वो तभी बनता है जब उसकी डेवलपमेंट भी देश में ही होती है. अगर हम लोग टेक्नोलॉजी कहीं बाहर से लेके यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं तो वो इंडियन प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा. तो जो इनोवेशन का रोल है वो एक बहुत उभर कर आया है, और जितने भी प्रोडक्ट हम सेंट्रल में बनाते हैं कम से कम वो सारे के सारे हिंदुस्तान में डेवलप हुए हैं. उसकी टेक्नोलॉजी पूरी, आईपीआर पूरा हिंदुस्तान में है. वो ही असली तरीके से देखा जाए तो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट कहलाएगा. खासकर पिछले 1.5 साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पूरे दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स की चर्चा कर रही है, क्योंकि जो क्वालिटी का डेमोन्स्ट्रेशन उस टाइम पे इंडियन प्रोडक्ट्स ने दिया, उससे जो एक पूरे दुनिया ने देखा कि किस, अभी तक शायद सुनते थे, बिलीव नहीं करते थे, पर उसके बाद सबको विश्वास हो गया.
2: जब भी कोई चीज बनती है तो जरूरी नहीं कि वो 100% मेड इन इंडिया है, पर आप लोगों का टारगेट है कि वो 100% मेड इन इंडिया हो, और इसके लिए बहुत मुश्किल है. मतलब एफर्ट्स को हैट्स ऑफ कि हमारे युवा, आपके जैसे युवा बिजनेसमैन वो सब किस तरीके से लगकर ये कर रहे हैं, पर एवियोनिक्स में अगर मैं उस 100% मेड इन इंडिया की बात करूं तो वो कब तक अचीवेबल है?
3: हम लोग ऑलरेडी 70-80% पे खेल रहे हैं.
2: अच्छा.
3: हाँ, और ज्यादातर प्रोडक्ट अब उसको इंडियन ही बोला जाता है.
2: हाँ.
3: कुछ पार्ट्स बाहर से अमेरिका भी खरीदता है, तो ऐसा नहीं है कि वो इंडियन नहीं बोला जाता. और हमारी डेफिनेशन भी 70% के करीब पहुंच जाए तो फिर वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी बन गया.
2: हाँ.
3: तो हम वहां पहुंच चुके हैं. एवियोनिक प्रोडक्ट्स हमारे सारे उसी क्षेत्र में है.
2: मैं अगर ईमानदारी से आपसे कहूं कि इंटरनेशनली जो बाकी चीजें अवेलेबल हैं, क्योंकि ये आप लोगों का हाथ जिन चीजों पर लग रहा है उनमें फेलियर की गुंजाइश है ही नहीं. देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, अगर एक फेलियर होगा तो पूरे देश की सुरक्षा पर सवाल हो जाते हैं. ईमानदारी से अगर मैं कहूं कि आप इंटरनेशनली इनको कंपेयर कीजिए तो आप कहां पर रखेंगे?
3: देखिए, जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं वो बेंचमार्किंग हमारी बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ही होती है. अभी पीछे हमें हाल फिलहाल में यूएस आर्मी का एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें हमने उनके लिए एक प्रोडक्ट डेवलप किया, डेवलपमेंट फंडिंग भी मिली हमको.
2: अच्छा.
3: और वो प्रोडक्ट यूएस आर्मी में यूज होगा. वो अब इंडिया में भी हम बात कर रहे हैं और उसके कई और कंट्रीज में भी इंपॉर्टेंस है. तो हमारे जो अब इवॉल्व हो गए हैं सिस्टम्स कि जो क्वालिटी निकल कर आएगी वो ग्लोबल क्वालिटी निकल गए. हनीवेल को हम बहुत प्रोडक्ट्स देते हैं, उनके साथ जब काम करते हैं, बेस्ट कंपनियों के साथ जब हिंदुस्तानी कंपनियां जुड़ती हैं वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आती हैं.
2: देश में जो इनोवेटर्स हैं, जो उद्यमी हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है, आप एक तो उनको क्या कहना चाहेंगे? दूसरी चीज, मुझे लगता है कि एक जो पूरा शिफ्ट हो रहा है कि अगर जो अभी तक सिर्फ सरकारी कंपनियां बनाती थी, अगर प्राइवेट सेक्टर उसमें आ रहा है तो वो सीधा जॉब शिफ्ट भी दिखाता है. जो नए हैं इनोवेटर्स, जो यंग इनोवेटर्स हैं, जिन्हें लगता है हमारे पास ब्रिलियंट आइडियाज हैं, उनके पास भी मौका होता है आप तक पहुंच पाने की?
3: बिल्कुल, बहुत सारी कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हैं. हमारे साथ प्रयास रहा है कि जो सप्लाई चेन में हम लोग कंपनियां जोड़े उनमें एक पेशेंस का एटीट्यूड बहुत जरूरी है.
2: अच्छा.
3: ये जो इंडस्ट्री है इसमें सबर के साथ काम करना पड़ता है, जेस्टेशन पीरियड लंबे हैं. मेरा एक मैसेज ये है जो इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं और जो जुड़े भी हुए हैं वो भी इस बात को रोज रियलाइज भी करते होंगे कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. पेशेंस इज अ वर्च्यू बिकॉज इसमें टाइम लगता है, आपको पेशेंटली डेवलप करना है. इसमें कोई ऐसा नहीं आज आप घुसे 2 साल बाद आपका टर्नओवर आ जाएगा. और अगर आपको देश के प्रस्पेक्टिव से लेकर चलें कि भाई आप लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं और उसका पर्पस कितना बड़ा है, उस पर्पस के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो पेशेंस, जब आप घुसो टाइम लगेगा, सबर रखो, पर टेक्नोलॉजी ऐसी बनाओ जो देश को विदेश में लेकर जाए और हमारे झंडे को बहुत ही बहुत सारी कंट्रीज में फहराए.
2: जब एक सैनिक एक ट्रेनिंग कर रहा होता है, ट्रेनिंग ले रहा होता है, तो वो युद्ध के लिए ट्रेन हो रहा है, लेकिन इस कोशिश के साथ कि शांति बनी रहे, कुछ वैसा ही इस इंडस्ट्री का काम है. और आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन देश की ताकत ऐसे ही हाथों से बनती.
4: सर,
0: जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय सेना का आधुनिक और स्वदेशी रूपांतरण केवल एक सैन्य सुधार नहीं बल्कि भारत के एक वैश्विक महाशक्ति बनने का स्पष्ट प्रतीक है। वीरता, परंपरा और आधुनिक तकनीक का ये अद्भुत त्रिवेणी भारत माता के हर उस सपूत को अभेद्य बनाता है जो सीमा पर मुस्तैद खड़ा है।
4: अभी क्या रहा?
5: जी सर।
4: जोर से।
5: जी सर।
4: दिखाओगे जोर?
5: जी सर।
2: तकनीक चाहे कितनी ही बदल जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे रियल इंटेलिजेंस पर भारी पड़ जाए, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में सीना तान कर खड़े रहने का जज्बा किसी मशीन से नहीं मिल सकता, वो धड़कता है केवल एक भारतीय सैनिक के दिल में। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
1: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
2: नहीं सर।
1: 12th किससे की हो?
2: 12th सर मेरा PCM से रहा।
1: कंपाउंड क्या होता है?
2: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
1: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
0: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
1: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग। बीजेपी के बाद बीएचपी ने सोनिया और खड़गे पर राष्ट्रगीत के अपमान का लगाया आरोप। कांग्रेस का इनकार, कहा रोकने की कोई कोशिश नहीं, पूरा बजा था वंदे मातरम। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने। सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई तो सीएम आवास का घेराव। कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए आज राहुल गांधी का जलाएंगे पुतला। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ गई है सख्ती। दाता सिंह वाला के पास फिर से बैरिकेडिंग, डल्लेवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च। ममता बनर्जी के करीबी पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का टीएमसी दफ्तर के फंदे से लटका हुआ मिला शव, हड़कंप मचा। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। और अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनके नेतृत्व में देश को नई दिशा मिली, सदैव अटल पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर समेत कई नेताओं ने नमन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में शतक आज तक में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद खनौरी बॉर्डर पर सख्ती। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद किया। जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसानों का पैदल मार्च, की गई बैरिकेडिंग। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी मृत मिले, टीएमसी कार्यालय में फंदे से लटका हुआ मिला शव, सुसाइड का नोट भी मिला। ममता बनर्जी के करीबी आशीष बनर्जी का शव मिलने के बाद सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी। कर्नाटक लोक भवन आज से 18 अगस्त तक के लिए आम लोगों के लिए खुला, जनता कर सकेगी भ्रमण। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी, बोले असाधारण राजनेता, दूरदर्शी नेता थे अटल जी, उनका सुशासन और जन कल्याण का विजन हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत राष्ट्रीय नेताओं ने अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर किरण रिजिजू ने श्रद्धांजलि दी, बोले अटल जी हमारे दिलों और विचारों और संस्कारों में सदैव जीवित रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पी चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी एन दिमागी नक्सल। पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस पोस्ट के बाद दिमागी नक्सल शब्द को लेकर चर्चाएं तेज। प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल बयान और महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना, कहा स्वतंत्रता दिवस के मंच का गलत इस्तेमाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के पर कांग्रेस के कामों का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा यह उनकी हताशा को स्पष्ट दिखाता है। अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, आत्मविश्वास की कमी, घबराया हुआ और डगमगाता हुआ प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेंजी के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए कहा देशद्रोह नहीं और सरकार की नीतियों ने युवाओं को अंधी गली में धकेल दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान पर मचा सियासी घमासान, पहले बीजेपी ने इसे वंदे मातरम का अपमान बताया, अब बीएचपी ने कांग्रेस से माफी की मांग की है। कांग्रेस ने गाने में किसी भी तरह की बाधा डालने और उसके अपमान के आरोपों को खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा वंदे मातरम का अपमान भारत का अपमान है, देश उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी प्रतिक्रिया दी, कहा वंदे मातरम का सम्मान करते लेकिन किसी को भी इस गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद को इतनी बड़ी पार्टी बताती है लेकिन वंदे मातरम का गायन भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। खड़गे ने कहा आजादी का असली मतलब है सिर्फ विदेशी शासन से ही मुक्ति नहीं बल्कि गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय, डर से भी आजादी। खड़गे ने सरकार पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए। अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान को देश की समृद्धि और शांति के लिए जरूरी बताया। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकार को शिक्षा भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ चेतावनी दी, कहा इस घपले को ठीक नहीं किया तो उन्हें भी दोबारा विरोध करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा यूपी में सरकार बनने के बाद समाजवादी पेंशन पुनः शुरू की जाएगी, 40,000 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव न लड़ने के बारे में जग्गा रेड्डी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, कहा राहुल गांधी राम हैं तो जग्गा रेड्डी हनुमान, माननी पड़ेगी बात। राहुल गांधी ने 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी की यही विकृत मानसिकता है बलात्कारियों अपराधियों को बचाती है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा गंभीर आरोप लगाए, रिसॉर्ट में अंकिता के कमरे को जांच से पहले गिरा क्यों दिया गया था। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर से संघ को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए पूछा, संघ बताए उसने स्वतंत्रता संग्राम में कब हिस्सा लिया था। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा, क्या संघ 50 ऐसे नाम बता सकता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी हो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकानों के भंडाफोड़, 6 आईडी और गोला बारूद बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हुआ। जेपीएससी और जेएसएससी सुधार मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज हेमंत सोरेन राहुल गांधी के पुतले जलाने का भी ऐलान किया। सीबीआई जांच की मांग पर भी अड़े छात्रों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। सदर अस्पताल में 5 दिनों से भर्ती देवेंद्रनाथ महतो की भूख हड़ताल के 14वें दिन भी लगातार जारी, अपने बेड को छोड़कर कॉरिडोर की जमीन पर धरना दे रहे हैं। भूख हड़ताल कर रहे छात्र एक्टिविस्ट देवेंद्रनाथ महतो की 15 अगस्त को रांची के सदर अस्पताल में पुलिस के साथ झड़प हुई थी, तिरंगा यात्रा में जाने से रोका गया था। विधायक टाइगर जयराम महतो ने इस मुद्दे को लेकर सोरेन सरकार पर निशाना साधा, कहा पूरे मामले को विधानसभा में उठाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया। पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोया समेत सभी एनालॉग डेयरी उत्पाद इसमें शामिल। निरीक्षण के दौरान कई नमूनों में अलग अलग तरह की मिलावटी पाए जाने की बात सामने आई। कई जिलों में दूध और दूध उत्पादों में भी मिलावट के संकेत। बंगाल के कूचबिहार में 3 संदिग्ध आईएसआई एजेंट गिरफ्तार किए गए। एसटीएफ का दावा, भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेज रहे थे, नकली नोट बनाते थे। जांच एजेंसियों को संदेह कि इन लोगों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संपर्क साधा। अदालत ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र में कमर्शियल वाहन चालकों के लिए मराठी बोलना अनिवार्य है और आज से ये नियम लागू हो जाएगा। हजार विवाद के बीच बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने लॉ स्टूडेंट से माफी मांगी, बोले अहंकार का सवाल ही नहीं, कानून के छात्रों की अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें खेद है। बीसीआई चेयरमैन ने कहा कि जब कभी भी छात्र आहत महसूस करते हैं तो उनकी शिकायतों चिंताओं को पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कलाकार ने यूपी में बुलडोजर एक्शन की तारीफ की। सीएम योगी ने दिलचस्प जवाब दिया, कहा गा नहीं सकता लेकिन गलत लोगों पर बुलडोजर तो चलवा सकता हूं। आसनसोल में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई, 14 घायल हुए, 6 की हालत गंभीर है, मौके पर पुलिस बल तैनात। सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर का जारी किया गया, 18 अगस्त रात 11 बजे तक आपत्ति दर्ज करने का मौका। चमोली हादसे में एचसीसी मजदूरों ने किया है आपदा प्रबंधन मंत्री का घेराव, कंपनी प्रबंधन से मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग। पीपलकोटी टनल हादसे में मुआवजे की मांग पर श्रमिकों का मंत्री से सवाल, जमकर नारेबाजी। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत, 1 लापता, प्रशासन साइट पर रेस्क्यू जारी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हसदेव बांधोबाग का जलस्तर बढ़ गया है, प्रबंधन ने एहतियातन 7 गेट खोल दिए हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, घाटों पर मंडराया है बाढ़ का खतरा। राजौरी पुंछ हाईवे पर लैंडस्लाइड से बचा हड़कंप, बीआरओ ने मलबा हटाने का अभियान शुरू किया। बारिश के बाद शिमला का दिलकश नजारा, ड्रोन के कैमरे में कैद हुई खूबसूरत तस्वीरें, कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आई मशोबरा की पहाड़ियां। असम के गुवाहाटी में जमकर बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव ने रोकी वाहनों की रफ्तार। सिक्किम में भी भारी बारिश के बाद भूस्खलन ने लोगों की चिंता को बढ़ाया। ग्यालशिंग में प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए। रेवाड़ी में बारिश का कहर, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। बाजरे की फसल खराब होने पर किसानों ने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया। दिल्ली एनसीआर में अगले दो दिनों तक आसमान छाए रहेंगे, हल्की बारिश के साथ ही अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान। मौसम विभाग की ओर से आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश की चेतावनी, पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में भी इसका असर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 21 अगस्त तक कई जगहों पर हो सकती है भारी बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भी मॉनसून एक्टिव है, 21 अगस्त तक कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश। समंदर में तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम, आईएमडी ने 20 अगस्त तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी। लखनऊ के तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 की मौत। सूरत के बीच पर शराब पार्टी का हुआ भंडाफोड़, 22 लोगों की गिरफ्तारी, महंगी कारें और सामान को जब्त किया गया। हिमाचल के हमीरपुर में डॉक्टर राजेंद्र कंवर ने 80 करोड़ की संपत्ति राज्य सरकार को दान की, लोगों के लिए मिसाल बने। करनाल में बड़ा हादसा, सुरेंद्रनगर में तीर्थयात्रियों और सिक्योरिटी के बीच झड़प हुई, मारपीट में एक श्रद्धालु के घायल होने की खबर। मेहसाणा में महादेव मंदिर में दर्शन करने को लेकर विवाद, दलित समाज की 2 युवतियों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, आरोपी गिरफ्तार। सुरेंद्रनगर में अस्पताल में महिला की मौत के बाद डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगे, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। आगरा में 11 महीने की बेटी को यमुना में फेंकने के पिता पर आरोप, आरोपी गिरफ्तार, बच्ची की तलाश जारी। लातेहार में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, एक कंटेनर वाहन ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद सवारी टेम्पो को टक्कर भी मारी। कानपुर में बेटे के जन्मदिन पर दुकानदार की सोल है, रुपए की सेल ने मचाई भगदड़, हजारों लोगों की भीड़ दुकान में उमड़ी। यूपी के झांसी में व्यापारी को गोली मारने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा, गोली लगने से चारों ही बदमाश घायल। सहारनपुर में 30 फीट गड्ढा धसा, मलबे में दबकर पिता और पुत्र की मौत हुई, ईंट निकालते वक्त हुआ हादसा। अलवर में फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी, 5 जिलों की 25 दमकल की गाड़ियों ने 8 घंटे में काबू पाया, 25 से 30 करोड़ का नुकसान। फैक्ट्री में पाम ऑयल और साथ ही वनस्पति तेल बनाया जा रहा था, नकली गाय का घी, सूरत पुलिस ने लोकल क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर छापा मारा। भारत श्रीलंका के बीच गोल टेस्ट का आज दूसरा दिन है, पहले दिन के स्कोर में 288 पर 2 विकेट से आगे खेलना शुरू करेगी टीम इंडिया। श्रीलंका के मैदान पर खराब रोशनी के चलते 73 ओवर का ही खेल हो पाया था, देवदत्त पडिक्कल के साथ ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद। पहले दिन देवदत्त पडिक्कल ने 178 गेंदों पर 131 रन की पारी खेली थी, देवदत्त ने जड़ा करियर का पहला शतक। शानदार बैटिंग कर रहे केएल राहुल क्रैम्प की परेशानी के चलते 77 रन पर हुए थे रिटायर्ड हर्ट, 27 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत। वर्ल्ड टेस्ट के पहले दिन बारिश के चलते 2 बार रोका गया था मैच, मुकाबले पर आज भी रहेगा बारिश का साया। विमेन्स हॉकी विश्व कप में आज चीन से होगा भारतीय टीम का मुकाबला, नीदरलैंड्स के वेगनस स्टेडियम में शाम 4:30 बजे से मैच। वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें स्थान पर काबिज टीम इंडिया का सेकंड रैंकिंग वाली चीन की टीम के साथ टक्कर, पहले मैच में जीत के साथ सफर शुरू करने की होगी चुनौती। विमेन्स हॉकी विश्व कप में चीन के साथ भारतीय टीम का पहला मुकाबला होगा अहम, अगले महीने होने वाले एशिया कप में भी दोनों ही टीमों की भिड़ंत होगी। मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे, संजय ने पेनल्टी के गोल करके टूर्नामेंट में भारत के लिए खोला खाता। उज्जैन में कवि कुमार विश्वास ने महाकाल के दर्शन की भस्म आरती में शामिल हुए। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है शुक्रवार को रिलीज हुई आवारापन 2 और आवारापन बटवारा 1947, 2 दिनों में बंपर कमाई। पहले दिन आवारा 2 से पिछड़ रही थी सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947, कम बैक किया, 2 दिनों में की 19 करोड़ की कमाई। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
2: वक्त भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के दिन पर वंदे मातरम के उद्घोष से गुस्सा होगा क्या? क्या वो चिड़चिड़ा होगा क्या? क्या वो इसका विरोध प्रकट करेगा क्या? कोई प्रकट नहीं करेगा। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वो ही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है, और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। The opposition of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi on the day of independence of Vande Mataram points towards

देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए, और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है। उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरी धमकी देने की कोशिश करती है। जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, अरे कांग्रेस पार्टी, भारत का ही उद्घोष हो रहा था, वंदे मातरम का ही उद्घोष हो रहा था, इतनी विपत्ति या इतना आक्रोश जब कांग्रेस पार्टी की रैलीज और कांग्रेस पार्टी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे तब इनकी लीडरशिप को करते हुए नहीं देखा, पर जब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था तो सोनिया गांधी एजिटेटेड ही नहीं थी, गुस्से में ही नहीं थी, वो ऐसे प्रकट कर रही थी जैसे अपराध हो गया। द एक्शंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी पॉइंटेड टुवर्ड्स अ साइकी ऑफ अ दिमागी नक्सल इकोसिस्टम विच बिहेव्ड एज इफ अ क्रिमिनल एक्ट वॉज कंडक्टेड इन द कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स। ये यहीं तक नहीं रुके, उसके बाद जब वंदे मातरम का उद्घोष कंप्लीट होता है ये लोग साथ में मिलते हैं। यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, और सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, और मैं आपको प्ले करना चाहता हूं। कोट अनकोट राहुल गांधी कहते हैं, वी डोंट नीड टू सिंग वंदे मातरम। पहले तो राहुल गांधी जी, ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है, ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है। उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है, पर यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देशहित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा, जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री, देयर हार्ट बीट्स फॉर फ्रिंज फोर्सेस। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है केरला के अंदर, कल ही कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने वंदे मातरम के उद्घोष को एज ऑफिशियल फंक्शन स्किप किया। सो जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सोचा उसको लेटर और स्पिरिट में कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने इंप्लीमेंट किया। तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह कोई इत्तेफाक नहीं था, और कांग्रेस पार्टी का जितना जस्टिफिकेशन है वो इस बात पे झूठ साबित होता है कि उनकी खुद की सरकार, जहां पे उनकी सरकार है केरला के अंदर, वहां पे वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और वंदे मातरम को स्किप करते हैं।
और राहुल गांधी उसके बाद इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि जोर जोर से सोनिया गांधी के साथ में चिल्लाने लगते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम।

0: तरम। दोस्तों, मैं एक और फंडामेंटल सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश के पार्लियामेंट ने अभी अभी एक एक्ट पास किया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एज अमेंडेड इन 2026, जिसमें वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का विरोध करता है तो वो इस एक्ट का भी विरोध करता है। सो जब वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जानबूझकर इसका विरोध कर ये दिखा दिया कि वो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़े हैं, और जो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़ा होता है वो हमेशा इस बात पे गुस्सा होता है कि कोई भी उद्घोष जो भारत को आगे ले जाने की बात करता है उससे उसको विरोध होता है। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक स्पष्टीकरण दिया कि भाई खड़गे जी को खड़े होने में दिक्कत थी। अरे, मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, खड़गे जी उसके बाद में 35 मिनट का भाषण दे दिए, किसी को वो कुर्सी नहीं दिखी जो सोनिया गांधी लाना चाह रही थी। ऐसी इनविजिबल कुर्सी कहां है जो कोई नहीं देख पाया। ये सब बहाना है, सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ए पेट्रियोटिक एक्ट, कांग्रेस की दिमागी नक्सल वाला एक्ट, कांग्रेस पार्टी की दिमागी नक्सल विचारधारा कैमरे ने कैद कर ली और माइक्रोफोन ने वो आवाज देश के सामने सुना दी। और इस देश का जेन जी और युवा, जेन पी है, जेन पेट्रियोटिक है, जेन नेशनलिस्ट है, और वो जानता है कि स्वतंत्रता दिवस पर जब हाथ में तिरंगा लेकर इस देश के 140 करोड़ देशवासी खुशी में थे, गर्व महसूस कर रहे थे, विकसित भारत 2047 के संकल्प को ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में, सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार, ओनली राहुल गांधी सोनिया गांधी इन द कांग्रेस इकोसिस्टम वॉज हैविंग प्रॉब्लम। सोचिए इनकी प्रायोरिटीज कि स्वतंत्रता दिवस पर भी इनको राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम हुई। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से कुंठित है, जो अंदर से इस बात से दुखी भी है और गुस्से में भी है कि देश 140 करोड़ देशवासी राष्ट्रभक्ति के साथ में, यूनिटी के साथ आगे क्यों जा रहे हैं। जो पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल, मैं उस पी चिदम्बरम को यह दिखाना चाहता हूं, यह है आपका कार्यकाल। जब जितने भी नक्सली आतंकी थे उनमें से एक को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं मारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के एग्जीक्यूशन में जितने भी नक्सली टॉप कमांडर्स हैं वो सबको निस्तानबूत किया गया, और गरीब आदिवासी जो इससे प्रताड़ित थे उनको बचाया गया। देश ने नक्सली समस्या का अंत किया, और कल ही कारेगुटा की पहाड़ी बस्तर में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगा लहराया था। यह फर्क है इस वक्त की सरकार और दिमागी नक्सली इकोसिस्टम में।
1: तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वंदे मातरम को लेकर, एक बार फिर से तमाम सवाल उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि किस तरीके से अलग अलग बातें कांग्रेस की तरफ से जरूर कही जा रही हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आया है, जो ऑडियो सामने आया है, उसके आधार पर एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
2: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी.
2: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का.
3: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे.
2: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है. वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए.
4: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है.
5: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है.
6: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को. और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
7: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है.
2: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं. जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी. लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा. इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.

0: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
1: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
0: नहीं सर।
1: ट्वेल्थ किससे की हो?
0: ट्वेल्थ सर मेरा पीसीएम से रहा।
1: कंपाउंड क्या होता
0: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
1: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
0: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
1: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राम विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा दिमागी नक्सली विचारधारा। सोनिया गांधी राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस बोली पूरा बजा था राष्ट्रगीत, कोई अपमान नहीं। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने सीबीआई जांच की मांग, वरना सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। राहुल गांधी सोरेन का पुतला जलाने का प्लान। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी सख्ती, दाता सिंहवाल के पास फिर बैरिकेडिंग, डल्लेवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च। ममता बनर्जी के करीबी पूर्व डेप्यूटी स्पीकर आशीष बनर्जी का टीएमसी दफ्तर में फंदे से लटका हुआ मिला शव, हड़कंप मचा, पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। और अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी, कहा उनके नेतृत्व ने देश को दी नई दिशा, सदैव अटल पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर समेत कई नेताओं ने किया नमन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह 11:30 बजे हुए और बुलेटिन में हम बात करेंगे चार बड़ी अहम खबरों के बारे में। जो पहली खबर है वो कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम से जुड़े हुए विवाद से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। इसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं बीते दिनों दिल्ली में हुए रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम के बारे में, राष्ट्रगान से जुड़े विवाद की, जिसे लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर से बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को कानूनी नोटिस भेज दिया गया है। साथ ही साथ बात करेंगे लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर छिड़े हुए सियासी संग्राम के बारे में। आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर दिए गए ताजा बयान के बारे में भी बताएंगे, ये बयान सुनाएंगे भी जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। सबसे पहले लेकिन अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान के आरोपों पर छिड़े सियासी संग्राम के बारे में। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी एक शख्स को इशारा करती हुई नजर आईं। इन तस्वीरों के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर अब हमलावर है। आरोप वंदे मातरम के अपमान के लग रहे हैं। बीजेपी के हमले तेज हैं और सियासी लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस पर हमले के साथ ही बीएचपी ने भी इस पूरे मामले में माफी की मांग की है।
1: मौका स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ का था। कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण हुआ, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गाना हुआ, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो बड़े सियासी विवाद की वजह बन गया। तस्वीरों में देखिए और समझिए कि कैसे जश्न आजादी के बीच इस विवाद की शुरुआत हुई। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का गाना हो रहा है। इसी दौरान सोनिया गांधी वहां मौजूद एक शख्स को कुछ इशारा करती हैं। और इन्हीं तस्वीरों को साझा कर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर देती है। बीजेपी का आरोप है कि वंदे मातरम के गान पर सोनिया गांधी बेहद नाराज हुई और कार्यकर्ता से इसे रोकने को कहा
2: कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए, और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है। उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरी धमकी देने की कोशिश करती है। जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है।
3: कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस।
1: राष्ट्रगीत वंदे मातरम में कुल 6 अंतरे हैं, जिसमें से 2 ही अंतरे गाए जाते रहे हैं, लेकिन अब नए प्रोटोकॉल के मुताबिक वंदे मातरम की 6 अंतरे गाने की बात कही गई है। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के अंतरे तो पूरे गाए गए, लेकिन इस तस्वीरों पर नया सियासी बखेड़ा शुरू हो गया।
4: जब वंदे मातरम के मूल स्वरूप को गाया जा रहा था, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म कर दिया था, हटा दिया था, उसके गाने पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी स्पष्ट रूप से असहज दिख रहे थे, आपस में वंदे मातरम को खत्म करने के लिए हिलजुल करते नजर आए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस की किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। यह उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
5: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे।
6: बीजेपी के हमलों के बीच वंदे मातरम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के खिलाफ हमलों में अब वीएचपी भी उतर पड़ी है और विवाद की आंच मुस्लिम लीग तक पहुंच गई है।
7: थोड़ी देर के लिए वंदे मातरम सहन नहीं हुआ, हमें लगता है कि कांग्रेस को शायद 1937 का वो दृश्य याद आ गया जब इन्हीं के पूर्वजों ने और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उसके षड्यंत्रों का शिकार होकर के वंदे मातरम के दो टुकड़े किए थे। आज ये तीनों की तीनों मिलकर के अपने मुख्यालय में जिस तरह से इन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है, निसंदेह इनको क्षमायाचना करनी चाहिए।
6: बीजेपी इस मुद्दे पर जिस तरह से आक्रामक है उससे साफ है कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम को लेकर छिड़ा विवाद आसानी से शांत होने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी ने वंदे मातरम के अपमान को कांग्रेस के दिमागी नक्सल की विचारधारा का नतीजा बताया है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की भी बात कही है। बीजेपी की तरफ से अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें तमाम बातों को रखा गया और बताया गया कि किस तरीके से जो बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े नहीं हो पा रहे थे और इसीलिए सोनिया गांधी कुर्सी मंगाने की बात कर रही थी उस वीडियो में जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, तो प्रदीप भंडारी की तरफ से कहा गया कि उसके बाद लंबे समय तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया, बैठने की बात ही नहीं हो रही थी।
2: राहुल जी, हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है, पर यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देशहित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा, जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री, देयर हार्ट बीट्स फॉर फ्रिंज फोर्सेस।
0: तो वंदे मातरम को लेकर एक विवाद एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के बयान पर भी छिड़ चुका है क्योंकि 15 अगस्त के मौके पर वारिस पठान ने कहा कि वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनके गायन की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान की कमी नहीं है लेकिन अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से वो कुछ पंक्तियों का पाठ नहीं कर सकते।
8: वंदे मातरम का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मैंने हमेशा कहा है वंदे मातरम का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को आप जबरन बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते, मैंडेटरी आप नहीं कर सकते। संविधान का आर्टिकल 25 से 28 मुझे इजाजत देता है, मेरा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। तो वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए सही नहीं है, शिर्क में आ जाता है, हम अल्लाह की वंदना करते हैं।
9: हम बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कह रहे कि आप जबरदस्ती गाइए वंदे मातरम, परंतु वंदे मातरम का जब गीत गाया जा रहा हो उस समय उसके सम्मान में आपको खड़ा होना पड़ेगा।
10: देखिए, ये बात तो सही है कि राष्ट्रीयता जो है अंदर से आती है, आप थोप नहीं सकते किसी को। भारतीय जनता पार्टी हर चीज को थोपना चाहती है और उसका क्रेडिट लेना चाहती है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और आज़ादी में उसको हमारे कांग्रेस पार्टी ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने उस गीत को गाते हुए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, तो उसका कौन विरोध कर सकता है। हमारे हर कार्यक्रम में, कांग्रेस के हर कार्यक्रम में उसकी शुरुआत वंदे मातरम से होती है।
0: अब बात करेंगे राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों पर शुरू हुई सियासत के बारे में भी जो कानूनी लड़ाई तक पहुंच चुकी है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में रचनात्मक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था। बीजेपी ने इस कार्यक्रम का एक वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया। अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इन आरोपों का जवाब देते हुए अमित मालवीय को कानूनी नोटिस भेज दिया है।
11: बीते दिनों दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पीएम मोदी पर जबरदस्त हमलावर दिखे। मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की और इस दौरान कुछ ऐसी टिप्पणियां भी हुई जिस पर जबरदस्त सियासी बवाल मचा। लेकिन इस कार्यक्रम के ठीक बाद बीजेपी की ओर से एक वीडियो साझा हुआ। दावा किया गया कि राहुल गांधी ने राष्ट्रगान जनगणमन का अपमान किया। दरअसल वीडियो में जिस वक्त राहुल गांधी लोगों से हाथ मिलाते दिख रहे हैं उस दौरान राष्ट्रगान बज रहा होता है। अब इसी वीडियो के आधार पर बीजेपी कांग्रेस में नई जंग छिड़ गई है। राष्ट्रगान विवाद को लेकर बीजेपी के आरोपों के बाद अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में बीजेपी से पोस्ट हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और 48 घंटे में जवाब देने की मांग की गई है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि आखिर कार्यक्रम के दौरान हुआ क्या था। नोटिस के मुताबिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान सामान्य तरीके से बजाया गया। मंच पर मौजूद संदीप दीक्षित, राहुल गांधी और बाकी लोग ये मानकर आगे बढ़ गए कि राष्ट्रगान खत्म हो चुका है और वो लोगों से मिलने जुलने लगे। लेकिन इसी दौरान ऑडियो सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से राष्ट्रगान दोबारा बजने लगा, जिसे ऑपरेटर ने तुरंत बंद कर दिया। कांग्रेस की सफाई और कानूनी नोटिस के बाद ये लड़ाई और बढ़ गई है। राष्ट्रगान के आरोपों पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द के इस्तेमाल ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया। इसे लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच हमले तेज हो गए हैं।
12: जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
11: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक ऐसे शब्द का जिक्र किया जो देश विरोधी सोच रखने वालों पर सबसे करारा प्रहार था। जिस शब्द के बहाने निशाने पर थे विकास का रास्ता रोकने वाले, विकसित भारत के सपनों में बाधा बनने वाले, ये शब्द था दिमागी नक्सल।
12: मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
11: साल 2027 तक देश को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया तो संदेश साफ था कि विकास विरोधी सोच किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। लेकिन दिमागी नक्सल वाले पीएम मोदी के इस बयान पर सियासत उबलते देर नहीं लगी। विपक्ष हमलावर हुआ, आरोप लगाया कि शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले हैं।
13: जो लोग भारत की हर विकास यात्रा पे प्रश्न चिन्ह लगाए, भारत के गौरव पे प्रश्न चिन्ह लगाए, भारत विरोधी ताकतों से विदेशों में जाकर छुप छुप के मिले, भारत के जो शत्रु देश है उनसे फंडिंग ले, वो लोग भारत के विरोध में है, भारत की विकास यात्रा के विरोध में है, विकसित भारत के संकल्प के विरोध में है। उन लोगों का जो वैचारिक जो मत है वो भारत के विरोध में है।
14: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
11: विपक्ष के हमले तेज हुए तो पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी इस सियासी जंग में उतर पड़े। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद को भी दिमागी नक्सल बता दिया। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया करते थे, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
15: ये वही लोग हैं जब एक प्रदूषण के सिलसिले में और वहां पर इंडिया गेट पर प्रदर्शन हो रहा है तो कह रहे हैं एक हिडमा मारोगे तो हर घर घर हिडमा निकलेगा। ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। तो प्रधानमंत्री जी का
0: तो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेंजी के लिए सौगात का ऐलान किया। एआई ट्रेनिंग और फ्री कोचिंग की बात कही तो विपक्ष ने रोजगार समेत तमाम सवाल उठाते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है।
1: लाल किले की प्राचीर से आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा था, भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी जा रही थी और उस तस्वीर के केंद्र में था भारत का युवा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, भारत की अगली उड़ान का इंजन युवा होगा।
0: जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है।
1: जेन जी हो या जेन अल्फा, संदेश साफ था, भारत का भविष्य सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के हाथों से बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, युवा शक्ति, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत और भविष्य का खाका खींचा। 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के नए अवसर, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक आत्मनिर्भर युवा शक्ति। हालांकि विपक्ष पूछता है AI की ट्रेनिंग के साथ रोजगार कितना बढ़ेगा, फ्री कोचिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी होगी, टैलेंट हंट के साथ खेलों में अवसर कितने बढ़ेंगे और क्या युवा की आवाज सिर्फ चुनाव के समय सुनी जाएगी?
2: प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी?
1: इसी बेचैनी के बीच बाबा रामदेव ने भी सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और युवाओं के असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का आंदोलन फिर तेज हो सकता है।
3: चारों तरफ देश में हंगामा है, ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 का निर्माता बनने का आह्वान किया है, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक नहीं, आज के भारत का सबसे बड़ा निर्माता है। आज तक ब्यूरो।
4: और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है वाराणसी से, जहां जानकारी मिल रही है एयरपोर्ट पर वहां गोली चलने की खबर है। गोली किसने चलाई है इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, कितने राउंड फायरिंग हुई है ये भी साफ नहीं हो पाया। फिलहाल जानकारी ये है कि वाराणसी एयरपोर्ट पर गोली चली है और इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। जी हाँ, 2 लोगों के घायल होने की खबर है। आजमगढ़ का एक यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाने वाला था और उसके पास पिस्टल और मैगजीन भी थी। यात्री ने अपनी पिस्टल और मैगजीन को डिक्लेयर भी किया हुआ था, अचानक से पिस्टल से गोली चल गई और जमीन से लड़ने के बाद पास खड़े हुए एक लड़के और महिला को ये गोली लगी है। महिला की जांघ और लड़के के हाथ में गोली लगी है। दोनों को ही तुरंत ही एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है लहूलुहान हालत में। तो वाराणसी एयरपोर्ट की घटना है जहां 2 गोलियां चली हैं और जो 2 यात्री हैं वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
0: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
1: बॉन्ड मार्केट सेंटिमेंट्स रिमेन बेयरिश, रिफ्लेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। हाउएवर, इक्विटी मार्केट्स ड्रिवन बाय टेक स्टॉक्स रिमेन अपबीट।
0: कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में ईएमआई में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: सड़कों पर उड़ती धूल, गाड़ियों की लंबी कतारें और टोल प्लाजा पर रेंगता ट्रैफिक, हाईवे के सफर में ये परेशानी लगभग हर ड्राइवर की कहानी बन चुकी है। लेकिन आने वाले समय में टोल गेट पर रुकने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो सकती है। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय देश भर में मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोलिंग सिस्टम लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इस तकनीक के जरिए गाड़ियां बिना रुके टोल पार कर सकेंगी और सफर पहले से ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में 1150 से ज्यादा टोल प्लाजा मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के इन टोल प्लाजा से हर साल 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टोल कलेक्शन होता है, जिसमें फास्टैग के जरिए टोल वसूली का हिस्सा 98% से ज्यादा पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को कम करना और सफर को ज्यादा सुगम बनाना है। इसी दिशा में मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम को अलग अलग फेज में लागू किया जा रहा है। इस MLFF सिस्टम में बैरियर की जरूरत नहीं होगी, जिससे गाड़ियां बिना रुके टोल प्वाइंट से गुजर सकेंगी। वहीं फास्टैग और नंबर प्लेट पहचान तकनीक के जरिए टोल अपने आप कट जाएगा। इससे पहले की बचत के साथ ईंधन की खपत भी कम होगी। अभी देश के कुछ टोल प्लाजा पर ये तकनीक लागू की जा चुकी है और कई दूसरी जगहों पर इसके विस्तार की तैयारी चल रही है। टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए मौजूदा व्यवस्था को आसान बनाने पर भी मंथन चल रहा है। मंत्रालय स्थानीय यात्रियों के लिए सालाना पास जैसी व्यवस्था पर विचार कर रहा है, जिससे बार बार पास रिन्यू कराने की जरूरत कम हो सके। वैसे भी मासिक पास का खर्च 350 रुपए है, जिससे साल भर का कुल खर्च 4,200 रुपए हो जाता है। वहीं सालाना टोल पास करीब 3,000 रुपए का है। टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए सरकार पहले ही फास्टैग एनुअल पास जैसी सुविधा शुरू कर चुकी है, जिसका फायदा हाईवे का नियमित इस्तेमाल करने वालों को मिल रहा है। इस फास्टैग एनुअल पास की मदद से एक तय शुल्क पर 200 टोल यात्रियों या एक साल तक की सुविधा मिलती है। जानकारों का मानना है कि फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू होने के बाद हाईवे पर लगने वाले जाम में कमी आएगी, यात्रा का समय घटेगा और ईंधन की बचत होगी। आने वाले वर्षों में देश का टोल नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल और ऑटोमेटेड होने जा रहा है, यानी हाईवे पर सफर करते समय टोल प्लाजा पर रुकने की झंझट धीरे धीरे बीते दौर की बात बन सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा दिमागी नक्सली विचारधारा। सोनिया गांधी राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस बोली पूरा बजा राष्ट्रीय गीत, कोई अपमान नहीं। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग, वरना सीएम आवास का घेराव। आज राहुल गांधी सोरेन का पुतला जलाने का प्लान। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी सख्ती, दाता सिंह वाला के पास फिर से बैरिकेडिंग, डल्लेवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च। ममता बनर्जी के करीबी पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का टीएमसी दफ्तर में फंदे से लटका हुआ मिला शव, मिलने के बाद हड़कंप, पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। और अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी, कहा उनके नेतृत्व ने देश को दी नई दिशा, सदैव अटल पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर समेत कई नेताओं ने किया नमन।

तीनों लोकों के स्वामी, त्रिकालदर्शी, देवों के देव, महादेव। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जहां पर सागर स्वयं दो बार शिवजी का जलाभिषेक करते हैं। यहां पर जो शिवलिंग स्थापित है वो दो बार दिन में पूरी तरीके से जलमग्न हो जाती है। कहते हैं कि ये मंदिर आदिकाल का है, बेहद प्राचीन है। यहां तक कि स्कंद पुराण में इसके बारे में वर्णन मिलता है। लेकिन क्या वाकई ये संभव है और किस तरीके से आंखों के सामने से उझल हो जाते हैं महादेव, आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में यही दिखाएंगे।

रहस्य लोक है, समुन्दर की लहरों के नीचे बसा अद्भुत शिवलोक। आपने कंकड़ में शंकर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लहर लहर शंकर दिखाएंगे।

0: समुद्र देवता बोले कि हम उनका अभिषेक करेंगे, सो कोई करे या ना करे। पहले क्योंकि गुप्त तीर्थ इसलिए पड़ा कि कोई जानता नहीं था, आज भी वही गुप्त तीर्थ के नाम से चल रहा है।
1: ये तीर्थ गुप्त है, लहरों की तहों के नीचे लुप्त है, पर आज हम उन गहराइयों से श्रद्धा की अविश्वसनीय कहानी निकाल कर लाएंगे। महादेव के अकल्पनीय जलमग्न शिवलोक की सबसे अद्भुत पड़ताल दिखाएंगे, जो हजारों साल पहले धर्म ग्रंथों में लिखा गया उसके प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे, जो पुराणों में भविष्यवाणियां की गई उनके साक्षात निशान दिखाएंगे।
2: इस महीसागर संगम गुप्त तीर्थ में 5 शिवलिंग गुप्त हैं, जिसमें से 2 प्रागट्य हैं। यहाँ पर दरिया इस पार हैं स्तंभेश्वर महादेव और भावनगर की साइड जो है निष्कलंग महादेव। दोनों का शास्त्रों में वर्णन आता है स्कंद पुराण में, और अभी भी और अपने यहाँ से जाएंगे आप, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर हैं रूपेश्वर महादेव। तो 3 तो प्रागट्य भाव में शिवलिंग हैं, पर अभी भी 2 शिवलिंग हैं जो कि गुप्त हैं।
1: यहाँ महादेव प्रतिदिन 2 बार जल में अंतर ध्यान हो जाते हैं। हम आज आपको लेकर चलेंगे शिव के इसी धाम, जहाँ महादेव भक्तों को दर्शन देकर रात भर के लिए समुन्दर के नीचे समाधि में चले जाते हैं।
3: छह घंटे जलमग्न रहते और 6 घंटे दर्शन देते। जैसे आज अभी 10:30 बजे खाली हो गया मंदिर, अभी 6 घंटे तक दर्शन चालू रहेंगे और शाम को 5:30 बजे भर्ती चालू हो जाएगा। 6 बजे तक मंदिर में पानी आ जाएगा और फिर धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता जाता है पानी। पहले गर्भगृह में आएगा अंदर जलाधारी के जरिए, फिर जलाधारी गर्भगृह भर जाने के बाद धीरे धीरे ऊपर से आना शुरू हो जाता है।
1: यहाँ महादेव के दर्शन सिर्फ और सिर्फ महादेव की मर्जी से ही हो सकते हैं। यहाँ आँखों से जो दिखता है वो भ्रम नहीं, सत्य है। ऐसा सत्य जो शिव भी है और सुंदर भी।
4: स्तंभेश्वर महादेव की चर्चा शिवपुराण में भी आती है और इसका महत्व यह है कि स्वयं समुद्र देवता आकर के और भगवान महाकाल का 2 बार अभिषेक करता है और इसका दर्शन का एक अद्भुत महत्व है। और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में तो यहाँ दर्शन हो जाए तो बहुत ही मतलब भाग्यशाली समझेंगे अपने आप को।
0: ये तो पानी के हिसाब से परंपरा चलती है। महादेव का दिन में 24 घंटे में 2 बार स्वयं समुद्र देवता अभिषेक करने के लिए आते हैं।
5: पानी आएगा तो ये सर्वप्रथम पानी बाबा को ही छुएगा। अच्छा। जी, और बाबा के यहाँ ही अंदर कक्ष में भरेगा गर्भगृह में पानी सर्वप्रथम।
1: स्तंभेश्वर महादेव का अलौकिक संसार, जहाँ समुन्दर का खारापन अपना गुण बदल लेता है, लोहा अपनी प्रकृति बदल लेता है, श्रद्धा अद्भुत रूप से अद्वितीय हो जाती है। महादेव ने जटाओं में गंगा के वेग को धारण किया, लेकिन आज अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय में अगले 1 घंटे हम दिखाएंगे समुन्दर के ज्वार भाटे को महादेव के सामने नतमस्तक होते, समुन्दर के प्रचंड आवेग को महादेव की स्तुति करते।
6: दोपहर के इस समय में आप समुद्र के स्तर को, जल स्तर को सबसे निचला इस समय देख सकते हैं। एक नजर अगर आप दौड़ाएं तो दूसरे छोर के जो शहर हैं वो भी आपको दिखेंगे। हम जिस हिस्से में खड़े हैं, यानी कि स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जो है ये जम्बूसर का इलाका होता है, और दूसरी तरफ खंबात की खाड़ी के पार आप जो हिस्सा देख रहे हैं वो खंबात शहर का हो जाता है। यहां पर अब इसके बाद धीरे धीरे पानी चढ़ने की शुरुआत होगी, लेकिन जो सबसे निचला स्तर होता है, मेरे पीछे की इन सभी नावों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां तक पानी आ जाता है। गीलापन थोड़ा और दूरी तक आगे बढ़ता है। तो ये पूरा हिस्सा, यानी मंदिर में प्रवेश करने का पूरा रास्ता, शिवलिंग, सब कुछ जलमग्न हो जाएंगे एक बार जब सागर इस ओर आने का रुख करेंगे।

0: जहां प्रतिदिन समुन्दर महादेव के चरण स्पर्श करके जलाभिषेक की अनुमति मांगते हैं, जहां लहरें सूर्यास्त के समय महादेव को अर्घ्य देने के लिए स्वयं शिव द्वार आती हैं, समुन्दर की अथाह गहराइयां सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में प्रलयंकारी महादेव के स्नान के लिए व्याकुल होती है। जब हमने पहली बार स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के बारे में सुना तो सबसे अद्भुत बात ये लगी कि दो बार जल मग्न होने का दृश्य ही कितना सुंदर होगा। लेकिन जब दर्शन करने पहुंचे तो सदियों का अथाह रहस्य सामने था। मन में प्रश्नों का ज्वार भाटा था कि इसके निर्माण के लिए सदियों पहले समुद्र के ज्वार भाटे का कितना गहरा ज्ञान होगा हमारे पूर्वजों को।
1: वेद पाठ का जो कार्यक्रम है वह यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। जब समुद्र में ज्वार आता है, भाट आता है, उस वक्त आता है समुद्र ऊपर, पूरा ये मंदिर जो है भगवान शिव का पानी से सराबोर हो जाता है, और उसके बाद पानी जब उतरता है तो वापस प्रभु के दर्शन हो पाते हैं।
0: हम आपको इस इलाके के बारे में भी बताते हैं। गुजरात राज्य का ये हिस्सा खंबात की खाड़ी से लगा हुआ है। ये पूर्वी सौराष्ट्र तट का एक प्रमुख हिस्सा है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर इसी तट पर भरूच जिले के जम्बूसर में पड़ता है। खंबात की खाड़ी वो क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष आज भी संरक्षित हैं। 2001 में मिले चिन्ह इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन बताते हैं। हालांकि कुछ नमूनों की कार्बन डेटिंग को लेकर जानकारों में तब मतभेद भी हुआ था, पर अब इस दृष्टिकोण से स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को देखिए और जानिए कि मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर किसने और क्यों बनवाया।
2: हजारों लाखों साल पहले जब सतयुग का समय था, तब जो है भगवान कार्तिक स्वामी का अवतार हुआ, और वो अवतार जो है वो तारकासुर का वध करने के लिए ही हुआ था। भगवान कार्तिक स्वामी के हाथ से यहाँ पर तारकासुर का वध किया गया, और जब तारकासुर का वध हो गया उसके पश्चात जो है जब उसको कार्तिक स्वामी को खबर पड़ा कि तारक जो था भगवान शंकर का भक्त था, तो उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप की शांति के लिए उन्होंने महादेव की यहाँ पर आराधना की। आराधना करने के बाद में भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद यहाँ स्तंभेश्वर रूप से यहाँ पर विराजित हुए।
3: स्कंद पुराण जो है वो सभी पुराणों में सबसे विस्तृत और वृहद है। तमाम तरह की जानकारियां होती हैं, तीर्थों के बारे में जानकारी होती है। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि इसके एक अध्याय में एक सुपुत्री को 10 सुपुत्रों से के बराबर माना गया है। इस तरह की चीजें भी इसमें रहती हैं। और स्कंद पुराण में, उस प्राचीन ग्रंथ में, इस श्री स्तंभेश्वर महादेव का वर्णन किया गया है, इसके बारे में लिखा गया है। यानी कि भले ही एक ऐसे मंदिर के तौर पर आज पहचान हो जो जलमग्न हो जाता है दिन में दो बार, लेकिन इसका जो प्राचीन इतिहास है वो भी बहुत बड़ा है।

0: ये शिवलिंग कितना पुराना है? संबेश्वर महादेव की महिमा क्या है? सबसे पहले यहां किसने पूजन किया? समुद्र की लहरों के बीच किसने महादेव को स्थापित किया? दरअसल संबेश्वर महादेव का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता में है। इसके अलावा स्कंद पुराण में भी संबेश्वर महादेव का उल्लेख है। स्कंद पुराण के अनुसार संबेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग महादेव के समय से स्थान पर है। बात सदियों नहीं युगों पुरानी है।
1: कपिल मुनि नारद मुनि का तपस्वी क्षेत्र कहलाता है मही सागर संगम गुप्त तीर्थ। शास्त्रों में स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि इस मही सागर

0: दो बार अभिषेक करता है।
1: कुमारी का खंड में, स्कंद पुराण के कुमारी का खंड में इनका वर्णन आया है कि अमावस्या को जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं तो अभिषेक नहीं कर पाते बहुत से लोग, और दर्शन करने मत से इनका बहुत बड़ा अपने को फल मिलता है दर्शन करने से, और पूजा अगर अपन करेंगे अभिषेक करेंगे तो उसका तो और ज़्यादा फल मिलता है।

0: सदियां बीती युग बीते, मान्यता है कि स्तंभेश्वर महादेव के शिवलिंग की पूजा ऋषि मुनि करते रहे और कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय ने जब शिवलिंग स्थापित किया तब से ही समुन्दर दिन में दो बार महादेव का जलाभिषेक करने उनके चौखट पर स्वयं आता है। अब नासा की एक रिपोर्ट देखिए जिसके अनुसार गुजरात का यह तटीय क्षेत्र भारतीय क्षेत्रों की तुलना में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे को अनुभव करता है और 90 मील लंबी खाड़ी का फनल यानी कीप जैसा आकार ज्वार की ऊंचाई को और बढ़ाता है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र के टाइडल रेंज या ज्वार के दायरे को 510 अंगुल कहा गया था। आज के हिसाब से ये गणना करीब 32 फीट है जो आज की स्थिति में भी प्रामाणिक है। अद्भुत है भारतवर्ष का प्राचीन ज्ञान जो सदियों सदियों से विज्ञान की ऐसी समझ रखता था। आज इस मंदिर में भक्तों को एक टिकट दिया जाता है जिसमें प्रतिदिन के ज्वार भाटे की समयावली होती है। किस समय लोग अब आ सकते हैं?
1: डेली अलग अलग टाइम होता है, गुजराती तिथि के अनुसार पानी आता है। जैसे आज सातम है तो आज पानी 11 बजे दर्शन होगा और 6 बजे पानी आएगा।
0: तो ये सारी चीजें आपके पास ये इसकी जानकारी को लेकर रहती है?
1: हाँ, ये जानकारी हम डेली देते हैं। जैसे कि ये है एकम दूज तीज, उसके गुजराती तिथि के अनुसार पानी आता है। अच्छा। और पानी के जाने के बाद दर्शन होता है। हाँ। फिर पानी आता है, फिर दर्शन होता है। अच्छा। यानी कि 24 घंटे में 12 घंटा दर्शन होता है और 12 घंटा पानी रहता है।
0: हम सवेरे लगभग 11 बजे दर्शन के लिए पहुंचे थे। रात का पानी अब पूरी तरह गर्भगृह से बाहर निकल चुका था और सफाई चल रही थी। अब पहले परिक्रमा की सफाई की गई है, उसकी स्वच्छता की गई है और उसके बाद अब इस परिसर की यहां पर सफाई तेज धार, पानी की तेज धार से किया जा रहा है। इसे दिन में दो बार इसे किया जाता है भक्तों के आने के लिए। भक्तों के आने से पहले अभी भी कई भक्त हैं जो यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार ये पूरी सफाई हो जाए उसके बाद आकर वो शिवजी के दर्शन कर सकें यहाँ। और फिर जब पानी चढ़कर फिर उतरेगा उसके बाद फिर एक दूसरी बार यहाँ पर सफाई की जाएगी। यहाँ से पूरा वो जो समुद्र का पानी है और जो गाद है उन सबको हटाया जाएगा। समुन्दर का पानी जैसे ही उतरना शुरू होता है वैसे ही मंदिर की सफाई आदि के बाद भक्तों का रेला भी महादेव के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ता है।
2: पहली बार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत
0: देखकर आप लोगों को अद्भुत लगा?
3: बिल्कुल बहुत अद्भुत लगा, यहाँ का नजारा ही कुछ और है।
4: जीता शिवलिंग है और बहुत पुराना यानी भगवानों के टाइम का ये जो पत्थर है उसका कोई नुकसान नहीं होता, इतना सालों से पूरा डूब जाता है। शिवरात्रि के दिन तो ऊपर तक
0: पानी रहता, पूरा ये छत डूब जाती है उसकी।
5: यहाँ से हमारे 3 किलोमीटर दूर कावी तीर्थ है तो वहाँ सुना हमने कि यहाँ समुद्र में शिवलिंग स्वयंभू है तो हम यहाँ दर्शन करने आ गए और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को।
6: पूनम और शिवरात्रि पे यहाँ बोलते हैं कि जल चढ़ाने से सारे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और माने शिव जी की प्राप्ति होती है आपको दर्शन की।
0: जिन्हें दर्शन का अवसर मिल जाता है वो स्वयं को धन्य समझता है क्योंकि वो देख चुका होता है कुदरत का वो अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय दृश्य जहाँ स्वयं समुन्दर शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे होते हैं। हमारे मन में बरबस ये सवाल भी था कि समुद्र का पानी खारा होता है

और किसी भी ढांचे को धीरे धीरे खा जाने की क्षमता रखता है। साथ ही लहरों की ताकत भी निर्माण के टिके रहने में चुनौती होती है। फिर भी यह मंदिर सदियों से एक समान स्वरूप में कायम है, आखिर कैसे? दिन में दो बार शिवलिंग समेत मंदिर का मुख्य हिस्सा समुद्र के खारे पानी में डूब जाता है, फिर सैकड़ों वर्षों से मंदिर के निर्माण को कौन सी शक्ति बचाती है? समुद्र की लहरें बेहद ताकतवर होती हैं। समुद्र का खारा पानी में वो शक्ति होती है कि कंक्रीट को भी वो तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर महादेव की महिमा आप इस रूप में देखते हैं कि दिन में दो बार समुद्र के खारे पानी के नीचे जाने के बावजूद अनादिकाल से स्थापित स्तंभेश्वर महादेव, यहां पर ये शिवलिंग, उसका कुछ भी नहीं ये खारा पानी बिगाड़ पाया है। सागर स्वयं आकर प्रतिदिन दो बार जलाभिषेक करते हैं महादेव का, लेकिन वो शिवलिंग आज भी उसी रूप में बिना नुकसान के स्थापित है जैसा कि अनादिकाल से वो यहां पर रहा।

समुद्र का खारा पानी लोहे को गला सकता है, पत्थरों का आकार बदल सकता है, हवाओं को पानी के नमी के साथ मिलकर इतना खतरनाक बना देता है कि कोई स्ट्रक्चर अधिक दिनों तक सुरक्षित रहना मुश्किल है।

0: अब इसे अद्भुति कहा जाए कि युगों युगों से शिवलिंग हर दिन दो बार समुद्र के पानी में जलमग्न होता है, लेकिन शिवलिंग को कोई हानि नहीं पहुंचती। खारा पानी जब आता है तो खारा पानी तो बहुत चीजों को खराब करता है, पर यहाँ पर शिवलिंग प्रभावित नहीं?
1: नहीं नहीं, शिवलिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आज तक नहीं पड़ा। ये अनादि
0: वो तो हमेशा पानी के, मतलब समुद्र के पानी से
1: जी जी जी, उनका अभिषेक इसी जल से होता है और दरिया देव दोनों टाइम करते हैं महादेव का जलाभिषेक, तो उनके
0: कोई
1: नहीं नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अनादिकाल से ही हो रहा है, आज से नहीं है, ये सतयुग के पहले से है।
0: महादेव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट विष को पी लिया था। मान्यता है विष के प्रभाव को कम करने के लिए तब से ही शिव जी पर जल चढ़ाने या जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर इस अर्थ में अद्भुत है कि वहां समुद्र का पानी स्वयं दो बार आकर जलाभिषेक करता है।
2: यहाँ पे ये है कि पूरा दरिया एक बार पहले डूब जाता है और फिर वापस आ रही, माने ये भगवान जी का बहुत बड़ा चमत्कार है कि पूरा डूब के फिर वापस खाली होता है, माने यही सबसे अच्छा है देखने जैसा।
3: हम आरती के समय में 11 बजे आरती का समय, इन्होंने वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि आरती का समय 11 बजे है। अच्छा। क्योंकि समुद्र वापस चला जाएगा। हाँ। तो तिथि के हिसाब से जैसे हाई टाइड लो टाइड होता है कि आज तृतीया तिथि है तो आज 11 बजे आरती होगी, चतुर्थी के अंदर इस समय आरती होगी, तो वो समय देख के हम लोग आए थे कि समुद्र थोड़ा सा पीछे चला जाएगा इतने तक और हम यहाँ पर आरती का नजारा भी देख पाएंगे।
0: चार बज रहे थे जब ये हलचल शुरू हुई कि समुद्र का पानी अब चढ़ने लगा। भक्तों को गर्भगृह से बाहर जाने की सलाह दी गई। शिवलिंग का श्रृंगार फूलों से पूर्ण था। अद्भुत था कि पानी सबसे पहले शिवलिंग की ओर ही बढ़ रहा था।
4: जब सागर का पानी प्रवेश करता है यहाँ पर तो सीधे गर्भगृह में पहले आता है, पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करता है जैसे, और उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे ये बाकी हिस्सों में समुद्र का पानी जाकर भरता है।
0: देखते ही देखते गर्भगृह में पानी भर गया। भक्त अब बाहर से आतुर आंखों से महादेव को विलीन होते देख रहे, पर पानी अब और ऊपर चढ़ने वाला था, तो सभी लोगों को परिसर से बाहर जाने के सख्त निर्देश दिए गए। हम भी अब दूर से इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों में भर रहे हैं। समुद्र का जल स्तर ऊपर चढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। अब तो ऊपर एक ढांचे का निर्माण है जिस वजह से वो हिस्सा जो है वो सागर से ऊपर ही नजर आता है, लेकिन जो शिवलिंग है वो पूरी तरीके से जलमग्न यहां पर हो जाता है।

ये दृश्य और कल्पनीय। समुद्र का पानी अब इतना ऊपर चढ़ गया था कि केवल मंदिर की छतरी बाकी दिख रही थी, यानी अब संपूर्ण गर्भगृह जलमग्न हो चुका था। इस क्रम में लगभग एक घंटे का समय लगा था। अद्भुत है लीला गुजरात के समुन्दर में विराजे स्तंभेश्वर महादेव की, न किसी भक्त के भाव से, न किसी पुजारी के निवेदन पर और न ही किसी के मन से। यहाँ महादेव के दर्शन होते हैं तो महादेव के ही आदेश पर।

0: पानी आएगा तो ये सर्वप्रथम पानी बाबा को ही छुएगा। अच्छा। जी, और बाबा के यहाँ ही अंदर कक्ष में भरेगा, गर्भगृह में पानी सर्वप्रथम। फिर उसके उपरांत जो है ये पानी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते जो है फिर इस क्रम से पूरे कुंड में भरता है, फिर धीरे धीरे जो है परिक्रमा मार्ग में भरने लगता है।
1: समुद्र देवता बोले कि हम उनका अभिषेक करेंगे, कोई करे या ना करे। पहले क्योंकि गुप्त तीर्थ इसलिए पड़ा कि कोई जानता नहीं था, तो इसलिए गुप्त तीर्थ इसका नाम था। अब गुप्त तीर्थ से आज भी वही गुप्त तीर्थ के नाम से चल रहा है।
2: दिन में दो बार भक्तों की आंखों के सामने स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो जाता है और फिर प्रकट हो जाता है। ये सिलसिला सैकड़ों वर्षों से चल रहा है।
3: महादेव का प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन और चतुर्दशी और अमावस्या के दिन चार पहर की पूजा चलती है निरंतर, रात में भी और दिन में। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन करीबन मान के चलिए आपकी 20,000 में तादाद में पब्लिक रहती है और एक माह का श्रावण में मेला लगता है। हर शिवरात्रि और अमावस्या और पूर्णिमा का मेला लगता है। किसी प्रकार का रोग हो, दोष हो, अगर कहते हैं कि मृत सैया भी अगर मानव शरीर पड़ा हुआ है और हम महादेव का पूजन अर्चना और महामृत्युंजय का पाठ इत्यादि हवन का जाप करते हैं तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। हर रोग का निवारण महादेव। आप उनका पूजन अर्चना करेंगे तो दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मन्नतें हैं। जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, भाईचारा नहीं है, जो यहाँ पर वो इच्छा करते हैं, मांगते हैं, महादेव उनकी इच्छा पूरी करते हैं।
2: सूर्यास्त के समय जब चंद्रमा आसमान की ओर बढ़ने लगता है तब से शुरू हुआ मंदिर के पानी में डूबने का सिलसिला सूर्योदय के समय चंद्रमा के प्रस्थान के साथ पूरा हो जाता है। चंद्रमा महादेव के मस्तक का आभूषण है और पानी की पहेली का एक संबंध इससे भी जुड़ता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही समुन्दर में ज्वार भाटा आता है। जब लहरें चढ़ती हैं तो उसे ज्वार और जब उतरती हैं तो उसे भाटा कहा जाता है। पृथ्वी घूमती है और पानी का जो हिस्सा चंद्रमा के सामने पड़ता है वहां लहरें उठती हैं और इसका असर जल स्तर पर देखा जाता है। महादेव सर पर जटाओं में गंगा को और मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। इसे भी जल की गति और चंद्रमा की शक्ति के बीच संतुलन के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है।
4: हर जगह की प्रथाएं उस स्थान को देखते हुए बनती हैं। यहाँ पर आप तेज हवाएं देख रहे होंगे, तेज हवाओं की वजह से ये धर्म ध्वजा को आप लगातार फहराते हुए देख रहे हैं, लेकिन इस कारण आरती में बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए यहाँ की जो प्रथाएं अलग हुई उनमें यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है।
2: समुद्र के कौतुकों को देखने के बाद जब हमने शिवलिंग की आरती और बाकी पूजा उपक्रमों को देखा तो हर एक क्रियाकलाप अद्भुत नजर आया। समुद्र के तट पर अद्भुत लीला है महादेव की, तो अविश्वसनीय है यहाँ की पूजा का प्रावधान और प्रबंध भी। परिस्थितियों के चलते प्रथाओं ने ऐसा रूप लिया है जो स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को दुनिया के किसी भी शिव मंदिर से अनोखा बना देता है। अब ये अद्भुत आरती ही देखिए।
1: यहाँ क्या है कि ये दरिया है, यहाँ 24 कलाक पवन चलता हवा, तो हवा के कारण इसलिए बाल्टी के अंदर, डोल के अंदर हमको दीवा रखना पड़ता है, फिर आरती करना पड़ता है।
5: यहाँ पे 24 घंटे पवन चलता रहता है तो हम लोग डोल में, यहाँ गुजरात में बाल्टी को डोल बोलते हैं, तो डोल में दीपक रख लेते हैं और फिर उससे आरती करते हैं, ऊपर से ढक भी लेते हैं एक डिश से ताकि उनको पवन ना लगे, तो दीपक बुझना भी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग उसमें करते हैं।
2: आस्था सिर्फ श्रद्धा को समझती है और श्रद्धा का भाव यहाँ पल पल प्रतीत होता है। केवल पूजा नहीं, परंपराएं भी नियमित रूप से निभाई जाती हैं। जब पानी चढ़ना शुरू होता है तो उससे पहले हर बार शिवलिंग से लिपटे सर्प को हटा दिया जाता है, पानी उतरने के बाद दोबारा स्थापित किया जाता है।
4: इसी तरीके से नंदी जी का निर्माण ठीक शिव जी की सिधाई में होता है, लेकिन यहाँ पर आप नंदी का एक अलग स्वरूप जरूर देखेंगे। खारा समंदर ही आगे बढ़कर स्वयं जलाभिषेक करता, तो मंदिर की परंपराओं में भी यही शामिल हो गया। पूजा अर्चना के समय जलाभिषेक जब किया जाता है तो वो भी खारे पानी से ही किया जाता है।
5: ये भी खारा पानी है क्योंकि यहाँ पे तो दरिया है, खारा पानी है, तो कहीं आसपास भी मीठा पानी नहीं है। गांव में से हम लोग को मीठा पानी पीने के लिए आता है।
4: खारे पानी से जलाभिषेक की परंपरा वाला ये पूरी दुनिया में इकलौता शिव मंदिर, समुद्र की लहरों पर सवार महादेव की भक्ति को दर्शाता स्तंभेश्वर महादेव का ये मंदिर पानी की पहेलियों के चलते अद्भुत है। पूजन परंपराओं के चलते अविश्वसनीय और प्रतीकात्मक प्रथाओं के कारण अकल्पनीय। गुप्त तीर्थ माना जाता है इसे। कुल 5 गुप्त तीर्थ बताए जाते हैं, जिनमें से 3 प्रकट हैं और 2 हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं, रूपेश्वर महादेव, श्री स्तंभेश्वर महादेव और इसके साथ ही निष्कलंक महादेव, जो कि सागर के दूसरे छोर पर, जो यहाँ पर भारत का नक्शा जो बनता है उसमें सागर के दूसरे छोर पर निष्कलंक महादेव का मंदिर है।

0: ये शिवलिंग हजारों सालों से अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय रहस्यों के साक्षी रहे। दिन के 24 घंटे में से करीब 14 घंटे ये शिवलिंग समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं और तब बाहर केवल ध्वज पताका रह जाती है। एक पतला सा चबूतरा ये 5 शिवलिंग अथाह सागर और हर दिन सागर की प्रचंड लहरों का प्रहार, लेकिन दावा है कि 5000 सालों से ये शिवलिंग यही है, ऐसे ही है। गुजरात के भावनगर के पास समुद्री तट पर स्थापित इस पवित्र स्थान को निष्कलंक महादेव कहा जाता है।
1: ये शिव जी समुद्र के बीच में है, दिन में 2 बार आप उसका दर्शन कर सकते हैं। जब जब समुद्र में भरती आती है तब ये पूरा शिव का जो स्थान है वो समुद्र के अंदर डूब जाता है, और जब ओट आती है तब शिव जी का दर्शन हम लोग कर सकते हैं।
0: हमने जैसा आपको स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में दिखाया था कि वो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है और फिर बाहर निकल आता है, निष्कलंक महादेव मंदिर भी इसी तरह घंटों सागर में समाहित रहता है, और जब पानी घटता है और बाहर निकल आते हैं ये 5 शिवलिंग, तब भक्त मनोकामनाएं लेकर और अपने जीवन काल में किए पापों के कलंक से मुक्ति की आस लिए उमड़ पड़ते हैं इस ओर, क्योंकि ये है निष्कलंक महादेव का दरबार।
2: यहाँ जो लोग आते हैं निष्कलंक महादेव के दर्शन के लिए, इसका जो कलंक होता है सब साफ हो जाता है, इसकी मान्यता इधर की है।
3: यहाँ आकर मन को शांति मिलती है, इसलिए यहाँ हर रोज कई लोग आते हैं, और भादरवी अमास के दिन यहाँ खूब मोटी संख्या में जन मेदनी यहाँ आती है। 2 लाख 3 लाख जैसी मेदनी यहाँ इस स्थल पे आकर वो कलंक में से मुक्त होते हैं, और उसका मन का जो दुख है वो यहाँ आके शांति मिलती है।
0: द्वापर युग को करीब 5000 साल बीत गए, तब कहा जाता है कि पांडव आए थे यहाँ महाभारत की लड़ाई के बाद अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने।
1: जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, और पांडवों द्वारा अपने सभी रिश्तेदारों का जब वध हुआ, तब भगवान कृष्ण ने बताया था कि आप ये जो काले रंग की जो ध्वजा जी है वो ध्वजा लेके आप ये समुद्र के किनारे किनारे चलते जाओ, और चलते चलते जहां आप पहुंचो और ये जो ध्वजा का रंग है ये रंग काले में से सफेद हो जाए तब आप समझ लेना कि आपका जो ये पाप है, आपके ऊपर जो ये लगा कलंक है वो कलंक हमेशा के लिए मिट गया। गुजरात में से भावनगर का ये जो समुद्र किनारा है वहाँ जब वो आए तब वहाँ पे ये ध्वजा का रंग था काला, वो काला रंग एकदम सफेद हो गया, और वहाँ आके 5 पांडवों ने अपने हाथ से भगवान शिव जी का स्थापन किया, तभी से ये जो समुद्र तट पे विराजमान भगवान निष्कलंक महादेव के सानिध्य में कोई भी आता है अपना कलंक लेके वो उसका कलंक मिट जाता है।
0: मान्यता के अनुसार 5 पांडवों ने यहाँ 5 शिवलिंग स्थापित किए। हर शिवलिंग के साथ नंदी महाराज मौजूद हैं। ये माना जाता है कि निष्कलंक महादेव का ये मंदिर कभी समुद्र की लहरों के अंदर ही गुप्त रूप से विराजमान था, कई सदियों के बीतने के बाद प्रकट हुआ। ये रूपेश्वर महादेव मंदिर है जो 5 गुप्त तीर्थ का उल्लेख है उनमें से एक, और ये मान्यता है कि एक समय पर इस मंदिर तक भी समुद्र आते थे और यहाँ भी शिवलिंग का जलाभिषेक होता था, पर अब समय के साथ समुद्र जैसे पीछे की ओर हटता जाता है वैसे आपको अब इससे कुछ दूरी पर समुद्र का तट नजर आ जाएगा। दो बार जल में डूबने वाले संबेश्वर महादेव मंदिर के साथ ही रूपेश्वर महादेव मंदिर का एक सिरा जोड़ता है। ये मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय ने जिस राक्षस ताड़केश्वर के वध के बाद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था, उसी राक्षस के वध से पहले जिस शिवलिंग की स्थापना करके वध का प्रण लिया था, वही शिवलिंग रूपेश्वर महादेव के रूप में आज स्थित है। कहा जाता है कि कभी ये मंदिर भी समुद्र की लहरों में समाया रहता था। आज समुद्र की लहरें मंदिर से थोड़ा पीछे हट चुकी है और मंदिर तीसरा गुप्त तीर्थ है। जिन पांच गुप्त तीर्थों के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है, उनमें से दो तीर्थ अभी भी समुद्र के नीचे कहीं विलुप्त बताए जाते हैं। मान्यता है कि इनका प्रकट होना अभी बाकी है। रूपेश्वर महादेव मंदिर के नीचे ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है, वो इस बात का जवाब है कि क्यों पांचों गुप्त तीर्थ यहीं पर स्थापित किए गए थे। ये मही नदी है और जो मंदिर आप देख रहे हैं उसके किनारे, वो मही माता मंदिर है। जब मही नदी सागर में मिल जाती है तो महीसागर का ये क्षेत्र बनता है, जिसे पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थानों में माना जाता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: और दिल्ली के कल्याणपुरी की बड़ी और अहम खबर, दिन दहाड़े एक सफाई कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि सफाई कर्मचारी रोज की तरह अपने काम में व्यस्त था, तभी अचानक से एक व्यक्ति वहां पहुंचा, उस पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में सफाई कर्मचारी काम करता हुआ नजर आता है और अचानक से हमलावर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। घायल कर्मचारी को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हुई है अनिल के रूप में, खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला था। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं सफाई कर्मचारी की हत्या से गुस्सा सफाई कर्मचारियों और परिवार वालों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया है और इंसाफ की मांग की है।
1: कल्याणपुरी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 26 वर्षीय अनिल, जो कि एमसीडी में सफाई कर्मचारी था, आज सुबह अपने घर से ड्यूटी करने के लिए निकलता है। वहीं काम पर ही अचानक से करीब 7:30 बजे एक आदमी उसके पास आता है और उसे चाकू मार देता है। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आक्रोश है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस वक्त मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर खड़ा हूं, और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो सफाई कर्मचारी जो इस पूरे इलाके के हैं, एमसीडी के हैं, उन्होंने अपना काम इस वक्त रोक दिया है और यहां आकर के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर तस्वीरों में आप देखें तो भारी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहां पर हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जो विक्टिम है अनिल, उसे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल पाए। अभी कुछ समय में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि जो अक्यूज है उसे आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि अभी जो अक्यूज है इस पूरे मामले का, उसे उस सीसीटीवी के जरिए आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन मोटिव क्या है इसकी तफ्तीश अभी करनी बाकी है और अक्यूज अभी तक पुलिस के हिरासत में नहीं आया है।
0: तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए। अंशुल, परिवार वालों की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से फुटेज नजर आती है काम करते हुए कर्मचारी पर ताबड़तोड़ हमले और तब तक मारा गया चाकू जब तक जान न चली जाए, तो कुछ ना कुछ पुरानी रंजिश, कोई ना कोई पुरानी घटना जरूर जुड़ी हुई होगी इससे।
1: जी, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो पूरी घटना हुई है ये गलत फहमी की वजह से हुई है। दरअसल ये मामला जो अनिल है उससे इसका कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन जो अक्यूज है उसे ये लगा कि कहीं ना कहीं अनिल का जो है वो अफेयर एक उसकी बीवी के साथ चल रहा है शायद, और यही एक वजह बनी जिसके वजह से वो जाता है और उसे चाकू से गोद करके मार देता है। जिसके बाद ये पूरी घटना जब सीसीटीवी में कैद हुई, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस ने अक्यूज को आइडेंटिफाई किया। हालांकि अक्यूज अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने उसके परिवार को जो है वो अभी अपने पास बैठा रखा है और उनसे पूछताछ करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो अक्यूज है वो कहाँ फरार है और उसे कैसे पकड़ा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता हुआ सामने दिखाई दे रहा है। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में जहां बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए रखी गई है, वहां पर इलाके के सारे सफाई कर्मचारी अब अपना काम छोड़ करके वहां धरने पर बैठ गए हैं। उनकी ये डिमांड है कि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, अक्यूज को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कर्मचारी का ये कहना है कि कल को अगर उनके साथ भी ऐसा हादसा हो गया तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी कर्मचारियों से भी बात कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चल रही है। अक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि अगले कुछ घंटों में अक्यूज को हिरासत में ले भी लिया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कुछ देर में शुरू होगी, क्या जो कर्मचारी हैं वो इन चीज़ों को मानते हैं और कहीं ना कहीं जो धरने पर वो बैठे हैं उस धरने को ख़त्म करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी तनावपूर्ण सिचुएशन है पूरे इलाके में, और जो लोग हैं, आम जनता हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग को उठा रहे हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि ताबड़तोड़ वार में जान ले ली गई है सफाई कर्मचारी की। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और फुटेज के आधार पर अब पुलिस इस हत्या के आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो जारी किया है और आपको बता दें कि ये वीडियो 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराने से पहले का है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर पुंगनूर नस्ल की छोटी गायों और मोरों को खाना खिलाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट शेयर करके लिखा है, हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना उनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। और लाल किले के लिए निकलने से पहले वो उन्हें विदा करने आए थे। छोटी गायों को खाना खिलाते हुए और मोरों के साथ समय बिताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले भी तस्वीरें सामने आई हैं। और आपको बता दें कि ये वीडियो 15 अगस्त मतलब कल लाल किले पर झंडा फहराने से पहले का वीडियो है। प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर पुंगनूर नस्ल की जो छोटी गायें हैं उनको और साथ ही मोरों को खाना खिलाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने पोस्ट करके लिखा भी है कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना उनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है और लाल किले के लिए निकलने से पहले जो उनके दोस्त हैं उन्हें विदा करने के लिए आए थे। और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
5: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
4: नहीं सर।
5: 12th किससे की हो?
4: 12th सर मेरा PCM से रहा।
5: कंपाउंड क्या होता है?
4: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर,
5: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
4: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
5: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: So sorry!

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा का दिमागी नक्सली विचारधारा। सोनिया गांधी राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस बोली पूरा बजा राष्ट्रगीत कोई अपमान नहीं। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की। वरना सीएम आवास का घेराव, आज राहुल गांधी और सोरेन का पुतला जलाने का ऐलान। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ी है सख्ती। दाता सिंह वाला के पास फिर से बैरिकेडिंग, डल्लेवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च। दिल्ली दिनदहाड़े सफाईकर्मी की चाकू मारकर हत्या, कूड़ा उठाने की ड्यूटी पर निकले 27 साल के अनिल पर बदमाश ने किए थे ताबड़तोड़ वार, आरोपी की पहचान हुई, तलाश जारी। और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बड़ी उड़ान, स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास्त्र MK3 की पहली टेस्ट फ्लाइट यूपी की टेस्टिंग एयर स्ट्रिप पर सफल। एयरफ्रेम से जेट इंजन तक सब मेड इन इंडिया। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, वंदे मातरम के अपमान को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर लगातार बीजेपी हमलावर, और गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर अब बयान दिया गया है। तो अमित शाह की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस मुख्यालय में पाप हुआ है। तो वंदे मातरम को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बीजेपी की तरफ से, और अब गृहमंत्री की तरफ से बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दफ्तर में पाप हुआ है। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम को बीच में रोका गया था, ये शर्मनाक है।
1: पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था, चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
0: तो वंदे मातरम को लेकर बीजेपी हमलावर है, और अमित शाह की तरफ से भी बयान दिया गया है इसी को लेकर, कांग्रेस को एक बार फिर से घेरा गया है। आगे बढ़ेंगे, और अब आप देखिए हमारी खास पेशकश, बार है ज्योतिर्लिंग के दर्शन, नेहा बाथम के साथ।

0: यानी सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान भगवान शिव है। देवों के देव यानी महादेव।
1: चटाकरी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब रम्यता भुजंग तुंग मालिका
0: जिसने शिव को नहीं जाना वो लोक को नहीं समझ सकता, और जिसे लोक को समझना है उसे शिव को जानना होगा। और शिव को जानने और समझने का और बेहतर माध्यम द्वादश ज्योतिर्लिंग के द्वारा क्या हो सकता है। इसीलिए आज तक के माध्यम से करिए द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हमारी खास पेशकश सत्यम शिवम सुंदरम। काशी विश्वनाथ, बाबा बैद्यनाथ धाम, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर होते हुए हम सोमनाथ पहुंचेंगे। तो चलिए केदारनाथ के दर्शन के लिए।
2: केदारनाथ शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण। धरती पर यहाँ से ऊंचाई पर विराजमान है महादेव। देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है हिंदुओं का ये सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। केदारनाथ भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। ये समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। दर्शन मात्र ही बाबा के भक्तों को तृप्त कर देता है।
0: स्कंद पुराण में केदारनाथ धाम को सबसे ज्यादा फलदायी बताया गया है। इस पुराण में ये भी कहा गया है कि भगवान शिव से माता पार्वती ने ये कहा था कि ये स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय है, और यही वजह है कि वो अपने गणों के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव का संसार है, ये पृथ्वी लोक पर शिव लोक है। यानी कि जब आप केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो आप शिव के संसार के दरअसल दर्शन कर रहे होते हैं।
2: क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ और काठमांडू के पशुपतिनाथ का गहरा कनेक्शन है? ऐसी पौराणिक मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव की खोज में केदार पहुंच गए। भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए पांडवों के आने की भनक लगते ही उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडव शिव को पहचान ना पाए, लेकिन फिर भीम ने अपना विशाल रूप ले लिया और अपने पैर दो पहाड़ों पर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर से निकल गए, लेकिन कहा जाता है कि बैल के रूप में महादेव दोबारा अंतर्ध्यान हो गए और धरती में समाने लगे। तभी भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और कुबड़ के रूप में वो बाहर रह गया। केदारनाथ में बैल की कुबड़ की आकृति पिंड के रूप में ही शिव को पूजा जाता है। माना जाता है जब शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। यहाँ शिव पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन चारों स्थानों और केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है।
0: इस मंदिर से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं, ढेर सारा इतिहास है। कहते हैं जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब बाबा भैरव स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा संपन्न हो चुकी है और अब बारी है काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी की।

0: कहा जाता है काशी का हर कंकर शंकर। चना चबैना गंग जल जौ पुरवे करतार, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार।
1: काशी तो अपने आप में अद्वितीय है, काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका। जो अपने प्रकाश पुंज से समस्त विश्व को आलोकित करे, प्रकाशित करे, आनंदित करे, उसे काशी कहते हैं।
2: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है काशी विश्वनाथ का मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर अनादि काल से काशी में है। महाभारत और उपनिषद में भी इस बात का उल्लेख है कि ये शिव और पार्वती का आदि स्थान है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती और शिव जी के विवाह के बाद शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजने चले गए और माता पार्वती अपने पिता के यहाँ रहने लगी। वहाँ अपने पिता के यहाँ माता पार्वती का मन नहीं लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वो उन्हें वहाँ से आकर ले जाएं। जब भगवान शिव वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने काशी में ही अपना शिवलिंग स्थापित कर लिया और माता पार्वती को भी यहाँ से लेकर चले गए। तभी से काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई और ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं।
3: जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे।
2: काशी विश्वनाथ का दरबार यहाँ पूरी भव्यता को समेटे हुए है। इसकी महिमा ऐसी है कि दूर दराज से हजारों लाखों भक्त खिंचे चले आते हैं। यहाँ का कण कण शिवमय है। यहाँ की हवाओं में आस्था और दिव्यता की अनुभूति होती है। हम मंदिर प्रांगण के उस हिस्से में खड़े हैं जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहा जाता है और बेहद भव्य ये पूरा मंदिर परिसर दरअसल अब गंगा घाट के किनारे से होकर गुजरता है। और हमने देखा था कि कैसे लोग गंगा जल लेकर यहीं से सीढ़ियों से चढ़ते हैं और आगे जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर इस जल को चढ़ाते हैं।

0: Ferdinand Han. भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, जहां पूरी होती है हर मनोकामना।
1: देवघर यानी कि देवता का घर, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, और ये भी बहुत ही मान्यता प्राप्त शिवलिंग है, जिसको जल अर्पित करने के लिए, जिसको गंगा जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से कांवड़िए आते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बोल बम का जयकारा आपको हर जगह सुनाई और दिखाई दे जाएगा।
0: देवघर में भगवान शंकर बाबा बैद्यनाथ के नाम से विराजमान है। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है। मान्यता के मुताबिक इसे रावण ने स्थापित किया, इसीलिए इसे रावणेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ के बारे में एक और मान्यता है। मान्यता है कि यहाँ मौजूद बाबा बैद्यनाथ अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट वैद्य बनकर हर लेते हैं और एक खुशहाल और दीर्घायु वाला जीवन प्रदान करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अपने सफर पर हम आ गए हैं अपने चौथे पड़ाव पर, मल्लिकार्जुन मंदिर, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में, और इसका नाम श्री सैलम मंदिर भी है। कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव स्वयं इस मंदिर में विराजमान रहते हैं। जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर विराज है, जहां देवताओं का समागम होता रहता है। जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को प्रणाम है। कल कल बहती कृष्णा नदी और वहीं पास में स्थित विशाल श्री शैल पर्वत, यही विराजमान है श्री मल्लिकार्जुन। क्योंकि मंदिर ऊंचे श्री शैल पर्वत पर स्थित है, इसीलिए इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। श्री शैल पर्वत पर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों को मल्लिकार्जुन क्यों कहा गया है, इसके पीछे की एक कहानी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं श्री शैल पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का नाम मल्लिकार्जुन कैसे पड़ा। दरअसल ये दो नामों का मेल है, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिका यानी कि माँ पार्वती का नाम और अर्जुन यानी कि भगवान शिव का नाम, और दोनों के नाम के मेल से ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पूरे देश में विख्यात है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन का स्थान दूसरे नंबर पर है। इसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। दरअसल ऐसी पौराणिक

मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा कई सारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। महाभारत में ये तक कहा गया है कि अगर आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो आपको एक अश्वमेघ यज्ञ जैसे पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भगवान शिव का गढ़ है। यहाँ पर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन के

0: 12 ज्योतिर्लिंगों में से तो एक है ही, लेकिन चार धाम में से भी ये एक है और यही वजह है कि इसका श्रद्धालुओं के बीच अच्छा खासा महत्व है। दक्षिण भारत का काशी, जहां भगवान राम ने महादेव को किया था स्थापित, जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का है केंद्र, जहां ब्रह्म हत्या के पाप से मिलती है मुक्ति, जहां की स्थापत्य कला को देखने दूर दराज से आते हैं लोग, जहां अपने आप में समाई है पूरी संस्कृति, वो है रामेश्वरम तीर्थ। जय शंकर, हर हर महादेव।
1: रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत टापू है, जिसका आकार एक सुंदर शंख की तरह है। काफी पहले ये द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन समंदर की लहरों ने मुख्य भूमि से इसे अलग कर दिया।
0: कोटी से ही दरअसल श्री राम की वानर सेना ने लंका तक जाने के लिए पत्थरों से सेतु का निर्माण किया था। बाद में इसी सेतु का इस्तेमाल करके वानर सेना ने लंका की चढ़ाई की और वहां पर विजय प्राप्त की। बाद में विभीषण के कहने पर और मनाने पर भगवान राम ने धनुषकोडी में ही इस सेतु के निर्माण को पूरी तरीके से हटा दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन तभी से धनुषकोडी प्रसिद्ध हो गया और यहाँ पर ये मान्यता है कि अभी भी उस सेतु के कुछ अवशेष मौजूद है।
1: रामेश्वरम का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि भगवान राम ने स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके लिए विशेष तौर पर उत्तराखंड से गंगा जल यहाँ लाया जाता है।

0: जिले के औंढा नागनाथ, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में इस ज्योतिर्लिंग का स्थान 10वां है, लेकिन इसके स्थान को लेकर भी तमाम विवाद है।
1: शिव महापुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुक वन में स्थित है। दारुक वन नाम की वजह से इसे कई धर्माचार्य द्वारका में होने का दावा करते हैं। हालांकि श्री कृष्ण की कथाओं में गुजरात में सोमनाथ का जिक्र है, लेकिन द्वारका में नागेश्वर या दारुका वन का नहीं।
0: इस वक्त हम मौजूद है हिंगोली जिले के औंढा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, लेकिन इसके अलावा दो और ऐसे स्थान हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि वही असली नागेश्वर हैं। पहला स्थान है द्वारका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और दूसरा स्थान है अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब अलग अलग इतिहासकार हैं, पुराणों के जानकार हैं, जिनका ये कहना है कि ये दो स्थान दरअसल असली नागेश्वर हैं।
1: आपको द्वारका के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर भी ले चलेंगे, लेकिन अब ही बात हिंगोली के नागेश्वर की।
0: मेरे ठीक पीछे ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके नीचे जाकर एक प्रांगण है जहां पर छोटे से एक प्रकोष्ठ में आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा कमरे का घेरा नहीं है। एक एक करके भक्त वहां पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। बहुत जगह की कमी भी महसूस होती है, लेकिन ये भक्तों को दरअसल रोक नहीं पाता। इतनी भक्ति यहां पर आपको दिखाई देगी, हर हर महादेव का जयकारा सुनाई देगा।

0: महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थित नागेश्वर के बाद हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के नागेश्वर। दरअसल दोनों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर लंबे समय से एक विवाद रहा है। महाराष्ट्र के लोग अपने यहाँ अपने राज्य में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को मानते हैं और यहाँ गुजरात में इसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। दरअसल विवाद कुछ भी हो, दोनों ज्योतिर्लिंग की अपनी आस्था है, अपनी महिमा है और भक्तों की ये भारी तादाद इस बात की तस्दीक करती है।
1: नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के जामनगर जिले के द्वारका से करीब 18 किलोमीटर दूर है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। गुजरात में दो ज्योतिर्लिंग है, पहला सोमनाथ और दूसरा ये द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग।

0: देव को नागों का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है, नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर।
1: तो शिव भक्तों में इस नागेश्वर मंदिर की अलग ही महिमा है। माना यह जाता है कि अगर आपकी कुंडली में नाग दोष या फिर सर्प दोष है तो फिर अलग अलग धातुओं से बने नाग नागिन को अर्पित करने से इस मंदिर में आपको इन तमाम दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि दूर दराज से लाखों की संख्या में लोग अपनी कुंडली के इस दोष को दूर करने के लिए भी नागेश्वर मंदिर पहुँच रहे हैं। पश्चिमी घाट की सहयाद्री पहाड़ी पर लगभग 3,250 फीट की ऊंचाई पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मेरे ठीक पीछे इस मंदिर की चोटी आप देख सकते हैं, जो इस वक्त पहाड़ों और धुंध में घिरी हुई है, यानी कि जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो तो इस मंदिर के इर्द गिर्द नजर ही आती है, लेकिन एक अलौकिक भव्यता भी है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने में जो तमाम भक्त है उनको खींचती है।
0: हजार 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीमा शंकर को मोटे आकार की वजह से मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश के आकर्षक और विख्यात धार्मिक स्थलों में से एक है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। भीमा नदी जब परभणी पहुंचती है तो वो चंद्रप्रभा बन जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है।
1: शिव भक्तों में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर खास आस्था है। मान्यता यही है कि सुबह सूर्योदय के समय अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेकर जाप करते हैं तो आपके सभी पापों का, आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है।
0: भीमा शंकर मंदिर के गर्भगृह के सामने नंदी बाबा और कच्छप देव विराजमान है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बाईं ओर भगवान गणेश की मूर्ति है और दाईं ओर भगवान काल भैरव की मूर्ति।
1: ऐसा ही कछुआ आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में देखा था। मान्यता ये है कि इसे कृष्ण का अवतार कहा जाता है और यही वजह है कि इसका मुख जो है वो सीधे शिवलिंग की ओर होता है। मेरे ठीक पीछे आप ये पालकी देख सकते हैं, ये भी पालकी इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पर भी दान पुण्य किया जाता है। लेकिन ये देखिए भक्तों की संख्या हम आपको दिखाना चाहते हैं और ये ऐसे कई किलोमीटर दूर तक यहाँ पर है। ये देखिए भक्तों की आस्था है। कई घंटों का सफर, कई बार पैदल तय किया जाता है, कई बार आप गाड़ी से पहुंचते हैं, बस से पहुंचते हैं, दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जैसे भी हो भोले बाबा के दर्शन करना चाहते हैं लोग। उसके लिए घंटों लाइन में भी खड़ा रहना पड़े तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। वो खुशी खुशी यहाँ पर पहुंचते हैं और बहुत ही प्रसन्न मन से यहाँ पर इस भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। पड़ाव है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, नासिक जिले में स्थित त्र्यंबक गांव में बसते हैं त्र्यंबकेश्वर भगवान और मान्यता यही है कि ब्रह्मगिरी में कल कल बहती गोदावरी के उद्गम स्थल पर स्थित है ये भव्य और अद्भुत त्र्यंबकेश्वर मंदिर।
0: भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर है खास। खास इसीलिए कि ज्यादातर ज्योतिर्लिंगों में या तो सिर्फ देवों के देव महादेव हैं या फिर भगवान शिव और माता पार्वती, लेकिन त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हैं। त्र्यंबकेश्वर की ये असाधारण विशेषता है कि मंदिर में भगवान ब्रह्मा के तीन मुखी अवतार के रूप में है त्रिदेव।
1: वैसे तो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में आपको दिख जाएंगे भगवान के तीनों स्वरूप, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को यहाँ पर इस तरह से छूकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और ये ब्रह्मा के दरअसल तीनों स्वरूप इस मंदिर में विराजमान है, यही इस मंदिर की खासियत है। क्योंकि बाकी सारे ज्योतिर्लिंगों में आपको महादेव के अलग अलग स्वरूप या फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपने अपने रूपों में विराजमान दिखाई देते हैं।
0: माना जाता है कि सीधे पवित्र गोदावरी नदी का पानी शिवलिंग तक पहुंचता है, जिसे पूरे भक्ति भाव से श्रद्धालु अपने घर ले जाते हैं।
1: पानी आप देख रहे हैं, दरअसल ये गोदावरी नदी का पानी यहाँ पर आता है और फिर विलुप्त हो जाता है, और फिर आगे जाकर आपको गोदावरी नदी दिखाई देती है। यहाँ पर भी जो पानी आप देख रहे हैं, दरअसल ये अंदर जलाभिषेक के बाद भगवान शिव का पानी ऐसे प्रसाद के रूप में भक्त ले जाते हैं, लेकिन ये दरअसल भगवान ब्रह्मा के तीनों अलग अलग रूपों का एक स्थान है, जिसे हम त्रिदेव के नाम से जानते हैं।
0: त्र्यंबकेश्वर की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही समस्त प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। खास तौर पर काल सर्प शांति के लिए यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं।
1: त्र्यंबकेश्वर मंदिर में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबलि की पूजा संपन्न होती है, इसीलिए यह मान्यता है कि यहाँ पर इस मंदिर में महादेव के दर्शन से आपकी हर मान्यता पूर्ण होगी। सफर में अब हम आप पहुंचे हैं घृष्णेश्वर, जिसे घुष्मेश्वर नाम से भी जाना जाता है, और पहली बार हम आपको सीधे गर्भगृह से शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं। वैसे तो शिवलिंग कई होते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 हैं और घृष्णेश्वर का स्थान उसमें 12वें नंबर पर आता है। कहा जाता है कि शिवलिंग यानी कि ज्योतिर्लिंग जो मान्यता है जिनकी, वहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे।
2: ज्योतिर्लिंग वो पवित्र ज्योति जिसके बारे में माना जाता है कि लोक कल्याण के लिए खुद ज्योति के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों का पाप मिट जाता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है। ऐसी पवित्र ज्योतिर्लिंग की भूमि है घृष्णेश्वर, जो बेहद खास है।
1: और जैसा कि आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि दो ही ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो पूर्व दिशा में मुखी हैं, यानी कि उनकी दिशा जो है वो पूर्व की है। एक है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है महाकाल।
0: महादेव देवों के देव हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो संहार के देवता हैं, तो वो देव और मनुष्य के रक्षक भी। वो अलग अलग रूपों और नामों से 12 जगहों पर प्रकट हुए, उन्हीं में शामिल है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग।
1: घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी अपनी एक पौराणिक कथा है, इसके पीछे भी कई ऐसी मान्यताएं हैं, कई ऐसी कथाएं हैं जिनका शिव पुराण और पद्म पुराण में भी जिक्र मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं घृष्णेश्वर या फिर घुष्मेश्वर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग या फिर घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव की अनन्य भक्त घुष्मा से जुड़ी हुई है। घुष्मा की बड़ी बहन सुदेहा निसतान थी। ऐसे में जब अंक ज्योतिष से पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती, तो उसने अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से करा दी। ऐसे में उसकी बहन घुष्मा रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा अर्चना करती रही, और महादेव ने प्रसन्न होकर घुष्मा को एक सुंदर बालक का वरदान दिया।
2: लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात सुदेहा को लगा कि उसके घर और पति पर अब घुष्मा का कब्जा हो चुका है और उसकी अहमियत नहीं रही। सुदेहा के मन में कुविचार आकार लेता रहा, और उधर घुष्मा का बेटा जवान हो गया और शादी भी हो गई। कहा जाता है कि एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही जब सबको पता चला तो कोहराम मच गया, लेकिन घुष्मा हमेशा की तरह शिव भक्ति में लीन थी। कहा जाता है कि जब घुष्मा पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चली तो उसी समय उसका बेटा तालाब से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वो सदा की भांति घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा।
1: ऐसे में मान्यता ये है कि भगवान शिव स्वयं वहां पर प्रकट हुए। वो सुदेहा को दंडित करने के लिए तत्पर नजर आ रहे थे। ऐसे में सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा ने भगवान शिव से विनती की कि वो सुदेहा को माफ कर दे और लोक कल्याण के लिए वहां पर निवास करने लगे। ये दोनों विनती भगवान शिव ने स्वीकार कर ली और वो ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर पूरी तरीके से निवास करने लगे। ऐसे में मान्यता यही है कि क्योंकि घुष्मा अनन्य भक्त थी भगवान शिव की, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है।
2: जो सब पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट बांधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर को प्रणाम।

0: नर्मदा क्षेत्र में स्थित ओंकारेश्वर तीर्थ को इस जगह का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है। मान्यता यह है कि ओंकारेश्वर के दर्शन के बिना आपके ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं। इसकी एक विशेष वजह यह भी है कि नर्मदा नदी का भी अपना खास महत्व है। कहा यह जाता है कि यमुना जी में 15 दिन के स्नान से और गंगा जी में 7 दिन के स्नान से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो नर्मदा नदी में महज दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाती है।
1: ओंकारेश्वर के बारे में हम आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। चूंकि द्वीप का आकार हिंदू प्रतीक चिन्ह ओम जैसा है, यहीं से ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर पड़ा।
0: ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बाकी ज्योतिर्लिंगों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव दो स्वरूपों में विराजमान है। स्वयंभू स्वरूप में यहाँ यानी कि ओंकारेश्वर मंदिर में और दूसरा स्वरूप ममलेश्वर मंदिर जो मेरे ठीक पीछे आप वहां पर देख सकते हैं, उस मंदिर में भी अगर आप दर्शन करते हैं तभी आपके दर्शन इस ज्योतिर्लिंग के पूर्ण माने जाएंगे।
1: ओंकारेश्वर में ओम शब्द समाहित है। कहा जाता है कि सबसे पहली बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ओमकार का उच्चारण किया। वेद पाठ का प्रारंभ ही ओम से होता है। अकार उकार और मकार, अकार सतो गुण को, उकार रजो गुण को तथा मकार तमो गुण का प्रतीक है। इन्हीं तीनों शब्दों से बना है ओंकार। वहीं ओंकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर है।
0: ठीक पीछे आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये मंदिर देख सकते हैं जो ज्योतिर्लिंग में चौथे स्थान पर आता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग की अपनी खास मान्यता है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि ओंकारेश्वर के दर्शन मात्र से ही आपको सभी पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है।

0: अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। हम आ पहुंचे हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर।
1: कल कल बहती पुण्य सलीला शिप्रा नदी, धरती की पवित्रतम नदियों में कहते हैं शिप्रा में पानी नहीं अमृत बहता है। यहाँ डुबकी लगाते ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। किंवदंतियों के मुताबिक शिप्रा नदी विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुई थी। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में शिप्रा का खूबसूरत वर्णन किया है। उसी महान शिप्रा नदी के तट पर विराजते हैं महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश में स्थित ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। महाकाल की महिमा अपार है, यहाँ कण कण में आस्था है। पूरा माहौल भक्तिमय और दिव्य है।
0: वैसे तो मंदिर के कण कण में और कोने कोने में भगवान शिव की भक्ति और महिमा का वर्णन किया गया है अलग अलग तरीके से। यहाँ पर नवग्रह के द्वारा भगवान शिव की शक्ति बताई गई है। इसमें सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु, शनि, केतु, गुरु, बुध और शुक्र, ये जो नवग्रह है इनके द्वारा शिवलिंग को समर्पण दिखाया गया है। कैसे भगवान शिव की महिमा नवग्रहों पर भी रहती है ये इस मंदिर के एक हिस्से में देखा जा सकता है।
1: महाकाल मंदिर पहली बार कब अस्तित्व में आया इसे लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। पुराणों के मुताबिक इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। उज्जैन के राजा प्रद्योत के काल से लेकर ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी तक महाकाल मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं।
0: ऐसी मान्यता है कि उज्जैन के एक ही राजा हैं और वो है स्वयं महाकाल। यही वजह है कि प्राचीन काल में कोई भी राजा रात्रि में विश्राम नहीं करता था और ना ही राजा बनकर इस महाकाल मंदिर के दर्शन करने आता था।
1: उज्जैन का महाकाल मंदिर कई खासियत से भरपूर है। ये दूसरे ज्योतिर्लिंगों से विशिष्ट है।
0: महाकाल ज्योतिर्लिंग दक्षिणामुखी होने की वजह से दक्षिणामूर्ति है और इसकी यही खासियत इसे बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। इसकी जलाधारी पूर्व की तरफ है जबकि बाकी जो 11 ज्योतिर्लिंग है उनकी जलाधारी उत्तर की तरफ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 6 तरीके की आरती होती है और कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण होती है भस्म आरती। जिसने भस्म आरती नहीं देखी उसकी पूजा अर्चना अपूर्ण मानी जाती है। दूर दराज से लोग यहाँ पर सिर्फ भस्म आरती देखने के लिए पहुँचते हैं क्योंकि इसका तौर तरीका भी काफी ज्यादा अलग है।
1: पहले भस्म आरती ताजा जली चिता की राख से की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति की चिता से महादेव का श्रृंगार किया जाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बदलते वक्त के साथ इसमें भी बदलाव आया है। अब गाय के कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई भस्म से भस्म आरती होती है।

0: गए अपने अंतिम पड़ाव पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो मेरे ठीक पीछे इस भव्य मंदिर को आप देख रहे हैं। वो दरअसल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर आता है।
1: सोमनाथ मंदिर और भव्य मंदिर के शिखर पर लहराता धर्म ध्वज। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर शान से लहराता ये ध्वज सनातन के शौर्य का परचम है। ये एक धार्मिक उद्घोष है कि सनातन शाश्वत है। ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। चाहे विधर्मी आक्रांता लाख नापाक कोशिश कर ले, गुजरात का सोमनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम होने के साथ अपने में कई कहानियां और संदेश समेटे हुए है।
0: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग होने की वजह से हिंदू आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन इसके साथ ही हिंदुत्व का पुनर्जागरण का केंद्र भी रहा है। ऐतिहासिक वजह रही है इसके पीछे। कई बार आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमले किए, लेकिन ये बार बार बनकर एक भव्य तरीके से फिर से खड़ा हो गया। यानी कि हिंदुत्व के लिहाज से, हिंदुओं के लिहाज से ये ज्योतिर्लिंग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है।
1: सोमनाथ को भगवान शिव का जागृत स्थान कहा जाता है। वो यहाँ स्वयंभू रूप में मौजूद है, इसीलिए माना जाता है कि सोमनाथ का दर्शन पूजन भक्तों के तमाम कष्टों को हर लेता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र में सोमनाथ की शान में कहा गया है, जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में कृपा पूर्वक अवतीर्ण हुए, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ।
0: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग देश के पश्चिमी छोर और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण दरअसल स्वयं चंद्रदेव ने कराया था और इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। इस मंदिर की क्या पौराणिक महत्ता है, ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता, स्कंद पुराण और तमाम कई ऐसे ऐतिहासिक पुराणों में किया गया है, जो हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यताओं में काफी ज्यादा महत्व रखते हैं।
1: चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा।

सोमनाथ मंदिर के दर्शन के साथ संपूर्ण हुई। उम्मीद करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम सत्यम शिवम सुंदरम आपको पसंद आया होगा। देवों के देव महादेव सभी का कल्याण करें, इसी आशा इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर किधर,
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
0: विमल बोलो जुबां केसरी
2: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक सिंपल टिप्स एक्सपर्ट इनसाइट्स रियल कॉन्वर्सेशंस लाइफ अपग्रेड करो इजी वे वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
0: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
0: विमल बोलो जुबा केसरी
4: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का
5: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे
4: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है वाटर कैनन खत्म हो गए फायर टेंडर खत्म हो गए
6: प्रोटेस्टर हैं देखिए उनको कैसे चोट लगी है
7: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है
8: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
9: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है
4: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक
10: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है
11: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या
10: नहीं सर
11: 12th किससे की हो
10: 12th सर मेरा पीसीएम से रहा
11: कंपाउंड क्या होता
10: है बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर
11: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी तुम पूछ रहे थे ना यही है यही एक मिनट
10: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते
11: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: We are with you, friends.
1: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
2: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा। गृहमंत्री अमित शाह बोले, सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत रोकने के लिए कहा, यह पाप जनता माफ नहीं करेगी। बेंगलुरु में शिकायत दर्ज। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने सीबीआई जांच की मांग, वरना सीएम आवास का घेरा। आज राहुल गांधी और सोरेन का पुतला जलाने का प्लान। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी सख्ती। दाता सिंह वाले के पास फिर से बैरिकेडिंग, डल्लेवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च। दिल्ली दिनदहाड़े सफाई कर्मी की चाकू मारकर हत्या। कूड़ा उठाने की ड्यूटी पर निकले 27 साल के अनिल पर बदमाश ने किए ताबड़तोड़ वार। आरोपी की हुई पहचान, तलाश जारी। और भारत की आत्मनिर्भरता की बड़ी उड़ान, स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास्त्र MK3 की पहली टेस्ट फ्लाइट यूपी की टेस्टिंग एयर स्ट्रिप पर सफल। एयरफ्रेम से जेट इंजन तक सब कुछ मेड इन इंडिया।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दोपहर के 2 बजे हैं और बुलेटिन में हम 4 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो पहली खबर है वो है कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम से जुड़े विवाद के बारे में, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान के ऊपर, जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है उसके बारे में भी। साथ ही साथ आपको बताएंगे रांची में आंदोलनकारी छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ कैसे बारिश और बाढ़ ने कई राज्यों में हाहाकार मचा रखा है ये खबर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान से आरोपों पर जो जबरदस्त हंगामा और सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है उसके बारे में, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान के आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे गृहमंत्री ने अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम के सम्मान को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी पहल की, लेकिन ये पहल सोनिया गांधी को रास नहीं आई।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
0: 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी एक शख्स को इशारा करती हुई नजर आई थी। इन तस्वीरों के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आरोप है वंदे मातरम के अपमान का। बीजेपी के हमले तेज हैं और सियासत बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस पर हमले के साथ ही साथ बीएचपी भी इस विवाद में उतर पड़ी है।
2: मौका स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ का था। कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण हुआ, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गाना हुआ, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो बड़े सियासी विवाद की वजह बन गया। तस्वीरों में देखिए और समझिए कि कैसे जश्न आजादी के बीच इस विवाद की शुरुआत हुई। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का गाना हो रहा है। इसी दौरान सोनिया गांधी वहां मौजूद एक शख्स को कुछ इशारा करती हैं। और इन्हीं तस्वीरों को साझा कर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर देती है। बीजेपी का आरोप है कि वंदे मातरम के गान पर सोनिया गांधी बेहद नाराज हुई और कार्यकर्ता से इसे रोकने को कहा।
3: कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए, और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। ये मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है, जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं, जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देशहित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा।
4: कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो बस।
2: राष्ट्रगीत वंदे मातरम में कुल 6 अंतरे हैं जिसमें से 2 ही अंतरे गाए जाते रहे हैं, लेकिन अब नए प्रोटोकॉल के मुताबिक वंदे मातरम की 6 अंतरे गाने की बात कही गई है। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के अंतरे तो पूरे गाए गए, लेकिन इस तस्वीरों पर नया सियासी बखेड़ा शुरू हो गया।
5: जब वंदे मातरम के मूल स्वरूप को गाया जा रहा था, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म कर दिया था, हटा दिया था, उसके गाने पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी स्पष्ट रूप से असहज दिख रहे थे, आपस में वंदे मातरम को खत्म करने के लिए हिलजुल करते नजर आए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है, यह उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
6: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखे।
2: बीजेपी के हमलों के बीच वंदे मातरम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के खिलाफ हमलों में अब वीएचपी भी उतर पड़ी है और विवाद की आंच मुस्लिम लीग तक पहुंच गई है।
7: थोड़ी देर के लिए वंदे मातरम सहन नहीं हुआ। हमें लगता है कि कांग्रेस को शायद 1937 का वो दृश्य याद आ गया जब इन्हीं के पूर्वजों ने और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उसके षड्यंत्रों का शिकार होकर के वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे। आज ये तीनों की तीनों मिलकर के अपने मुख्यालय में जिस तरह से इन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है, निस्संदेह इनको क्षमायाचना करनी चाहिए।
2: बीजेपी इस मुद्दे पर जिस तरह से आक्रामक है उससे साफ है कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम को लेकर छिड़ा विवाद आसानी से शांत होने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: वंदे मातरम के अपमान के आरोपों के बीच कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ मंगलुरु में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। और आपको बता दें कि बीजेपी नेता विकास पुत्रू ने मंगलुरु के उर्वा पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की गई है। तो अलग अलग जगहों पर अब जो नाराजगी है वो नजर आने लगी है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान से पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और आपको बता दें कि मंगलुरु में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है सोनिया गांधी के खिलाफ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द के इस्तेमाल ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया। इसे लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच हमले तेज हो गए हैं।
8: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
9: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक ऐसे शब्द का जिक्र किया जो देश विरोधी सोच रखने वालों पर सबसे करारा प्रहार था। जिस शब्द के बहाने निशाने पर थे विकास का रास्ता रोकने वाले, विकसित भारत के सपनों में बाधा बनने वाले, ये शब्द था दिमागी नक्सल।
8: जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं।
9: साल 2027 तक देश को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया तो संदेश साफ था कि विकास विरोधी सोच किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। लेकिन दिमागी नक्सल वाले पीएम मोदी के इस बयान पर सियासत उबलते देर नहीं लगी। विपक्ष हमलावर हुआ, आरोप लगाया कि शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले हैं।
10: जो लोग भारत की हर विकास यात्रा पे प्रश्न चिन्ह लगाए, भारत के गौरव पे प्रश्न चिन्ह लगाए, भारत विरोधी ताकतों से विदेशों में जाकर छुप छुप के मिले, भारत के जो शत्रु देश है उनसे फंडिंग ले, वो लोग भारत के विरोध में है, भारत की विकास यात्रा के विरोध में है, विकसित भारत के संकल्प के विरोध में है। उन लोगों का जो वैचारिक जो मत है वो भारत के विरोध में है।
11: पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
9: विपक्ष के हमले तेज हुए तो पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी इस सियासी जंग में उतर पड़े। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद को भी दिमागी नक्सल बता दिया। यह पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया करते थे, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
12: ये वही लोग हैं जब एक प्रदूषण के सिलसिले में और वहां पर इंडिया गेट पर प्रदर्शन हो रहा है तो कह रहे हैं एक हिडमा मारोगे तो हर घर घर हिडमा निकलेगा। ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवर ग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन ये जो दिमागी नक्सल ये अर्बन नक्सल्स हैं।
13: प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे दिमागी नक्सल जैसी कोई नई श्रेणी बनाकर ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सरकार से असहमति, सरकार की आलोचना, किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
9: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। आज तक ब्यूरो,
8: इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
0: आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रांची छात्र आंदोलन के बारे में, क्योंकि जेपीएससी के छात्र अब आर पार के मूड में आ चुके हैं। छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। 3 हफ्ते से आंदोलन जारी है, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव, 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा, पुतला दहन की आज तैयारियां हैं और 20 अगस्त को तैयारियां हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास घेरने की। तो जेपीएससी छात्रों ने कल रांची में तिरंगा यात्रा निकाली थी और आज पूरे झारखंड में पुतला दहन करने का ऐलान कर दिया गया है। कल छात्रों की तिरंगा यात्रा को लेकर देवेंद्र महतो और पुलिस के बीच में खींचतान भी हुई थी, क्योंकि महतो अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन वो जबरदस्ती तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे और पुलिस ने उन्हें रोक लिया।
9: ये तस्वीरें 15 अगस्त की है। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। पुलिस महतो को वापस कमरे में ले जाने की कोशिश कर रही थी। महतो और उनके समर्थक अस्पताल से बाहर निकलना चाहते थे, देखते ही देखते बात धक्का मुक्की और खींचतान तक पहुंच गई। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
14: झंडा फहराने से रोका जा रहा
15: है। नहीं लगी
14: ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है।
9: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
16: स्टार्वेशन का इतना साइन सिम्टम है तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
9: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने पीने के नाम पर सिर्फ पानी। लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही, सभी डॉक्टरों की निगरानी में है। उधर अस्पताल में महतो पुलिस से उलझे तो अस्पताल के बाहर हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। 15 अगस्त को देवेंद्र नाथ महतो के बिना ही रांची में तिरंगा यात्रा निकली और आंदोलन को अब आर पार की लड़ाई में बदलने का ऐलान कर दिया गया।
17: तारीख को विधानसभा का घेराव झांकी था, सीएम आवास बाकी है। 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे।
9: मांग साफ है कि जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाएं रद्द हों। छात्र कह रहे हैं कि इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा।
17: और 11-13 जेपीएससी को लेकर के रद्द मतलब रद्द, जेपीएससी 11-13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच, और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें।
9: सवाल सरकार से भी है, अगर सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है तो छात्र सड़क पर क्यों है, और अगर बातचीत हो रही है तो आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है?
18: कि राहुल गांधी जी ने ऑडियो कॉल पर हम लोग से बात किए कि हम आपके साथ है, ये ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल खेलना बंद करें। अगर आप छात्रों के साथ है तो छात्र

0: पहुंचे, नहीं तो हम तमाम छात्र जितनी मजबूती के साथ हेमंत सोरेन का विरोध कर रहे हैं उससे ज्यादा मजबूती के साथ आपका विरोध करेंगे।
1: छात्रों के निशाने पर राहुल गांधी भी हैं। आरोप है कि राहुल गांधी ने छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगों पर कोई समाधान नहीं निकला। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव, 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा और अब अगला निशाना मुख्यमंत्री आवास है। 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास घेरने की तैयारी में है। यानी झारखंड में छात्र आंदोलन अब सड़क से सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुका है और दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आकाश कुमार, रांची, आज तक।
2: झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने अब सीएम सोरेन को खुली चुनौती दे डाली है। वहीं दूसरी तरफ सीएम सोरेन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आश्वासनों को कब तक छात्र मानते रहेंगे, उनकी बात सुनी कब जाएगी।
3: झारखंड में छात्रों का आंदोलन तेज, क्या होगा अगला कदम? क्या सरकार और छात्रों के बीच बढ़ेगा टकराव? क्या 20 अगस्त को आंदोलन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेगा? क्या छात्रों के अल्टीमेटम से सरकार पर बढ़ेगा दबाव? झारखंड में जीपीएससी जीएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अब आंदोलनकारी छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया है। छात्रों ने जीएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई।
4: हमारी जो मांग है जीएसएससी सीजीएल को लेकर के और 11 टू 13 जेपीएससी को लेकर के, रद्द मतलब रद्द, जेपीएससी 11 टू 13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच। 20 तारीख तमाम झारखंड के छात्रों से, अभिभावकों से, सभी से हम यह आह्वान करते हैं, आइए कल से ही आना शुरू कीजिए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती 20 तारीख तब तक हम सीएम आवास से नहीं उठने वाले हैं। 20 तारीख को सीएम आवास घेरने का ऐलान जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच कर रहा है।
3: रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग खुलकर सामने आई है।
4: माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, यह मंच पहली बार यह मांग कर रहा है कि अगर आपसे सीजीएल और 11 टू 13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दें।
3: युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मामले में छात्रों ने सरकार से जवाबदेही तय करने के साथ साथ ठोस कार्रवाई की मांग की है। वहीं छात्रों ने आंदोलन को और तेज करने की तैयारी कर ली है। छात्रों ने राज्य के सभी 24 जिलों में सीएम सोरेन समेत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पुतले फूंकने का ऐलान किया है।
0: पुतला दहन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होने वाला है और जो उनको समर्थन दे रहे कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी का भी 2400 जिला में पुतला दहन करने वाले।
3: इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने और उनकी मेहनत को व्यर्थ न जाने देने का वादा किया।
5: विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है। सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके।
3: छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने छात्रों की मांगे नहीं माने जाने पर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी है। झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। छात्रों के द्वारा दिए गए 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव के अल्टीमेटम पर सभी की निगाहें रहेंगी। उससे पहले सोरेन सरकार छात्रों की समस्या का हल निकाल पाती है या नहीं, ये भी चर्चा का विषय बना रहेगा। आज तक ब्यूरो।
2: और यह खबर है दिल्ली के कल्याणपुरी से, जहां दिनदहाड़े एक सफाई कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि

0: कर्मचारी रोज की तरह अपने काम में व्यस्त था, तभी अचानक से एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने चाकू से वार करना शुरू किया और कई बार लगातार वार करता गया। ये पूरी की पूरी घटना पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज में सफाई कर्मचारी काम करता हुआ नजर आता है और अचानक से हमलावर उस पर हमला बोल देता है। घायल कर्मचारी को तुरंत ही लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हुई है अनिल के रूप में, खोड़ा कॉलोनी का वो रहने वाला था। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और तलाश उसकी शुरू कर दी गई है। वहीं सफाई कर्मचारी की हत्या से गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने और परिवार वालों ने अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है।
1: दिल्ली के कल्याणपुरी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 26 वर्षीय अनिल, जो कि एमसीडी में सफाई कर्मचारी था, आज सुबह अपने घर से ड्यूटी करने के लिए निकलता है। वहीं काम पर ही अचानक से करीब 7:30 बजे एक आदमी उसके पास आता है और उसे चाकू मार देता है। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आक्रोश है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस वक्त मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के मॉर्चरी के बाहर खड़ा हूं, और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो सफाई कर्मचारी जो इस पूरे इलाके के हैं, एमसीडी के हैं, उन्होंने अपना काम इस वक्त रोक दिया है और यहां आकर के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर तस्वीरों में आप देखें तो भारी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहां पर हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, जो विक्टिम है अनिल, उसे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल पाए। अभी कुछ समय में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि जो अक्यूज है उसे आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि अभी जो अक्यूज है इस पूरे मामले का, उसे उस सीसीटीवी के जरिए आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन मोटिव क्या है इसकी तफ्तीश अभी करनी बाकी है और अक्यूज अभी तक पुलिस के हिरासत में नहीं आया है।
0: और आपको बता दें कि भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में एक स्वदेशी सैन्य ड्रोन बनाया गया है। निजी डिफेंस कंपनी ने इसे विकसित किया है। कंपनी की माने तो ये भारत का पहला ऐसा ट्विन मिन्यूशन है जिसमें पूरी तरह स्वदेशी जेट इंजन लगा दिया गया और पहली उड़ान में इसने सारे लक्ष्य भी हासिल कर लिए। इस सिस्टम को विकसित करने का काम इसी साल शुरू हुआ था और बहुत ही कम समय में पहला ट्रायल पूरा कर लिया गया।
2: कानपुर में दिव्यास मार्क 3 एक सफल उड़ान भरी है, जिसमें स्वदेशी जेट पावर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी इंजन और सिस्टम के जरिए दिव्यास मार्क 3 का सफल परीक्षण हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर लोटिंग मिशन की बात की जाए तो हाल के दिनों में इसका काफी इस पर चर्चा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इसका इस्तेमाल किया दुश्मन के खिलाफ। ये एक ऐसा हथियार होता है जो दुश्मन के टारगेट पर कुछ समय मंडराने के बाद उस पर हमला कर देता है। इस वक्त दुनिया में अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो रहा है और आने वाले दिनों की जो युद्ध की तैयारियां हैं वो स्वदेशी हथियारों के दम पर लड़ने की बात की जा रही है। ऐसे में दिव्यास मार्क 3 की ये सफल परीक्षण कई मायनों में खास है। दिल्ली से मजीद नेगी आज तक।
0: और अब बात करेंगे कानपुर की, जहां 16 रुपए के ऑफर के लिए पूरा मोहल्ला ही टूट पड़ा। हालत यह हो गई कि आधी रात को भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात करनी पड़ी और तब जाकर यह मामला शांत हो पाया।
3: ये अफरा तफरी, ये भागम भाग, ये हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि कानपुर में 16 रुपए वाला ऑफर आया है। मुफ्त में मिले कुछ भी लूट लो, सस्ता मिले तो झोला भर लो, बिना परवाह किए कि भीड़ में कुछ अनहोनी हो गई तो। जिकानपुर के अनवरगंज का आलम कपड़ा बाजार है। किसी व्यापारी ने ऐलान किया कि 16 रुपए में 16 मिनट में जो चाहे खरीद लो। ऑफर सिर्फ 16 मिनट के लिए था, लेकिन ऑफर वाला मैसेज इतनी तेजी से फैला कि हजारों की भीड़ कानपुर के आलम कपड़ा वाले की दुकान की ओर दौड़ पड़ी।
4: हिंदुस्तान में फ्री की चीज मिले और कोई डिस्काउंट का ऑफर हो जाए तो जनता किस कदर पागल होती है, इसका नजारा आज कानपुर में देखने को मिला। जहां कानपुर में कपड़े की होजरी मार्केट की बहुत बड़ी मार्केट है, आलम मार्केट, यहां एक दुकानदार है रईस आलम। इनकी 4 मंजिल मार्केट बनी हुई है। इनके बेटे का बर्थडे था, हालांकि 15 अगस्त को छुट्टी थी, फिर भी इन्होंने अपने बर्थडे बेटे के बर्थडे के ऊपर एक ऑफर रखा कि 11:59 पे अपनी दुकान खोलेंगे और यहाँ 16 रुपए में जो भी व्यक्ति आएगा उसको 16 रुपए में जो सामान मांगेगा दे देंगे।
3: दरअसल कपड़ा कारोबारी रईस आलम के बेटे का जन्मदिन था। जैसे ही रात के 11:59 पर हुए तो अचानक उसने 16 रुपए वाला ऑफर शेयर किया। देखते ही देखते ये मैसेज वायरल हुआ, हजारों की संख्या में लोग इसकी दुकान की ओर भागे। अचानक इतनी भीड़ आ जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था।
5: ऑफर था 16 रुपए में, कुछ भी दे रहे हो 16 रुपए में भर के झूला ले जाओ।
4: कितनी भीड़ हो गई थी?
5: बहुत भीड़ थी।
4: कैसे कंट्रोल हुई भीड़?
5: सब प्रशासन कंट्रोल करी जी। हाँ, भगदड़ मची, प्रशासन कंट्रोल करी। ये सब अफवाह फैलाने से अच्छा क्या है।
4: एक अच्छी बात कर रहे हैं कि अफवाह फैलाने से क्या है, लेकिन फिर भी जनता आ जाती है। एक सबसे और, क्या नाम है आपका?
6: जाहिद।
4: क्या ऑफर था भाई?
6: जाहिद, इसमें जो ऑफर था 16 रुपए में भर के झोला, क्या लंबाई का ऑफर था? बेवकूफ बनाया।
7: आलम मार्केट में आलम की दुकान के नाम से प्रचलित दुकान है। इनके यहाँ बर्थडे किसी लड़के का था, उस पर इन्होंने ऑफर दिया था कि 16 मिनट में आइए, 16 रुपये में कपड़े ले जाइए। और इन्होंने उस चीज़ को वायरल कर दिया, जिससे यहाँ पे काफ़ी जनता आ गई थी। और काफ़ी भीड़ होने के नाते हम लोग आए, पुलिस वाले आए, तो उनके द्वारा दुकान को बंद कर दिया गया, सभी लोग चले गए हैं। अब यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है और इनके विरुद्ध वैधानिक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
3: 16 रुपए के ऑफर के चक्कर में जब भीड़ जमा हुई तो दुकानदार शटर गिराकर भाग लिया। पुलिस ने इसे गंभीर मामला मानते हुए रईस आलम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही, क्योंकि आधी रात को आया अचानक इस ऑफर से पूरे इलाके की व्यवस्था हिल गई थी। रंजय सिंह, कानपुर आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: इन एसोसिएशन विद
3: E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
4: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
5: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
6: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
5: नहीं सर।
6: 12th किससे की हो?
5: 12th सर मेरा PCM से रहा।
6: कंपाउंड क्या होता है?
5: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
6: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
5: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
6: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मातृत्व विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा। गृहमंत्री अमित शाह बोले, सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत रोकने के लिए कहा, यह पाप जनता माफ नहीं करेगी। बेंगलुरु में शिकायत दर्ज। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग, वरना सीएम आवास का घेराव। आज राहुल गांधी सोरेन का पुतला जलाने का प्लान। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी सख्ती। दाता सिंह वाला के पास अब फिर बैरिकेडिंग, डल्लेवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च। दिल्ली में दिनदहाड़े सफाईकर्मी की चाकू मारकर हत्या, कूड़ा उठाने की ड्यूटी पर निकले 27 साल के अनिल पर बदमाश ने किए ताबड़तोड़ वार, आरोपी की पहचान हुई, तलाश जारी। और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बड़ी उड़ान, स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास्त्र MK3 की पहली टेस्ट फ्लाइट यूपी की टेस्टिंग एयर स्ट्रिप पर सफल। एयरफ्रेम से जेट इंजन तक सब कुछ मेड इन इंडिया।
1: लाठी मारे छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है।
2: नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है।
3: हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं।
2: एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं।
1: इनके लिए धर्म, धनी धर्म है सबसे बड़ी चीज।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। और अब बात करेंगे जेंजी वोटर्स के बारे में, जिन पर अचानक से हर पार्टी का फोकस बढ़ चुका है। जंतर मंतर से प्रदर्शन के बाद यूपी चुनाव जेंजी की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है, और इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं।
4: जंतर मंतर आंदोलन की इन तस्वीरों ने देश की सियासत की रणनीति को और नए सिरे से गढ़ने पर हर पार्टी को मजबूर कर दिया है। धर्म और जाति के समीकरण पर अब जेंजी की इक्वेशन भारी नजर आ रही है। जेंजी पर जारी घमासान के बाद अब पहली बड़ी परीक्षा यूपी का विधानसभा चुनाव है, जहां सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या रील और सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीर मतदान में तब्दील होगी। लेकिन इसे लेकर कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेंजी की इस ताकत को समझ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर उनके आज 15 अगस्त के भाषण में भी देखने को मिली।
2: जेंजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं।
4: योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया और छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश की।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं।
5: Thank you. के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
4: यूपी चुनाव के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी तस्वीरें ग्राउंड से भी नजर आ रही हैं। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जा रही हैं। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी, विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
6: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद?
7: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
4: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनाव में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा हो, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
8: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
4: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईटी की तैयारी करने वालों को आईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
5: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
4: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, वहाँ भी जीताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
9: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते दो एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
4: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
9: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है?
10: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेनजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। कर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेनजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
4: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेनजी को मिल रहे समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर सता रहा है।
9: खबर ये भी है कि जेनजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेनजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेनजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेनजी के पिता के नाम से, यानी कि जेनजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
4: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: इस देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से अब युवा वोटर्स की याद आने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं का वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है और क्या युवा वोटर सरकारों को गिराने और बनाने का दमखम भी रखते हैं? इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है।
11: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेनजी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
9: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि आखिर जेनजी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेनजी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि जेनजी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेंजी चौपाल, जेंजी तिरंगा यात्रा और जेंजी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
11: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेंजी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेंजी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेंजी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेंजी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेंजी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेंजी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेंजी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है, और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही हैं। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान, तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेंजी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेंजी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेंजी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
12: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
9: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेंजी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेंजीज को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है, ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
11: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4,131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में है 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक हैं, तीनों बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2-2 जेंजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहां ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
16: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
17: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
18: मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहाँ पर खड़े थे वो, और धूप काफ़ी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए, सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए। तो बस इतनी बात थी। उसी को एक, जिसको कहते हैं तिल को ताड़ बनाना, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, हर चीज़ को कभी बात खड़ा करना, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी लाना। तो हकीकत ये थी कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी के लिए एक व्यवस्था करना चाह रही थी ताकि वो गिर ना जाएं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कथित अपमान के आरोपों को लेकर सियासी घमासान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए देश से माफी मांगने के लिए कहा है। बीजेपी का आरोप यह है कि 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी एक शख्स को इशारा करती नजर आई, जिसके बाद बीजेपी ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि राष्ट्रगीत का अपमान किया ही नहीं गया।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

वंदे मातरम विवाद पर अमित शाह बोले, सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत रोकने को कहा, यह पाप जनता माफ नहीं करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह अपराध है। बंकिम चटर्जी के परिवार ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग, वरना सीएम आवास का घेराव करेंगे आज राहुल गांधी और सोरेन का पुतला जलाने का प्लान। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ गई है सख्ती। दाता सिंह वाला के पास फिर से बैरिकेडिंग, डल्लेवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च। दिल्ली में दिनदहाड़े सफाईकर्मी की चाकू मारकर हत्या, कूड़ा उठाने की ड्यूटी पर निकले 27 साल के अनिल पर बदमाश ने किए ताबड़तोड़ वार, आरोपी की पहचान हुई, तलाश जारी। और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बड़ी उड़ान, स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास्त्र NK3 की पहली टेस्ट फ्लाइट टेस्टिंग एयर स्ट्रिप पर सफल, एयरफ्रेम से जेट इंजन तक सब कुछ मेड इन इंडिया।

गुजरात के खेड़ा में पुल ढहा, दो गांवों का संपर्क टूटा, पिलर के नीचे मिट्टी का भारी कटाव बना, हादसे की वजह कोई हताहत नहीं। सूरजपुर में 10 करोड़ का पुल बारिश में बह गया, निर्माण की गुणवत्ता पर उठाए गए सवाल। रात भर हुई बारिश के बाद धौंदा नदी पर बना हुआ पुल ढह गया था, दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर में भारी भूस्खलन, यातायात ठप, पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से वाहनों की लंबी कतार, रास्ता डायवर्ट किया गया। अम्बाला में भारी बारिश के बाद जलभराव की खबर, शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी ही पानी, जनजीवन प्रभावित। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, पहाड़ों में भारी बारिश के बाद बढ़ गया है नदियों का जलस्तर, घाटों पर असर शुरू। मुजफ्फरपुर में बस स्टैंड में खड़ी हुई बस में भीषण आग लगी, मच गई थी अफरा तफरी, सभी यात्री सुरक्षित। चमोली हादसे में एचसीसी मजदूरों ने किया आपदा प्रबंधन मंत्री का घेराव, कंपनी प्रबंधन से मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। पीपलकोटी टनल हादसे में मुआवजे की मांग पर श्रमिकों का मंत्री से सवाल, जमकर की गई नारेबाजी। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत हुई, एक लापता, प्रशासन साइट पर रेस्क्यू जारी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हसदेव बांगो बांध का बढ़ गया जलस्तर, प्रबंधन ने एहतियातन खोले 7 गेट। राजौरी पुंछ हाईवे पर लैंडस्लाइड से मचा हड़कंप, बीआरओ ने मलबा हटाने का अभियान तेज किया। बारिश के बाद शिमला का दिलकश नजारा, ड्रोन के कैमरे में कैद हुई खूबसूरत तस्वीरें, कोहरे की चादर में लिपटी मशोबरा की पहाड़ियां। असम के गुवाहाटी में जमकर बारिश हुई, शहर के कई इलाकों में जलभराव ने रोकी है वाहनों की रफ्तार। सिक्किम में भी भारी बारिश के बाद भूस्खलन ने लोगों की चिंता को बढ़ाया, ग्यालशिंग के प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तत्काली सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए। रेवाड़ी में बारिश का कहर, सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हुई, बाजरे की फसल खराब हो जाने पर किसानों ने खड़ी हुई फसल पर ट्रैक्टर चलाया। दिल्ली एनसीआर में अगले दो दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के साथ ही अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान। मौसम विभाग की ओर से आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश की चेतावनी, पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी ऐसा नजर आएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 21 अगस्त तक कई जगहों पर बारिश के अनुमान है, उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में भी मॉनसून एक्टिव है, 21 अगस्त तक कई हिस्सों में गरज और चमक के साथ हो सकती है बारिश। समंदर में तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम, आईएमडी ने 20 अगस्त तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वाराणसी में रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी मैगी तो फूंक दी कार, जमकर तोड़फोड़ की गई और मारपीट भी, 10 से 12 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तूतीकोरिन में दोपहिया शोरूम में भीषण आग लगी, दमकल विभाग की टीमों ने आग बुझाने में कामयाबी पाई। मथुरा में बेकाबू डंपर ने लोगों को रौंद डाला, 2 की मौत हुई, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कानपुर में बेटे के जन्मदिन पर दुकानदार की 16 रुपए की सेल ने भगदड़ मचाई, हजारों लोगों की भीड़ दुकान पर उमड़ पड़ी थी। सहारनपुर में 30 फीट गड्ढा धंसा, मलबे में दबकर पिता और पुत्र की मौत हुई, ईंट निकालते वक्त हादसा हुआ। दिल्ली के कल्याणपुरी में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी, दिनदहाड़े युवक को मारा गया था चाकू, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सुरेंद्रनगर में तीर्थयात्रियों और सिक्योरिटी के बीच झड़प हुई, मारपीट में एक श्रद्धालु के घायल होने की खबर। सुरेंद्रनगर में अस्पताल में महिला की मौत को लेकर डॉक्टर्स पर लापरवाही के लगे हैं आरोप, गुस्साए लोगों ने किया बवाल। अल्मोड़ा में शमशान घाट में टेबल टेनिस खेलने को मजबूर हैं बच्चे, उत्तराखंड खेल मंत्री की खेल सुविधाओं पर उठाए गए सवाल। लातेहार में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत हुई, एक कंटेनर वाहन ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी थी, उसके बाद सवारी टेम्पो को भी टक्कर मारी। लखनऊ के तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 2 घंटे की मशक्कत के बाद बुझा पाए। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत। सूरत के बीच पर शराब पार्टी का भंडाफोड़ हुआ, 22 लोगों की गिरफ्तारी, महंगी कारें और सामान भी जब्त किए गए। हिमाचल के हमीरपुर में डॉक्टर राजेंद्र कंवर ने 80 करोड़ रुपए की संपत्ति राज्य सरकार को दान दे दी है, लोगों के लिए मिसाल बने। करनाल में बड़ा हादसा, हाई टेंशन तारों से टकराया श्रद्धालुओं से भरा हुआ टैंकर, 12 लोगों से ज्यादा झुलस गए हैं, वाहन में आग लग गई थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया खास वीडियो, बोले रोज सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। लाल किले के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके दोस्त पहुंचे थे। राजस्थान के निम्बाहेड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर किया प्रतिमा का अनावरण। वंदे मातरम के अपमान के आरोपों पर सियासी संग्राम जारी, अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, चित्तौड़गढ़ में बोले वंदे मातरम के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल सोनिया गांधी को रास नहीं आई। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी, अमित शाह बोले अटल जी ने जीवन का एक एक क्षण देश की सेवा को समर्पित किया। शिवराज सिंह चौहान ने वंदे मातरम विवाद पर बयान दिया, बोले भारत माता की वंदना में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का मंत्र था, राष्ट्रभक्ति का पर्याय है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी, बोले असाधारण राजनेता और दूरदर्शी नेता थे अटल जी, उनका सुशासन और जल कल्याण का विजन हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत राष्ट्रीय नेताओं ने अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर किरण रिजिजू ने श्रद्धांजलि दी, बोले अटल जी हमारे दिलों में, विचारों में और संस्कारों में सदैव जीवित रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई अन्य नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पी चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस पोस्ट के बाद दिमागी नक्सल शब्द को लेकर चर्चाएं तेज। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद खनौरी बॉर्डर पर सख्ती, हरियाणा पुलिस ने दिल्ली जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद किया। जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसानों का पैदल मार्च, की गई बैरिकेडिंग, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने किया है दिल्ली कूच का ऐलान। पश्चिम बंगाल के पूर्व डेप्यूटी स्पीकर आशीष बनर्जी मृत मिले, टीएमसी कार्यालय में फंदे से लटका मिला शव, मिला सुसाइड नोट। ममता बनर्जी के करीब आशीष बनर्जी का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी। कर्नाटक लोक भवन आज से 18 अगस्त तक आम लोगों के लिए खोला गया, जनता कर सकेगी भ्रमण। प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है, कहा स्वतंत्रता दिवस के मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के कामों का श्रेय लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा यह उनकी हताशा को स्पष्ट करता है। अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा आत्मविश्वास की कमी, घबराया हुआ और डगमगाता हुआ प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेंजी के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए कहा कि यह देशद्रोह नहीं है, सरकार की नीतियों ने युवाओं को अंधी गली में धकेला। बेंगलुरु में बीजेपी नेता सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज करवाई गई है शिकायत, वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने गाने में किसी भी तरह की बाधा डालने के उनके आरोपों को खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा वंदे मातरम का अपमान भारत का अपमान है, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी दिए प्रतिक्रिया, कहा हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं लेकिन किसी को भी इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस खुद को इतनी बड़ी पार्टी बताती है लेकिन वो वंदे मातरम का गायन भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। खड़गे ने कहा आजादी का असली मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति ही नहीं है बल्कि गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय और डर से भी आजादी है। खड़गे ने सरकार पर नफरत फैलाने वाले अभियान चलाने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान को देश की समृद्धि और शांति के लिए जरूरी बताया। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकार को शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए चेतावनी दी, कहा इस घपले को ठीक करो वरना उन्हें भी दोबारा विरोध करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया, कहा यूपी में सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन शुरू होगी और 40,000 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव न लड़ने के बारे में जग्गा रेड्डी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, कहा अगर राहुल गांधी राम है तो जग्गा रेड्डी हनुमान माननी पड़ेगी बात। राहुल गांधी ने 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी की विकृत मानसिकता है, बलात्कारियों अपराधियों को बचाती है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा गंभीर आरोप भी लगाया, उन्होंने कहा रिसोर्ट में अंकिता के कमरे को जांच से पहले ही गिरा दिया गया था। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर से संघ को कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि संघ बताए कि उसने देश के किस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा क्या संघ
50 ऐसे नाम बता सकता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी हो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, 6 आईडी और गोला बारूद बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन और तेज हुआ। जेपीएससी जेएसएससी सुधार मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला फूंकने का भी ऐलान किया है। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं छात्रों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। सदर अस्पताल में 5 दिनों से भर्ती देवेंद्रनाथ बहतो की भूख हड़ताल जारी है। 14वें दिन भी उन्होंने अस्पताल के अपने बेड को छोड़कर कॉरिडोर की जमीन पर लेटकर धरना जारी रखा है। भूख हड़ताल कर रहे छात्र एक्टिविस्ट देवेंद्रनाथ महतो की 15 अगस्त को रांची के सदर अस्पताल में पुलिस के साथ झड़प हुई थी। तिरंगा यात्रा में जाने की मांग कर रहे थे। विधायक टाइगर जयराम महतो ने इस मुद्दे को लेकर सोरेन सरकार को घेरा, कहा पूरे मामले को विधानसभा के माध्यम से उठाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनालॉग डेयरी के उत्पादों के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पनीर, घी, क्रीम, छेना और खोया समेत तमाम एनालॉग डेयरी उत्पाद शामिल हैं इसमें। निरीक्षण के दौरान कई नमूनों में अलग अलग तरह की मिलावट पाई गई थी और कई जिलों में दूध और दूध के उत्पादों में भी मिलावट पाई गई। बंगाल के कूचबिहार में संदिग्ध आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ का दावा है कि भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे जा रहे थे, नकली नोट भी बनाया करते थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि लोगों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ ये संपर्क में थे और अदालत ने तीनों को ही 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र में कमर्शियल वाहन चालकों के लिए मराठी बोलना अनिवार्य करने वाला नियम आज से लागू हो गया है। नलसर विवाद के बीच बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने लॉ स्टूडेंट से माफी मांगी। बोले अहंकार का सवाल ही नहीं, यदि कानून के छात्रों की भावनाएं आहत हुई है तो मुझे खेद है। छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने यूपी में बुलडोजर एक्शन की तारीफ की। सीएम योगी ने दिया दिलचस्प जवाब, कहा गा नहीं सकता मैं, गलत लोगों पर बुलडोजर चलवा सकता हूं। आसनसोल में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई, झड़प में 14 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। जून 2026 की प्रोविजनल आंसर सीट जारी की गई, 18 अगस्त 11 बजे तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका है। यूपी के झांसी में व्यापारी को गोली मारने वाले 4 बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया, गोली लगने से चारों ही बदमाश घायल हुए। भारत श्रीलंका के बीच गोल्ड टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन के स्कोर 288 रन पर 2 विकेट से आगे खेलना शुरू करेगी टीम इंडिया। श्रीलंका के मैदान में कल खराब रोशनी के चलते 73 ओवर का हुआ था मैच। देवदत्त पडिक्कल के साथ ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद। पहले दिन कल देवदत्त पडिक्कल ने 178 गेंदों पर 131 रन की पारी खेली थी। देवदत्त ने जड़ा करियर का पहला शतक। कल शानदार बैटिंग कर रहे केएल राहुल क्रैम की वजह से 77 रन पर हो गए थे रिटायर्ड, 27 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत। गोल्ड टेस्ट के पहले दिन बारिश के चलते 2 बार रोका गया था मैच, मुकाबले पर आज भी बारिश का साया। विमेन्स हॉकी विश्व कप में आज चीन से होगा भारतीय टीम का मुकाबला। नीदरलैंड्स के वेगनर स्टेडियम में शाम 4:30 बजे से मैच। वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें स्थान पर काबिज टीम इंडिया का सेकंड रैंकिंग वाली चीन की टीम के साथ होगा मुकाबला। पहले मैच में जीत के साथ सफर शुरू करने की होगी चुनौती। विमेन्स हॉकी विश्व कप में चीन के साथ भारतीय टीम का पहला मुकाबला हो गया है। अगले महीने होने वाले एशिया कप में भी दोनों ही टीमों की भिड़ंत होगी। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे, संजय ने पेनल्टी पर गोल करके टूर्नामेंट में भारत के लिए खाता खोला। उज्जैन में कुमार विश्वास ने महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुए। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही शुक्रवार को रिलीज हुई आवारापन 2 और बटवारा 1947 दो दिनों में बंपर कमाई। पहले दिन आवारापन 2 से पिछड़ रही थी सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947, शनिवार को कमबैक किया, 2 दिनों में 19 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 15 अगस्त के दिन बटवारा 1947 के कलेक्शन में 60% का उछाल, फैंस कर रहे हैं सनी देओल और प्रीति जिंटा के दमदार अभिनय की तारीफ। सिल्वर स्क्रीन पर जोरदार टक्कर है, दोनों फिल्मों को मिलेगा वीकेंड का फायदा।

अब आर पार के मूड में आ चुके हैं। छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। 3 हफ्ते से आंदोलन जारी है। 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव, 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा और आज पुतला दहन अभिनय। ये भी बता दें कि 20 अगस्त को साफ कर दिया गया छात्रों की तरफ से कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास

0: खराब है, लेकिन जबरदस्ती तिरंगा यात्रा में वो शामिल होना चाहते थे क्योंकि उनका बार बार कहना था कि वो सही महसूस कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
1: ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। पुलिस महतो को वापस कमरे में ले जाने की कोशिश कर रही थी। महतो और उनके समर्थक अस्पताल से बाहर निकलना चाहते थे। देखते ही देखते बात धक्का मुक्की और खींचतान तक पहुंच गई। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
2: झंडा फहराने से रोका जा रहा है, ये क्या यही आजादी है? क्या आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है?
1: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
3: स्टार्वेशन का इतना साइन सिम्टम है तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
1: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने पीने के नाम पर सिर्फ पानी। लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही, सभी डॉक्टरों की निगरानी में है। उधर अस्पताल में महतो पुलिस से उलझे तो अस्पताल के बाहर हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। 15 अगस्त को देवेंद्रनाथ महतो के बिना ही रांची में तिरंगा यात्रा निकली और आंदोलन को अब आर पार की लड़ाई में बदलने का ऐलान कर दिया गया।
4: दस तारीख को विधानसभा का घेराव झांकी था, सीएम आवास बाकी है, 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे।
1: मांग साफ है कि जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाएं रद्द हों। छात्र कह रहे हैं कि इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा।
4: और 11-13 जेपीएससी को लेकर के रद्द मतलब रद्द, जेपीएससी 11-13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच, और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें।
1: सवाल सरकार से भी है, अगर सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है तो छात्र सड़क पर क्यों है, और अगर बातचीत हो रही है तो आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा?
5: राहुल गांधी जी ने ऑडियो कॉल पर हम लोग से बात किए कि हम आपके साथ है, ये ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल खेलना बंद करें। अगर आप छात्रों के साथ है तो छात्रों के साथ रहिए। आपकी कोशिश करने के बावजूद भी अगर झारखंड सरकार आपके बात नहीं मान रही है तो सत्ता से आप रिजाइन दीजिए, समर्थन वापस लीजिए, नहीं तो हम तमाम छात्र जितनी मजबूती के साथ हेमंत सोरेन का विरोध कर रहे हैं उससे ज्यादा मजबूती के साथ आपका विरोध करेंगे।
1: छात्रों के निशाने पर राहुल गांधी भी हैं। आरोप है कि राहुल गांधी ने छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगों पर कोई समाधान नहीं निकला। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव, 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा और अब अगला निशाना मुख्यमंत्री आवास है। 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास घेरने की तैयारी में है। यानी झारखंड में छात्र आंदोलन अब सड़क से सत्ता के दरवाजे तक पहुँच चुका है और दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आकाश कुमार, रांची आज तक।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो जारी किया है और ये वीडियो है 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराने से पहले का वीडियो। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर पुंगनूर नस्ल की जो छोटी गायें होती हैं उनके साथ समय बिताते हुए और मोरों को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट शेयर करके लिखा भी है कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना उनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है और लाल किले के लिए निकलने से पहले वो उन्हें विदा करने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री आवास से इससे पहले भी इन छोटी गायों के साथ और मोरों के साथ आपने तस्वीरें जरूर देखी होंगी। 15 अगस्त को ये वीडियो शूट किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री ने मेंशन किया है कि लाल किले पर झंडा फहराने

0: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: 19 इयर्स की थी तब मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो मैंने जिम में क्रश बनाया था।
3: उसी से रिलेशनशिप था क्या?
2: यही मोटिवेशन था मेरा जिम जाने का कि
3: जब जिम जाओ आशी तो वहाँ वर्कआउट करो, वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं करना है।
2: मैं 19 साल की थी ना, फिर जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने जिम भी छोड़ दिया था। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिर्फ जॉब ही करूँ, मेडिकल स्टूडेंट थी तो डॉक्टर, ये तो टीचर, ऐसा। She was like, कैमरा के आगे क्या कर रही हो, क्या है ये, टाइम पास ही रहना चाहिए, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है वो। फिर जब मॉम ने देखा कि अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसमें तो।
3: You lost your mom also.
2: I lost my dad when I was in second standard, and then I lost her. तो मेरी शादी नहीं देख पाएंगे।
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। In association with
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का,
3: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
2: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
4: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
5: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है,
6: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
7: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
2: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। आज तक
8: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
9: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
8: नहीं सर।
9: 12th किससे की हो?
8: 12th सर मेरा PCM से रहा।
9: कंपाउंड क्या होता है?
8: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
9: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
8: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
9: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: विवाद पर अमित शाह बोले, सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत रोकने को कहा, यह पाफ जनता माफ नहीं करेगी। शिवराज ने कहा यह अपराध है। बंकिम चंद्र चैटर्जी के परिवार ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करने की मांग, वरना सीएम आवास का घेराव। आज राहुल गांधी और सोरेन का पुतला जलाने का प्लान। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती बढ़ी। दातल सिंह वाला के पास फिर बैरिकेडिंग, डल्लेवाला के नेतृत्व में पैदल मार्च। दिन दहाड़े सफाई कर्मी की देश की राजधानी दिल्ली में चाकू मारकर हत्या। कूड़ा उठाने की ड्यूटी पर निकले 27 साल के अनिल पर बदमाशों ने किया ताबड़तोड़ वार, आरोपी की पहचान हुई। और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बड़ी उड़ान, स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास्त्र MK3 की पहली टेस्ट फ्लाइट यूपी की टेस्टिंग एयर स्ट्रिप पर सफल। एयरफ्रेम से जेट इंजन तक सब मेड इन इंडिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अब बात करेंगे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान के आरोपों पर छिड़े सियासी संग्राम की। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान के आरोप पर अब गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने हमला बोला है कांग्रेस पर। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम के सम्मान को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी पहल की, लेकिन ये पहल सोनिया गांधी को रास नहीं आई।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
0: गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वंदे मातरम का अपमान कानूनन अपराध है, किसी को भी ऐसी दृष्टता करने की नहीं करनी चाहिए थी।
2: वंदे मातरम वो गीत जिसको गाते हुए हजारों हजार क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, आजादी की लड़ाई का मंत्र था वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति का पर्याय है वंदे मातरम, और अब तो कानून बन गया है वंदे मातरम का अपमान कानूनन अपराध है, किसी को ऐसी धृष्टता नहीं करनी चाहिए। आखिर भारत माता की वंदना में किसको आपत्ति हो सकती है? भगवान सद्बुद्धि दे।
0: 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी एक शख्स की तरफ इशारा करते नजर आए। इन तस्वीरों के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। आरोप वंदे मातरम के अपमान का है। बीजेपी के हमले तेज हैं, सियासत बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस पर हमले के साथ साथ वीएचपी भी इस विवाद में उतर पड़ी है।
3: मौका स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ का था। कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण हुआ, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गाना हुआ, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो बड़े सियासी विवाद की वजह बन गया। तस्वीरों में देखिए और समझिए कि कैसे जश्न आजादी के बीच इस विवाद की शुरुआत हुई। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का गाना हो रहा है। इसी दौरान सोनिया गांधी वहां मौजूद एक शख्स को कुछ इशारा करती हैं। और इन्हीं तस्वीरों को साझा कर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर देती है। बीजेपी का आरोप है कि वंदे मातरम के गान पर सोनिया गांधी बेहद नाराज हुई और कार्यकर्ता से इसे रोकने को कहा।
4: कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए। और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। ये मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देशहित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा।
5: रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई
3: नहीं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम में कुल 6 अंतरे हैं, जिसमें से 2 ही अंतरे गाए जाते रहे हैं, लेकिन अब नए प्रोटोकॉल के मुताबिक वंदे मातरम की 6 अंतरे गाने की बात कही गई है। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के अंतरे तो पूरे गाए गए, लेकिन इस तस्वीरों पर नया सियासी बखेड़ा शुरू हो गया।
6: जब वंदे मातरम के मूल स्वरूप को गाया जा रहा था, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म कर दिया था, हटा दिया था, उसके गाने पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी स्पष्ट रूप से असहज दिख रहे थे। आपस में वंदे मातरम को खत्म करने के लिए हिलजुल करते नजर आए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। यह उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
7: सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीख।
3: बीजेपी के हमलों के बीच वंदे मातरम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के खिलाफ हमलों में अब वीएचपी भी उतर पड़ी है और विवाद की आंच मुस्लिम लीग तक पहुंच गई है।
8: थोड़ी देर के लिए वंदे मातरम सहन नहीं हुआ। हमें लगता है कि कांग्रेस को शायद 1937 का वो दृश्य याद आ गया जब इन्हीं के पूर्वजों ने और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उसके षड्यंत्रों का शिकार होकर के वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे। आज ये तीनों की तीनों मिलकर के अपने मुख्यालय में जिस तरह से इन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है, निस्संदेह इनको क्षमायाचना करनी चाहिए।
3: बीजेपी इस मुद्दे पर जिस तरह से आक्रामक है, उससे साफ है कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम को लेकर छिड़ा विवाद आसानी से शांत होने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि जिनका योगदान आजादी में शून्य है, जिन्होंने अपने मुख्यालयों पर सालों साल तिरंगा ही नहीं फहराया, वो राष्ट्रवादी बने टहल रहे हैं। पहले बीजेपी आरएसएस वाले जनता के बीच ये साबित करें कि वो तिरंगे का सम्मान करते हैं।
9: तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, वो आज तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। सच्चाई तो यह है, भाजपा और आजादी बलोम है, एक दूसरे के विपरीत हैं। इनका राष्ट्रवाद एकरंगी है, लेकिन हमारा आपका बहुरंगी है। हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी हैं। और सच्चाई तो यह है कि तिरंगे से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारे साथी जानते होंगे कि कई स्थान इनके ऐसे थे जिस पर कभी तिरंगा नहीं लगा, ना आजादी से पहले ना आजादी के बाद।
0: साल 2022 में पूरे देश को झकझोर देने वाले उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में सियासत एक बार फिर से तेज हो गए हैं। और तीन दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के परिवार वालों से मुलाकात की और फिर बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि चार साल बीतने के बाद भी एक बेटी का परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है। दरअसल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के स्थित वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी अंकिता भंडारी। सितंबर 2022 में लापता हुई थी, जिसके बाद से उसका शव नहर में मिला था। उस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद पूरे उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद रिसॉर्ट के मालिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराया था। उसके बाद से बहुत सारे ऑडियोस वायरल हुए थे जिसमें बहुत गंभीर आरोप लगे, जिसमें संलिप्तता के आरोप लगे। बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम लेकर उन ऑडियोस में आरोप लगाए गए और वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही है। इस बीच में राहुल गांधी ने फिर इस मुद्दे को उठाकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अब दिल्ली के कल्याणपुरी की बात करते हैं, जहां पर दिन दहाड़े एक सफाई कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी वहां रोज की तरह अपना काम कर रहा था, उसमें व्यस्त था, तभी अचानक एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और उस पर चाकू से कई बार वार कर दिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज में सफाई कर्मचारी काम करता दिखाई दे रहा है, अचानक हमलावर उस पर हमला कर देता है। घायल कर्मचारी को फिर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अनिल के रूप में हुई है, खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सफाई कर्मचारी की हत्या से गुस्साए सफाई कर्मचारियों और परिवार वालों ने अस्पताल के बाहर ही प्रदर्शन किया है।
10: दिल्ली के कल्याणपुरी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 26 वर्षीय अनिल, जो कि एमसीडी में सफाई कर्मचारी था, आज सुबह अपने घर से ड्यूटी करने के लिए निकलता है। वहीं काम पर ही अचानक से करीब 7:30 बजे एक आदमी उसके पास आता है और उसे चाकू मार देता है। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आक्रोश है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस वक्त मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के मॉर्चरी के बाहर खड़ा हूं और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो सफाई कर्मचारी जो इस पूरे इलाके के हैं, एमसीडी के हैं, उन्होंने अपना काम इस वक्त रोक दिया है और यहां आकर के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर तस्वीरों में आप देखें तो भारी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहां पर हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जो विक्टिम है अनिल, उसे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल पाए। अभी कुछ समय में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि जो अक्यूज है उसे आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि अभी जो अक्यूज है इस पूरे मामले का, उसे उस सीसीटीवी के जरिए आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन मोटिव क्या है इसकी तफ्तीश अभी करनी बाकी है और अक्यूज अभी तक पुलिस के हिरासत में नहीं आया है।
0: भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में एक स्वदेशी सैन्य ड्रोन बनाया गया है, निजी डिफेंस कंपनी ने इसे विकसित किया है। कंपनी की माने तो भारत का पहला ऐसा ये लोइटरिंग म्यूनिशन है, जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी जेट इंजन लगाया गया है और पहली उड़ान में इसने सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए। इस सिस्टम को विकसित करने का काम इसी साल शुरू हुआ था और बहुत ही कम समय में पहला ट्रायल भी हो चुका है।
11: कानपुर में दिव्यास मार्क 3 एक सफल उड़ान भरी है जिसमें स्वदेशी जेट पावर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी इंजन और सिस्टम के जरिए दिव्यास मार्क 3 का सफल परीक्षण हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर लोटिंग मिशन की बात की जाए तो हाल के दिनों में इसका काफी इस पर चर्चा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इसका इस्तेमाल किया दुश्मन के खिलाफ। ये एक ऐसा हथियार होता है जो दुश्मन के टारगेट पर कुछ समय मंडराने के बाद उस पर हमला कर देता है। इस वक्त दुनिया में अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो रहा है और आने वाले दिनों की जो युद्ध की तैयारियां हैं वो स्वदेशी हथियारों के दम पर लड़ने की बात की जा रही है। ऐसे में दिव्यास मार्क 3 की सफल परीक्षण कई मायनों में खास है। दिल्ली से मजीद नेगी आज तक।
0: और अब बात कानपुर की करेंगे जहां पर 16 रुपए के ऑफर के लिए पूरा मोहल्ला टूट पड़ा और हालात ये हो गए कि आधी रात को पुलिस फोर्स बुलाने पड़े और तब जाकर यह मामला शांत हुआ।
12: ये अफरा तफरी, ये भागम भाग, ये हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि कानपुर में 16 रुपए वाला ऑफर आया है। मुफ्त में मिले कुछ भी लूट लो, सस्ता मिले तो झोला भर लो, बिना परवाह किए कि भीड़ में कुछ अनहोनी हो गई तो। जिकानपुर के अनवरगंज का आलम कपड़ा बाजार है। किसी व्यापारी ने ऐलान किया कि 16 रुपए में 16 मिनट में जो चाहे खरीद लो। ऑफर सिर्फ 16 मिनट के लिए था, लेकिन ऑफर वाला मैसेज इतनी तेजी से फैला कि हजारों की भीड़ कानपुर के आलम कपड़ा वाले की दुकान की ओर दौड़ पड़ी।
13: हिंदुस्तान में फ्री की चीज मिले और कोई डिस्काउंट का ऑफर हो जाए तो जनता किस कदर पागल होती है, इसका नजारा आज कानपुर में देखने को मिला। जहां कानपुर में कपड़े की होजरी मार्केट की बहुत बड़ी मार्केट है, आलम मार्केट, यहां एक दुकानदार है रईस आलम। इनकी 4 मंजिल मार्केट बनी हुई है। इनके बेटे का बर्थडे था, हालांकि 15 अगस्त को छुट्टी थी, फिर भी इन्होंने अपने बेटे के बर्थडे के ऊपर एक ऑफर रखा कि 11:59 पे अपनी दुकान खोलेंगे और यहाँ 16 रुपए में जो भी व्यक्ति आएगा उसको 16 रुपए में जो सामान मांगेगा दे देंगे।
12: दरअसल कपड़ा कारोबारी रईस आलम के बेटे का जन्मदिन था। जैसे ही रात के 11:59 पर हुए तो अचानक उसने 16 रुपए वाला ऑफर शेयर किया। देखते ही देखते ये मैसेज वायरल हुआ, हजारों की संख्या में लोग इसकी दुकान की ओर भागे। अचानक इतनी भीड़ आ जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था।
14: ऑफर था 16 रुपए में, कुछ भी दे रहे हो 16 रुपए में भर के झूला ले जाओ।
13: कितनी भीड़ हो गई थी?
14: बहुत भीड़ थी।
13: कैसे कंट्रोल हुई?
14: सब प्रशासन
13: कंट्रोल करी
14: जी, हाँ भगदड़ मची, प्रशासन कंट्रोल करी। ये सब अफवाह फैलाने से अच्छा क्या है।
13: एक अच्छी बात कर रहे हैं कि अफवाह फैलाने से क्या है, लेकिन फिर भी जनता आ जाती है। एक सबसे और, क्या नाम है आपका?
15: जाहिद।
13: क्या ऑफर थे भाई?
15: जाहिद, इसमें जो ऑफर था 16 रुपए में भर के झोला, आलम भाई का ऑफर था, बेवकूफ बनाया।
16: आलम मार्केट में आलम की दुकान के नाम से प्रचलित दुकान है। इनके यहाँ बर्थडे किसी लड़के का था, उस पर इन्होंने ऑफर दिया था कि 16 मिनट में आइए, 16 रुपए में कपड़े ले जाइए, और इन्होंने उस चीज़ को वायरल कर दिया जिससे यहाँ पे काफ़ी जनता आ गई थी और काफ़ी भीड़ होने के नाते हम लोग आए, पुलिस वाले आए तो उनके द्वारा दुकान को बंद कर दिया गया, सभी लोग चले गए हैं। अब यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है और इनके विरुद्ध वैधानिक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
12: 16 रुपए के ऑफर के चक्कर में जब भीड़ जमा हुई तो दुकानदार शटर गिराकर भाग लिया। पुलिस ने इसे गंभीर मामला मानते हुए रईस आलम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही, क्योंकि आधी रात को आया अचानक इस ऑफर से पूरे इलाके की व्यवस्था हिल गई थी। रंजय सिंह, कानपुर आज तक।
0: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से भी हैरान करने वाली तस्वीर आई है। रात भर हुई बारिश के बाद 10 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ पुल पानी की तेज धार में बह गया। आप तस्वीर देखिए। मामला प्रतापपुर विकास खंड के धोंदा गांव का है। सुबह जब ग्रामीण नदी की ओर पहुंचे तो पुल का बड़ा हिस्सा ही गायब था। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के बाद पुल में दरार देखने को मिली थी और दरारें आ गई थी। गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे थे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक दरारें आने के बाद पुल पर आवागमन रोक दिया गया था और मरम्मत के लिए पत्राचार किया गया था। अब पुल बहने के बाद निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की जवाबदेही कौन लेगा? गुजरात के खेड़ा में भी दो गांवों को जोड़ने वाला पुल ढह गया और पिलर के नीचे कटाव से यह हादसा हुआ है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। यह मामला ठासरा तालुका के चितलाव और सरदारपुरा के बीच में बने हुए मही कैनाल के ड्रेन पर बना हुआ ये पुल का है। वहीं पर यह घटना हुई है जहां सुबह लगभग 10 बजे ये भर भराकर गिर गया। लगातार पानी के बहाव के चलते पिलरों के नीचे जो मिट्टी थी उसमें कटाव हो गया और इस वजह से पुल की नींव कमजोर हुई। हालांकि गनीमत यह रही कि प्रशासन ने पुल को पहले से ही जर्जर घोषित कर दिया था, आवाजाही पर रोक लगा दी थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मानसून की मार से पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, तो लखनऊ में मूसलाधार बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया और घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है।
17: उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ी से अचानक भारी मलबा आ गया। मलबे के साथ लगातार पत्थर गिरने से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। लाइव तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह पहाड़ से मलबा सड़क पर आ रहा है। एनएच की टीम मलबा हटाने में जुटी है, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण रेस्क्यू और क्लियरेंस ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर मैठाड़ा के पास भी भूधसाओं ने परेशानी बढ़ा दी है। भूस्खलन की चपेट में एक मालवाहक ट्रक आ गया। खास बात यह है कि इसी इलाके में भूधसाव रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर ट्रीटमेंट किया गया था, लेकिन बारिश के साथ फिर जमीन खिसकने लगी। अब तस्वीर बागेश्वर के कपकोट की, जहां सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सौंग गांव को जोड़ने वाले पुल के ऊपर तक नदी की प्रचंड लहरें पहुंच गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी है। पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। भारी बारिश के कारण जिले में कई जगह मलबा और बोल्डर गिरने से 16 मोटर मार्ग बंद हैं और दर्जनों गांव का संपर्क प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर भी फ्लैश फ्लड के बाद लैंडस्लाइड दिख रहा है। बीआरओ ने मलबा हटाने का ऑपरेशन तेज कर दिया है और सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश जारी है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सुबनसिरी में लैंडस्लाइड ने जानलेवा रूप लिया। रोड कटिंग साइट पर मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर अब भी लापता है। मुश्किल पहाड़ी इलाका और लगातार भूस्खलन का खतरा रेस्क्यू ऑपरेशन को चुनौती दे रहा है। अब बात असम की। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया। बेलटोला सर्वे इलाके की तस्वीरें बारिश के बाद बने हालात की गवाही दे रही हैं। वहीं पश्चिम सिक्किम में रिम्पी और सिंगली ताम में बड़े लैंडस्लाइड ने परेशानी बढ़ा दी है।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
21: मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहां पर खड़े थे वो, और धूप काफी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए। तो बस इतनी बात थी। उसी को एक, जिसको कहते हैं तिल को ताड़ बनाना, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, हर चीज़ को कभी बात खड़ा करना, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी लाना। तो हकीकत ये थी कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी के लिए एक व्यवस्था करना चाह रही थी ताकि वो गिर ना जाएं।

0: ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
0: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
1: बॉन्ड मार्केट सेंटिमेंट्स रिमेन बेयरिश, रिफ्लेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। हाउएवर, इक्विटी मार्केट्स ड्रिवन बाय टेक स्टॉक्स रिमेन अपबीट।
0: कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में ईएमआई में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जवाबी हमला। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध, दिल्ली कूच के बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी सुरक्षा, लोकल प्रशासन ने बातचीत जारी।

0: मांग, वरना सीएम आवास का करेंगे घेराव। आज राहुल गांधी और सोरेन का पुतला जलाने का है प्लान। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बड़ी उड़ान, स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास्त MK3 की पहली टेस्ट फ्लाइट यूपी के टेस्टिंग एयर स्ट्रिप पर की गई सफल। एयर फ्रेम से लेकर जेट इंजन तक सब मेड इन इंडिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुड़।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कहते हैं बड़बोलापन एक चिंगारी की तरह होता है, कब ये आग बनकर बोलने वाले को राख कर दे पता नहीं चलता। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ये बात एक कदम आगे जाती है, क्योंकि ट्रंप के बड़बोलेपन का खामियाजा सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरे मिडल ईस्ट में हाहाकार मचा रखी है। आज रणभूमि में बात करेंगे ट्रंप के इसी नए बड़बोलेपन के बयान की और आपको बताएंगे आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे पूरे मिडल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ। लेकिन रणभूमि स्पेशल में आज आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है ये भी आपको बता देते हैं। रणभूमि स्पेशल में आज ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर लगातार बयानबाजी को लेकर साथ साथ हम रूस यूक्रेन जंग की भी बात करेंगे। रणभूमि स्पेशल में आज पहली खबर बेहद चौंकाने वाली है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हॉर्मुज को अमेरिका का नया प्रांत बनाएंगे। रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर खाड़ी के समंदर से, जहां अमेरिका अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश को लेकर तैनाती का ऐलान किया गया है और पहले से तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन को वहां से निकाला जा रहा है। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कैसे लाल सागर अब एक नया स्टेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है। इसके अलावा रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर में आपको बताएंगे कि कैसे रूस और यूक्रेन में भीषण जंग लगातार जारी है और अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों मुल्क एक दूसरे को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुल गए। रणभूमि स्पेशल की आखिरी खबर आपको बताएंगे चौंकाने वाली वो बात, जिसमें दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच संभावित दोस्ती की पहल की बात कही जाने लगी है। कहा जा रहा है कि करीबन 7 दशकों के बाद दोनों मुल्क एक दूसरे के बीच शांति वार्ता के लिए तैयार होते जा रहे हैं। रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम इन खबरों का विश्लेषण भी करेंगे और जानेंगे आखिरकार इन खबरों के असली मायने और इनके पीछे की सच्चाई क्या है। लेकिन सबसे पहले आप बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जहां उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो एक अपना अमेरिका का एक नया प्रांत बनाएंगे। क्या हॉर्मुज को सच में अमेरिका अपना हिस्सा बनाने के अभियान में डोनाल्ड ट्रंप निकल गए, या फिर ये किसी सोची समझी रणनीति के पीछे एक बड़ा बयान बताया जा रहा है। वजह जो भी हो, उनके इस बयान से एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच तल्खियां बढ़ गई है। हॉर्मुज के समंदर में हर दूसरे दिन हमले हो रहे हैं और अब बयान की चिंगारी ने इस आग को और ज्यादा विध्वंसक कर दिया है।

0: arriba.
1: सामने आया ट्रंप का सबसे विनाशकारी ऐलान। समंदर में मचने वाला है भयंकर कोहराम। अमेरिका का हिस्सा बनने वाला है हॉर्मुज। अब ट्रंप की निगहबानी में चलेगा हॉर्मुज। हॉर्मुज के समंदर की इन लहरों की शांति तूफान से ठीक पहले की है, क्योंकि ट्रंप ने जो ऐलान कर दिया है उससे न सिर्फ ईरान को बुरी तरह चिढ़ा दिया है बल्कि सीज फायर पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आपको सुना देते हैं ट्रंप का वो बयान जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है।
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
1: सुना आपने, ट्रंप जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान करने वाले हैं। कुछ लोग ट्रंप के इस विनाशकारी बयान को उनके बड़बोलेपन से जोड़कर देख रहे हैं, तो कईयों को इसमें सीज फायर के खात्मे और भयंकर युद्ध फिर से शुरू होने के संकेत दिख रहे हैं। ट्रंप ने इसके साथ ही अपने लोगों से महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार रहने की अपील भी की है, यानी ट्रंप को भी कहीं न कहीं युद्ध के अभी से लंबा खींचने की आशंका लग रही है। ट्रंप इस महंगाई को सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
2: So I just say this. So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing. You just have to remember that what we're doing is a great service for the world, not only for ourselves, for the world. And we're really doing a great job.
1: इस बीच ट्रंप के हॉर्मुज वाले बयान को लेकर ईरान ने सख्त तेवर अपना लिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री कंजेम घरीबाबादी ने ट्रंप के इस बयान की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान की हार के बाद वो जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका के हिस्से के रूप में घोषित कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्वीट से सीज नहीं किया जा सकता, न ही एयरक्राफ्ट करियर से, ना ही एक आदेश जारी करके और ना ही किसी चुनावी भाषण के जरिए। कहने को दोनों देशों के बीच इस वक्त सीज फायर चल रहा है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। अब तो ईरान के विदेश मंत्रालय ने हॉर्मुज में तनाव बढ़ाने का सारा ठीकरा अमेरिका के सिर ही फोड़ दिया है।
3: وضعیت ناامنی در تنگه هرمز منحصرا نتیجه اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح بین المللی خیلی وقتها به نحوی موضوع رو مطرح میکنن، القا میکنن که گویا این ایران هست که باعث ناامنی در تنگه هرمز شده. همه ما میدونیم که تنگه هرمز تا قبل از 9 اسفند 404 هیچ مشکلی نداشت، باز بود. سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از این آبراه برای حمله به ایران.
1: इस बीच हूती के जबरदस्त हमले में यमन से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। धू धू कर जल रहे जहाज, टूटे हुए उपकरण, धुआं धुआं हो रहे पूरे परिसर की ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि ईरान ने हूतियों के जरिए कितनी भारी तबाही मचाई है। हूती ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें सरकारी पोर्ट पर दागी जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। आज तक ब्यूरो,
4: अभी हमने आपको हमारी एक खास रिपोर्ट दिखाई, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये, जहां पर अमेरिका ने अपने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का ऐलान कर दिया है। यूएसएस जॉर्ज बुश वहां पहले से मौजूद यूएसएस क्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को रिप्लेस करेगा, और शुक्रवार को खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर की पुष्टि की है। हम आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अरब सागर में करीबन 250 दिनों से ज्यादा तैनात था और वहां तैनात नौसैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी। हालांकि इसमें बीच में ये खबरें भी सामने आई कि अब्राहम लिंकन पर झड़पें हुई जिसमें कई नौसैनिक जो अमेरिका के थे मारे गए। हालांकि अमेरिका ने इसको खारिज भी कर दिया, लेकिन अब इसको रिप्लेस किया जाएगा क्योंकि अब्राहम लिंकन इससे ज्यादा लंबी डिप्लॉयमेंट पर कभी नहीं रहा है और कहा जा रहा है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश अब उसको रिप्लेस करेगा। उसकी जगह अब अब्राहम लिंकन की जगह अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जो बड़ा अपडेट मिल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अरब और पश्चिमी देशों के अधिकारियों का कहना है कि फारस की खाड़ी इलाके में ट्रंप से निराशा उनकी बढ़ती जा रही है। यहां अमेरिका के सहयोगी इस बात को लेकर ज्यादा परेशान है कि ईरान के साथ शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कूटनीति को संभालने में ट्रंप नाकामयाब साबित हुए हैं। यह खबर ट्रंप के लिए बेहद निराशाजनक है क्योंकि ट्रंप पहले से ही अपने घर में घिर रहे थे, लेकिन अब खाड़ी के देशों में यानी उनके सहयोगी देशों में उनके खिलाफ उनके ऊपर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर खाड़ी में उनके सहयोगी देशों में निराशा बढ़ती जा रही है, तो वहीं एक और बड़ी खबर ईरान से ही आ रही है जहां पर आईआरजीसी ने नए हथियारों की खेप दुनिया के सामने पेश की है। आईआरजीसी के एयर डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि ये सारे के सारे इक्विपमेंट ये सारे के सारे हथियार देश में ही बने हैं, यानी इन मिसाइलों में हथियारों के पुर्जे हों इन पे पूरी तरीके से आईआरजीसी या फिर ईरान के साइंटिस्ट ने ही काम किया। आईआरजीसी का दावा है कि हथियारों का आइडिया टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन पूरी तरीके से घरेलू है। आईआरजीसी ने नए हथियारों की नुमाइश करके अमेरिका सहित पूरी दुनिया को चौंका दिया है क्योंकि अब भी ईरान ने दिखाने की कोशिश की है उसके पास हथियारों की बड़ी खेप मौजूद है। और देखिए हूती लगातार ईरान के समर्थन में सऊदी अरब से लेकर तमाम देशों पर रेड सी के अंदर अटैक करते जा रहा है। अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका समेत खाड़ी के तमाम सहयोगी देशों को हैरान परेशान कर दिया है क्योंकि शनिवार को भी हूतियों ने यमन के एक शहर पर इसी तरीके से हमला किया। आपको बता दें कि 15 अगस्त यमन के तटीय शहर मोर्चे पर मिसाइल अटैक किए गए, 7 लोगों की मौत हो गई है और कई जहाज डूब गए। हम आपको बता दें एक महीने का यह आंकड़ा है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लगातार इस पूरे इलाके में यानी ये लाल सागर का इलाका है और यहां पर यमन है और यमन हूती यहीं से लगातार सऊदी अरब के कई इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। हम आपको बताया था 15 अगस्त, फिर 11 अगस्त की बात करें बाब अल मंदेब के कार्गो शिप पर हमला किया गया, 6 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। मैं आपको यह आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं आप समझिए कि यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका बन गया है वो है लाल सागर का इलाका। यानी अब अमेरिका के लिए सिर्फ चुनौती यहां पर मौजूद नहीं है बल्कि लाल सागर में भी, और यहीं से लगातार सऊदी अरब या बाकी के मिडिल ईस्ट देशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 8 अगस्त को यमन के समुद्री शहर मोखा में भी अटैक किया गया था, इसमें 11 लोग मारे गए थे। देखिए जब भी उसी तरीके के अटैक कर रहा है तब आप मानिए कि किस तरीके से 9, 10, 8 ऐसे लोग मारे जा रहे हैं। 9 अगस्त की अगर बात करें सऊदी अरब के जुबेल में हमला किया गया और जजान में अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया। अरामको पर हुए नुकसान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और आपको बताया था कि ये सऊदी अरब के लिए या बाकी मुल्कों के लिए अमेरिका के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 6 अगस्त को सऊदी अरब के नजरान पर भी दागी गई थी मिसाइलें और हमले में 11 लोगों की मौत इसमें हो गई थी। और आपको बता रहे कि जैसे किस तरीके से लगातार जिस दिन से अमेरिका और ईरान के बीच में अदावत शुरू हुई है उससे पहले जो हूती थे वो बहुत शांत थे, लेकिन अब हूतियों ने भी बड़े अटैक्स करने शुरू कर दिया। 5 अगस्त की अगर आपको बात बताएं लाल सागर और अदन की खाड़ी में 2 सऊदी टैंकरों पर मिसाइलों से अटैक किया गया। यानी इस पूरे एरिया के अंदर अगर आप इन दोनों एरियाज को कैलकुलेट करें, अगर आप टैंकर्स ऑयल एक्सपोर्ट के हिसाब से, तो पूरी दुनिया का 32% करीब एक्सपोर्ट या आवाजाही टैंकर्स की एलपीजी की ऑयल की इन्हीं इलाकों से होती है। और अब इस समय दोनों जगहों पर इस तरफ ईरान का डोमिनेंस है और अब यहां पर हूती डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं जो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए एक बड़ी चिंता का सबक बन चुका है। अब 23 जुलाई की बात करें लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया था। आपको हम ये लगातार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक महीने के आंकड़े अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि किस तरीके से अभी यहां पर अमेरिका के लिए चिंताएं और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और देखिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान संजय मेस्टन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख भी कर लेते हैं। मेस्टन सर, हम लगातार ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से लगातार ये चिंताएं अमेरिका के लिए बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी अगर आप देखें मौजूदा हालात में अभी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उनको बातचीत करने के लिए मना लिया जाए, लेकिन अगर दोनों कंबाइन होकर इसी तरीके से अटैक करते रहे तो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए क्या चुनौतियां बढ़ जाएंगी?
0: बिल्कुल सुमित, अमेरिका के लिए आज की तारीख में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए हैं, और अभी लाल सागर जो रेड सी है, बाबल मंदिर स्ट्रेट, उसको भी अभी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और एक और प्रॉब्लम है, सबसे गंभीर प्रॉब्लम है कि पूरा विश्व का ट्रेड तो इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन जो ओरिजन है, जो सप्लाई होती है, वो होती है गल्फ स्टेट से, और खासकर सऊदी अरेबिया को तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है वहां पर जिसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से या ओब्लिक रेड सी से या लाल सागर सी से वो ट्रेड हो सकता है। लेकिन आज सऊदी अरेबिया जो वहां सबसे बड़ा स्टेट है गल्फ स्टेट्स में, उसकी दोनों तरफ ब्लॉकेड हो चुकी है। तो जाहिर है कि सिर्फ इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ओमान के पास है और यूएई के पास है, क्योंकि उनके पास फुजैरा पोर्ट है और एक्सेस है अरेबियन सी में ओमान का और यूएई का।
4: मैं आपका दोबारा से रुख करूंगा, अपने अपने दर्शकों को एक बड़ी स्क्रीन पर एक और बड़े आंकड़े दिखा दूं, उसके बाद मैं आपसे दोबारा से जानकारी लूंगा कि आखिरकार ये सारी चीजें किस तरफ इंडिकेट करते हैं। अब बड़ी स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं, फिर दिखाते हैं कि हूती के आक्रामक होने की स्थिति में अदन की खाड़ी के किस मुहाने पर मौजूद पहुंचा दिया है, और वहां से गुजरने वाले जहाजों का आंकड़ा क्या बताता है। क्या एक महीने में समय अदन की खाड़ी हो या फिर इन इलाकों में जो शिप्स गुजर रहे हैं उनकी स्थिति किस तरीके से बनी हुई है, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार इस समय इन इलाकों के अंदर ये शिप्स वहां से गुजरने में नाकाफी हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो आंकड़े पहले बताए जा रहे थे उसके बाद ये आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं, मुश्किल से 4 या 5 शिप ही वहां से निकल पा रहे हैं। संजय मेस्टन सर का रुख कर लेते हैं। संजय मेस्टन सर, ये आंकड़े हम अपने दर्शकों को दोबारा से दिखाएंगे, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान हाल ही में आया, उन्होंने कहा कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने एक नया प्रांत, एक नया प्रोविंसेस ऐलान कर दिया, क्या आपको लगता है ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, या सच में अमेरिका की कोई ऐसी बड़ी रणनीति है, क्योंकि उनको लगता है कि देखिए ईरान और ओमान ने अपने बीच में एक सहयोग, एक समझौता कर लिया, इसमें अब अमेरिका को बाहर कर दिया गया, और ऐसे में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा ये?
0: देखिये सुमित, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ये स्टेटमेंट है, मैं बोलूंगा ये एक स्टेटमेंट ऐसा है कि फ्रस्ट्रेशन में ये दे रखा है, और अपने होम क्राउड के लिए और खासकर अमेरिकन ट्रुप्स के लिए भी है, जो आपने वो ऑडियंस देख लिया है। लेकिन सवाल उठता है क्या उनके अंदर काबिलियत है, इसका जवाब है बिल्कुल काबिलियत नहीं है, क्योंकि इतने दिन की लड़ाई से 28 फरवरी से शुरू हुई थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया था कि हमारा पूरा कमांड कंट्रोल हो जाएगा और ईरान में सब चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। IRGC फॉर्मली कमांडर कंट्रोल ग्रिप में है, पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है, हूतीज ने जो ईरान के प्रॉक्सीज है उन्होंने रेड सी को कंट्रोल किया है, तो प्रेसिडेंट के लिए तो ये विन विन

0: तो प्रेसिडेंट के लिए तो ये विन विन सिचुएशन के तो बिल्कुल नहीं है, ये तो हार हार की सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में ये फ्रस्ट्रेशन का स्टेटमेंट है, उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की। अगर वो बोलते हैं इनकी टेरिटरी बन जाएगा तो उसके लिए ट्रुप चाहिए, उसके लिए अमेरिकन फ्लैग चाहिए, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, वहां उनको फिजिकली मौजूद होना पड़ेगा, ये असंभव है। तो ये फ्रस्ट्रेटेड, ये इस ना तो मेरे को रणनीति लगती है और ना कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर
1: बिल्कुल
0: वो सोच
1: सर,
0: रहे हैं।
1: क्योंकि अब लगातार वो ग्राफिक्स हमारे सामने आ गया है जिसमें रेड सी की बात हम कर रहे थे। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से उस ग्राफिक्स बड़ी स्क्रीन पर लिए चलने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार रेड सी की जो बात हम कर रहे थे कि आखिरकार रेड सी के अंदर जो आवाजाही है पिछले एक महीने में उसका उस पर किस तरीके का असर पड़ा है, ये भी आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये इसलिए क्योंकि रेड सी के इलाकों के अंदर अगर आप देखें कि कैसे लगातार अटैक बढ़ते जा रहे हैं और चीजें खराब होती जा रही हैं, और इसमें ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बल्कि रेड सी को भी इंक्लूड कर दिया, और अब ये आंकड़े लगातार और ज्यादा विध्वंसक होते जा रहे हैं।

और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, उसके बाद अपने ग्राफिक दिखाएंगे। ईरान तेजी से बढ़ा रहा है मिसाइलों का जखीरा। देखिए लगातार ये बात कही जा रही थी कि अमेरिका के जखीरे कम हो रहे हैं, लेकिन ईरान अपने जखीरे को बढ़ाता जा रहा था। जेरूसलम पोस्ट के हवाले से खबर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों के, अपने ड्रोन की चीजों को बहुत तेजी से, अपने जखीरे को, अपने रसद को बढ़ाना शुरू कर दिया। ईरान तेजी से अपने मिसाइलों के जखीरे पे काम कर रहा है, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए ईरान रुक नहीं रहा। और अभी आपने आपको एक और खबर दिखाई थी जहां ईरान की तरफ से दावा किया गया था कि उसने अपने जितनी मिसाइलें बनाई है, जितने अपनी चीजें बनाई है, वो सारी की सारी स्वदेशी हैं, वो सारी की सारी इंडिजीनियस है।

0: यानी अफगानिस्तान वियतनाम के बाद अमेरिका के लिए एक और बड़ा सरदर्द, एक और बड़ा ब्लैक स्पॉट वो बन रहा है ईरान, क्योंकि अब ईरान के जिस तरीके से जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दिया है ये अमेरिका के लिए एक बड़ा कंसर्न है। और अब रुख करते हैं एक और युद्ध क्षेत्र का, बात करते हैं रूस और यूक्रेन की, रूस और यूक्रेन की, और जहां पर दोनों के बीच घमासान भयंकर हो गया। रूस के कीव के आसपास के इलाकों में जबरदस्त बमबारी की जा रही है, जबकि यूक्रेन ने मॉस्को रीजन में मिसाइलें और ड्रोन से बम बरसाए हैं और तबाही मचा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो हथियारों की होड़ को और तेज करने का ऐलान कर दिया।
1: मिसाइलों और ड्रोन से बमों की बरसात, कीव में रूसी हमलों से बढ़ी आफत। यूक्रेन ने मॉस्को रीजन में की एयर स्ट्राइक, ना तो हमले रोकने के लिए रूस तैयार है, ना ही घुटने टेकने को यूक्रेन तैयार है। नतीजा इन तस्वीरों के तौर पर आपके सामने है। आग की लपटों में घिरे इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों की तबाही की गवाही दे रहे हैं। हर दूसरे दिन मिसाइलें बम बरसा रही हैं, हर दूसरे दिन ड्रोन डरा रहे हैं और तेल डिपो से लेकर रिहायशी इलाकों में तबाही का तांडव मचा रहे हैं। यूक्रेन के जेपोरिजिया में रूसी हथियारों ने ताजा हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर डाला है। कीव रीजन के कई इलाकों को रूस ने एक साथ निशाना बनाया। इन हमलों में इस्कंदर एम, S-400 और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया। आसमान तक उठती आग और धुएं के इस गुब्बार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान झेलना पड़ा होगा। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हर हमले का उसकी सेनाएं जवाब दे रही हैं। मॉस्को रीजन में यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोनों से एयर स्ट्राइक की। रूस का कहना है कि उसने 100 से ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी कई ड्रोन बम बरसाने और तबाही मचाने में कामयाब हो गए। मॉस्को के पास कोलेदिनो इलाके में वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब में लगी ये आग कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। हजारों स्क्वायर फीट में फैले इस सेंटर में एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरा परिसर आग की लपटों में घिर गया। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में काफी ऊंचाई तक फैल गया। इसके अलावा यूक्रेन ने

0: समारा इलाके में फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला किया। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी सेना ने यूक्रेनी सरहद से करीब 900 किलोमीटर दूर बने रूसी ठिकाने को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ उन्होंने हथियारों की होड़ में यूक्रेन के और मजबूती से आगे बढ़ने का दावा भी किया है।
1: ППО для України, ракет, які необхідні для захисту життя і домовленості заради виробництва в Україні. Це все буде, це не просто, але все це буде. За час війни ми вже багато разів говорили про зброю, засоби, техніку, про які спершу чули, що це начебто неможливо. І потім чули, українці начебто не зможуть, бо потрібні десятиліття, щоб змогли.
0: जेलेंस्की ये दावा भले ही करें, लेकिन वो जानते हैं कि किस कदर एंटी मिसाइल सिस्टम की कमी रूस के सामने यूक्रेन की बेचारगी लगातार बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
2: और इस वक्त एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि यूक्रेन ने जहां पर कल रात क्रिवी रिह शहर के ऊपर रूस ने बड़े अटैक किया, रूस ने करीबन 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं और रूसी सेना ने कीव के लक्ष्यकों पर रात भर हमले भी किए हैं, जिसमें जमीन से दागी जाने वाली फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों का निर्माण करने वाली फायर फाइट कंपनी के प्लांट को भी निशाना बनाया गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर सबसे ज्यादा टारगेट किए हैं, लेकिन वो इलाका है जो यूक्रेन का सदर्न इलाके का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहीं पर यूक्रेन की बड़ी इंडस्ट्रीज और कहा जाता है कि उनकी मिसाइल बनाने, ड्रोन बनाने के कई प्लांट्स, कई कंट्रोल सेंटर्स यहां पर मौजूद है और इस पर बड़े तरीके से रूस ने हमला किया है। और ये हमले इस इवज में किए गए हैं कि रूस का मानना है कि मॉस्को पर अटैक और इस बीच एक और बड़ी खबर जहां पर रूस से जहां पर यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को इलाके में कई जगहों पर 2 गोदामों पर अटैक किए हैं और वाइल्ड बेरीज इलाके के अंदर ये अटैक किए गए हैं। इसमें 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है और इसी के बाद रूस ने भी यूक्रेन के कई इंडस्ट्रियल हब्स पर अटैक किया कल रात और उससे पिछली रात मॉस्को की ओर बढ़ रहे 200 से ज्यादा कामिकाजी ड्रोन को रूस ने इंटरसेप्ट किया, मार गिराने का दावा किया है। इस हमले की तस्वीरें भी सामने आ गई। आपको बता दें कि मॉस्को इलाके पर रह रहकर यूक्रेन की तरफ से 200-300 ड्रोन की मदद से अटैक करने की कोशिश की जाती है और इसी के बाद रूस भी यूक्रेन के इंडस्ट्रियल इलाकों पर अटैक करता है। और चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारा खास शो पावर प्ले।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: आगे आगे करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी है।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
3: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
2: नहीं सर।
3: 12th किससे की हो?
2: 12th सर मेरा PCM से रहा।
3: कंपाउंड क्या होता
2: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
3: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
2: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
3: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: ताकत के मैदान में किसने मारा चौका और किसे मिला धोखा? आम लोगों की जान ले रही जंग आखिर किसके लिए है? मुनाफे की फैक्ट्री। पावर प्ले में बात करेंगे उस मक्का अलायंस की जिसे गठबंधन की आड़ में तैयार किया जा रहा है, और ये जानेंगे कि क्या ये वाकई कोई गठजोड़ है या फिर सिर्फ है कवायद कागजी। बात करेंगे ट्रंप के तारीफ और टैरिफ वाले दांव की भी, और साथ ही आपको मिलवाएंगे इस हफ्ते के पावर प्लेयर से भी। साथ ही आप और हम मिलकर पढ़ेंगे चेतावनी के वो सारे संकेत, वो सारे सिग्नल जो धरती भूकंप की भाषा में दे रही है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। दुनिया की एक बड़ी आबादी इन दिनों वॉर जोन में जीने को मजबूर है। ईरान से लेकर यूक्रेन तक युद्ध में कई देश शामिल है, और इसकी वजह से धरती का एक बड़ा हिस्सा और उसकी हवा में बारूद का धुआं घुल चुका है। अंतहीन बनते जा रहे इन तमाम युद्धों के मैदान में अभी तक ना तो कोई हारा है और ना ही कोई जीत पाया है। लेकिन हथियारों के साथ साथ उलझी इस तमाम इबारत के अंदर इस लड़ाई के मैदान में एक दूसरी तस्वीर भी नजर आ रही है, जहां पर तस्वीर बिल्कुल उलट है, क्योंकि यहां जीत का फैसला पहले ही हो चुका है। लड़ाई कोई भी लड़े, जंग के शोले कहीं भी भड़के, मुनाफे का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि ये युद्ध कब और कैसे खत्म होंगे, बल्कि सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या ये युद्ध असल में किसी के लिए बस मुनाफे की फैक्ट्रियां हैं? देखिए हमारी ये लीड स्टोरी यानी पावर स्टोरी।

0: फरवरी 2026 में जब ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ हमला बोला तो उसी हफ्ते वॉल स्ट्रीट पर एक अलग रेस शुरू हुई, दुनिया की सबसे बड़ी हथियार और तेल कंपनियों के शेयरों की होड़, ऊपर जाने की दौड़। जंग शुरू होते ही सबसे पहला मुनाफा किसने कमाया? तो जवाब है तेल कंपनियां। अकेले टॉप 6 यूरोपीय तेल कंपनियों ने 2026 की पहली तिमाही में 22 अरब डॉलर कमाए, यानी पिछले साल इसी अवधि में हुई कमाई से 43% से ज्यादा। 3 करोड़ डॉलर प्रति घंटा, घड़ी की सुई घूमती और डॉलर का आंकड़ा बढ़ता गया। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान के अखाड़े में चल रहे घमासान के बीच जरा बाजार के आंकड़े देखिए। मार्च 2023 से मार्च 2026 के बीच टॉमहॉक और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने वाली आरटीएक्स का शेयर 110% उछला। B2 स्टेल्थ बॉम्बर बना रही कंपनी नॉर्थ्रोप ग्रूमन के शेयर का दाम 60% ऊपर गया। इसी तरह पनडुब्बी और बख्तरबंद वाहन बनाने वाली कंपनी जनरल डायनेमिक्स का शेयर 57% ऊपर चढ़ा। और F-16 लड़ाकू विमान और अकेले लॉकहीड मार्टिन का सालाना कारोबार पहुंच गया 68.4 अरब डॉलर तक। हथियार कंपनी के मुनाफे की यह कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। इसराइल के एलबिल्ट सिस्टम्स का कारोबार 6.3 अरब डॉलर पहुंचा, इसराइल एरोस्पेस सिस्टम्स का कारोबार 5.2 अरब डॉलर और आयरन डोम बनाने वाली राफेल का कारोबार 4.7 अरब डॉलर दर्ज किया गया। लेकिन मुनाफे के स्क्रिप्ट केवल पश्चिमी कंपनियां नहीं लिख रही, उत्तर कोरिया ने भी रूस यूक्रेन जंग से करीब 22 अरब डॉलर कमाए हैं, यानी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध से पहले के 4 साल में हुई कमाई के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा। शोध फर्म फंड स्टार्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में ट्रंप के पद संभालने के बाद से S&P 500 इंडेक्स पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों का असर पड़ा। 20 मार्च को जब ट्रंप ने ईरान सीज फायर का विरोध किया, बाजार 1.5% गिरा। 31 मार्च को जब उन्होंने डील की उम्मीद जताई, बाजार 2.9% उछला। अप्रैल में चीन पर टैरिफ के ऐलान से एक दिन में 6% की गिरावट आई। फिर टैरिफ पर रोक लगते ही अगले हफ्ते 9.5% का ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया। वहीं ईरान और ओमान के बीच जो सौदा हो रहा है उसमें ईरान खाड़ी में आने वाले जहाजों को नियंत्रित करेगा और ओमान बाहर जाने वाले जहाजों को, यानी दोनों मिलकर एक संयुक्त टोल व्यवस्था बना रहे हैं। यानी जिस जंग को हम इंसानी तबाही के तौर पर देखते हैं वो किसी के लिए मुनाफे की फैक्ट्री भी है। आज तक ब्यूरो।
1: तो पावर प्ले में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से युद्ध के नाम पर मुनाफे की फैक्ट्री भी चलाई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस पायदान को समझने की, यानी मैप सेगमेंट के अंदर आपको लेकर चलते हैं। मैप रूम में आपको बताते हैं कि आखिर एक नई गठजोड़ बनाने की जो कवायद चल रही है, आखिर उसके पीछे मंशाएं क्या हैं, क्या बनाने, क्या रचने और क्या तैयार करने की कोशिश यहां पर चल रही है, क्योंकि ये सारी चीजें धरती के नक्शे के ऊपर ताकत के नए खेल को रचने की कोशिश है, कवायद है। तो सबसे पहले मैप रूम में जरा यहां पर देखिए, क्योंकि ये नक्शा जिसे आप इन दिनों बखूबी जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये वो नक्शा है जो पश्चिम एशिया का, खाड़ी के देशों का नक्शा है। और इस नक्शे के ऊपर एक नई इबारत तैयार की जा रही है, एक नया गठजोड़ जिसे नाम दिया गया है मक्का का। मक्का जो कि इस्लाम के लिहाज से सबसे पवित्र जगह है, लेकिन उसके नाम पर बनाया जा रहा है एक नया सैन्य गठजोड़ जिसके अंदर कौन कौन शामिल है। तो यहां पर आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है, यहां पर आपको सऊदी अरब नजर आ रहा है, यहां पर आपको तुर्की नजर आ रहा है, और साथ ही कोशिश और कवायद तो चल रही है कि यहां पर इसे यानी मिस्र को भी शामिल किया जाए और इस मिस्र को भी इसका हिस्सा बनाया जाए और इसे नाम दिया जा रहा है मक्का अलायंस का। कहने को ये गठजोड़ तैयार तो कर लिया गया है, लेकिन इस गठजोड़ के अंदर इसकी अपनी खामियां भी हैं और इन खामियों की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हम इन खामियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यमन के हूथी अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला करते हैं तो उसके बाद हलचल मचती है, नजरें उठती हैं कि क्या वाकई में ये गठजोड़ काम करेगा, ये जो सैन्य अलायंस है, जब फौजें इन तीनों देशों की, चारों देशों की सामने आती हैं तो क्या वो सऊदी अरब के बचाव के लिए यहां पर आती हैं। लेकिन नहीं, जवाब यहां पर इनकार में नजर आता है, क्योंकि यमन के हूती जब सऊदी अरब पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान और तुर्की इनकी तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आती है। यानी किसी भी सैन्य गठजोड़ के अंदर उम्मीद की जाती है कि यदि एक पर हमला दूसरे पर हमला या तीसरे पर हमला माना जाता है तो फिर सबको मिलकर उसकी चुनौती का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन यहां पर नजर आती है केवल और केवल चुप्पी। समझौते की पहली ही नाकामी इस हूथियों के हमले ने सऊदी अरब यानी पश्चिम एशिया के इस बिसात के ऊपर साफ कर दी है और साथ ही सवाल खड़े कर दिए। साथ ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन तीनों देशों ने कहने को कागज के ऊपर दस्तखत करके एक गठजोड़ तो बना लिया, लेकिन क्या वाकई में ये कारगर हो पाएगा? क्या ये समय की परीक्षा को पास कर पाएगा? क्योंकि यहां पर इन तीनों की सेनाओं के अंदर कहने को कागज पर ताकत नजर आती है, लेकिन तालमेल की बहुत कमी नजर आ रही है और इसीलिए बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सैन्य कार्यवाही की स्थिति के अंदर क्या ये एक दूसरे की मदद के लिए आ पाएंगे या यहां पर केवल और केवल अपना मुनाफा छापने अपना मुनाफा बनाने की कोशिश हो रही। और यहां पर बड़ा ही सवालिया निशान जो है वो इस समय पाकिस्तान के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड है, चाहे वो परमाणु बम का जो कारोबार है, एक्यू खान का जो काला कारोबार था उसके लिहाज से देखें आप, या फिर आप देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान अपना निजी हित साधने की कोशिश कर सकता है, इसके बहाने किसी तरीके से एक नया हित साधा जाए। अब यह हित बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पावर प्ले में लगातार हम इस स्टोरी को कवर करते रहेंगे। पावर प्ले यानी ताकत के खेल में यदि बात खेल की हो रही है तो जाहिर तौर पर चर्चा खिलाड़ियों की भी होगी। तो चलिए पावर प्ले के अगले हिस्से में आपको मिलवाते हैं दुनिया में इस सप्ताह हम किन्हें कह रहे हैं पावर प्लेयर, वो अहम किरदार जिनके कारनामों ने जिनके बयानों ने एक छाप छोड़ी है। आपको बिग स्क्रीन पर लिए चलते हैं और विस्तार से बताते हैं समझाते हैं कि आखिर क्यों हम इन्हें कह रहे हैं पावर प्लेयर्स। तो ये जो चार चेहरे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर यानी डोनाल्ड ट्रंप का, मुस्तफा खमनेई का, किम जोंग उन का और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू का, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये चार चेहरे क्यों महत्वपूर्ण हैं और सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। इस सप्ताह जो उन्होंने कहा जो उन्होंने किया वो क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश डोनाल्ड ट्रंप जता रहे हैं। ये अमेरिका के संविधान के अंदर तो नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये संदेश दे रहे हैं, ये फिलर्स दे रहे हैं कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये पूरा अमेरिका की सियासत के अंदर भूचाल ला रहा है। उन्होंने न केवल ये ख्वाहिश जताई है बल्कि अमेरिकी संसदीय कानून को अपनी एक मजबूरी बता दिया कि वो तो कानून है इसलिए मैं रुक जा रहा हूं, वरना तीसरे टर्म के लिए ट्रंप की दावेदारी पूरी तरह से तैयार है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो न केवल तीसरा टर्म मांग रहे हैं बल्कि ट्रंप एक और चीज मांग रहे हैं, 50 साल का हर्जाना वो ईरान से मांग रहे हैं। और ईरान के हमले की आशंका के बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक और खबर सामने आई कि तुर्की के अंदर जहां वो नेटो की समिट के अंदर शामिल होने के लिए गए थे, वहां से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा एक फूड ट्रक के अंदर बैठकर अपने जहाज में पहुंचे और उसके बाद सवाल इस चीज को लेकर खड़े हो रहे हैं कि वो दूसरा जहाज जो था जिसमें उनकी पूरी टीम गई, आखिर फिर उन्हें क्यों निशाना बनने के लिए छोड़ दिया गया। खैर, अमेरिकी सियासत में डोनाल्ड ट्रंप के ये जो तमाम चेहरे हैं इनको लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है, लेकिन एक और चेहरा जो कि सामने नहीं आया है अभी तक उसको लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। 5 महीने के करीब का वक्त हो चुका है, मुश्तबा खमनेई कहां हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, किस तरीके से सत्ता के सारे सूत्र एक अदृश्य पर्दे के पीछे से मुश्तबा खमनेई इन दिनों चला रहे हैं उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चा हो रही है। मौत की अफवाह के बीच मुश्तबा खमनेई का एक नया वीडियो सामने आया है और ये वीडियो जो सरकारी न्यूज एजेंसी है ईरान की मेहर न्यूज उसकी तरफ से जारी किया गया है, उसके अंदर एक तस्वीर सामने आई है और जिसके जरिए ये बताने की कोशिश ईरान की सरकार और सत्ता कर रही है कि मुश्तबा खमनेई ऑल सेफ सुरक्षित हैं। फिलहाल मुश्तबा के ठिकाने का किसी तरीके से कोई पता नहीं है और ईरान मुश्तबा खमनेई की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। लेकिन अगर हम जोखिम की बात कर रहे हैं तो जरा किम जोंग उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो हर बार जोखिम लेने के लिए जाने जाते हैं, वो लगातार रॉकेट या मिसाइल्स फायर करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रॉकेट मैन भी कहते रहे हैं। उत्तर कोरिया से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें हाल ही में जापान के को पार करते हुए यानी जापान को क्रॉस करते हुए जो पैसिफिक सागर है, प्रशांत महासागर है, वहां गिरी हैं और इसको लेकर एक नया थिएटर जंग का खुल सकता है इसकी चिंता बढ़ गई है। उत्तर कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए थे किम जोंग उन की देखरेख में ही ये तमाम मिसाइल परीक्षण हमेशा किए जाते हैं, वो तस्वीरें सामने आती हैं। वॉनसन से 700 किलोमीटर दूर तक ये नई बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया ने दागी है और ऐसे समय में दागी है जबकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया 17 अगस्त से उस पूरे क्षेत्र के अंदर एक नया युद्धाभ्यास करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और युद्ध का मैदान जो इसराइल में है, वहां हम जंग की बात, गोले बारूद और बम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनावी जंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि इन तमाम चुनावी कवायदों के बीच में अक्टूबर के अंदर चूंकि इसराइल में चुनाव होने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो 15 सूत्री गाजा पीस प्लान है वो उससे इत्तफाक नहीं रखते हैं, उससे असहमति जताई है बेंजामिन नेतन्याहू ने, और उस प्लान को मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप के 15 सूत्री योजना को चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने खारिज किया है, इसलिए ये अमेरिका और बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों के बीच भी एक नई खटास ला सकता है। इसको साधने की कोशिश दोनों तरफ से कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि फिलहाल गाजा से नहीं हटने का फैसला इसराइल कर रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए फिलिस्तीन राज्य नहीं बनेगा। हालांकि उनके इस बयान को चुनावी नजरिए से भी देखा जा रहा। तो पावर प्लेयर्स का ये जो कारनामे हैं, उनके उनके जो बयान हैं, यही सत्ता के खेल को बीते एक सप्ताह के दौरान संचालित करते हुए नजर आए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पावर प्ले में बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसे हम कहते हैं इंडिया इंपैक्ट, यानी वो दुनिया की घटनाएं जो भारत पर सबसे ज्यादा असर डालती है। आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भारत को लेकर चल क्या रहा है, क्योंकि कभी वो भारत की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं तो कभी टैरिफ का हथौड़ा भारत के ऊपर चलाते हैं, वो टैरिफ का वार करते हैं, और इनका सबका भारत के ऊपर काफी असर पड़ रहा है। लेकिन क्या वो असर है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि कभी तारीफ भी तो कभी टैरिफ भी, तो चलिए आपको लिए चलते हैं इंडिया इंपैक्ट बताने के लिए कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो तारीफ और टैरिफ वाला खेल है, तारीफ और टैरिफ वाला जो दाम है, वो आखिर कितना महंगा पड़ रहा है, कितना भारत के लिए मुश्किलें दे रहा है, वो आपको हम बताने और समझाने की कोशिश करते हैं यहां पर। तो देखिए जरा यहां पर आप फेहरिस्त देखिए, यहां पर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि कभी तारीफ कभी टैरिफ। सबसे पहले बात करते हैं 19 महीनों के इस पूरे टाइमलाइन की, क्योंकि 19 महीनों के दौरान 13 फरवरी 2025 जो तारीख आप यहां पर देख रहे हैं, ये वो तारीख थी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मुलाकात हुई थी, और इसी मुलाकात के दौरान बड़ी बड़ी बातें की गई थी। 500 बिलियन तक भारत और अमेरिका का कारोबार ले जाने की बातचीत की गई थी, इसीलिए हमने यहां लिखा है वॉशिंगटन में गर्मजोशी थी। लेकिन महज कुछ ही हफ्तों बाद, या कह लीजिए कि 2 महीने के भीतर ही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान कर दिया, जिसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था। इसके अलावा जरा यहां पर फिर से आप एक बार तैयारी देखिए कि यहां पर वो टैरिफ लगाते हैं 30 जुलाई 2025 वो तारीख जब भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया गया, लेकिन फिर वो 14 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बातें करते हैं, यानी भारत की भी तारीफ करते हैं। इसके बाद फिर आपको ऐसी ही चीज नजर आती है, यानी वो भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात करते हैं, भारत के खिलाफ जो पीटर नवारो हैं, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी माने जाते हैं, वो भारत के लिए बहुत भली बुरी टाइप की जो बातें हैं वो करते हैं। और उसके बाद फिर 17 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारत एक बहुत ही शानदार जबरदस्त देश है जिसके साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जब हम ये तारीफों का सिलसिला देख रहे हैं तो एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है कि 7 फरवरी 2026 वो तारीख जब अमेरिका और भारत मिलकर एक अंतरिम ट्रेड डील का ऐलान करते हैं। लेकिन उसके बाद इस ट्रेड डील के बाद फिर उसी तरीके के जो उतार चढ़ाव हैं वो रिश्तों में देखने को मिलते हैं, और हम वो तस्वीर देखते हैं जब 19 महीने के इस लंबे अंतराल के बाद पहली बार 17-18 महीने के अंतराल के बाद फ्रांस के एवियों में G7 की शिखर बैठक के हाशिए के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है, तो 16-17 जून 2026 की वो तारीख जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का फैन हूं, उनको लेकर बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर देता है, यानी लिंडसे ग्रैहम एक्ट जो है वो पारित कर दिया जाता है अमेरिका के सेनेट में। ये जो प्रस्ताव है, ये जो बिल है, वो अभी अमेरिकी कांग्रेस में जाएगा, लेकिन फिर भी ये मंशा साफ कर चुका है अमेरिका कि वो भारत के ऊपर न केवल टैरिफ लगाने जा रहा है बल्कि रूसी तेल खरीद जो है वो अभी भी एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है, बरकरार है, जिसके कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ रहा है। और इसीलिए ये सारी बातें हो रही हैं कि ये जो घटनाएं हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो रुख और रवैया है, ये भारत के साथ न केवल संबंधों को प्रभावित कर रहा है बल्कि ये प्रभावित कर रहा है भारत के कारोबार को भी, क्योंकि अमेरिका भारत का बड़ा कारोबारी सहयोगी है और यदि अमेरिका के अंदर अनिश्चितता आती है, भारत के साथ कारोबार के अंदर जो नीतियां हैं वो अस्पष्ट होती हैं, तो निश्चित रूप से इसका असर जो है वो भारत के कारोबार पर पड़ता है, भारत के निर्यात पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते, अब बात करते हैं पावर प्ले के अंदर उन सिग्नल्स की, और हम बात कर रहे हैं उस रिंग ऑफ फायर की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया के अंदर ऐसा भूकंप आया जिसकी विनाशकारी तस्वीरें देखकर हर कोई सिहर गया, कांप गया। आखिर क्यों? इस बार उन इलाकों की हम चर्चा कर रहे हैं जहां धरती लगातार हिलती रहती है, और ये क्या दुनिया के लिए एक नए किस्म का संकेत दे रहा है? क्या धरती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को भूकंप की भाषा में कुछ बताने, कुछ समझाने, कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है? हम उसके लिए उन तमाम सिग्नल्स को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धरती के भूकंप की ये भाषा आपके हमारे लिए खासे मायने रखती है, ये महत्वपूर्ण है और इसलिए इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। कोलंबिया के अंदर जो भूकंप आया ये वो एक फहरिस्त है, इससे पहले 7.4 की तीव्रता से ज्यादा का भूकंप वेनेजुएला में आया था, उसका ही करीबी देश है कोलंबिया, वहां भी 7 से ज्यादा की रिक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया, और ये सारा इलाका रिंग ऑफ फायर में है, यानी प्रशांत महासागर के इलाके में, जिस इलाके को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, यानी यहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी हैं, यहां पर सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं। जापान भी इसी रिंग ऑफ फायर के पास है, फिलीपींस भी इसी इलाके के पास है, और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि धरती जो है वो कुछ बताने, कुछ जताने की कोशिश कर रही है इस भूकंप की भाषा में। रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा भूकंप भी हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी आते हैं, और नाजका कोकास दक्षिण अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेट के अंदर टकराहट हुई जिसके कारण ये भूकंप आया, ये वैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन टक्कर से जमीन लगातार हिल रही है, इस पूरे इलाके के अंदर एक अस्थिरता देखने को मिल रही है, एक बड़ी आबादी इस इलाके के अंदर रहती है, साथ ही चीन से लेकर जो पूर्व एशिया का जो पूरा इलाका है वो यहां पर आता है, प्रशांत महासागर का जो बड़ा क्षेत्र है, कई द्वीप देश इस इलाके के अंदर है, वो सब इसकी जद में आते हैं, और साथ ही दक्षिण अमेरिका का जो हिस्सा है यानी अमेरिका का जो पश्चिमी कोस्ट है, पश्चिमी जो तट है, वो भी यहां से नजदीक है, और इसीलिए इस पूरे इलाके को जो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, 2026 में दक्षिण अमेरिका में 7 से ज्यादा की तीव्रता वाले 3 बड़े भूकंप आ चुके हैं, यानी हम महज 8 महीनों की बात कर रहे हैं, यानी 2026 के महज 8 महीने बीते हैं, और साथ ही इस दौरान 3 बड़े भूकंप 2026 में अब तक केवल इस रिंग ऑफ फायर के इलाके के अंदर आ चुके हैं, और हर साल 1,000 से ज्यादा भूकंप इस इलाके के अंदर आते हैं। क्या ये इंसान के लिए किसी नए किस्म का संकेत है? इसे पढ़ने की कोशिश वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, और ये सिग्नल बहुत मायने रखता है पूरी दुनिया के लिए, और साथ ही इस पूरी दुनिया के अंदर जो पावर प्ले चल रहा है उसके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिर जो सत्ता का खेल है, ताकत का खेल है, उसमें ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये प्राकृतिक चुनौतियां हैं, ये भी पूरे खेल को न केवल कॉम्प्लिकेट करती हैं, मुश्किल बनाती हैं, बल्कि बहुत सारी इबारत और उनका नतीजा भी तय करती हैं। तो पावर प्ले में आज हमारी इस पेशकश में बस इतना ही, बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: की माफी नहीं, बीजेपी ने की चौतरफा घेराबंदी। बंकिम चंद्र चटर्जी परिवार ने लिखा गांधी परिवार को पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बयान पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम ने भी किया हमला, बीजेपी का जवाबी हमला। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व है, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग, वरना सीएम आवास का होगा घेराव, आज राहुल गांधी और सोरेन का पुतला जलाने का प्लान। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बड़ी उड़ान, स्वदेशी जेट पावर दिव्यास्त्र MK3 की पहली टेस्ट फ्लाइट यूपी की टेस्टिंग एयर स्ट्रिप पर सफल, एयरफ्रेम से जेट इंजन तक सब मेड इन इंडिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। वंदे मातरम सिर्फ शब्द नहीं है, स्वतंत्रता संघर्ष की वो ध्वनि है जिसने गुलामी के दौर में करोड़ों भारतीयों के भीतर आजादी की लौ जगाई। लेकिन आज वही वंदे मातरम सियासत के केंद्र में है। कल 15 अगस्त को इसके गायन के दौरान सोनिया गांधी के खड़गे से बातचीत करने का वो वीडियो सामने आया तो बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय गीत के अपमान का मुद्दा बना दिया, सीधा आरोप मार दिया कि अपमान है। अब आज चित्तौड़गढ़ से गृहमंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर सीधा हमला बोला। सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत तक दर्ज हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आई है कि खड़गे की बैठने की व्यवस्था को लेकर सोनिया गांधी बात कर रही थी। लेकिन सवाल अपनी जगह पर अब भी खड़ा है, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त ही यह बातचीत क्यों, जब संसद से वंदे मातरम के सम्मान को कानूनी संरक्षण मिल चुका है, जब देश इसके 150 साल पूरे होने का वर्ष मना रहा है, तो क्या राष्ट्रीय गीत की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की नहीं है? राष्ट्र के प्रतीक सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, वो देश की धड़कन होते हैं। ऐसे में आज बीजेपी के पास सवाल है लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ सफाई। तो क्या यह विवाद फिलहाल थमने वाला नहीं है? आज इसी विवाद के इर्द गिर्द होगी सियासी बहस, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया। उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी का कुछ सेकंड का वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। 15 अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में एक वीडियो ने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया। वंदे मातरम का गायन चल रहा था और इसी दौरान सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करती नजर आई। बीजेपी ने संगीन आरोप लगाया, कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं। आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता।
0: बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम का वीडियो नहीं है, ये कांग्रेस की राष्ट्रवादी विरासत पर राजनीतिक सवाल खड़ा करने का मौका है। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ इसी वीडियो को आईना बनाकर भारत के 140 करोड़ लोगों को बता रही है।
1: सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
0: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं रहा, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस।
0: कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
3: हमारे महापुरुषों ने जो हमें बताया है, जो करके दिया है, उस पर बिना किसी क्वेश्चन उठाए हुए उस मार्ग पर हम चलेंगे, अगर आप हमसे पूछिएगा। दूसरा बात, आप तो प्रमाण थे। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का, तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंदर से हिला दिया है। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने चिट्ठी में जो लिखा उसका मजमून कुछ यूं है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है। वंदे मातरम गान उन राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल है जिन पर बहस सिर्फ विचारों की नहीं रहती बल्कि सीधे भावनाओं तक पहुंचती है। बीजेपी इसी भावनात्मक ताकत को कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक पूंजी में बदलना चाहती है।
4: ये वंदे मातरम का साथ राष्ट्रवाद, देश प्रेम और हमारी जो जातीयतावाद है इसका साथ गहरा संपर्क है। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
0: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रगीत सिर्फ शब्द नहीं है, उसके साथ इतिहास जुड़ा है, बलिदान जुड़ा है, राष्ट्रीय भावना जुड़ी है। इसलिए कांग्रेस मुख्यालय से उठी विवाद की गूंज निकलकर सीधे सियासत के केंद्र तक पहुंच गई। आज तक भी
5: तो अब जब बयान छोड़े जा रहे हैं इस पर सियासत शुरू हो गई है तो हम चर्चा भी इस पर करेंगे, राजनीतिक दलों से संवाद भी इस पर करेंगे और हम डिबेट की शुरुआत करने से पहले उन सवालों पर भी नजर डालते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी ये बहस आज रहेगी केंद्रित। सवाल नंबर एक, वंदे मातरम विवाद से बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ क्या बड़ा मुद्दा मिल गया है? सवाल नंबर दो, क्या कांग्रेस की सफाई बीजेपी के आरोपों के जवाब में काफी है? और सवाल नंबर तीन, राष्ट्रीय गीत के सम्मान की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जुड़े हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अतुल ओंढे पाटिल जी जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़े हैं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ आरएलडी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मलूक नागर जी भी जुड़े हैं। लेकिन आज अतुल ओंढे पाटिल जी शुरुआत आपसे करेंगे कि सिंपल सा सवाल, क्या आप कांग्रेस पार्टी बहाना बना रहे हैं कि भाई कुर्सी दी जा रही थी, जबकि अब आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हाँ मैडम जी रोकना चाह रहे थे लेकिन हमने तो पूरा गाया, यानी कि क्या कांग्रेस पार्टी को एक वोट बैंक के छिनने का, उसके नाराज होने का डर था?
6: नहीं, ऐसा है कि किसी को बहाना किसी को लगेगा तो बीजेपी को लगेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो स्वाधीनता संग्राम में वंदे मातरम कहते वक्त फांसी पे फंदा चूमना पड़ता था, गोली खानी पड़ती थी, तब तो इन्होंने कभी कहा नहीं। देश आजाद होने के बाद इन्होंने आज तक कभी उनके संघ के कार्यालय में या शाखा में कभी उन्होंने वंदे मातरम गाया नहीं, वंदे मातरम की कभी इज्जत नहीं की उन्होंने, ना राष्ट्रगीत की, ना देश के तिरंगे की, ना देश के संविधान की। तो बहाना उनको चाहिए, बहाना हमें नहीं चाहिए जिन्होंने फांसी का फंदा, जिनके पूर्वों ने,
5: कांग्रेस के लोगों ने, ये तो है, लेकिन कल जो हुआ वो क्या था? कल जो हुआ वो क्या था?
6: ऐसा है कि 85 साल के एक बुजुर्ग जो केवल दलित है करके उनको उन्होंने जहां प्रोग्राम लिया उत्तराखंड हल्द्वानी में उनके लिए यज्ञ करके शुद्धिकरण करने वाले ये नलायक लोग नहीं समझ पाएंगे कि उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत देर से खड़े थे तो उन्होंने कुछ चेयर मांगी थी। तो एक बुजुर्ग के प्रति, और सोनिया जी खुद जो है एक जूझ रही है बड़ी बीमारी के साथ, तो उसके बावजूद उन्होंने अपने अध्यक्ष की चिंता की, उसकी इनको प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ तो भी खोज के निकालना है इनको। इन्होंने ये बताया ना, इन्होंने वंदे मातरम का इज्जत कब किया? हमारे यहाँ हम जब वंदे मातरम गाते हैं हर प्रोग्राम में हमारे वंदे मातरम और राष्ट्रगीत होता है, ध्वजगीत होता है, हम क्या कहते हैं? कौमी नारा। पता ही इनको कौमी नारा क्या है? पांचों को पूछे कौमी नारा क्या है, पूछे पांचों को कौमी नारा क्या है,
5: ये मैं पूछूंगा। लेकिन अतुल जी अभी भी आप सवाल से मैं इधर उधर की बात नहीं, मैं सीधा जाना, क्योंकि हम मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत नजदीक से हम भी देख रहे हैं ना, हमने उनको राज्यसभा में देखा है, वो जब अपने भाषण रखते हैं, मतलब वो मैंने उनको काफी देर से मिनट है नहीं कई देर उनको खड़े खड़े देखा है। तो कल क्या हो गया ऐसा अचानक कि वो थक गए? और वो थकान सोनिया गांधी ने देख ली, बाकी किसी और नेता को वो थकान नहीं दिखाई दी, और सोनिया गांधी जो उनसे ज्यादा बीमार रहती है वो खड़ी थी, फिर वो इशारा तमाम तरह के करते हैं। अभी आप इसी सवाल पर रहिएगा।
6: हाँ। देखिए राजीव जी, वो बुजुर्ग 85 साल के हैं, बहुत देर से खड़े थे, बहुत देर हम उनको कभी खड़ा नहीं रखते हैं, बहुत देर उनका भाषण आता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो पोडियम पर ना आए, लेकिन वो पोडियम पर आते हैं, लेकिन हम उनको कभी भाषण 20-22 मिनट के ऊपर नहीं देने के लिए विनती करते हैं। हम उनको बैठने नहीं देते क्योंकि एक बार वो चक्कर आके गिरे हैं जब उन्होंने कहा था कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को कुर्सी से नहीं हटा देता हूं।
5: ठीक है,
6: ये आपको याद नहीं होगा शायद, लेकिन 85 साल के बुजुर्ग जो है उनके बारे में आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं नहीं बताइए आप बाकी ट्रेन तो खड़े रहते हैं अभी कैसे खड़े नहीं रहे। ये कैसा सवाल है राजीव जी? आपके घर में बुजुर्ग नहीं है क्या? किसी घर में बुजुर्ग नहीं है? बुजुर्ग की चिंता करना गलत है? और वो लोग हमको हमसे सवाल पूछ रहे हैं जिनके शाखा में जिनके पार्टी कार्यालय में कभी वंदे मातरम गाया नहीं गया, वो हमसे सवाल पूछेंगे?
5: ठीक है, बुजुर्ग होने का हवाला आप दे रहे हैं, ठीक है। तुहिन सिन्हा, इस पर आप बताइए कि भाई क्या बीजेपी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको दिखाना चाह रही है, क्योंकि इससे आपको एक तरीके से फायदा होगा, एक तरीके से ध्रुवीकरण भी इस पर होगा, सामने वाले पर तुष्टीकरण के भी आरोप लगाने का आपको मौका मिल जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि भाई कुर्सी दे रहे थे, बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, आपको आपत्ति क्या है?
7: नमस्ते राजीव जी, सबको नमस्ते। देखिए, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गीत का अपमान आज कांग्रेस की पहचान बन चुका है। ये एक इंसिडेंट नहीं था, ये जो लॉजिक आज जबरदस्ती दे रहे हैं कि कुर्सी मंगाई जा रही थी, तो कुर्सी तो पहले मंगाई जाती है, बीच गीत में जब दो स्टैंजास हो चुके हैं, आपने देखा है किसी को, और जब वो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। सोनिया गांधी को ऐसा प्रतीत हुआ, सोनिया गांधी को लगा कि शायद उनकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए दो स्टैंजास के बाद उन्होंने पता नहीं चेयर की गुहार की, या ये भी इनका वर्जन है। लेकिन बात एक इंसिडेंट की नहीं है। देखिए, हाल फिलहाल में ही पिछले कुछ महीनों में दो इंसिडेंट तो मैंने देखे हैं कि वो राष्ट्रगीत जो है वो प्ले किया जा रहा है, राहुल गांधी जो है बातें कर रहे हैं सर किसी फंक्शन में। पिछले दो साल से राहुल गांधी और खड़गे जी लाल किले में नहीं जा रहे हैं जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि उससे पहले कभी भी भारत के स्वतंत्रता के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट मुझे याद नहीं आ रहा है जब नेता प्रतिपक्ष इस तरह से रेड फोर्ट पर नहीं जाता है। और आपको तो याद होगा, दो दिन पहले जमीर अहमद जो कर्नाटका के मंत्री हैं औपचारिक पत्र लिखते हैं डीके शिव कुमार को कि मुझे ट्राइकलर, मुझे राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जिम्मेदारी से मुक्त की जाए, मेरे पास और काम है। तो इस प्रकार का जब आचरण लेके लोग चलेंगे तो ये एक इंसिडेंट तो था नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसके पीछे कारण क्या है। मैं इसको वयनाद सिंड्रोम कहता हूं। वयनाद में जो इनकी मजबूरियां हैं, जिस प्रकार से उन्होंने घुटने टेक दिए हैं IUML के आगे। देखिए, एक समय था 1905 में जब बंगाल को विभाजित किया था लॉर्ड कर्जन, तो उस समय यही गीत एक उद्घोषणा बन गया था दमनकारियों के विरुद्ध। आज जो है ये एक उद्घोषणा बन चुका है कट्टरपंथियों के विरुद्ध, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज उन्हीं कट्टरपंथियों का प्रतिनिधित्व केवल और केवल कांग्रेस।
5: लेकिन तुहिन सिन्हा जी, कांग्रेस को क्या आपत्ति होगी? 1896 से लेकर अलग अलग समय पर कांग्रेस अधिवेशन में बड़े शान के साथ, बड़े गर्व के साथ इस गीत को गाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर बड़े बड़े हस्तियों ने इस गीत को गाया है अधिवेशन में।
7: 1937 में क्या जरूरत पड़ी थी कि कट्टरपंथियों के दबाव में, जिन्ना के दबाव में आकर इसको हटा दिया जाए? कांग्रेस का पतन भी, कांग्रेस का जो अपीजमेंट है रेडिकल फोर्सेस के प्रति, वो भी लगभग उसी समय शुरू हुआ था, मध्य 1930s में। और तब से लेकर आज तक, आज तो खैर कांग्रेस एक फ्रिंज ग्रुप बन चुकी है। जिस प्रकार से जमीर अहमद ने खत लिखकर बोलते हैं कि मुझे मुक्त किया जाए जिम्मेदारी से, आपने कभी सुना है भारत के इतिहास में कोई मंत्री ऐसा लिखता है? तो मुझे लगता है कांग्रेस को जवाब देना होगा।
5: ठीक है,
7: कट्टरपंथियों के दबाव में एक वक्त काम
5: करती थी। ठीक है तुहिन जी, मतलब अतुल जी मैं चाहता हूँ, मतलब एक बात तो क्लियर हो गई अब कि अब आपको वंदे मातरम को पूरा गाने में सारे स्टैंजा में कोई आपत्ति नहीं है। ये तो आप इस बात को मानेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं डिफेंड करते हुए कि वो कुर्सी के लिए, उस जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो वीडियो वायरल हुआ है, वो सिर्फ कुर्सी के लिए हुआ है। कांग्रेस पार्टी पूरे सम्मान के साथ आप कह रहे हैं कि खड़ी, यानी कि आपको कोई आपत्ति है वंदे मातरम में नहीं है।
6: देखिए, अभी तुहिन सिन्हा ने और बीजेपी ने इस देश के सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े जाने माने विचारक, सबसे बड़े जाने माने स्वाधीनता सेनानी रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस दोनों का अपमान किया है। दोनों का अपमान किया इन्होंने, क्योंकि ये 1937 में CWC की सब कमेटी बनी थी, उसमें आचार्य नरेंद्र देव थे। इनको इतिहास मालूम नहीं है, क्योंकि 1900 वंदे मातरम तो पूरे जिंदगी भर वंदे मातरम जो है वो प्रेरित करते रहा, वो गाना जो है क्रांतिकारियों को, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है 1905 में व्हाट्सअप विश्वविद्यालय से आया होंगे पढ़ के, ये तब अमार सुनार बंगला लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जो आज राष्ट्रगीत है उनका बांग्लादेश का, वो अमार सुनार बंगला गाते गाते हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी, जो इन्हें चाहिए नहीं है, क्योंकि इनके पास विकास का तो कोई काम नहीं है, कोई अच्छा काम तो है, ये काम है तो पूरे ये नफरत के है, विभाजन के है, धर्म के नाम पे विभाजन के है, जात के नाम पे है, जेंडर के नाम पे है, विभाजन के सिवा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। तो ये एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, इनका अपमान किया है, क्योंकि उन्होंने जो सुझाया था वो स्वीकार किया गया। अभी संसद ने भारत के लिया, वो भी स्वीकार किया गया। हमने नागपुर में भी गाया, हमने पुणे में भी गाया, कल मैं पुणे में था तो पुणे में मैं प्रोग्राम में शामिल हुआ। तो नहीं गाना होता तो हमको ऊपर से आदेश आ जाते ना राजीव जी कि नहीं तीसरा स्थान हमें नहीं गाना है, और इनसे डरते क्या हम? लेकिन हम जोड़ने वाले लोग हैं, ये विभाजन करने
5: वाले मतलब लोग ये तो क्लियर है कि सारे स्टैंजा में कोई आपत्ति ही नहीं है आपको।
6: नहीं, देखिए एक बार संसद राजीव जी एक बार संसद ने पारित कर लिया, ठीक है, इनके पास सुनिए ना, इनके पास अपना बहुमत है, इन्होंने वो कर लिया, बहुत सारे गलत काम किए इन्होंने, चर्चा भी नहीं की। तो अब ये संसद ने पारित कर लिया तो हमने उसको मान लिया, क्योंकि संसद सर्वोच्च है, संसद का हम सम्मान करते। ये तो करते ही नहीं सम्मान, बड़े बड़े बिल जो है ऐसे ही पास कर देते हैं, संसद का अपमान। ऐसे जैसे गोडसे ने पैर छुए थे गांधी को मारने के पहले, वैसे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के पैर छूकर संसद की हत्या की है, संसद के नियमों की, संसद के परंपरा की, उसके पवित्रता की हत्या की है। तो ये बातें जो है एकदम स्पष्ट है। अभी बांसुरी स्वराज का मैं वीडियो दिखाता हूं आपको। ये बांसुरी स्वराज जी है, एक तो बेसुरे तरीके से गा रही है, ये देखिए
5: ऑडियो अतुल जी नहीं आ रहा है, या ऑडियो आप भिजवा दीजिए, ठीक है?
6: ऑडियो छोड़ो, आधा आधा रास्ता की छोड़ के चली गई।
5: अब ऐसे तो अब ठीक है, ये मैं इस पर जवाब दे लूंगा, तो ही ना आपके पास लौटूंगी। लेकिन मलूक नागर जी,
6: क्या बात कर रहे हैं राजीव जी, सवाल पूछो।
5: ठीक है, मैं इस सवाल पे सवाल और भी मेहमान हूं ना, सबके सबके पास जाऊंगा ना करके, तो ही जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। लेकिन मलूक नागर जी, जिसमें आपको असहज था, कमाल है, मतलब अतुल जी मैंने आपसे जो सवाल पूछे वैसे आप उनसे भी सवाल पूछे।
6: अब
5: आप
6: एक बात
5: नहीं, अभी रुकिए, अभी आप रुकिए, मैं आपके पास लौटूंगा। सिर्फ कांग्रेस को समय थोड़ी देना, बाकियों को भी समय देना ना।
6: पांच सेकंड, वंदे मातरम होता है हमारे यहाँ, भाषण होता है, उसके बाद हम कहते हैं कौमी नारा वंदे मातरम, उसके बाद कहते हैं आजाद हिंद सेना जिंदाबाद, ये हमारे नारे हैं, इनके नारे कभी नहीं हो सकते।
5: ठीक है मलूक नागर जी, मतलब जो आपको असहजता, जो आपको बेचैनी दिखाई दे रही है, मतलब कांग्रेस पार्टी की या सोनिया गांधी की, जो आप कह रहे थे वो एक्चुअल में आपकी तरफ से एक राजनीति का प्रयास है, वंदे मातरम में नई तरह की राजनीति ढूंढने का। और जो इस समय जो कॉन्ट्रोवर्सीज और तमाम तरह के सवाल इस समय आपके एनडीए गवर्नमेंट की तरफ है, उन सवालों से आप बचना चाह रहे हैं।
8: देखिए राजीव जी, सीधी सी बात है कि बिल को पारित होने से पहले वंदे मातरम पर जो डिबेट हुई देश की संसद में, और उस डिबेट में जो कांग्रेस ने लाइन ली कि पहले दो छंदी होने चाहिए।

0: खड़गे साहब में बातचीत हुई, तो कल मेरे साथ नेशनल टेलीविजन पे तीन अलग अलग चीजें आई। एक में कहते हैं उनके मनोज कुमार सांसद हैं कि सोनिया गांधी जी ने रोकने की कोशिश करी पर हमने पूरा गवाया, हमने कोई गलत काम नहीं करा, तो एडमिट फैक्ट हो गया कि सोनिया गांधी जी दो ही चाहती थी। एक में आया कि सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब थी और उन्होंने कुर्सी मंगाई और वो बुजुर्ग हैं, तो हमने कहा भी चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे, सोनिया गांधी जी डिक्लेयर कर देंगे उनकी तबीयत खराब थी। तीसरा चीज जयराम रमेश जी के द्वारा, तीसरी चीज आई जो इनके आलोक शर्मा जी हैं, कल नेशनल टेलीविजन पे थे, उन्होंने कहा कि खड़गे साहब की तबीयत कहीं खराब थी, उनको कुर्सी ला रहे थे और दलित शब्द लगा के दलित का सहारा लिया, और बाबा साहब अंबेडकर साहब भी दलित थे, उनके साथ क्या करा, खैर वो अलग बात है। तो इनमें अलग अलग जो वर्जन इन्होंने दिए, ये क्लियर हो गया कि 100% कांग्रेस में कन्फ्यूजन है। तो अभी भी अतुल पाटिल साहब जो हमारे बढ़िया मित्र हैं, ये साफ स्पष्ट कर दें और सीधी सीधी बात कर लें कि यहां गलती हो गई है या एक ये स्टैंड है। अब देश के संविधान के अनुसार और देश की संसद में पारित होने के बाद अगर इसका वायलेशन होगा तो ये गुनाह होगा और देश की जो नियम और कानून है संसद के द्वारा पारित करे गए हम सांसदों के द्वारा, उसके खिलाफ फिर एक्शन पे जाएगा। तो अभी भी इधर की उधर की इधर की उधर की बात कर रहे हैं। एक ये भी आई कि 1937 में कांग्रेस ने CWC में ये दो छंद पास कर दिए। इनको ये भी नहीं समझ आ रहा कि एक पार्टी की अपक्ष बॉडी है CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी,
1: ठीक है,
0: उसका कोई मायने नहीं रह जाता जब देश की संसद संविधान के अनुसार
2: जवाब देने
0: नियम और कानून बना तो अलग अलग इश्यू ले रहे हैं। अभी कन्फ्यूजन क्यों है? एक लाइन पे सीधी, अभी राजीव जी एक लाइन पे आपने सीधी पूछी है, पाटिल साहब इधर की उधर की जाते हैं, सीधा क्यों नहीं कहते कि क्या पूरे अभी भी ये वंदे मातरम पूरा गाया जाए इसके साथ है?
1: तो उन्होंने कह दिया है ना कि जो संसद से पारित है हम उसके साथ हैं। डॉक्टर आशुतोष, बीजेपी कह रहे कि कांग्रेस में तो कंफ्यूजन है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में क्लैरिटी है कि कल जो हुआ वो आपके नजरिए में क्या था, समाजवादी पार्टी उसको कैसे देखती है?
3: नहीं देखिए राजीव जी, दो चीजें हैं। नमस्ते सदा वस्तले करने वाले लोग आज वंदे मातरम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सबको पता है। असल में पूरी कहानी का बैकग्राउंड ये है ही नहीं कि वंदे मातरम की कौन इज्जत कर रहा है कौन नहीं इज्जत कर रहा है। ये हम भाजपा से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो राष्ट्रपति को की वो इज्जत करते हो। असल में मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो मेन मुद्दे हैं, जो आज देश के बड़े मुद्दे हैं, उससे भटका के कहीं और ले जाना चाहती है। और ये पुराना तरीका है, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो स्थितियां खराब हो रही है, 20 जुलाई को किसने पैलेट गन चलाया, किसने लाठी चलाई, किसने लाठियों में कील जला के हमारे बच्चों को मारा, किसने हमारी बच्चियों के साथ भौंदी हरकतें करी, अयोध्या में मंदिर चोरी दान में चोरी कैसे हो गई, और चंपत राय पे FIR क्यों नहीं हुई, ये बड़े मुद्दे देश में
1: ये मुद्दे हैं। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, जो कल हुआ
3: मेरी बात
1: उस पर क्लैरिटी से मतलब समाजवादी पार्टी का पक्ष मुझे समझ में नहीं आया कि क्या अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी ने या नहीं।
3: बिल्कुल देखिए, देश की 140 करोड़ की जनता को पता है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए संविधान में के देश से आजाद कराने के लिए क्या किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आज भी कंफ्यूजन है, तो मैं उस कंफ्यूजन में दो लाइनें पढ़ देता हूं। 1937 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस जी को एक पत्र लिखा और उसमें एक लाइन लिखी कि प्रिय सुभाष, वंदे मातरम का मूल संदर्भ मां दुर्गा की पूजा है, ना कि देशभक्ति। द कोर ऑफ वंदे मातरम इज अ हिम ऑफ गॉडेस दुर्गा, द सॉन्ग कैन नॉट बी एप्रोप्रिएट एज अ नेशनल एंथम फॉर ऑल कम्युनिटीज। और ये जो 1941 में फजलुल हक के साथ मंत्रिमंडल में बैठे थे, जिसको हम लोग श्यामा हक मंत्रिमंडल कहते हैं, वो हमको बता रहे हैं कि देशभक्ति, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है, एजेंडा बहुत कर छद्म राष्ट्रवाद में देश को फंसाओ और मूल मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष को किनारे कर दो।
1: ठीक है,
3: हम बहस राष्ट्रगान पे करते रहे और इस देश में बेरोजगारी की बात कोई ना करे।
1: ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपके आगे है, मैं तुहीन आपके पास लौटूंगा इसी सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर विशाल, क्या सब ध्यान भटकाने

0: की ही एक ये क्रिया चल रही है, समाजवादी पार्टी यही कह रही है।
1: ध्यान भटकाने का तो काम है ना, राम मंदिर के, राम
0: मैं आपके पास अतुल जी, मैं विशाल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास।
2: देखिए राजू जी, बहुत ही साफ गोई से अतुल जी जो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता हैं, वो ये कहकर बचाव कर रहे हैं कि कुर्सी मांगने की कोशिश हो रही थी। अगर कुर्सी मांगने की कोशिश भी हो रही थी तो क्या ये उस समय अनुशासन दर्शाया जा रहा था? और आप सवाल कर रहे हैं संघ और भाजपा की आंदोलन में भाग नहीं लिया, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं आशुतोष जी की नमस्ते सदावत्सले, नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में क्या दिक्कत है भाई आपको? हम नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि भी अटते हैं और वंदे मातरम भी गाते हैं। जो गीत स्वतंत्रता आंदोलन की प्राणवायु था उसको पूरा गाने में आपको क्या दिक्कत है? ये कहीं ना कहीं आपकी तुष्टिकरण की राजनीति दर्शाती है, साफ साफ स्वीकार करिए उसको। मैं आपको तथ्यों के साथ उत्तर दे रहा हूं, मुझे एक मिनट का समय दीजिएगा। पहले तो आपका उत्तर शुरू कर देता हूं कि आपने कहा कि संघ और भाजपा वालों ने योगदान नहीं दिया था, तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जाके जरा पता कर लीजिएगा कि अनुशीलन समिति के सदस्य और कोकेन के गुप्त नाम से परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी आदि संचालक क्रांतिकारी काम करते थे कि नहीं करते थे? असहयोग आंदोलन में उन्होंने पूर्ण स्वराज का नागपुर के सेशन में प्रस्ताव दिया था कि नहीं दिया था? और अरविंदो जी उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे उसके लिए पांडिचेरी गए थे कि नहीं गए थे? और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किस पर लगा था बताइए ना आप? और जब जेल से छूट के आए थे तो पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने उनका जो है सम्मान किया था, स्वागत किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जंगल सत्याग्रह किसने किया था? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परम पूजनीय सरसंचालक आदि सरसंचालक डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको याद है किसने किसने भाग लिया था? मैं आपको नाम बता देता हूं कि नागपुर के सरसंचालक अप्पा साहब थे और वहां के सिरपुर के बाबूराम जी थे, एकमात्र स्वयंसेवक मारे गए थे जो अंग्रेजों की गोली से मरे थे, उनका नाम था बालाजीपुर राव। और आप यहां पर कह देते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया? जिस स्वराज स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी उन्होंने नागपुर के सेशन में, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था उसको 1929 में, 9 साल बाद लाहौर के सेशन में स्वीकार किया। चलिए ये तो बात हो, ये तो बात हो गई एक तरफ। अब आइए, जब राष्ट्रीय कांग्रेस के ही अधिवेशन में पहली बार 1896 में गाया गया, तब आपके कांग्रेस का अध्यक्ष, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो
1: मुस्लिम थे,
2: रहीमतुल्ला सयानी जी थे। तब से लेकर 1937 तक आपत्ति नहीं हुई,
0: ठीक है?
2: 1937 में ऐसी कौन सी बात थी? और उसके बाद अब जब पास हो गया तो भी नहीं गाएंगे? नहीं सुनिएगा, क्यों? क्योंकि वो जो गलबहिया था ना, लखनऊ पैक्ट 1916, बताओ ना पब्लिक को, मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार कर लेना, कहां गया गलबहिया जो अंततः विभाजन को लेकर जो है उसका जो है समापन हुआ? बताइए ना कि अरे अभी भी केरला में वहां पे वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किसका हुआ? आप कह दो कि नहीं नहीं ये वाली मुस्लिम लीग नहीं है। तो अगर ये वाली मुस्लिम लीग नहीं है तो उस मुस्लिम लीग के से ही तो जुड़े थे, क्या नाम था उनका, मोहम्मद इस्माइल, ये वही वाली तो IUML आपने बना लिया जो है बाद में बन गई। तो जो ये तुष्टिकरण खेल रहे हैं ना राष्ट्रपति के साथ, आप बड़ा सम्मान आ रहा है, गाइए पूरे मंच पर खड़े होके।
0: ठीक है अतुल जी, इस पर मैं जवाब चाहता हूँ और साथ साथ प्रश्न भी है कि मैं ठीक है सर, मैं दूसरे मेहमानों के पास भी चलूंगा, जल्दी कंप्लीट करें। हाँ
1: एक सेकंड मैं सारा झूठ खोल दूंगा, 2 मिनट।
2: ये कि इनके कांग्रेस के नेता और इनके सपा के नेता, अभी जब वंदे मातरम पर डिबेट चल रही थी, पूछे क्या क्या बयान दिए थे, मैं नाम गिनाऊं क्या आपको? बताइए ना क्या क्या बयान दिया, ठीक है? गिनाइए पब्लिक को सामने, आप आज तक के चैनल पे
0: नहीं, सब लोगों ने देख लिया, ठीक है? विशाल जी, मैं चाहता हूँ अतुल जी इस पर जवाब
2: दें, पार्टी और कांग्रेस,
0: ठीक है अतुल जी इस पर जवाब दीजिए, लेकिन साथ साथ में ये भी बताइए ना कि आपको तो उस समय अनुशासन नहीं दिखाना चाहिए था कि जिस समय जब राष्ट्रगीत बज रहा था रुक जाते, मतलब एक मिनट की बात थी और पूरे जो है पूरा मैसेज जो है बहुत खराब चला गया।
1: सवाल बांसुरी स्वराज से पूछना, उसकी उम्र मेरे ख्याल से 35 के अंदर ही है।
0: सवाल सोनिया गांधी से तो आप कह रहे बांसुरी स्वराज से सवाल पूछे, उनसे भी पूछ लूंगा ना। मैं कह रहा हूं मैं यही सवाल ले जाऊं, मैं यही सवाल बीजेपी से पूछूंगा, लेकिन आप सोनिया गांधी से जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए।
1: राजीव जी, उसका जवाब मैंने दे दिया है, वो चेयर मांग रही थी, मैंने दे दिया जवाब।
0: राष्ट्रीय गीत के बीच में चेयर मांगेंगे?
1: सुनो ना बात, सुनो, क्या जान की अहमियत नहीं है? क्या जो बीमार लोग होते हैं वो बैठ कर नहीं करते, उनको वो सहूलियत नहीं है? बिल्कुल सहूलियत है, तो आपको छोड़ दीजिए। अभी एक बात सुनिए, मलुक भाई विशाल जी और तुहिन जी, यानी पूरे बीजेपी आरएसएस, और उनके सहयोगी ये कहना चाहते हैं कि इस देश के बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर ये तुष्टीकरण करते थे, ये इन्होंने आज कह दिया, पहली बात। दूसरी बात मलुक जी, कांग्रेस एचएसआरए और यही लोग लड़ रहे थे मलुक जी, और ये लोग के साथ मुस्लिम
2: कांग्रेस।
1: आप एक मिनट, मैं बीच में बोला नहीं विशाल जी, जरा डेकोरम रखिए, आपके उम्र का भी हम लिहाज कर रहे हैं। मैं आपने बोला, मैंने शांति से सुना, आपने जितने आरोप किए मैंने ये तो कहा नहीं कि देश का गृहमंत्री और देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, 20 दिन तक संसद में आने की हिम्मत नहीं है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जिसे कहने पर जिसे चूमकर गोली खानी पड़ती थी, फांसी के फंदे पर जानी पड़ती है, वो हमको ना सिखा है। अभी इतिहास सुनो, आपका इतिहास सुनो। हाँ गए थे वो जेल में, यहाँ पर हेगड़ेवार जी जो है जब कांग्रेस में थे वो अनुशीलन समिति में कहीं नहीं थे। एक तो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, क्या पाप करते हो कि रजिस्ट्रेशन से डरते हो, क्या पाप करते हो कि अपने सभा सदों का नाम नहीं लिखते हो, क्या पाप करते हो। नहीं, मैं देखो राजीव जी, मैंने सब सब शांति से सुना,
0: 30 सेकंड में कंप्लीट करेगा, सिर्फ 30 सेकंड में,
1: 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। फिर इन्होंने ये जेल में गए, जेल से बाहर आए, उनको उनका कोटी नहीं हो रहा था, वहां अंदर एडजस्टमेंट क्या की पता नहीं, उसके बाद आके इन्होंने आरएसएस खोला। जब 1942 का संग्राम चल रहा था, लोग फांसी के फंदे, लाखों लोग पेड़ से लटका दिए गए कांग्रेस के, उस इस देश की जनता उस वक्त ये लिख रहे थे बोलबलकर जी कि हमें जो है इसमें शामिल नहीं होना है, बिल्कुल शामिल नहीं होना है, ना सभी ने अवज्ञा में शामिल हुए, ना 1942 के क्विट इंडिया में शामिल हुए, पावर के लिए कह रहे थे।
0: ठीक है, 30 सेकंड सर कंप्लीटेड। ठीक है, ये वैसे तो आप लोग कहते हैं कि हम अभी हर बात पर पीछे चले जाते हैं, नेहरू पर चले जाते हैं, और आज आप इतिहास में जाना चाह रहे हैं, आज आप हर बात के लिए इतिहास में जा रहे हैं। ठीक है, तुहिन तुहिन, मैं विशाल जी लौट रहा हूँ, तुहिन तुहिन बहुत देर से खामोश है, लेकिन तुहिन तुहिन मतलब दूसरों का अपमान आपको दिखाई देता है, और अतुल जी कह रहे हैं सीधा कि आपके नेताओं ने अपमान किया, वो वीडियो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो अपने नेताओं का आपका आपको अपमान नहीं दिखता है?
3: 10 मिनट में बहुत सारे सवाल आए हैं, आप मुझे 1.5-2 मिनट दीजिए, मैं सारे सवालों का उत्तर देता हूं। देखिए जिस प्रकार से ये लोग, मतलब मुझे तो चिंता हो रही है खारगे जी की हेल्थ की, इतनी बार ये लोग कह दिए कि बीमार हैं, लेकिन जो है बीमारी में छुपाना क्या है। देखिए नड्डा जी भी बीमार है, भारत वो भी अस्पताल में है, हम तो सर्जरी नहीं कर रहे हैं, अगर ये कर दे मैं भी प्रार्थना करूंगा, पूरा देश प्रार्थना करेगा कि खारगे जी की तबीयत ठीक हो जाए, हम आपकी तरह नहीं हो
0: सकते। बहुत देर से वो चुप थे, आप इंतजाम ना करें प्लीज,
1: वो दलित व्यक्ति सरोज पद पे बैठा है, उसकी शुद्धि कर सकते हो आप, माफी मांगो उसकी पहले,
3: शांत करिए, मैंने तो
1: क्यों शुद्धि मोहन चलाई पहले, क्या एक दलित व्यक्ति सरोज पद पे बैठा है?
0: देखिए आप इंटरप्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे आपके आप जब बोलेंगे तब वो इंटरप्ट करेंगे, फिर मैं उनको भी नहीं रोक पाऊंगा, फिर आप अब सुनिए ना, देखिए वो जब आप बोल रहे थे वो नहीं, वो हाँ तो आपको समय दूंगा ना, आपको समय दूंगा, आप जवाब दे दीजिएगा, आपके आपके पास तर्कों की कमी नहीं होगी, मैं तो आप इंतजार कर लीजिए धैर्य पूर्वक। हाँ तो इन बोले हम
3: और प्रॉब्लम आने वाली है, देखिए अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया, तभी तो गीत बज रहा था फुल फॉर्म में। देखिए कांग्रेस पार्टी दिखावा कर रही है स्वीकार करने का, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आपत्ति केवल सोनिया गांधी जी को है, और मैं आपको
1: तो आपने के साथ आज तो आपने सुभाष चंद्र बोस रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी अपमानित कर दिया।
3: खामोश करिए,
0: अतुल जी आप सीनियर लीडर हैं, अतुल जी देखिए ये दूसरी डिबेट्स में होता होगा, मुझे तो यही पसंद है कि जब मैं जिसका नाम लूं वही बोले तो ज्यादा अच्छा है, प्लीज मैं अतुल जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, आप सम्मान करिए ना दूसरे पैनलिस्ट का प्लीज, तो जी एक मिनट में आप कंप्लीट करिएगा, आपकी बात ही नहीं,
3: पूरे डिबेट में अब तक पूरे डिबेट में दिमागी नक्सल शब्द नहीं आया था, लेकिन ये दिमागी नक्सल की तरह बिहेव कर रहे हैं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए इन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया तभी प्ले हो रहा होगा फुल फॉर्म में, देखिए कांग्रेस पार्टी दिखावा कर रही है, मुझे लगता है सोनिया गांधी जो है कट्टर पंक्ति में बाकी लोगों से, बाकी कांग्रेसी नेताओं से कहीं आगे है, और मैं आपको उदाहरण के साथ कह रहा हूं कि जब सलमान खुर्शीद ने खुद स्वीकार किया है कि पटना हाउस में जब एनकाउंटर हुआ था तो सोनिया गांधी आंसू बहा के रो रही थी, पिछले एक साल में 3-3 आर्टिकल उन्होंने पैलेस्टाइन के विषय पर लिखा है, कितना लिखा है कश्मीर के विषय पर, तो मुझे लगता है सोनिया गांधी जी को आपत्ति थी, ये कैमरा ये बयान कर रहा है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा राजीव जी कि देखिए जो लोग वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते हैं, स्वाभाविक है कि जब जेएनयू में 2016 में नारे लग रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो कौन नेता था जो सबसे पहले उनके समर्थन में गया था? वही नेता था जो इस वक्त प्रतिपक्ष है।
0: अतुल जी 30 सेकंड, फिर आशुतोष जी मैं आपके पास, ठीक है तो इन आपकी बात है। अतुल जी आप डिफेंड तो कर रहे हैं, लेकिन एक एक जो है मैं चाहता हूं कि आप इस पर क्लैरिटी से अपनी बात रखेंगे, ठीक है? स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हाँ, गलती हो गई है, मतलब गलती स्वीकारने में क्या दिक्कत है? उसके लिए जो तमाम तरह की दलीलें जा रही हैं, मतलब जो आप तर्क के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे तरीके से स्वीकार्यता नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि ये कुर्सी मतलब
1: नहीं ठीक है, इनके एक्सेप्ट इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देश में, इनके एक्सेप्ट उसकी हमको जरूरत नहीं है।
0: तो जो उनके वंशज
1: हमारे देशभक्त, सुनिए ना राजीव जी, हमारे देशभक्त हमें
0: तो चैटर्जी का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि ये तो अपमान है, पत्र तो उन्होंने लिखा है ना।
1: हाँ ठीक है, वो बीजेपी में है, छोड़ दो उनको।
0: अच्छा,
1: ये ऐसा है कि जो बीजेपी में गए तब उन्होंने माफी मंगवाई क्या बीजेपी से? सौमित्र चटर्जी को मेरा यहाँ से सवाल है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उन पुरखे है ना, तो उन्होंने बीजेपी को पहले सवाल पूछा क्या कि पहले आप माफी मांगो, आपने वंदे मातरम का बहुत अपमान किया है, देश के तिरंगे का अपमान किया है, देश के संविधान का अपमान किया, फिर मैं आपके पार्टी में आऊंगा? छोड़ दो उनको। अब रही बात इनको टू स्टेट पॉलिसी की, बताता हूं मैं पैलेस्टाइन के बारे में। हाँ, इन्होंने आज अपने ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी ठुकरा दिया है। टू स्टेट पॉलिसी जो है वो टू स्टेट पॉलिसी इसलिए है, जिस तरह से यहां वहां गए वो लोग और जो एक्ट हुआ था उस एक्ट के खिलाफ जो आज बिहेवियर चल रहा है, आज हमारा पीओके भी पाकिस्तान ने लिया, जो हमारा है वो हमें वापस लेना है। अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हो ना टू स्टेट थ्योरी, तो तुम्हारा कश्मीर भी धोखे में आ जाएगा। ये तुम्हारे क्या बोलते हैं अकल में कौन डालेगा? तुमको अकल है क्या किसी चीज की? तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, उस सोनिया गांधी पे आप सवाल खड़े करते हो जिसके गोदी में 36 गोली खाकर उनकी सास ने दम तोड़ा, जिसने अपने पति को उठा के लाया, हाथ कहाँ है पैर कहाँ है, फिर भी वो इस देश के लिए लड़ती रही, कभी सर से पल्लू नहीं गिरा, वो सोनिया जी को आप सवाल पूछते हो? वो लोग सवाल पूछ रहे जो अंग्रेजों के मुखदरी करते थे, जो अंग्रेजों के तलवे छाटते थे, वो सोनिया जी को सवाल पूछ रहे?
0: ठीक है, ठीक है,
3: सलमान खुर्शीद ने आरोप लगाया,
0: ठीक है 10 सेकंड में बोल दीजिए। अगर आपको सही मायनों में सेक्युलरिज्म सीखना है तो वो सोनिया गांधी से सीखे, तो ही
1: क्या जवाब देंगे और क्या बोलेंगे?
3: मैंने नहीं कहा
1: था जवाब देंगे, इनके पास क्या है, इनके पास बताने के लिए क्या है? आज इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ठुकरा दिया,
3: आप लोगों ने हाइफनेशन बना दिया।
0: अब दोनों साथ में बोल रहे हैं, दोनों की बात नहीं आ रही है, और मैं नहीं चाहता कि दर्शक किसी भी तरह से कंफ्यूज हो, क्योंकि हम दर्शकों को कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं। दोनों का क्लियर स्टैंड आना चाहिए। मैं एक एक करके लौटूंगा। मलुक नागर जी, मतलब क्या तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये हो रहा है, ये जो है राष्ट्रवादी बना जा रहा है?
4: राजीव जी, मुझे आपसे भी बहुत बड़ी आपत्ति है, अतुल पाटिल साहब से तो बड़ी से बड़ी आपत्ति है। इन्होंने अभी कहा कि पीओके को ले नहीं तो जम्मू कश्मीर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, देश के खिलाफ।
1: अरे मैंने पीओके की बात
4: इतनी बड़ी बात नेशनल टेलीविजन आज तक बोलना
1: टू स्टेट थ्योरी मालूम है क्या? समझती
4: क्या बेकार बेकार की बात है? पूरी कांग्रेस को साथ मिला लो और कश्मीर की तरफ देखा भी तो वो बिल्कुल ये समझ लो कि ये गुनाह है, ये पाप है, ऐसा सोचना नहीं गलत है। ये किस तरह बोल सकते हो आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के? आपको हर जगह यही दिखता है, आप व्यक्तिगत दृष्टि पर नहीं सीखा।
1: अच्छा,
0: अगर आपको कंफ्यूजन है भी, पहले तो मल्लुक जी उन्होंने टू नेशन थ्योरी के संदर्भ में उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन कोई अगर फिर भी कंफ्यूजन है, चूंकि मामला संवेदनशील है और मैं किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक बार उन शब्दों को अतुल जी आप दोहरा दें, आपने क्या कहा, ताकि ज्यादा क्लैरिटी आए तस्वीर।
1: फिर से कह रहा हूँ, हाँ, टू स्टेट थ्योरी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सबने एक्सेप्ट की थी। टू स्टेट थ्योरी पैलेस्टीन को 55% 45% इजराइलीज को, ये एक्सेप्टेड फार्मूला है। इजराइलीज ने एनक्रोचमेंट किया, उनको खाली करना पड़ेगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक पब्लिक स्पीच में अपने कहा था, अपनी पॉलिसी देश की क्लियर की थी। आज हमारे J&K में, आज हमारे पीओके जो पीओजे के है उसमें पाकिस्तान ने एनक्रोचमेंट किया है। आज हम अगर इलीगल जो एनक्रोचमेंट है इसराइल का वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हम पैलेस्टीन में, तो फिर ये इसके लिए क्या जवाब देंगे हम?
0: मल्लुक जी, ये थे
1: क्योंकि हमारा है उसको वापस लेना, यही हमारी बाकी बात है। अगर पीओके कुछ बात है तो हमें वापस लेना
0: है। ठीक है, मल्लुक जी, मल्लुक जी,
1: 55 में ये 1995 में नरसिंह राव जी ने लाल किले से कर दिया था।
4: मुझे बोल
0: रहे अतुल जी, हो गया आपने उनको सुनिए, अतुल जी उनको सुनिए,
4: नहीं सुनिए, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का नाम लेकर भी कोट करके अगर आज की तारीख में इस तरह बोलेंगे तो दूसरे किसी देश में वायरल करेंगे कि आज इस तारीख को इस समय आज तक पे ये कहा गया। ये घोर आपत्ति है किसी
1: अरुणाचल प्रदेश में घुस गए हैं प्रधानमंत्री चुप है।
0: अच्छा सही तरीका नहीं है
4: राजीव जी।
0: अतुल जी नहीं, उनको कंप्लीट तो करने दे, 30 सेकंड में आप कंप्लीट करें, फिर आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूँ।
4: राजीव जी
0: अतुल जी प्लीज ऐसे आप डिस्टर्ब करें। अतुल जी मुझे आप कहना पड़ेगा, मैं मतलब जो संसद में होता है वहां पर भी हंगामा होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा है कि जब दूसरे मेहमान बोल रहे हैं उस समय भी अतुल जी आप बोल रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। आप बहुत सीनियर आदमी, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपको समय दूंगा प्लीज। मैं दूसरे मेहमानों को भी नहीं, मैं सब मैं नहीं, ये अच्छा ही नहीं है ना, प्लीज सही है। मैं सब देखो, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए बोलने का। 30 सेकंड में लोगे, सिर्फ 30 सेकंड।
4: राजीव जी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा नक्सल दिमाग, तो जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा था, तो पंजाब में जहां पे आप पार्टी की सरकार है, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने जो कुछ लोगों को उग्रवाद से संबंधित पकड़ा, उन्होंने खुलासा करा कि उनमें से कुछ लोग जो युवाओं का, स्टूडेंट्स का, जैन जी का, जैन अल्फा का साथ लेकर अंदर घुसे, उनमें से कुछ नेपाल की तरह, श्रीलंका की तरह या बांग्लादेश की तरह करना चाहते थे।
0: ठीक है,
4: तो जो उनके पीछे दिमाग है वो नक्सल दिमाग था, और अगर इस तरह देश के खिलाफ कोई बात जाए तो मैं उनको भी नक्सल दिमाग।
0: आशुतोष जी, आशुतोष जी
5: देखिए राजीव जी मैं बातें सुन रहा था, नॉर्मली विशाल मिश्रा जी जो संघ के हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन एक बात उनकी बिल्कुल सही है कि व्यक्तिगत रूप से हेड गेवाड़ जी ने सविनज्ञा आंदोलन में अपना हिस्सा लिया था, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सच है। लेकिन उसके बाद कितना विरोध झेलना पड़ा था, यहां तक उनको अपने सर संचालक की पदवी छोड़ना पड़ गया। और ये तो सबको पता है ना कि बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर ने साफ साफ लिखा कि एंटी ब्रिटिशिज्म जो पेट्रियोटिज्म को इतना इक्वेट किया गया है ये डिजास्ट्रस है, और 1942 में कहा कि संघ डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश डायरेक्टली। यहां तक बॉम्बे की जो होम डिपार्टमेंट ब्रिटिश के वहां से रिपोर्ट आती है उसमें लिखा कि संघ हैज रिफ्रेंड इटसेल्फ फ्रॉम टेकिंग एनी टाइप ऑफ ब्रोकआउट इन अगस्त 1942, साफ साफ है। और खुद
0: आशुतोष जी ठीक है, मैं फिर इतिहास में मतलब वो एक अलग विषय, लेकिन जब साफ साफ यहाँ पर आपको सारी जानकारी है, चीजें दिख रही हैं, तो यहाँ साफ साफ क्या कांग्रेस पार्टी ने अपमान नहीं किया, वो आपको नहीं दिख रहा है?
5: बिल्कुल अपमान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भटकाने की ये चाल है, इसमें बिल्कुल ना फंसे। मुद्दे वही है जहाँ है, मुद्दे आज भी अमित शाह के ऊपर है, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सदन में प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं।
0: ठीक है विशाल जी, मैं आ रहा हूँ तुम आपके पास। विशाल जी
2: देखिए, आशुतोष जी आपने गूगल किया, अच्छी बात है, लेकिन आप शायद गूगल में ये नहीं पाए कि उन्होंने सर संघचालक की जिम्मेदारी माननीय प्रांजपे जी को सौंप दी थी, उनसे छीना नहीं गया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नंबर एक। नंबर दो बात, आप आईबी की रिपोर्ट कोट कर रहे हो सर, तो कम से कम ये भी तो कोट कर दो कि किस तरीके से अंग्रेज भयभीत हो गए थे संघ की एक्टिविटीज को लेके। आप कोट करेंगे या मैं यहाँ पे अपने फोन पे दिखाऊं, मेरे पास है ना बस। अब नंबर तीन, अरे आप बता दो, आपके अपने सांसदों ने, नेताओं ने वंदे मातरम को लेकर पूरे पढ़ने को लेकर आपत्ति जताई कि नहीं जताई? आप झूठ बोलते हैं, और तब आप कांग्रेस को कैसे आप जो है कहेंगे कि नहीं उन्होंने गलत किया? आपके भी तो लोगों ने डिबेट में क्या क्या क्या क्या नहीं बोला,
5: रवीन्द्रनाथ
2: क्या नहीं बोला आपके लोगों ने, बताएंगे आप, बताइए पब्लिक को। अपमान जो किया गया तो कई अपमान किया गया है, कुर्सी मांगी गई थी तो कुर्सी पहले भी मंगाई जा सकती थी, लेकिन ये देश है, ये पब्लिक सब जानती है, आप बच नहीं सकते कि कुर्सी मांगी गई थी। आप ही के नेता फिर तीन बातें कहते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू नहीं आ सकती कागज के फूलों से। आशुतोष जी डोंट डिफेंड द रॉन्ग, गलत को डिफेंड मत कर।
1: राजीव जी,
0: मैं अतुल जी लौटा, मैं चाहता हूँ तुहिन की बात आ जाए फिर आपके पास आऊँ, ठीक है? डन, विशाल जी बात आगे, तुहिन जी नहीं, तुहिन जी
5: को ही कोट कर चुका हूँ।
0: आशुतोष जी प्लीज अभी लौटूंगा, तुहिन जी, तुहिन
5: राजीव जी ये बात क्लियर
0: कर दीजिए।
5: रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद सुभाष चंद्र बोस को लिख के बोला था कि ये नेशनल एंथम में पहले दो स्टैंजा ही रहना चाहिए,
0: और हम उस इतिहास की बात है ना, आप तो जो संसद ने स्वीकार किया उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं?
5: हम तो बिल्कुल बोल रहे हैं
1: राजीव जी
0: ठीक है।
1: अगर ऐसा होता तो
3: कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर
1: कांग्रेस ऑफिस में एक मिनट
0: अतुल जी, मैं तुहिन जी की बात आपके पास ही आ रहा हूँ, तुहिन कंप्लीट कर ले।
3: इलेक्शन हो रहे थे, हमने बार बार राहुल गांधी से कहा कि
0: सवाल में एक बार सुन लीजिए, क्यों महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, आप वंदे मातरम के अपमान, मतलब उस पर आपका सारा का सारा फोकस है, आपका ज्यादा फोकस महंगाई बेरोजगारी कम करने पर, जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोकने पर नहीं होना चाहिए? कि सबसे ज्यादा अगर मतलब राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है या अपमान होता है तो वो तब होता है।
3: राजीव जी, इसी सत्र में सबसे निर्णायक प्रिवेंशन ऑफ पेपर लीक एक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन पास किया गया, एक ऐसा संशोधन जो कि संभवतः इसको रोकेगा पेपर लीक की प्रक्रिया में। हमें लगा था कि पेपर लीक माफिया इससे घबराएगी, वो लोग जो है सबसे ज्यादा आक्रोशित होंगे। तब से जो है 29 जुलाई जिस दिन ये पास हुआ, तब से कांग्रेस जो है और आक्रोश में बाधित करना शुरू की पार्लियामेंट को। तो ऐसा नहीं है कि हम उन विषयों के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, उसका निदान नहीं ढूंढ रहे हैं। आप ही ने देखा होगा पूरा, आप जो इन्फ्लेशन का दर कैलकुलेट कर लीजिए, आज भी हालांकि पिछले 12 साल से थोड़ा ऊपर स्तर पर है, 4.5-4.6% पर है, इनके जमाने में वो कभी 10% से कम आता ही नहीं था, यूपीए 2 की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसा नहीं है कि उन विषयों पर हम चिंतित नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा विषय है। चूंकि इन्होंने कश्मीर के बारे में बात की है, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाह रहा था कि अक्टूबर 2024 में हम इलेक्शन के पहले कश्मीर में हमने बार बार राहुल गांधी से कहा था कि आर्टिकल 370 के बारे में अपना स्टैंड क्लियर करें। राहुल गांधी ने कैसे क्लियर किया? अमरीका जाकर इलाना उमर, जो कि सबसे ज्यादा कश्मीर के समर्थन करती है, उससे मिलकर किया था। तो ये तो कांग्रेस की नियति है। ऑपरेशन सिंदूर के भव्य जीत के मात्र 10 दिन बाद उन्होंने उस जीत को सरेंडर में तब्दील करने का कुप्रयास किया था। तो ये कांग्रेस की आज की सच्चाई।
0: ठीक है अतुल जी, आप मतलब बीजेपी अगर राष्ट्रीय गीत के अपमान पर चिंतित होती है तो ये तो उचित है ना? बीजेपी कह रही है कि हम दूसरे मुद्दों को लेकर भी उतना ही फोकस्ड हैं, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय गीत का अपमान करें उस पर हम खामोश रहे तो ये कितना उचित है?
1: नहीं, कोई अपमान अगर होता तो हम पूरे पूरे देश भर में जो कांग्रेस के कार्यालय है,
0: मनोज कुमार के स्टेटमेंट पर भी बता ही दीजिए, वो कह रहे हैं कि हाँ सोनिया गांधी ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम उसके बाद भी पूरा गीत हमने
1: वो नहीं। वहां पर एक बात सुनो, अगर ऐसा होता तो देश भर में कांग्रेस के सभी कार्यालयों में पूरा वंदे मातरम गाया नहीं जाता, संसद ने पारित किया था। अब सुनिए, अभी ये इतनी बड़ी बड़ी तुहिन जी बातें कर रहे थे, ये हमको बताएंगे? हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी है बचा हुआ कश्मीर वापस लेना, इसीलिए जो है ना वो 24 सीटें खाली छोड़ी थी, 86 पे चुनाव होता था, 115 सीटें जो थी वो उसीलिए थी कि उसके ऊपर का क्लेम हमने कभी छोड़ा नहीं और वापस कांग्रेस ले सकती, इनमें कोई दम नहीं है। इनमें दम नहीं है क्योंकि सिंदूर को मैंने रोका 70 बार कहा वो ट्रंप ने, लेकिन इनमें दम नहीं है कि पलट के जवाब दे। वो टैरिफ टैरिफ पे टैरिफ ठोक रहे हैं, इनमें दम नहीं है कि पलट के उनको जवाब दे। अरुणाचल में चाइनाइज आर्मी घुस गई है, नो ट्राइब जो है वो कह रही है कि 50-60 किलोमीटर आई है, वहां के लोग कह रहे हैं इनमें दम नहीं है जाके वहां पे बात करें और देश की सीमाओं का सुरक्षा करें। इनमें दम नहीं है कि 6 शहीद हो गए?
0: ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी को पूछ रहे थे मैं, तो इस पर आप जवाब दीजिए कि भाई
3: रक्षा मंत्री
0: रुपए की वैल्यू गिर रही है, दूसरी इतनी सारी दिक्कतें हैं, ट्रंप इतना लगाते हैं, विदेश नीति फेल हो गई आपकी, लेकिन आपको वंदे मातरम करें क्योंकि आपकी जेन ज़ी ये समझ रहा है कि ज्यादा बड़ी परेशानियां क्या है, वंदे मातरम का अपमान या फिर टैरिफ, रुपए का गिरना, तमाम दूसरी इन्फ्लेशन एंड ऑल।
3: हमने जो किया ही नहीं उसके क्यों लाद रहे हो?
0: जवाब तो आपका ही सवाल, तो फिर अतुल जी आप फिर मेरे पर आरोप लगा देंगे, मैं सुन तो आप ही के सवाल मैंने पूछ लिया, उनको जवाब तो देने दें आप।
3: तो इस बार 6ठा या 7वां साल है, एग्जीक्यूटिव साल है, जब भारत का ग्रोथ दर जो है वो लार्जेस्ट में सबसे इतनी मुसीबतों के बाद भी 6.8% है। तो इकोनॉमी की रक्षा भी कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, जहां डिफेंस का उत्पादन इनके जमाने में होता ही नहीं था,
1: 4.6% से 2.5% तक लाया। महंगाई में आंकड़ों का खेल करके महंगाई कम दिखा रहे, 70 रुपए का तेल 200 रुपए हो गया, 72 रुपए का पेट्रोल।
0: अतुल जी आप ही बोलते रहेंगे तो हम उनको कैसे सुनेंगे? आप ही के सवाल, फिर जब आप ही सवाल ही सवाल दागते रहेंगे तो जवाब कब मिलेगा?
1: झूठी बोल रहे ना, वो झूठी बोल रहे, क्या दूसरा क्या कर रहे
3: पूछ रहे हैं?
0: 20 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, समय कम
1: बोल रहे
3: कि हम जानबूझकर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं कर रहे हैं क्योंकि चाइना का गुस्सा आएगा। आज जिस लेवल पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है
1: वो अरे देश के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं।
3: ये आर्मी
1: दो महीने में रोड खराब हो जाते हैं, 70 पुलिया गिर जाते हैं और आप बॉर्डर की बात करते
3: नहीं हुआ है।
1: तो ये माउंटेन कॉर्प्स, हमने 5000 का माउंटेन कॉर्प्स बनाया था, वो डिसबैंडल कर दिया आपने।
0: ठीक है, डन डन। तो ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास क्योंकि आवाज भी आपकी क्लियर नहीं आ रही। लेकिन मलूक जी, मतलब अपमान से क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं है। स्वाभाविक है कि जो हुआ उस समय राष्ट्रीय गीत तो बज ही रहा था, लेकिन एक इस तरह से कॉन्ट्रोवर्सी क्या क्रिएट करने का प्रयास नहीं हो रहा था कि दूसरे मुद्दों से ध्यान भटके। मतलब अपमान से तो ऑब्वियसली कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, और इतना तो वो भी समझते हैं कि हम अपमान किसी भी सूरत में, और वो भी जो सब चीजें लाइव चल रही तो नहीं ही करेगी।
4: देखिए राजीव जी, पूरा देश देख रहा है, और संसद में बिल पारित होने से पहले ये संसद में कुछ भी बोलें, कोई स्टेटमेंट दें, अपनी पार्टी में 1937 में जो हुआ, CWC में कुछ भी करें, देश का कानून बनने के बाद अगर देश का कानून कोई तोड़ेगा तो प्रश्न भी उठेंगे, पूछा भी जाएगा, एक्शन में भी बात जाएगी।
0: तो अब वही मलुक जी बता दीजिए, तो क्या उन्होंने व्यवधान या बाधा उत्पन्न की है, या उन्होंने राष्ट्रीय गीत का अपमान किस श्रेणी में आपको दिख रहा है?
4: सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह रही है, अभी इन्होंने एक दोबारा फिर कह दी पाकिस्तान से बारे संबंधित। इन्होंने कहा हम तो लेके आते, इनके बस का कुछ नहीं है। अरे 26/11 जब मुंबई में हुआ, पूरा वर्ल्ड दहला, पूरे वर्ल्ड ने देखा। उसके बाद समझौते में जो आपने रकम दी, दोनों देश आतंकवाद के शिकार है, वो 55,000 करोड़ है। और पिछले साल जो घटना घटी, हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, फिर घुस के मारेंगे। आपके बस की कुछ नहीं था, आप में लीडरशिप नहीं थी, आप कहना ना करा, आपने बम्बई में कितने लोग मरवाए, आपके बस की कुछ नहीं था। हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, घुस के तोड़ा, घुस के ठोका, फिट हो गए। आप केवल कहना कहना जानते हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे आकर। आपको शर्म भी नहीं आती जब 26/11 मुंबई के रहने वाले हैं, आप क्या हुआ आपको पूरी तरह पता है, और आप कानून तोड़ रहे हो, उसको बचाव कर रहे हो, कुछ ना कुछ बोल रहे हो।
0: समय बड़ा कम है, लेकिन विशाल जी आप भी बता दीजिए, अगर अपराध हुआ है तो फिर उसका तो एक सजा भी होगी, तो आपको लगता है कि उनको सजा, मतलब उन पर कार्रवाई होगी सोनिया गांधी पर, या होनी चाहिए?
2: देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी कार्रवाई तो जनता की अदालत में होती है, जनता देख रही है। और यहां पर अभी कह रहे हैं कि बहस नहीं हुआ, बेरोजगारी और ये और वो और नीट का पेपर, तो इसे पूछिए। जब माननीय गृहमंत्री जी बार बार कह रहे थे कि आइए सदन में चर्चा करें, तो क्या इनका इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है विपक्ष की कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का जो है निर्वहन करें? लेकिन इनके नेता जी, युवराज जी, वो मतलब उनको अपने विपक्ष की जिम्मेदारियों का एहसास है। मंच पर खड़े होकर अभी परसों नरसों क्या हम लोग डिबेट कर रहे थे, किस प्रकार से वो टिप्पणी हो रही थी, वो जो है एक जो है विदेश के राष्ट्राध्यक्ष को लेकर, महिला को लेकर, ये सब जो है किसी तरीके से अनुशासनात्मक या गंभीर जो है नेतृत्व को दर्शाता है।
0: ठीक है अतुल जी, लास्ट 20 सेकंड्स। अतुल जी,
1: देश के प्रधानमंत्री के साथ AI का वीडियो जनरेट करके इनका IT सेल डांस करते हुए डालता है, मेलोनी के साथ, मेलोनी के साथ जितने इन्होंने वीडियो बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी के, वो कितने गंदे और दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के बारे में कहते हैं, क्या क्यों बच्चों ने ये कहा सब?
0: चलो ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड्स।
3: देखिए आखिरी के 10 सेकंड है, मैं भ्रष्टांतर नहीं करूंगा। सत्य यह है कि कांग्रेस पार्टी आज की आधुनिक मुस्लिम लीग है, लेकिन फिर भी इनको वायनाड की अपनी मजबूरियां वायनाड में छोड़कर दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि देश देख रहा है, और देश ये जो है।
0: मुझे माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा है, समय इतनी इजाजत दे रहा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहरहाल देश की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, उसको पता है कि कब अपमान हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, कब मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, कब नहीं भटकाया जा रहा है। और राजनेताओं को शायद लगता है कि उनको कुछ पता नहीं, तो ऐसा नहीं है, उनको सब पता है। तो रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
3: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
4: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
3: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
5: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
6: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
7: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
8: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
3: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
3: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
2: नहीं सर।
3: 12th किससे की हो?
2: 12th सर मेरा PCM से रहा।
3: कंपाउंड क्या होता
2: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
3: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
2: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
3: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।
4: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: दंगल के बाद अब आगे देखिए हल्ला बोल अंजना ओम कश्यप के साथ।
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप की माफी नहीं, बीजेपी ने की चौतरफा घेराबंदी। बंकिम चंद्र चैटर्जी के परिवार ने लिखा गांधी परिवार को पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बयान पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम रमेश ने भी किया हमला, बीजेपी का जवाबी पलटवार। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती आवाज। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त परीक्षा रद्द करने सीबीआई जांच की मांग, वरना सीएम आवास का घेराव, आज राहुल गांधी सोरेन का पुतला जलाने का प्लान। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बड़ी उड़ान, स्वदेशी जेट पावर दिव्यास्त्र MK3 की पहली टेस्ट फ्लाइट, यूपी की टेस्टिंग एयर स्ट्रिप पर सफल, एयरफ्रेम से लेकर जेट इंजन तक सब मेड इन इंडिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारियों में सभी पक्ष अभी से ही जुट गए हैं, ये साफ दिख रहा है। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तो अब लंबे वक्त से लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और इसी कड़ी में वो पहुंचे अयोध्या। अब बात यही है कि जिस तरह से अयोध्या में 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सीट हासिल की, क्या वहीं से एक बड़ा चैलेंज बीजेपी महसूस कर रही है और ये समझ रही है कि अगर अयोध्या को हम जीत गए तभी 2027 का रास्ता निकलेगा। तो कुल मिलाकर पूरी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या जो 24 के चुनाव में अयोध्या बीजेपी हार गई, उसी अयोध्या को रिक्लेम करने में योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मनोज काका पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का, वारिस पठान AIMIM से जुड़ रहे हैं, रोहित सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन वही अयोध्या जहां पर राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा बताती थी, उसी अयोध्या की जंग के जरिए क्या योगी आदित्यनाथ शंखनाद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव की, देखिए ये रिपोर्ट।
1: प्रभु श्री राम का स्थान कौन सा होना चाहिए? आपने देखा था भगवान हनुमान जी को कैसे उनके साथ व्यवहार हुआ था बीजेपी के कार्यक्रम में, और सुनने में आया कि वो जो भुगतान होता है सम्मान राशि है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, तो इनसे क्या उम्मीद करोगे आप?
2: सनातन धर्म फिर से एक बार विधर्मियों की निशाने पर है, और चेहरे वही हैं, और ये वही लोग हैं जो आज राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों के विरोध में अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े होकर के उन पे लाठी और गोली का प्रहार करने में संकोच नहीं करते थे।
1: जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, और फिर इनके लिए धर्म धनी धर्म है सबसे बड़ी चीज।
2: आज वे राम राम जपते हुए कालनेमी के रूप में फिर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। बहन और भाइयों, हमें इन कालनेमियों को पहचानना होगा।
1: जब से बीजेपी आई है पैसे वालों के अच्छे दिन आ गए हैं, बड़े लोगों के अच्छे दिन हैं। जितना चाहो उतना पैसा ले जाओ कानूनी तरीके से और गैर कानूनी तरीके से, उस पर पाबंदी कब सरकार लगाएगी?
2: इन कालनेमियों की पहचान तो बजरंगबली से ज्यादा कौन कर सकता है? बजरंगबली मानते हैं ये मेरा भक्त नहीं, ये बाबरी के भक्त हैं। ये बजरंगबली के भक्त नहीं हो सकते, जो बाबरी का भक्त होगा वह बजरंगबली का भक्त नहीं हो सकता है।
0: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, पहला सवाल आप ही से। प्रेम शुक्ला जी, देखिए इस बात को, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि 2024 में फैजाबाद सीट जिसमें अयोध्या है वो सीट समाजवादी पार्टी जीत गई। अब ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि अयोध्या की जनता ये जानती ना हो कि बीजेपी की सोच राम मंदिर को लेकर क्या है और अन्य पार्टियों की सोच राम मंदिर को लेकर क्या है। क्या ये बड़ी चुनौती दिख रही है आप लोगों के लिए? क्योंकि नाक की बात है ना भाई, बीजेपी का अयोध्या हार जाना अपने आप में एक पूरी कहानी है एक सेंटेंस में।
3: देखिए अंजना जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो पौराणिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथ्य है वही बात रखी है। जब श्री राम लला का राजतिलक होना सुनिश्चित हो गया तभी मंथरा ने जो है श्री राम लला के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उनके वनवास की योजना को क्रियान्वित कर दिया था, यह पौराणिक सत्य है। इसी तरह से 2024 में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कलयुगी मंथराओं ने अयोध्या से श्री राम लला के वनवास का षड्यंत्र रचा, लेकिन अयोध्या मंथरा के नाम से नहीं जानी जाने वाली। अयोध्या श्री राम लला की ही है, श्री राम लला की ही रहेगी। यह त्रेता से लेकर कलयुग तक का सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है। इसी शाश्वत सत्य को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने वक्तव्य में उद्धृत करने का कार्य किया है।
0: शुक्ला जी,
3: अयोध्या
0: शुक्ला जी
3: राम लला के
0: शुक्ला जी सुनिए ना, मैं समझ रही हूँ, ये सब पता है जी। जी शुक्ला जी, ये सब पता है, ये सब पता है, मतलब सबको पता है क्या है नहीं है, क्या इतिहास रहा, ये सबको पता है। मैं तो वर्तमान की बात कर रही हूँ। 24 में आप चुनाव हारे, और क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, ये तो आपके लिए और बड़ा सेटबैक बनेगा, बनेगा ना भाई? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी तक जहां पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं, उसी में ऐसा घपला चल रहा था, भगवान का पैसा चुरा लिया गया, तो चैलेंज और बड़ा नहीं हो गया आप लोगों के लिए? इस पर आइए ना, छोड़िए उनको मंदिर गए नहीं गए, इससे भ्रष्टाचार को क्या असर पड़ता है?
3: जानता है अंजना जी।
0: हाँ
3: अंजना जी, हर कोई जानता है कि उस भ्रष्टाचार में कुछ कर्मचारी शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक इस भ्रष्टाचार की संलिप्तता का शिकार नहीं है। कोई दूर दूर तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी राम भक्त कार्यकर्ता पदाधिकारी पर इस भ्रष्टाचार का छींटा भी नहीं है। जो कर्मचारी थे इस जघन्य अपराध के लिए, वो कर्मचारी दंड के पात्र हैं। वहीं बगल में ही जो है मीरगाजी की जो है सरलार गरज गाजी की दरगाह है, बगल का ही जिला है, और वहां पर समाजवादी पार्टी के बाकायदा पदाधिकारी वहां की चिरागी की चोरी के अभियुक्त हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग जो आरोप लगाने के लिए तत्पर हैं, उनको ध्यान देना होगा कि अयोध्या में श्री राम लला के चढ़ावे की चोरी में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं है, और जिसकी भूमिका है वो दंड का पात्र है।
0: चलिए ठीक है, मनोज काका जी आइए, क्योंकि अखिलेश यादव भी सबसे पहले वहीं पर पांडे जी को उतारते हैं, पवन पांडे जी को, और क्या वो भी एक संकेत दे रहे हैं कि इस बार फिर अयोध्या के ही जरिए आगे बढ़ेंगे?
4: बिल्कुल, अयोध्या तो पवित्र नगरी है, और अयोध्या में राम मर्यादा पुरुषोत्तम, अगर भगवान की राम की बात होगी तो राम के सत्य के परख की भी बात होगी, राम के मर्यादा की भी बात होगी, राम के वचन की भी बात होगी, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो न्यायिक व्यवस्था थी उसकी भी बात होगी। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जिन लोगों ने ठग लिया हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे को दो करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में अपने लाभ के लिए जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीदा हो, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के चढ़ावे तक की चोरी हो गई हो, वो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चोरों के साथ होंगे कि न्याय के साथ होंगे? अगर न्याय के साथ होंगे तो चोरी को उजागर किसने किया? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो अब वो जो बात है कि हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापी राम है, जब घट घट व्यापी हैं तो वो देखेंगे कि उनके चोरी को उजागर तो समाजवादियों ने किया। 7 मई को ट्वीट किसने किया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। उसको लगातार कौन लोग नकार रहे थे? वही लोग नकार रहे थे जिन पे सबसे ज्यादा आरोप है, सबसे ज्यादा जिन पे सारे तरह के कुकर्म करने का आरोप है, तो वही लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सिर्फ नाम ले लेने से
0: राजनीति, जब से अयोध्या जीते हैं ना 24 में, तब से ज्यादा राम भक्त बन गए हैं।
4: अंजना जी, मैं तो ये समझता हूँ कि आप भी बखूबी समझती होंगी, ये पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान, ये पूरा मुल्क ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भक्त रहा है। हम आप और कौन कब बन गया? भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी, आप भी जान रही हैं 5-6 अप्रैल को, तो क्या हम आप यही कह पाएंगे कि केवल राम का आदर्श और राम का जो विमर्श है हमारे पास जब बीजेपी और आरएसएस आई 1925 से, तभी कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो विमर्श है वो त्रेता से है ना? हम आप ये बात तो स्वीकार करेंगे, और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अगर बात हो जाए, सिर्फ बात कर लेना, वोट बटोर लेना, धार्मिक ध्रुवीकरण कर लेना, पाखंड बात कर लेना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श के साथ कौन खड़ा? योगी जी कहां खड़ा है? योगी जी से सवाल है कि जिस दिन जांच का आदेश हुआ, जिस दिन एसआईटी बनी, आप क्यों नहीं 2 साल का हिसाब दे रहे हैं? आप क्यों केवल 40 दिन का सीडीआर दे रहे हैं? आप उसी दिन क्यों हाँ, जो रेडियो मॉनिटर अफसर था उसको क्यों हटा दिया आपने, जो 13 साल से नहीं हटा? ये सवाल है, ये पूछा जा रहा है। आप क्यों नहीं किसी न्यायिक व्यक्ति के देखरेख में जांच सुनिश्चित करा देते हैं? जो योगी आदित्यनाथ अपने चेहरे चमकाने पर 6812 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और उत्तर प्रदेश में स्कूल 2800 स्कूल बंद करा देते हैं, वो कह रहे हैं कि एक ट्रिलियन ऐसे, अब जुमला नहीं जवाब मांग रही है जनता, तो ये सब जुमले चल रहे हैं। आप बताइए कि 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी, जब टीचर भूसा ढोएगा, जब गाय मूत्र से अब बनेगी? यही है इनकी रचनात्मकता और यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अगर आदर्श के साथ हैं तो क्यों नहीं जो लोग वहां दोषी हैं वही अप्रत्यक्ष रूप से आज भी वही चंपतरा वही लोग सारा कुछ देख रेख कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको हटाया जा रहा है? और जो वहां ट्रस्ट है वहां का डीएम पदेन सदस्य होता है, तो डीएम पदेन सदस्य होता है और योगी जी आप कही रहे हैं कि आए दिन अयोध्या जाते हैं और लगातार लूट होती रही, तो आखिर लूट को आप कैसे नहीं देख पाए? जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खड़ाऊ से लेकर के मुकुट तक की चोरी हो गई और मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुत पारदर्शी और निष्पक्ष है, कुछ पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है, वो अपने चेहरा चमकाने के और पीआर वाले सिर्फ विज्ञापन के, विज्ञापन ही विकास को विकास समझते हैं। जो मुख्यमंत्री कहते हैं तो वो उनकी कोई बात उनके कर्म तक कहां जाती है? आप बताइए, आज उत्तर प्रदेश में, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं, छोटे बच्चे जो समाज कल्याण विभाग से जो विद्यालय चल रहा, जेन अल्फा के लड़के आज बच्चे सड़कों पर थे। इसी उत्तर प्रदेश में आपने मेरठ में आपने बगल में आपने देखा है कि एक बेटी के अपहरण उसके माँ के हत्या करके कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं देखा है आपने? आप अगर दलित पिछड़ा है किसी मंदिर चले जाएंगे तो धुलवा दिया जाएगा, मंदिर धुलवा दिया जाएगा। आप भले ही मुख्यमंत्री रहे हो, इतने बड़े आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही हो, तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का तो यह विमर्श नहीं था? तो सबरी जैसे माँ के घर भी जाते थे।
0: रोहित जी, क्या यही सबसे बड़ा चैलेंज बनेगा बीजेपी के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चढ़ावा चोरी का ही मुद्दा है, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जेन जी जेन अल्फा का है, सड़कों पर निकल रहे हैं।

0: बच्चे और कह रहे कि पंखा लगाओ मेरे स्कूल में, ये मिड डे मील के नाम पे जो तुम पानी परोसते हो उसको बंद करो, बदलो।
1: देखिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने राम निर्माण आंदोलन में शामिल कार सेवकों को गोलियों से भुनवा दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और सांसद आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने पार्लियामेंट में उस घटना के तुरंत बाद कहा कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी इल्लीगल ऑक्युपेंट हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रामलला के मंदिर के उद्घाटन के उपरांत अब तक अयोध्या जाकर दर्शन करना भी मुनासिब नहीं समझा। इतना ही नहीं, जिस वरिष्ठ वकील पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता रहे श्रीमान कपिल सिब्बल जी, जिनको जब कांग्रेस राज्यसभा नहीं भेज पाई तो उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को काल्पनिक बताया, उसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा भेजने का काम किया। मतलब समाजवादी पार्टी की बुनियाद, समाजवादी पार्टी का विचार और समाजवादी पार्टी का आइडियोलॉजी स्पष्ट रूप से रामद्रोहियों का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप आइए, मैं आपके कार्यालय में आया हूं और यहां कोई मुझे मारपीट करने लगे तो इसकी दोषी आदरणीय अंजना ओम कश्यप थोड़े होंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों ने इस महापाप को अंजाम दिया है। देश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार महापापियों को नहीं बख्शेगी। तीनू यादव सम्मिलित सभी लोग जो उसमें सम्मिलित रहे हैं, SIT जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक होने दीजिए, पाताल से खोजकर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार लाएगी। रामद्रोह कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आइए जनजी के सवाल पर और जन अल्फा के सवाल पर। आपने बड़ा अच्छा बात उठाया। देखिए, इस देश का नौजवान और विद्यार्थी कल भी भारत महतारी के वैभव की वृद्धि के लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ था, है और रहेगा। झारखंड के सवाल पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी और तो और ये जो नवोदित नए नवेले राजनेता बनने के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में शामिल हुए हैं, बाबू अभिजीत दीपके जी, ये लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में जाकर झारखंड के मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में JPSC परीक्षा में भारी धांधली का कुकर्म हुआ है उसका पर्दाफाश करने के लिए हेमंत सोरेन जी से CBI जांच की अनुशंसा क्यों नहीं करवाते हैं? राहुल को जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए, प्रियंका वाड्रा को जाना चाहिए, दीपके को जाना चाहिए, महुआ माझी को जाना चाहिए और हेमंत सोरेन का इस्तीफा करवाना चाहिए। OBC समाज से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो हेमंत सोरेन का क्यों नहीं? और तो और आदरणीय अंजना जी, आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, चौथे खंबे की प्रखर आवाज हैं, पिछड़ों और दलितों के आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के सांसदों ने क्यों फाड़ा था? देश के सामाजिक न्याय की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग पूछ रहे हैं, हम राज नारायण के वंशज हैं, परिवारवाद के खिलाफ समाजवाद का चोला ओढ़ने वाले लोगों को बताना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने किस किंधा जीता, राजा सुग्रीव को, सोने की लंका जीता, राजा विभीषण को, यहाँ तो ग्राम की प्रधानी मिल जाए तो परिवार को, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बिहार में लालू जी का राष्ट्रीय जनता दल हो, गरीब का बल समाजवादी दल ये धारा खत्म हो गया, गरीब का बल और परिवार का दल यही नारा चल रहा है। देश का नौजवान नेपोटिज्म के खिलाफ शंखनाद कर चुका है और देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इस कोर से देश को मुक्ति दिलाए, नहीं तो देश को खा जाएगा।
0: मनोज काका जी, आपका समाजवाद रांची के नाम पर दम क्यों तोड़ देता है? वहां क्यों नहीं जा रहे? वहां के लिए क्यों नहीं बोल रहे? वहां के बच्चों की हालत देखिए, इतने दिन हो गए हैं और अभी भी वो अनशन पे बैठे हुए। आप देवेंद्र नाथ महतो जी की तस्वीरें और वीडियो देखिए जो वो ICU से बना रहे हैं, वहां पे किसी का दिल नहीं पसीज रहा है।
2: बिल्कुल अंजना जी, सबका दिल पसीज रहा और वहां की सरकार ने लगातार संवाद किया है और जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ है और हम सब चाहते हैं
0: मनोज जी
2: उसके पक्ष में जो क्या करें।
0: आपने कहा कि उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ है, मतलब अब क्या चीटिंग के पक्ष में हुआ
2: उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं,
0: उसके खिलाफ आप पहुंचे या नहीं ये मायने रखता है ना मनोज जी?
2: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान देख लीजिए, हम लोगों का, हम सब लोग कह रहे हैं और वहां की सरकार ने 3-4 बार वार्ता कर चुकी है, ये तो आप भी जान रही हैं। और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर भ्रष्टाचार है तो देश के

सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं वहां पर स्वीकृत कर देती है? बहुत ऐसे जगहों पे तो सीबीआई और ईडी बिना परमिशन के स्टेट गवर्नमेंट के पहुंच जाती है। और जो झारखंड का जो शिक्षा मंत्रालय है, जो उच्च शिक्षा मंत्रालय, उसके अंतर्गत झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं आता, ये हम आप सब जानते हैं। तो अगर वहां भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं। सरकार लगातार छात्रों से संवाद कर रही है, क्या वहां पैलेट गन चल गए, क्या वहां AK-47 चला, लगातार संवाद हो रहा है, उसके

0: से संवाद कर रही है, क्या वहां पैलेट गन चल गए, क्या वहां AK-47 चला, लगातार संवाद हो रहा है, उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं। और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार है, लगातार आपका चैनल उठा रहा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में कितनी सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, लगातार उसमें भ्रष्टाचार है। उत्तर
1: प्रदेश का तो समझ में आ रहा है कि दिल्ली हो, रांची हो, यूपी हो, हर जगह का मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये याद रखा जाएगा कि आप लोग रांची नहीं गए सुध लेने। ये भी याद रखा जाएगा कि वहां पर जो छात्रों पर लाइट ऑफ कर करके लाठियां चलाई गई हैं, वो जो स्टेडियम का लाइट ऑफ कर दिया जा रहा है, बिजली काटी जा रही है, जनरेटर का बंद किया जा रहा है, उस पर आपकी आवाज बुलंद नहीं होती है। आपकी आवाज बहुत बुलंद है मिस्टर काका, और बोलते भी आप अच्छा है, लेकिन सिलेक्टिव आउटरीच है आपका, और वो सबको समझ में आता है, क्योंकि अगर मुद्दा छात्रों का होता तो आप लोग भी पहुंचते वहां पे। डिंपल जी गई थी ना जंतर मंतर, कितनी दूरी है रांची की भाई, कितनी दूरी है। कुछ बातें ऐसी होती है ना मनोज जी, जो कि मायने रखती है, जिसका इंपॉर्टेंस होता है पॉलिटिक्स से ऊपर, और ये सबको समझ में आया है इस जेंजी आंदोलन के बाद, सबको समझ में आया है। वारिस पठान जी आपके पास आ रहे हैं, मैं लौटूंगी आपसे जवाब लूंगी। मनोज जी थोड़ा आप भी समझ रहे हैं कि इस पर तो भाई देखिए बहस करने का कोई अंत नहीं है, आप भी कुछ बोलिएगा मैं भी कुछ बोलूंगी, लेकिन बच्चों के साथ खड़े होने की बात थी ना। और डिंपल जी गई जंतर मंतर, और अच्छा है वो जो बच्चे अनशन पर बैठे थे सबको मिलकर उन्होंने खाना खिलाया, पानी पिलाया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहां रांची का बच्चों का क्या कसूर है। मतलब एक तो मेटा भी उनका एल्गोरिदम खत्म कर दिया है, दिन रात वीडियोस आते थे जंतर मंतर के, लेकिन वहां का एक वीडियो सामने नहीं आता है। चलिए वारिस पठान, अयोध्या का मुद्दा है और वहां पर योगी जी जा रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं अयोध्या में, पूरी ताकत वो झोंक रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसे मुद्दे पर तो आ जाएंगे शो में, लेकिन जेंजी पर ना आपके नेता को कभी जंतर मंतर जाने की सूझती है, ना कभी उनको लगता है कि रांची जाने की जरूरत है।
2: देखिए अंजना जी, हम स्टूडेंट्स के जो हक की इंसाफ की लड़ाई थी उसके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे, फिर चाहे प्रोटेस्ट जंतर मंतर का हो या रांची के अंदर, झारखंड के अंदर हो, कहीं भी जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट लड़ रहे हैं, जेंजी हमारे भारत देश का भविष्य है, ये याद रखना इस बात को। अब तो जैन अल्फा भी जाग चुका है, मगर वायलेंस कंडेमनेबल है। अब तो सवाल आप भी करिए ना कि किसने इजाजत दिया था हमारे देश का भविष्य, हमारे स्टूडेंट के ऊपर लाठी चलाने के लिए, पैलेट गन चलाने के लिए, आशु गैस छोड़ने के लिए, और साथ ही साथ AK-47। अरे क्या आतंकवादी है क्या वो लोग? संविधान ने अधिकार दिया है, वही नहीं, चाहे वहां हो या झारखंड में हो, कहीं भी हो, जिसने भी लाठी चलाया पानी का फेंका, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। अब बात नंबर दो अंजना जी, बताऊं आपको, देश आज परेशान किससे है? ये बीजेपी की नफरत की राजनीति से परेशान है, ये समाजवादी पार्टी की जो वोट बैंक की राजनीति इससे परेशान है, और कांग्रेस की अवसरवादी राजनीति पर टोटल परेशान है। देश चाहता है कि एक विकल्प जो ऐसा आए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम है, संविधान की बात करते, बराबर की बात करते, हिस्सेदारी की बात करते, इंसाफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देश को एक ये चाहिए अभी फिलहाल। अब बीजेपी तो टोटल बैकफुट पे चले गई है अंजना जी, आप ये देख लीजिए, दो इशू ऐसे है जिसको बीजेपी कभी करेक्ट कर ही नहीं सकती। एक तो जो चंदा चोरी लोग ने कर दिया भगवान राम के नाम पे, उसकी तो माफी होने ही नहीं वाली है। मेरे जो दोस्त कट्टर बीजेपी वाले थे, मुझे फोन करके बोल रहे, वारिस भाई हमारी आस्था का खिलवाड़ नहीं, आस्था का कत्लेआम कर दिया है लोगों ने, हमने जो चंदा भेजा था भगवान श्री राम के नाम पे, ये लोगों ने कपला कर दिया। अब SIT का रिपोर्ट भी तो देख लीजिए पब्लिक के सामने, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट में 70 ऐसी चीजें आई है जो दिखा रहा है कि किस तरह से कपड़े में, पेपर में लपेट के लेके जा रहा है। अरे भाई वेलार गाड़ी के अंदर तो लोग मीटिंग में आ रहे हैं वहां के ट्रस्टी लोग, इतना तो पैसा आ गया इनके पास, चंपत का चले गए पता नहीं है, FIR क्या उनका क्या हुआ पता ठिकाना नहीं है, तो बीजेपी को जवाब देना भारी पड़ गया। दूसरा सवाल, सरकार पूरी जनता कर रही है देश की, पिछले 22 दिन हो गए पिछली जनता सवाल कर रही है कि कहां है होम मिनिस्टर, किसने आदेश दिया था स्टूडेंटों के ऊपर लाठी चलाने के लिए, बताइए हमारे भविष्य के ऊपर लाठी मारने का आदेश किसने दिया था? अमित शाह वहां पे आते 20 गाड़ी के काफिले को लेकर, मगर सदन में खड़े होकर जवाब देने की हिम्मत ताकत नहीं है। आप सवाल करते हो, विपक्ष से आपसे सवाल करना चाहिए अमित शाह से कि आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हो, कोई सवाल का जवाब उसको पूछने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा एक टैक्स पेयर का पैसा लोग ने वेस्ट कर दिया पूरा 20-22 दिन का, आपको पता होना चाहिए अंजना जी। एक दिन पार्लियामेंट का सदन जब एडजर्न होता है तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, वो किसके पैसे है? टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान कर दिया। अरे हम जिताते हमारे MPs को के जाओ भाई वहां पे, हमारे बात करो, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करो, देश की बात करो, जीत के जाता है वहां, वो क्या कर रहे हैं वहां पे? कुछ नहीं, आज आउट एडजर्न हो गया, 12 बजे खत्म हो गया, 1 बजे खत्म हो गया, पूरा टाइट टाइट फिश, तो ये तमाम चीजें वहां पे हो रही है और देश देख रहा है। तो देश का युवा, देश का हर नागरिक इस चीज से परेशान है, और सदन को चलाने की जवाबदारी सत्ता में बैठी हुई सरकार की थी। टोटल विकल्प, टोटल फेल हो गई है अंजना जी, टोटल फेल हो चुकी है वो। अब आप बताइए इसका क्या जवाब देंगे?
1: चलिए प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। हाँ हाँ आवाज जा रही थी शुक्ला जी, शुक्ला जी।

0: जवाब दीजिए।
1: नहीं नहीं एकदम काटा नहीं आपका पूरा एकदम बरोबर गया एकदम पूरा ऑडियो।
2: नहीं हम तो
1: शुक्ला जी
2: जी
3: बरोबर गया
2: जी। अंजना जी हम लोग तो जो है हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय किरेन रिजिजू जी ने साफ तौर पर कहा कि आप आइए सदन में बहस कीजिए, आदरणीय अमित शाह जी हर प्रश्न का विस्तार से उत्तर देने के लिए तैयार है। स्वयं गृहमंत्री जी ने चुनौती देकर कहा कि आप आइए, लोकसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा और कहा कि आप 24 घंटे का समय दीजिए, जितना समय उनको देना चाहे दीजिए, वो विस्तार से अपनी बात रखे, मैं हर प्रश्न का बिंदुवार उत्तर देने के लिए तैयार हूं। लेकिन भागा कौन? भागे वो लोग जिनके पास सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाने के अलावा कोई उनके पास किसी भी प्रकार का बुनियादी सवाल उनके पास शेष नहीं है, वो भाग सकते हैं सिर्फ। और जैसा आपने पूछा श्रीमान वारिस पठान जी ने से कि भाई जंतर मंतर पर भी नहीं थे, रांची भी नहीं है, तो आपको जंतर मंतर से लेकर रांची तक असदुद्दीन ओवैसी कहीं दिखाई दिए क्या? भाई आज विभाजन की विभीषिका का दिन है और विभाजन की विभीषिका के बाद हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए जो रजाकार खून बहा रहे थे वो इन्हीं के पूर्वज थे। असदुद्दीन ओवैसी उन रजाकारों की संतान है जिन्होंने 1947 के बाद महीनों तक हैदराबाद को अखंड भारत का हिस्सा बनने से रोके रखा था और रक्तपात किया था। आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी माता जी को आग लगाकर रजाकारों ने जला दिया था। इस तरह का रक्तपात जो है पूरे हैदराबाद के प्रांत में रजाकारों ने इस बात पर किया था कि हैदराबाद को पाकिस्तान का अंग होना चाहिए।
3: अरे अंजना जी मैं जवाब देना चाहूंगा इनको।
2: उन रजाकारों की पार्टी थी इस सत्य से कोई जो है ये सत्य जो है आप फैक्ट चेक कर लीजिए। मैं इसमें से अगर कुछ भी गलत कह रहा हूं तो मैं जो है अपनी बात वापस ले लूंगा, लेकिन ये फैक्ट चेक कर लीजिए। मैं जो कह रहा हूं ये शत प्रतिशत सत्य है कि AIMIM के रजाकार हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे।
1: जवाब दीजिए वारिस
2: पठान। विभीषिका जो सिंध ने भोगा, जो पंजाब ने भोगा।
3: अच्छा अच्छा अभी सुना सुनिए सुनिए, अब मैं इसे फैक्ट चेक करवाना चाह रहा हूँ। बताइए शुक्ला जी, अरे मेरे को बोलने तो मेरा आवाज कम कर देंगे ये लोग। शुक्ला जी मुझे जवाब दीजिए ना, अभी आपने फैक्ट चेक कर लिए, जंगे आजादी के अंदर कितने आरएसएस वालों ने अपनी जाने गवा दी, जंगे आजादी के वक्त कितने आरएसएस वालों ने वंदे मातरम पढ़ा पूरा तरह, बताइए मेरे को कितने लगते। मैं आपको नाम गिना सकता हूँ कि आजादी के वक्त कितने मुसलमानों ने अपनी जाने गवा दी और भारत देश को आजाद किया। अरे जंगे आजादी के वक्त आरएसएस वाले तो माफीनामे लिखे जा रहे थे, जंगे आजादी के वक्त
2: एक पूर्वज का नाम बताए
3: बांटेंगे,
2: एक पूर्वज का नाम
3: सुनिए सुनिए। अरे जो रजाकार थे चले गए, जिनको जाना था वफादार वारिस
2: एक रजाकार का नाम बताओ, एक रजाकार का कोई नहीं गया, कोई नहीं गया,
3: रजाकार थे और चले गए और
1: ठीक है। वर्तमान में आते हैं, वर्तमान पे आइए। मनोज काका जी आपके पास आ रहे हैं। मनोज काका जी सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, हाँ जेन जी वाला जो मुद्दा उठाया उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? डेट बता रहे हैं क्या कि रांची कब जा रहे हैं?
4: नहीं हम, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, रांची हम लोग हैं, रांची जा नहीं रहे, वैचारिक रूप से रांची हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो पहुंचेंगे और रांची के छात्रों के हकों के साथ हैं। हम कभी नहीं कह रहे हैं कि रांची में AK-47 चले, पायलट गन चले। और जो झारखंड का पब्लिक सर्विस कमीशन है वो संविधान के अनुच्छेद 315 और 323 के तहत वो एक संवैधानिक संस्था है, वो कोई सरकार के पूरे नियंत्रण में नहीं आता, ये आप हम और सब जानते हैं। और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से आपसे बड़ा मंच कौन होगा? हम कह रहे हैं कि सरकार को साहस संवाद करना चाहिए, मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए, ये हमारे बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उन्मादी और धार्मिक पाखंड के जो झंडा बरदार हैं उनसे कहिए कि नमक रोटी उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में दी जा रही है, सीतापुर में दी गई, हमीरपुर में दी गई, मिर्जापुर में दी गई, उनसे कहिए कि उन विद्यालयों
1: में चलाइए एक बार फिर से चलाइए।
4: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
1: हमने दिखाया, ये तो हम लोग रोज दिखाएंगे प्रेम शुक्ला जी, ये तो रोज दिखाएंगे, हरदोई का भी दिखाइए और हर दिन मेरे शो में जितने भी प्रवक्ता आएंगे, एक सेकेंड, उन बीजेपी के प्रवक्ताओं से मेरा कहना है कि आप लोग ये अपनी पार्टी में भी रेज कीजिए, अपने बच्चों को ऐसा खाना खिलाएंगे हम लोग, खिलाइएगा आपने, नहीं नहीं प्रेम शुक्ला जी अपने बच्चे को ऐसा खाना खिलाएंगे हम लोग,
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है?
2: बच्चों के साथ ये अन्याय काबिले बर्दाश्त नहीं है। नहीं, जो कोई कर रहा है वो कार्रवाई का पात्र है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
1: बस यही बोलते हैं
2: समाजवादी पार्टी का।
1: चढ़ावा चोरी हो गया तो सख्त कार्रवाई करेंगे, माफ नहीं करेंगे, पाताल से ढूंढ के लाएंगे। अरे पाताल से कहाँ ढूंढना है, सब वही ट्रस्ट में बैठे हुए थे।
4: बीजेपी और आरएसएस के लोग,
1: मिड डे मील जो जा रहा है, मिड डे मील जो जा रहा है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि कौन उसको बना रहा है और कौन दे रहा है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है? तस्वीरें दिखाइए एक बार।
2: हाँ, तो उसको गिरफ्तारी तय है। इसमें कुछ कुछ कुछ उसमें जो है किसी प्रकार का संकोच नहीं। कोई जो है अनाज घोटाला थोड़े है कि अनाज घोटाला करने वालों को अखिलेश यादव प्रोसेस।
1: क्या घोटाला बोला जाए?
2: ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का
1: क्या घोटाला बोला जाए?
2: जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, बाकायदा जजमेंट है कि अखिलेश यादव ने 2014 में अनाज घोटाला को प्रश्रय दे रखा था। अनाज घोटाले के मंत्री को जो है प्रश्रय अखिलेश यादव ने। ये इलाहाबाद
1: शुक्ला जी, आपकी सरकार कितने साल से है यूपी में? दिखाइए इनको मेरे साथ। यूपी में आपकी सरकार कितने साल से है? कितने साल से यूपी में सरकार है सर?
2: मिड डे मील।
1: सुनिए ना शुक्ला जी, एक सेकंड सुनिए। मिड डे मील घोटाला, अच्छा वो आप माने। पहली बात, सबसे पहली शर्त बदलाव की यही होती है कि आदमी गलती को स्वीकारे, क्योंकि इससे पहले भी जब रोटी और नमक खिलाते हुए विजुअल्स आए और तस्वीरें आई और खबर चली, उसके बाद से ऐसा लगा कि आप लोग मीडिया के ही खिलाफ हो गए। ऐसे नहीं होता है। अगर कुछ गलती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको बदलना चाहिए। रोज हम लोग दिखा रहे हैं ये तस्वीरें परिवर्तन, लेकिन आज भी रोज खबरें आ रही है, कभी हरदोई से, कभी सीतापुर से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। बदलती क्यों नहीं है सूरत? शुक्ला जी,
2: ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल है। बिल्कुल जहां गलती होगी कार्रवाई होगी। अनाज घोटाला करने वालों को जिस तरह से श्रीमान अखिलेश यादव जी प्रश्रय दिए हुए थे, वैसा प्रश्रय बिल्कुल नहीं मिलेगा।
1: ठीक,
2: कार्रवाई होगी।
1: मनोज काका जी,
2: तो आजम खान जो है आज भी जो है शिवपाल यादव कह रहे हैं कि आजम खान गृहमंत्री बनेंगे, जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे करवाए। आज भी शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो मोहम्मद आजम खान गृहमंत्री बनेंगे। तो सोच लीजिए दोनों का अंतर क्या है।
1: जवाब दीजिए मनोज काका जी, आजम खान को अगर कह रहे हैं गृहमंत्री बनाने की बात, तो इसके पीछे भी तो स्ट्रैटेजी है ना कुछ, या अचानक से वो इतने महान हो गए?
4: हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय आजम खान साहब, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको 10 बार विधायक बनाया। उत्तर प्रदेश में वो मिनिस्टर नहीं रहे। उत्तर प्रदेश वो तो हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार का फैसला होगा। मुख्यमंत्री का विवेक होता है, ये तो संवैधानिक बात है कि मुख्यमंत्री का स्वविवेक होता है कि किसको क्या बनाया जाता है। जब इस देश में तड़ीपार गृहमंत्री बन सकते हैं तो आजम खान साहब इस उत्तर प्रदेश में 10 बार के वो विधायक रह चुके हैं, इसमें बुराई क्या है? और कौन क्या वो अभी किसी कोर्ट ने उनको सजा याफ्ता तो किया नहीं। अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उनको एक बार बहुत सारे केसों में बरी किया था। लेकिन ये सरकार बनने पर और सरकार के मुखिया का फैसला होगा कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, कि ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आप सवालों का जवाब आज के परिदृश्य में नहीं दे रहे कि आप उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में नमक रोटी नमक भात क्यों खिला रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चंदा क्यों चोरी हो रहा? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? आपने 25,000 विद्यालय बंद कर दिया, 28,000 नई शराब की दुकान खोल दी। इस तरह उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन बनेगा?
2: मोहम्मद आजम खान सजा याफ्ता है, उनको सजा दी गई है कोर्ट द्वारा, सजा याफ्ता है मोहम्मद आजम खान, सजा याफ्ता
4: इस देश में एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण भी थे। सीबीआई कोर्ट ने बंगारू लक्ष्मण को दोषी पाया था।
2: है मोहम्मद आजम खान, मोहम्मद आजम खान सजा याफ्ता है।
4: मोहम्मद आजम खान इस देश के गंगा जमुनी तहजीब के सबसे शानदार नेता हैं। उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों और मान्यताओं का समर्थन किया।
1: एक बार मनोज काका जी को मेरे साथ दिखाया। मनोज जी चलिए ठीक है, आप चूंकि इतना सम्मानित उन्हें बता रहे हैं तो जयाप्रदा जी के लिए उन्होंने क्या कहा था जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों।
4: ये अंजना जी बहुत बहुत आपका वाजिब सवाल है। किसी को भी इस देश में हक नहीं है कि किसी भी माँ बहन बेटी को क्या कहा जाए।
1: वापस टॉपिक पर आते हैं, क्या अयोध्या आपकी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई रहेगी इस बार के चुनाव में? शुक्ला जी, आर यू मिस्टर पठान? इसके बाद टॉपिक मैंने सोचा याद दिला दूं आप लोगों को।
2: पूरा उत्तर प्रदेश हमारे लिए नाक की लड़ाई है, पूरा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में हम निश्चित तौर पर फिर से एक बार जीत की हैट्रिक होना सुनिश्चित है। पूरा उत्तर प्रदेश और शुभारंभ अयोध्या से होगा, ये आपकी बात सत्य है।
1: मनोज काका जी,
4: देखिए जो जो उत्तर प्रदेश की जनता है का जो जेनजी है, जो जेन अल्फा है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो जानते हैं कि उनके बेहतर भविष्य का और किसी के वादों पर यकीन किया जा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के उनके वादों पर यकीन किया जा सकता है। चूंकि उनके बच्चों के हाथों में लैपटॉप तभी आएगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, एक्सप्रेसवे तभी आएगा, हॉस्पिटल तभी आएगा, ग्रामीण विकास तभी होगा। वो उत्तर प्रदेश की जनमानस, अब वो राजनीति नहीं चाहती कि मांगे विद्यालय और मिल जाए उसे शराब खाना। वो विद्यालय जिस प्रदेश में बंद होते हों प्राथमिक विद्यालय, और जिसमें लगातार मधुशाला खोले जा रहे हों और पाठशाला बंद किए जा रहे हों, इस विचारधारा से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। सच बोलने पर आपको फांसी दे दी जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा, आप किसी बेटी के लिए ट्वीट करेंगे तो हमारे मनोज काका जैसे कार्यकर्ता पर FIR कर दिया जाएगा।
0: अंजना जी, उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी के हर शासन की घटनाएं याद हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया अभियान के शंखनाद करने वाले समाजवादी पार्टी को हल्दी लगने नहीं जा रहा है। किसी भी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता इस बात का मन बना चुकी है। तीसरी बार उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है।
1: बारिश पठान जी,
3: देखिए अंजना जी उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी वाले को अचानक से मुसलमान याद आ गए, इतने हमारी मदरसों को शहीद कर दिया, मस्जिदों को शहीद कर दिया, इनके मुंह में फेविकोल लगा था, बात नहीं किए। अभी शिवपाल सिंह आके बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो आजम खान को हम उप मिनिस्टर बना देंगे। अरे कितने साल से आजम खान जेल के अंदर है, उनका परिवार जेल में था, कितने टाइम से हॉस्पिटल के अंदर थे आजम खान, तब क्या किया आपने, आवाज किया, कुछ नहीं किया। आज आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का
1: और वारिस जी के इसी संबोधन के साथ, वारिस जी के इसी संबोधन के साथ इस बार AIMIM की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में, बन रही है आप ही की सरकार बन रही है।
3: बिल्कुल बनेगी, पब्लिक जनता का समर्थन है, जनता की मोहब्बत है हमारे साथ में।
1: कितने सीटों पर जमानत
3: जब्त हुई थी और हमने इनको बोल दिया आ जाइए साथ में, बीजेपी को वाकई में हराना है तो साथ में आई लड़ेंगे हराएंगे, नहीं तो फिर बाद में रोना नहीं। आप
1: जमानत जब्त हुई थी,
3: पप्पा पप्पा मेरे चॉकलेट ले ली, मम्मी मम्मी मेरी दूध की बोतल छीन ली, ये सब नहीं बोलने का फिर आके काका जी टीवी के चैनल पे।
1: इसी के साथ चलिए ठीक है, इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं श्रीनगर से, बड़ी खबर जहां वंदे मातरम के कथित अपमान के आरोप के बाद बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया है, प्रदर्शन किया है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम का अपमान किया है और इसी के खिलाफ श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर इंतजाम भी थे, ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को भीतर प्रवेश करने से तो पूरी तरह से रोका गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया, पुतला दहन भी किया, उन्होंने वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। दूसरी तरफ से दलील यही दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि सोनिया गांधी कह रही थी कि कुर्सी लाकर रख दो और अपमान का कोई सवाल ही नहीं क्योंकि पूरा वंदे मातरम पूरा राष्ट्रीय गीत बजा। बहरहाल बीजेपी आक्रोशित अब दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह की भी टिप्पणी आई, बीजेपी नेता लगातार इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगा ही रही है। वंदे मातरम को लेकर विवाद गहरा गया है और आज गृहमंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। आखिर क्या था मामला और ये विवाद क्यों इतना बड़ा होता चला जा रहा है, आपको दिखाते हैं।
1: एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया। उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी का कुछ सेकंड का वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। 15 अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में एक वीडियो ने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया। वंदे मातरम का गायन चल रहा था और इसी दौरान सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करती नजर आई। बीजेपी ने संगीन आरोप लगाया, कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं। आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
2: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता।
1: बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम का वीडियो नहीं है, ये कांग्रेस की राष्ट्रवादी विरासत पर राजनीतिक सवाल खड़ा करने का मौका है। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ इसी वीडियो को आईना बनाकर भारत के 140 करोड़ लोगों को बता रही है।
2: सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
1: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं रहा, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
3: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं होता। कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो बस।
1: कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
4: हमारे महापुरुषों ने जो हमें बताया है, जो करके दिया है, उस पर बिना किसी क्वेश्चन उठाए हुए उस मार्ग पर हम चलेंगे, अगर आप हमसे पूछिएगा। दूसरा बात, आप तो प्रमाण थे, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का, तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
1: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंदर से हिला दिया है। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने चिट्ठी में जो लिखा उसका मजमून कुछ यूं है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है। वंदे मातरम गान उन राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल है जिन पर बहस सिर्फ विचारों की नहीं रहती बल्कि सीधे भावनाओं तक पहुंचती है। बीजेपी इसी भावनात्मक ताकत को कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक पूंजी में बदलना चाहती है।
5: ये वंदे मातरम का साथ राष्ट्रवाद, देश प्रेम और हमारी जो जातीयतावाद है, इसका साथ गहरा संपर्क है। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
1: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रगीत सिर्फ शब्द नहीं है, उसके साथ इतिहास जुड़ा है, बलिदान जुड़ा है, राष्ट्रीय भावना जुड़ी है। इसलिए कांग्रेस मुख्यालय से उठी विवाद की गूंज निकलकर सीधे सियासत के केंद्र तक पहुंच गई। आज तक भी
0: खबरों का सिलसिला जारी है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।

0: स्वस्थ्य रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: बिजली का बिल पेड
3: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: पे। इतना माही वे।
5: आगे आगे।
4: अरे उधर
5: उधर।
4: करेक्ट करेक्ट।
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
3: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
4: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
5: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
4: नहीं सर।
5: 12th किससे की हो?
4: 12th सर मेरा PCM से रहा।
5: कंपाउंड क्या होता है?
4: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
5: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
4: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
5: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: बड़ी खबर आपको देते हैं. रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को घेरा है. अर्बन नक्सल के मुद्दे पर उन्होंने ये बयान दिया और कांग्रेस पार्टी को घेरा. कहा कि जो अभी कई लोग दिमागी नक्सल से प्रभावित हैं, सुनाते हैं आपको क्या कहा.
4: ये पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं. वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं. वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार से जनता उबती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबार में खड़ा खड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में. इसे कहते हैं दिमागी नक्सल. चिदंबरम साहब ने ऐसे कई काम किए. हम पत्रकारों को याद करना चाहेंगे कि मनमोहन सिंह की सरकार में 76 BSF और CRPF के जवानों का कत्ल हुआ था माओवादी के द्वारा. तो इन्होंने कहा मैं बातचीत करने को तैयार हूं. और JNU में एक कार्यक्रम हुआ था जहां जिन लोगों ने हमला किया उनका स्वागत की योजना थी. चिदंबरम साहब आप देश के गृहमंत्री हैं रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं राज्यसभा में, आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं. तो सीधा मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद के खाद पानी देती है उसी का चेहरा बने हैं मिस्टर चिदंबरम. मैं रिपीट करता हूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम माओवादियों नक्सलवाद का सहयोग लेता है उसी के चेहरा बने हैं श्रीमान चिदंबरम. कि मैं भी नक्सल हूं, क्या शब्द था, दिमागी नक्सल, तो सही बोल रहे हैं. चिदंबरम साहब ने खाद्य मंत्री गृहमंत्री के रूप में और ऐसे भी अपने दिमाग से नक्सलवादियों को बहुत दिमाग देने की कोशिश की है. याद करिए ये लोग वही थे जब ये गृहमंत्री थे तो कश्मीर में भी इनका यही एटीट्यूड था कि मैं बातचीत करने को तैयार हूं. और देखिए नरेंद्र मोदी जी और ये अमित शाह ने पूरे आर्टिकल 370 को खत्म किया. ये लोग संविधान की बात करते हैं. चिदंबरम साहब आप जवाब दीजिए, एक समय माओवादियों का सिद्धांत था पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, सत्ता बंदूक की नली से आती है. उन्होंने करके दिखाया. मैं खुद छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं, मैं इलाकों में गया था एक बार. भाई इलेक्शन लड़ो हमें हरा दो. उस सुकमा में मेरा भाषण भी था. अगले दिन हमारे उपाध्यक्ष को मार दिया उन्होंने. कोई बात नहीं, हम जीतेंगे जरूर और जीते. तो वो उन्होंने संघर्ष किया देखा है. तो चिदंबरम साहब के पूरे इस मैं भी दिमागी नक्सल हूं ये कमेंट बहुत भसना योग्य है.
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सोने में निवेश करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले लोग ज्वेलरी शॉप या बैंक का रुख करते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर कुछ क्लिक करके 10 रुपए से भी गोल्ड खरीदा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड की इसी बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार का ध्यान खींचा है। ऐसे में निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजिटल गोल्ड सेक्टर के लिए नए नियमों की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत डिजिटल गोल्ड के लिए अगले साल नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ सकता है। इसमें निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके लिए DPMACI ने वित्त मंत्रालय, RBI और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के साथ चर्चा की है। दरअसल भारत में डिजिटल गोल्ड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग छोटी रकम से भी सोने में निवेश कर रहे हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर के लिए औपचारिक नियमों की मांग भी तेज हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 से 26 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए करीब 10 टन सोना खरीदा गया। वही डिजिटल गोल्ड सेक्टर में भरोसा बढ़ाने के लिए ही DPMACI का गठन किया गया है, जिससे सेफ गोल्ड, MMTC, PAMP, ऑगमॉन्ट, फोन पे और गुल्लक जैसे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत छोटी रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। युवाओं और छोटे निवेशकों के बीच इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह यही है कि बिना ज्वेलरी खरीदे भी सोने में निवेश किया जा सकता है। निवेशक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 10 या 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। ये कंपनियाँ खरीदी गई मात्रा के बराबर सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखने का दावा करती हैं और जरूरत पड़ने पर निवेशक इसे बेच सकते हैं या फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। दुनिया के कई देशों में डिजिटल गोल्ड के लिए नियम और निगरानी व्यवस्था पहले से मौजूद है। इस पहल के बाद भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। साफ है कि डिजिटल गोल्ड निवेश का लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ऐसे में अगर नया रेगुलेटरी ढांचा लागू होता है तो इस बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। वंदे मातरम विवाद पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप की माफी नहीं। बीजेपी ने की चौतरफा घेराबंदी, बंकिम चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बयान पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम रमेश ने भी किया हमला, बीजेपी का पलटवार। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों का अल्टीमेटम, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग, वरना सीएम आवास का घेराव, राहुल गांधी सोरेन का पुतला जलाने का प्लान था। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को ऊंची उड़ान, स्वदेशी जेट पावर दिव्यास्त्र MK3 की पहली टेस्ट फ्लाइट यूपी की टेस्टिंग एयर स्ट्रिप पर सफल, एयरफ्रेम से लेकर जेट इंजन तक सब मेड इन इंडिया। शो की शुरुआत वंदे मातरम पर मचे घमासान से करते हैं। एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
0: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धार धार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो बस।
0: कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
3: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रोका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंतर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे,
4: तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
5: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
4: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
0: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द के इस्तेमाल ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया और इसे लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच में अब हमले चल रहे हैं।
6: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
7: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
8: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
7: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
9: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं।
10: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
7: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
11: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन ये जो दिमागी नक्सल, ये अर्बन नक्सल्स हैं।
12: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
7: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और दिमागी नक्सल पर रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं।
13: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। ये वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार में जनता उबती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में खड़ा खड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में, इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
0: इधर रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। और अब की बार उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी मांगा है और साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग वो अड़े हुए हैं इस पर।
14: तेईस दिन से इसी तरह बैठे हैं छात्र, इसी तरह कर रहे हैं अनशन और इसी तरह झारखंड सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और 13 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल, लेकिन अब छात्रों की दशा बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक जी सकेंगे।
15: धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है, सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान, हम नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे, स्थिति बहुत ही गंभीर है।
14: छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता छात्र मरें या बचें।
15: बुखार भी आ रही, सरकार को कोई चिंता नहीं, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो को ले गए फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे।
14: प्रेम नायक अकेले नहीं है जिनकी स्थिति बिगड़ गई है। छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल की भी स्थिति नाजुक है। तीनों का इलाज रांची सदर अस्पताल के HDU में चल रहा है। इसी अस्पताल में एक दिन पहले हंगामा हुआ था। ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
16: झंडा फहराने से रोका जा रहा
17: है,
16: ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है।
14: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
18: तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
14: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने के नाम पर सिर्फ पानी। लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करे और CBI जांच की मांग को माने, वरना 20 अगस्त को CM आवास का घेराव किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: द भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध समेत कई किसानों के मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व एक बार फिर से उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, मगर रास्ते में बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं।
19: ये हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर है। देखिए इस बॉर्डर को किस तरह से बंद किया गया है। बॉर्डर को 5 लेयर में सील किया गया है, बैरिकेडिंग की गई, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, वाटर कैनन वाली गाड़ियां खड़ी की गई, कंटेनर खड़े किए गए, कंटीली तार लगाई गई। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में आज से किसान बचाओ यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में शुरू हुई है। किसानों की ये यात्रा दाता सिंह वाला से शुरू हुई है और 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचना चाह रही है, लेकिन किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट, सीमाओं पर अवरोधक लगा दिए गए। देखना होगा कि प्रशासन किसानों को रोक पाता है या नहीं। सुनील कुमार, जींद आज तक।
0: आज पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो जारी किया है। यह वीडियो 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराने से पहले का है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर पुंगनूर नस्ल की छोटी गायों और मोरों को खाना खिलाते हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना उनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है और लाल किले के लिए निकलने से पहले वो उन्हें विदा करने आए थे। ये तस्वीरें हैं जहां पर मोरों को प्रधानमंत्री दाना खिलाते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ साथ पुंगनूर नस्ल की जो छोटी गाय है उनको भी उन्होंने, आप तस्वीरें देखें कि चारा खिलाया है, ये उन्होंने पोस्ट किया है और पीएम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा अपने पोस्ट में बताते हैं कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना उनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है और लाल किले की प्राचीर पर उनका संबोधन हुआ उससे पहले वो उन्हें विदा करने आए थे, ये उन्होंने पोस्ट में लिखा है। हमेशा की तरह ये बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और देश की प्रगति में उनकी अतुलनीय भूमिका को याद किया।

0: मौका था भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि का, और उनके सम्मान में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अमित शाह ने प्रतिमा का अनावरण किया और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में यमुना किनारे स्थित वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर दिल्ली सरकार ने कम आय वाले परिवारों को स्वच्छ और रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए 25 नई अटल कैंटीन की शुरुआत की है।
1: बहुत अच्छा खाना,
2: क्या कहेंगे, कैसी योजना है सरकार की?
1: बहुत अच्छी योजना है सरकार की, जो भी योजना है बहुत अच्छी योजना है।
3: ये योजना है बहुत बढ़िया योजना है, इससे क्या होगा, कभी मैं, मेरे लिए 4 महीने हो गए हैं, कभी कभी मैं ऐसे ही लेट गया था भूखा और कोई खाना बांटने आ जाता था तो मिल जाता था। अब इससे ये होगा कि हम जो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए कुछ दवाई के पैसे भी बच जाएंगे, खाना मोल नहीं लेना पड़ेगा, ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा।
0: वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और उन्होंने 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में अंतिम सांस ली। देश आज उन्हें याद कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: वाराणसी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां पर मैगी को लेकर युवकों का उत्पात देखने को मिला। ये बताया गया कि देर रात मैगी खाने के लिए युवाओं का एक ये झुंड रेस्टोरेंट पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर रात होने की वजह से उन्हें मैगी नहीं मिल पाई। इसके बाद युवकों ने गाली गलौज के मारपीट करते हुए रेस्टोरेंट के पास खड़ी गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 20 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। वाराणसी के कैंट थाना इलाके में भोजूबीर इलाके में यह घटना हुई है। अब तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह कार में आग लगाई जा रही है, किस लिए, मैगी ना मिलने पर। अब बात हम कानपुर की करते हैं, जहां पर महज 16 रुपयों के ऑफर के लिए पूरा मोहल्ला टूट पड़ा। हालत यह हो गई कि आधी रात को वहां पर फोर्स बुलाने पड़े और तब जाकर मामला शांत हुआ।
0: ये अफरा तफरी, ये भागम भाग, ये हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि कानपुर में 16 रुपए वाला ऑफर आया है। ये कानपुर के अनवरगंज का आलम कपड़ा बाजार है। किसी व्यापारी ने ऐलान किया कि 16 रुपए में 16 मिनट में जो चाहे खरीद लो। ऑफर सिर्फ 16 मिनट के लिए था, लेकिन ऑफर वाला मैसेज इतनी तेजी से फैला कि हजारों की भीड़ कानपुर के आलम कपड़ा वाले की दुकान की ओर दौड़ पड़ी। दरअसल कपड़ा कारोबारी रईस आलम के बेटे का जन्मदिन था। जैसे ही रात के 11:59 हुए तो अचानक उसने 16 रुपए वाला ऑफर शेयर किया। देखते ही देखते ये मैसेज वायरल हुआ, हजारों की संख्या में लोग इसकी दुकान की ओर भागे। अचानक इतनी भीड़ आ जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था।
5: 16 रुपए में कुछ भी दे रहे हो, 16 रुपए में भर के झूला ले जाओ।
6: तो कितनी भीड़ हो गई थी?
5: बहुत भीड़ थी।
6: कैसे कंट्रोल हुई भीड़?
5: जब प्रशासन कंट्रोल करी जी, हाँ भगदड़ मची, प्रशासन कंट्रोल करी। ये सब अफवाह फैलाने से अच्छा क्या है।
6: एक अच्छी बात कर रहे हैं कि अफवाह फैलाने से क्या है, लेकिन फिर भी जनता आ जाती है। एक शख्स और, क्या नाम है आपका?
7: जाहिद।
6: क्या ऑफर था भाई?
7: जाहिद, इसमें जो ऑफर था 16 रुपए में भर के झोला, क्या लंबाई का ऑफर था, बेवकूफ बनाया।
0: चश्मदीदों की माने तो भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि धक्का मुक्की होने लगी, भगदड़ जैसे हालात हो गए थे। 16 रुपए में कोई भी सूट खरीदने के ऑफर के चक्कर में कई लोग घायल भी हो गए। सूचना मिलते ही चमनगंज थाने की पुलिस फोर्स भी आधी रात को आलम बाजार पहुंची और बेकाबू भीड़ को काबू में किया।
8: इन्होंने ऑफर दिया था कि 16 मिनट में आइए, 16 रुपए में कपड़े ले जाइए, और इन्होंने उस चीज को वायरल कर दिया, जिससे यहाँ पे काफी जनता आ गई थी और काफी भीड़ होने के नाते हम लोग आए, पुलिस वाले आए तो उनके द्वारा दुकान को बंद कर दिया गया, सभी लोग चले गए हैं। अब यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है और इनके विरुद्ध वैधानिक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
0: 16 रुपए के ऑफर के चक्कर में जब भीड़ जमा हुई तो दुकानदार शटर गिराकर भाग गया। पुलिस ने इसे गंभीर मामला मानते हुए रईस आलम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है, क्योंकि आधी रात को अचानक आए इस ऑफर से पूरे इलाके की व्यवस्था हिल गई थी। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक।
4: देश की राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी में दिन दहाड़े एक सफाई कर्मचारी पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। अब बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी रोज की तरह अपने काम में व्यस्त था, तभी अचानक एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा और चाकू से कई बार वार कर दिया। ये सब देश की राजधानी में हुआ है। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुए। फुटेज में सफाई कर्मचारी काम करता दिख रहा है, अचानक ये हमलावर पहुंचता है और हमला कर देता है। घायल कर्मचारी को उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अनिल के रूप में हुई है, खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला है। वारदात के

0: सामने आई है, जहां 26 वर्षीय अनिल, जो कि एमसीडी में सफाई कर्मचारी था, आज सुबह अपने घर से ड्यूटी करने के लिए निकलता है। वहीं काम पर ही अचानक से करीब 7:30 बजे एक आदमी उसके पास आता है और उसे चाकू मार देता है। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आक्रोश है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस वक्त मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के मॉर्चरी के बाहर खड़ा हूं, और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो सफाई कर्मचारी जो इस पूरे इलाके के हैं, एमसीडी के हैं, उन्होंने अपना काम इस वक्त रोक दिया है और यहां आकर के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर तस्वीरों में आप देखें तो भारी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहां पर हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, जो विक्टिम है अनिल, उसे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल पाए। अभी कुछ समय में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि जो अक्यूज है उसे आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि अभी जो अक्यूज है इस पूरे मामले का, उसे उस सीसीटीवी के जरिए आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन मोटिव क्या है इसकी तफ्तीश अभी करनी बाकी है और अक्यूज अभी तक पुलिस के हिरासत में नहीं आया है।
1: भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में एक स्वदेशी सैन्य ड्रोन बनाया गया है। निजी डिफेंस कंपनी ने इसे विकसित किया है और कंपनी की माने तो यह भारत का पहला ऐसा लोइटरिंग म्यूनिशन है जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी जेट इंजन लगा है और पहली उड़ान में इसने सारे लक्ष्य हासिल किए। इस सिस्टम को विकसित करने का काम इसी साल प्रारंभ हुआ था और बहुत कम समय में पहला ट्रायल हो चुका है और पूरी तरह से स्वदेशी जेट इंजन से लैस, यानी कि स्वदेशी तकनीक से लैस ये वो ड्रोन है जो AI तकनीक से भी लैस है। और जितने भी अब तक उसके परीक्षण हुए, पहला फेज तो कम से कम वो सफल हुआ है। जितने भी लक्ष्य इसके सामने रखे गए, तमाम लक्ष्यों को इसने, इस दिव्यास्त्र MK3 ने पूरा कर लिया।
2: कानपुर में दिव्यास्त्र Mark 3 एक सफल उड़ान भरी है जिसमें स्वदेशी जेट पावर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी इंजन और सिस्टम के जरिए दिव्यास्त्र Mark 3 का सफल परीक्षण हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर लोइटरिंग म्यूनिशन की बात की जाए तो हाल के दिनों में इसका काफी इस पर चर्चा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इसका इस्तेमाल किया दुश्मन के खिलाफ। ये एक ऐसा हथियार होता है जो दुश्मन के टारगेट पर कुछ समय मंडराने के बाद उस पर हमला कर देता है। इस वक्त दुनिया में अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो रहा है और आने वाले दिनों की जो युद्ध की तैयारियां हैं वो स्वदेशी हथियारों के दम पर लड़ने की बात की जा रही है। ऐसे में दिव्यास्त्र Mark 3 की ये सफल परीक्षण कई मायनों में खास है। दिल्ली से मजीद नेगी, आज तक।
1: अब बात डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि होर्मुज को लेकर एक बार फिर हाहाकार मच गया है। क्या होर्मुज को सच में अमेरिका का हिस्सा बनाने के अभियान पर डोनाल्ड ट्रंप निकल गए हैं या फिर ये किसी सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने बयान दिया है। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन उनके इस बयान ने एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में तल्खियां बढ़ाई हैं। होर्मुज के समंदर में हर दूसरे दिन हमले हो रहे हैं और अब इस बयान ने चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया है।

0: قريبا.
1: सामने आया ट्रंप का सबसे विनाशकारी ऐलान, समंदर में मचने वाला है भयंकर कोहराम, अमेरिका का हिस्सा बनने वाला है हॉर्मुज, अब ट्रंप की निगहबानी में चलेगा हॉर्मुज। हॉर्मुज के समंदर की इन लहरों की शांति तूफान से ठीक पहले की है, क्योंकि ट्रंप ने जो ऐलान कर दिया है उससे न सिर्फ ईरान को बुरी तरह चिढ़ा दिया है बल्कि सीज फायर पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आपको सुना देते हैं ट्रंप का वो बयान जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है।
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
1: सुना आपने, ट्रंप जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान करने वाले।

0: कुछ लोग ट्रंप के इस विनाशकारी बयान को उनके बड़बोलेपन से जोड़कर देख रहे हैं, तो कईयों को इसमें सीज फायर के खात्मे और भयंकर युद्ध फिर से शुरू होने के संकेत दिख रहे हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री कंजेम घरीबाबादी ने ट्रंप के इस बयान की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान की हार के बाद वो जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका के हिस्से के रूप में घोषित कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्वीट से सीज नहीं किया जा सकता, ना ही एयरक्राफ्ट करियर से, ना ही एक आदेश जारी करके और ना ही किसी चुनावी भाषण के जरिए। आज तक ब्यूरो
1: खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती है जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
7: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
8: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
9: बिजली का बिल पेड
10: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
11: कैसे?
10: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
11: इतना माही वे।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का,
3: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
2: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए,
4: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
5: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है,
6: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
7: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
2: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम
8: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
9: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
8: नहीं सर।
9: 12th किससे की हो?
8: 12th सर मेरा PCM से रहा।
9: कंपाउंड क्या होता
8: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
9: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
8: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
9: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बात पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप पर माफी नहीं। बीजेपी ने की चौतरफा घेराबंदी, बंकिम चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बयान पर चिदंबरम का लिखा पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम का भी हमला, बीजेपी ने जवाबी हमला किया। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। रांची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास के घेराव का ऐलान। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बड़ी उड़ान, स्वदेशी जेट पावर दिव्यास्त्र MK3 की पहली टेस्ट फ्लाइट, यूपी की टेस्टिंग एयर स्ट्रिप पर सफल, एयरफ्रेम से लेकर जेट इंजन तक सब मेड इन इंडिया।

0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। कहीं पर सड़कें दरिया बन गई हैं, कहीं पर नदियों के किनारे नदियां काट कर आगे बह रही हैं। तो बाढ़ बारिश के साथ ही भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टाने चटक रहे हैं और लोग मुश्किल में है।
1: कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टाने चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिंडी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं। जब रविवार को ये पहाड़ दरका ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सावरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसी चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी THGC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था। 12 लोग घायल थे।
1: पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं, थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफ़ी वहाँ पर दबी हुई है। जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी उनको सफाई करेगी तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी उसमें।
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, सरते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय दो ही दलदल हो रही है। पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा, फंस जा रहा है उसमें। तो इसमें होगा तो जल्द से जल्द उस चीजों को जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविकेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए। ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: एक तरफ जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो दूसरी ओर मूसलाधार बरसात और बेहिसाब बाढ़ की वजह से पुल समेत हो रहे हैं। आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तेज जलधारा ने पुलों को ध्वस्त कर दिया है। क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला जारी है।
0: ये पुल ढह गया। लोग देख रहे थे इस पुल को ढहने को, लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें यकीन था ये पुल अब गिरा कि तब गिरा। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा के ठासरा की है। यहाँ दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बना हुआ था, मगर जोरदार बरसात और नदी की जलधारा ने इस पुल की नींव को धरका दिया और देखते ही देखते ये पुल ढह गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अलबत्ता पुल के ढहने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बारा में जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बना ये हाई लेवल ब्रिज भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तहार है। अभी डेढ़ महीने पहले ही 28 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पार्वती की लहरों ने ऐसे हिलोरे मारी कि पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। ये शुक्र था कि जिस वक्त ये पुल ढहा इस पर कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें देखिए, ऐसी दरारें जैसे जमीन फट गई हो। अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
4: अभी ये पुलिये में जो बने नहीं तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत उस साइड में भी, और ये वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि रोड बंद करे और दोनों साइड का पक्का काम करे।
5: उनके मैंने लास्ट जून में उद्घाटन हुआ था इसका, और अभी 17 अगस्त है, अभी वहाँ से लगभग चुकी है पुलिया। इधर साइडों में भी दो जगह जुड़ा होगा साइडों में दो ही तरफ, तो इसका ढसने की संभावना है इसकी भी।
6: तो आपका कहना है कि ये भी गिर सकती है?
5: ये भी गिर सकती है,
7: ये और भी जब जर्जर हो रही है, ये भी क्योंकि दो दो इंच छूट चुकी है।
6: अच्छा,
5: साइडों में झुका,
7: साइडों में झुका हुआ है।
0: पुल के शुरू होने से अटरू और बारा से मध्य प्रदेश की सीमा तक आने जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी, लेकिन अब ये पुल धंस चुका है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ नदी पर बना ये पुल बह गया। हैरानी इस बात की है कि इस पुल का निर्माण 10 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन ये 10 बरसात भी नहीं झेल सका। निर्माण के बाद से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पुल पर जहाँ तहाँ दरारें दिखाई दे रही थी। दो दिन पहले बरसात हुई और सुबह जब लोगों की आंखें खुली और नदी की ओर गए तो पुल बह चुका था। ये नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए। जिस पुल से होकर दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही होती थी, वो देखते ही देखते पानी की तेज धारा में गायब हो चुका था। कहीं पिलर उखड़े पड़े थे, कहीं स्लैब पानी में समा गई थी और पुल का लंबा हिस्सा नदी की धार में बह चुका था। अब लोग निर्माण एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण पुल पहले से ही कमजोर हो चुका था। वाहनों की आवाजाही के साथ पुल के अलग अलग हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी थी और समय के साथ इसकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति बन रही है और अलग अलग शहरों से पुल के ढहने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो।
3: पहाड़ों पर भूस्खलन और बाढ़ का खतरा है तो मैदानी इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ घंटों की बरसात ने शहरों में सैलाब ला दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में तो सुबह हुई चंद घंटे की बरसात ने शहर को समंदर बना दिया और यही हाल इटावा का रहा, जहां जरा सी बरसात के बाद सड़कों पर बेहिसाब पानी भर गया।

तलैया झरना सागर दरिया दरिया लखनऊ। हाँ जी यकीन कीजिए यह आपका अपना अदब का शहर है लखनऊ। लखनऊ वाले रविवार की सुबह जब सो के उठे तो उन्हें मालूम चला कि उनका अपना प्यारा लखनऊ तो इटली का वेनिस हो गया है। पानी की लहरों पर उतराने वाला शहर, देखिए ना ये बच्चे जिस गली से गुजर रही है वहां घुटने तक पानी। अब सड़क का हाल देखिए, सड़क को सड़क नहीं समंदर कहिए, यहाँ डूब डूब आइए डूब डूब जाइए। इन भाई साहब की बाइक बंद पड़ गई, अब पानी में जैसे खींचते हुए बढ़े जा रहे हैं। अब एक नजर इन तस्वीरों पर डाल दीजिए, इतनी बरसात हुई है कि ये घर लबालब है, घर में पानी भर गया है, घर के सामान पानी में उतरा रहे हैं। कुछ घंटों की बरसात ने लखनऊ को पानी पानी कर दिया, अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात कैसे बने।

0: आप प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, यहाँ गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। देखिए घाटों तक पानी चढ़ाया है, पंडा पुरोहित जहाँ बैठते हैं वहाँ तक गंगा चढ़ाई है।
1: गंगा जी के तो जलस्तर कल से काफी तेज हुआ है, परसों से बढ़ दो तीन दिन से बढ़े, लेकिन कल जलस्तर लगभग 4 फीट की ऊंचाई में बढ़ा हुआ, आज भी जल तेज से ही है, लगभग 1 फीट जलाया सुबह से। अरे तकलीफ क्या है, तो हर साल का नियम ही है, हम लोग को गंगा जी बांधते तो हटाना पड़ेगा सामान, फिर वाल इस बार तो लेट है, नहीं पिछली बार तो हनुमान जी को भी नहला चुकी, हम लोग ऊपर थे पिछली बार रोड पर थे इस समय, लेकिन इस बार लेट है, अब तकलीफ तो होता ही है, सब सामान हटाना पड़ता है, अभी वहाँ से ले आए उठा के इधर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे।
2: परसों से गंगा जी काफ़ी तेजी से जो है रफ्तार से बढ़ रही हैं, और हमारे पंडा समाज के लोगों का जो है अब वो सामान जाने वाला ऊपर, किसी गंगा जी का जो ये रूप है, और हमारे का दो रोज के अंदर गंगा जी ऊपर भी चली जाएंगे।
0: अब यूपी के ही इटावा की तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर के लिए बरसात क्या हुई, मानो पानी नहीं मुसीबत बरसी है। देखिए सड़कें किस तरह लबालब, इसी तालाब के बीच में लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए ये स्कूली बच्चे पानी के बीच से कैसे निकल रहे हैं।
3: देखिए बरसात का मौसम चल रहा है और हमारी जो लाइन पार की मुख्य समस्या है वो यही है कि पचावली क्षेत्र जो है पूरा जलमग्न हो जाता है। विजयनगर चौराहे से आप अगर पचावली क्षेत्र देखेंगे तो अभी गाड़ियों की दुर्दशा आप देख रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं जा पा रहे, स्कूल ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, कोई दवाई लेने जा पा रहा, कोई अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को ये सारी समस्या दिखती है फिर भी वो इसका कोई समाधान नहीं निकालते, ये बड़ी शर्म की बात है।
4: बारिश बहुत कर रहे होने की वजह से यहाँ पे पानी उतना भर चुका है कि टम्पुआ में पूरे ऊपर तक सीटों तक पानी आ रहा है, पानी टम्पुआ के भीतर तक आ रहा है, और समय जी मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पैरों तक ऊपर पानी आता है।
5: ये पानी पुल में भर गया है।
6: अच्छा कितना पानी भरा होगा लगभग?
5: कम से कम ये समझो सर इतना है,
6: 4 फुट,
5: 4 से 5 फुट है पानी।
6: तो ये रास्ता बंद कराया गया है क्या?
5: हाँ कराया है।
6: क्या दिक्कत क्या उसकी?
5: ये लोग बांध फंस जाते हैं, बांध फंसते हैं, पब्लिक को परेशानी होती है, जाते हैं तो गाड़ी बंद होने लगती है, तो वो चक्कर से सुरक्षा के चक्कर से हम लोग खड़े हैं।
0: अब हरियाणा के अंबाला की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी थोड़ी देर की बरसात ने तबाही मचा दी, सड़कें पूरी तरह से लबालब हैं, जहाँ रास्ते थे वहाँ सिर्फ पानी नजर आ रहा है, इतना पानी भरा हुआ है कि आना जाना मुश्किल है। देखिए सड़कों पर जलधारा है और इसी के बीच से लोग गुजर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
7: अब रांची से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको देते, परीक्षा धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। छात्रों ने पुतला दहन करके विरोध जताया है। ये छात्र क्या मांग कर रहे हैं? जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच, पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे हैं। और अब उनकी मांगों में एक और मांग ऐड हो गई है, वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा। आज उन्होंने ऐलान किया था कि मांगे मान ली जाए तो ठीक, वरना फिर प्रदर्शन करेंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। और अब आज उन्होंने पुतला दहन करके प्रदर्शन किया है, जिसमें पुतला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का था और नेता विपक्ष राहुल गांधी का था। राज्य में दोनों ही इस समय सरकार में हैं और छात्र आक्रोशित हैं। 23वें दिन में उनका ये प्रदर्शन प्रवेश कर चुका है, 14वें दिन उनके भूख हड़ताल को हो गए, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी सभी मांगे नहीं मानी है। छात्र आंदोलनरत हैं और ये पुतले हैं जो आज निकाले गए हैं, और पहले एक जुलूस की शक्ल में पुतले निकाले गए, फिर उसके बाद वो जो जेन जी प्रोटेस्ट जो उसे यूनिक बनाता है उसके पोस्टर्स, उनमें लिखी गई लाइनें। हमारे संवाददाता सत्यजीत हमारे साथ जुड़ गए। सत्यजीत अब बात ऐसे लगता है काफी आगे बढ़ गई, आज जो प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद जो ऐलान किया गया है, अब ये आंदोलन अब किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है?
8: देखिए जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच ने यह साफ कह दिया कि गांधीवादी तरीके से 22 दिनों तक इन्होंने आंदोलन किया लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी गई, लिहाजा अब इस आंदोलन को ये इंटेंसिफाई कर रहे हैं, एग्रेसिव कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाला, उसके बाद ये कहा है कि अगर जो इनके JSSC CGL एग्जाम को रद्द करने की मांग, CBI जांच की मांग, 11 से 13 हुआ JPSC, अगर इसको रद्द नहीं किया जाता मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, ये अल्टीमेटम दिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन का पुतला इन्होंने फूका है एल्बर्ट टिक्का चौक पे, ये कार्यक्रम हो चुका है और इनका साफ तौर से कहना है कि ऊपर से कांग्रेस इनको सपोर्ट करने की बात कहती है, अंदर से नहीं है। इस बार साथ में है रविंद्र पासवान है, पीयूष है, ये लीड कर रहे हैं फ्रंट से ये आंदोलन को। सबसे पहले रविंद्र बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, राहुल गांधी ने संवेदना प्रकट की थी आप लोगों के साथ जब लाठीचार्ज हुआ था?
9: देखिए, कथनी और करनी में जो अंतर होता है, जो आज तक हम लोग देखते आए कि कथनी और करनी में जो फर्क होता है, वो चीज हम लोग देखे। आदरणीय राहुल जी जो है सो JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच में ऑडियो कॉल के द्वारा।
7: ठीक है सत्यजीत, तो ये छात्रों का कहना है कि कथनी और करनी में कांग्रेस के भी अंतर है। छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बिजली का बिल पेड
3: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: इतना माही वे।

0: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया, और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान, भारत माता का अपमान है, उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम।
1: मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहाँ पर खड़े थे वो, और धूप काफ़ी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए, सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए। तो बस इतनी बात थी। उसी को एक, जिसको कहते हैं तिल को ताड़ बनाना, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, हर चीज़ को कभी बात खड़ा करना, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी लाना। तो हकीकत ये थी कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी के लिए एक व्यवस्था करना चाह रही थी ताकि वो गिर ना जाएं,

कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: वंदे मातरम विवाद पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप की माफी नहीं, बीजेपी की चौतरफा घेराबंदी। बंकिम चंद्र चैटर्जी परिवार ने लिखा गांधी परिवार को पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बयान पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व, जयराम रमेश ने भी किया हमला, बीजेपी का जवाब भी पलटवार। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। रांची में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास के घेराव का ऐलान। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बड़ी उड़ान, स्वदेशी जेट पावर दिव्यास रेम की 3 की पहली टेस्ट फ्लाइट यूपी में, टेस्टिंग एयर स्ट्रिप पर सफल, एयरफ्रेम से लेकर जेट इंजन तक सब मेड इन इंडिया।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। क्या 2027 का चुनाव बहुत अलग होगा, इतना अलग कि जहां अब तक चुनाव में जाति धर्म जातियों में भी उनके वर्ग देखकर या फिर महिलाओं को फोकस करके चुनावी रणनीति बनती आई है, वहां अब यूपी के 6 महीने बाद होने वाले चुनाव में सारा गुणा गणित नए तरीके से राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा, क्योंकि अब जाति नहीं जेन जी और जेन अल्फा को देखना पड़ रहा है, जो जेनरेशन अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर सवाल करती है, विरोध सड़क से सोशल मीडिया तक करती है, नारे लगाती है, नैरेटिव भी बनाती है। क्या उसी जेन जी जेन अल्फा को लेकर अब सारी खींचतान 2027 से पहले शुरू हो चुकी है?
2: हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
3: मैं यूथ से कहता हूँ, जेन जी से कहता हूँ कि ये जो लोकतंत्र है आपका है, इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी।
2: हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है।
4: कुछ दिनों बाद इसमें बहुत सारे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, इस सरकार को हटाने के लिए वोट करें।
2: जेन जी और जेन अल्फा के लिए नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खुल रहे हैं।
5: बच्चे इस बात को चाहते हैं कि अब बदलाव आए, और मैं अपने युवा दोस्तों से, बच्चों से, छात्रों से यही कहना चाहूंगी कि वोट के माध्यम से ही बदलाव आ सकता है।
2: मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे।
6: पूरे देश में इस वक्त उन जेन जी और जेन अल्फा पर नजर है जो 2027 से 2047 तक की सत्ता में किसी को बैठाने और हटाने की ताकत रखते हैं। भारत के वो भविष्य जो हक मांगने से नहीं डरते।
7: क्या हो गया?
8: टीचर है कोई यहाँ पे? पहला काम करो, सुनो, तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो, बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ, चलो।
6: जहाँ बच्चे अधिकारियों की आंख से आंख मिलाकर अधिकार मांगते हैं।
9: 4 साल हो गए सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है
10: जो भी थायर ग्रेड की,
9: सुनवाई नहीं की गई। 4 साल हो गए खाते में, कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
10: सही बात,
9: अगर आपके बच जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या?
6: एक तरफ लगता है कि आजादी के 80 साल बाद भी स्कूल व्यवस्था राज्यों में ढुलमुल है, दूसरी तरफ अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना बच्चे जानते हैं।
11: हमारे खाने के लिए थाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जाओ, इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा, और कहे भी दें तो कहते दूसरा रखवा लो, ऐसा क्या हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है ये करते हैं हमारे लिए।
6: जहाँ बच्चों के नारे इस बात का एहसास कराते हैं कि आवाज बुलंद करके अधिकार मांगने से डरना नहीं,
10: अधिकार भाग दे।
6: क्या इसी जेनजी और जेनल्फा के नारों ने हर राज्य में राजनीतिक दलों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया?
12: कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसमें कितने रुपए किराया लिया जा रहा था पहले आपसे? और आज कितने रुपए किराया लिया जा रहा है? आपसे भी 10 रुपए। सभी का किराया मान के चलने तो कम हुआ सभी से।
6: जंतर मंतर से निकली जेनजी की आवाज और फिर जेनल्फा के गूंजते नारे इस वक्त सभी दलों के दिल दिमाग में उठ रहे हैं। पहले सबकी नजर जेनजी यानी युवाओं पर है। वजह है कि 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में चुनाव होना है। इन चुनावी राज्यों में युवा मतदाता सबसे बड़ी ताकत बनकर नजर आते हैं। देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल के युवाओं की तादाद 21.19%, गुजरात में 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22% से ज्यादा, हिमाचल प्रदेश में 21.91%, मणिपुर में 23.74%, गोवा में 19.60%। और तब सबकी नजर उत्तर प्रदेश में है, जहां योगी सरकार और बीजेपी संगठन दोनों की नजर इस वक्त जेनजी से जेनल्फा तक पर है।
13: उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। जेनजी और जेनल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खुल रहे हैं।
6: मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि यूपी में सबसे बड़ी ताकत युवा है, तो अखिलेश यादव भी युवाओं पर ही अपना सारा जोर देने लगे।
4: और जेनल्फा लखनऊ में तमाम जगह पर अपने सवालों को लेकर सड़कों पर हैं। तो ये सरकार कर क्या रही थी 9 साल से? ये इतनी इंजन वाली सरकार क्या कर रही थी सरकार? इस सरकार ने अगर ध्यान दिया होता तो शायद इन बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल गई होती, ये भविष्य के बारे में चिंता कर रहे होते, इन्हें सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता। मैं इन तमाम बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ दिनों बाद इसमें बहुत सारे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, इस सरकार को हटाने के लिए वोट करें।
6: एक तरफ सरकार और संगठन उत्तर प्रदेश में जेनजी से संवाद में जुड़ चुके हैं ताकि युवाओं के लिए सरकार क्या क्या कर रही है यह बात पहुंचाई जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री इतिहास याद दिलाकर भविष्य के वोटर बनते युवाओं को बताते हैं कि कैसे 1947 का बंटवारा हुआ और बंटवारे का दर्द याद करा के वो विपक्ष को निशाने पर लेते हैं।
14: वर्तमान पीढ़ी को जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना, युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी खिला करके खड़ी की थी देश के सामने।
4: इन्हें इतना ही प्रेम है तो आजादी के आंदोलन की लिस्ट क्यों नहीं देते हैं? और ये किसके साथ थे? ये अंडरग्राउंड थे और अंडरग्राउंड रह करके ये सूचनाएं दे रहे थे अंग्रेजों को। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं सत्ता में जिनके पुराने लोग यही काम करते थे, इन लोगों पे आरोप हैं। और क्योंकि अपने विकास की बात नहीं कर सकते हैं? 1947 की बात कर रहे हैं लोग।
6: देश में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, उन्होंने मीम, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग, कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है। जेन जी की इस ताकत का अंदाजा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी है, क्योंकि यूपी में जहां कुल वोटर करीब 13 करोड़ है, इनमें जेन जी यानी 18 से 27 साल के वोटर 2 करोड़ से ज्यादा है। वहीं उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर जेन जी वोटर्स का असर है, वो 403 में से 80 से 120 सीटें मानी जा रही हैं। तभी तो बंटवारे का दर्द और हिंदुत्व को आगे रखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेन जी को नया मैसेज देने की कोशिश करते दिखते हैं।
14: ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती हैं। वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को समझाने का भी एक माध्यम होती है। सही तरीके से उन तक ये बात पहुंचाने का तरीका भी हमें भी अपनाना पड़ेगा। अगर हमारा दुश्मन और हमारा देश का विरोधी उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है?
1: सिर्फ जेन जी ही नहीं बल्कि जेन अल्फा भी देश में अब अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जुलाई के महीने में जंतर मंतर से उठा नई जेनरेशन का ज्वार अब जेन अल्फा तक पहुंच चुका है। जेन जी अगर बेरोजगारी, भर्ती में भ्रष्टाचार पर घेरता है, तो जेन अल्फा स्कूलों की हालत, सड़क की बदहाली पर सीधा सवाल करने लगा है। और इसीलिए अब बीजेपी हो या विपक्ष, हर कोई जेन जी और जेन अल्फा के साथ सीधा कनेक्शन साधने में जुट गया है।
6: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया, तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया। जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
8: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ।
6: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यहीं आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं, और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
8: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज, जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्टल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
6: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है। जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है, उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
10: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था तो उसके लिए हमने ये किया, क्योंकि परेशान हो चुके थे। और एक नहीं, क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
6: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जेन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए, फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
10: मैं में खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाउस में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना। ऐसा कच्चे चावल, चावल रखे हैं हम दिखाते हैं, चावल कच्चे बिल्कुल, जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
15: कितनी देर से बंद है
10: सर? हम कल
15: 4 बजे से,
10: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
15: आप स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
10: सूचना आए भी थे, हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
16: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थीं, जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहां वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है, जो उनकी कठिनाइयां थीं उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
6: उत्तर प्रदेश में इन जैन अल्फा के प्रदर्शनों पर सरकारी व्यवस्था तुरंत कार्रवाई करती दिखती है। वजह यह कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन के आगे जुलाई में सरकार को झुकना पड़ा। रांची में सरकारी नौकरियों की भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ प्रदर्शन से झारखंड सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ा। मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए देश का युवा अब समझौता नहीं करता, ऑन द स्पॉट समाधान चाहता है। युवाओं की इसी नई रीति और नीति ने 2029 से पहले सत्ता के सेमीफाइनल यानी अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की चुनौती बढ़ाई है। विपक्ष की नजर भी युवा वोटर पर टिकी है। राहुल गांधी युवाओं से सीधा संवाद करते हैं। अखिलेश यादव चुनावी मुद्दों में कहते हैं कि युवाओं की बुनियादी मांगे जरूरी, तो जंतर मंतर और रांची आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं की नाराजगी को दूर करने में जुटे नजर आते हैं।
17: हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है, 1 GB डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी।
18: सर एक बात, समीकरण से टिकट दी जाएगी क्या किसी? और बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं। जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है। एक तो नौजवान दुखी है, किसान दुखी है।
13: आज उत्तर प्रदेश का युवा प्लान की समस्या से मुक्त हो चुका है। साथ ही हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज घोषणा करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।
1: जेनरेशन कोई भी हो, सियासत जानती है कि धर्म और जाति मजबूत कड़ी होती है। जब जेन जी, जेन अल्फा एक नई लकीर खींच रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बटोगे तो कटोगे का नया वर्जन लॉन्च होता है। मुख्यमंत्री कहते हैं हम बटे थे इसीलिए कटे थे। वो युवाओं को याद दिलाते हैं कि बांटने की कोशिश कौन करता है, तो क्या बंटवारी की इसी सियासत में हिंदू वोट के नाम पर जेन जी वापस बंट सकता है या एकजुट हो सकता है?
19: हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं।
6: चुनाव में 6 महीने का समय जब बचा है, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा बटे थे तो कटे थे की बात याद कराते हैं।
19: हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तोबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता।
6: और तभी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर अखिलेश यादव कहते हैं कि एक एक वोट जोड़ना है।
20: इन साथियों ने हमारा सहयोग और समर्थन कर दिया, इन साथियों का हमें साथ मिल गया तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पता ही नहीं लगेगा कहां चलेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमें एक एक वोट जोड़ना है। पीडीए में जब तक सब लोग नहीं आएंगे, उस छाते के अंदर सब लोग नहीं आएंगे, छतरी के अंदर सब लोग नहीं आएंगे, तब तक हमारा गुलदस्ता नहीं बन पाएगा पीडीए का।
6: अखिलेश यादव पीडीए का जो गुलदस्ता बनाना चाहते हैं उससे बीजेपी का मजबूत बहुसंख्यक वोट बिखर सकता है, और तब सबसे मजबूत वार अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर करते आ रहे हैं। याद करिए पूरे मानसून सत्र संसद में क्या हुआ। संसद के बाहर ही चढ़ावा चोरी के खिलाफ रोज दानपात

0: मंदिर जाकर समाजवादी पार्टी ने वो चंदा जमा करा दिया।
1: राम भक्त हनुमान जी के चरणों में हम लोगों ने समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। अब हनुमान जी की गदा चलेगी प्रभु श्री राम के चंदा चोरों पर, क्योंकि मैं समझता हूँ प्रभु श्री राम की अवहेलना जिस किसी ने की है हनुमान जी ने उस पर गदा चलाए बिना नहीं छोड़ा है। और इन जो चंदा चोर हैं, जो चंदा के डकैत हैं, उन पर भी हनुमान जी की गदा चल के ही रहेगी।
2: तो आप लोग अयोध्या भी जाएंगे जो चंदा?
1: बिल्कुल जाएंगे, केदारेश्वर मंदिर के उद्घाटन के बाद हम सब लोग अयोध्या जरूर जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे और पूरा समाजवादी कार्यक्रम।
3: प्रभु हनुमान जी के चरणों में दे दिया, माथा टेका, वहाँ से आशीर्वाद मिला, प्रसाद मिला और प्रार्थना किया कि आप शक्तिशाली हैं, सारी दुनिया जानती है, ऐसा गदा चलाइए कि चोरों का और इस तरह लूट करने वालों का सफाया हो, हिंदुस्तान खुशहाल हो।

0: और अब अखिलेश यादव की तरफ से वीडियो बनाकर जारी किया जाता है जिसके बोल है कि राम जी से घात का पैसा जनता नहीं चाहती।
1: जो लोग अपने आप को कहते थे हम राम राज लाएंगे, उन्होंने राम धन को भी लूट लिया। बताओ, राम धन को लूट लिया।
2: राम नाम की लूट है।
1: अगर मंदिर के बाहर भिखारी भी बैठा है जिसके पास पैसा नहीं होता, वो भी कभी जाकर के मंदिर में चोरी नहीं करता। जो भिखारी मंदिर के सामने बैठता है वो कभी भी चोरी नहीं करता है। मंदिर में जाकर के वो इंतजार करता है कि कोई उसे दे देगा, सम्मान कर देगा उसका। बाप का पैसा तो भिखारी भी नहीं लेते हैं। सोचिए, इधर तो क्या क्या हुआ है, सब तस्वीर सामने आ गई है।
3: आपसी अंतर विरोध जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, जो आज के दिन पर चिल्लाहट ज्यादा जिनकी चल रही है, ये जाति को के नाम पे बांटने वाले लोग हैं। ये जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे, और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक अकाउंट बना करके एक जाति को दूसरी जाति को गाली दिलवाएंगे, दूसरी जाति को पहली जाति को गाली दिलवाएंगे, आपस में लड़ाएंगे, वहां से षड्यंत्र करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से जातीय सम्मेलन करके समाज की एकता को भंग करेंगे, और जब कभी दंगे होंगे तो दंगाइयों को अपने आवास में बुला करके सम्मानित भी करेंगे। ये वही लोग हैं, उनसे सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
4: शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है तो सुरक्षा दूसरा बड़ा विषय, जहां उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, वो भी खासकर महिलाओं की सुरक्षा को मुख्यमंत्री अपनी मजबूत कानून व्यवस्था से सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। लेकिन क्या उस महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी कैश योजना का असर पड़ेगा? जहां 40,000 रुपए सालाना देने का वादा अखिलेश यादव कर चुके हैं, तो अब चर्चा है कि बीजेपी में महिलाओं को चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने की योजना पर विचार हो रहा है। इसीलिए समझना जरूरी है कि आखिर महिलाओं को कैश से ही सत्ता प्रवेश वाली सियासत इतनी मजबूत क्यों मानी जाती है।
5: एक तरफ महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल का विरोध करने के बाद उसे पास नहीं होने देने में लगे विपक्ष को लाल किले से प्रधानमंत्री घेरते हैं।
6: हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। समय की मांग है, और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
5: और

0: दूसरी तरफ अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में खबर कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
1: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो SC ST OBC महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।
0: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब महिलाओं के वोट को लेकर निश्चिंत योगी सरकार पहले से रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसा चुनाव से पहले बांटने वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल करने की रणनीति पर विचार होने लगा? क्या इसकी पहली वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी? क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी? क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह ये भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती है? 2007 में BSP को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
2: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है? चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे PDA जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
3: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो NCERB के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी PDA के जन नायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे, उसको आपने बंद कर दिया। अभी आप कौन सी योजना लेकर के आए हो सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
0: BJP अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
4: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहने इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा, उनको धोखा दे दिया 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे, उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे, पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने BJP से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500 अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3000 रुपये बनते हैं, तो 12 महीने देना है 3000, तो कितना हुआ 36000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40000 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10000 से सरकार बन सकती है तो 40000 हम लोग देने जा रहे हैं।
0: दिसंबर में पिछले साल यानी 8 महीने पहले अखिलेश यादव ने आज तक के ही मंच पर इस बात पर जोर दिया कि बिहार का परिणाम महिलाओं को चुनाव से पहले 10000 रुपये दिए जाने से बदल गया। क्या वाकई ऐसा संभव हुआ? हमने बिहार के चुनाव नतीजों का दोबारा अध्ययन किया जिसमें पता चलता है कि एनडीए सरकार ने बिहार की 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले 10000 रुपये ट्रांसफर किए। इसके बाद जो नतीजा दिखा उसमें बिहार में पहली बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ। जानकार इसकी वजह वही 10000 रुपये वाली किश्त को मानते हैं। पुरुषों के मुकाबले बिहार में महिलाओं ने 10% ज्यादा वोट किया। बिहार की करीब 130 सीट पर महिला वोट पुरुषों से ज्यादा रहा, जिनमें 114 सीट एनडीए ने जीती यानी 88% सीट। एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर के बीच का अंतर उन जिलों में ज्यादा दिखा जहां महिला वोटर की हिस्सेदारी ज्यादा मतलब 51-55% के बीच थी, और उन जगहों पर एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर के बीच का अंतर कम था जहां पुरुषों और महिलाओं की वोटिंग संख्या लगभग बराबर थी या पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा थी। जिन सीटों पर महिला वोटर की हिस्सेदारी 51-55% थी वहां एनडीए और महागठबंधन के बीच वोट का अंतर 11-15% वोट के बीच का था, जबकि दूसरी सीटों पर अंतर 10% से कम था। मतलब यह है कि नवंबर 2023 से अब तक 18 राज्यों में जो चुनाव हुए इनमें से जिन 14 राज्यों में महिलाओं को पैसे देने वाली कैश स्कीम लागू की गई या वादा किया गया उन 14 में से 10 राज्यों में योजना कारगर रही, स्ट्राइक रेट 71% रहा। क्या यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं वाली कैश स्कीम की सियासत पर जोर है?
5: उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी चर्चा ब्राह्मणों को लेकर खूब जोर शोर से चल रही है, जहां पीडीए का पी अब समाजवादी पार्टी की तरफ से पंडित भी हो चुका है। बीएसपी भी पहला टिकट ब्राह्मण को देती है। बीजेपी कहती है कि 10 ब्राह्मण में 8 का वोट हमें मिलता आया है, दूसरे लोग केवल सपना देखें।
6: पीडीए में पीडी पंडित का ही फॉर्म है।
7: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया।
6: पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीड़ा और मजबूत दिखाई देगा।
7: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं।
8: प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
7: जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं।
9: दिन भर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार।
10: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है 100-100 चूहे खा के बिल्ली हज को चले।
6: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
7: संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए इस सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है।
0: उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां संत समाज कहता है वो बीजेपी के साथ है, जहां सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में 2 से ज्यादा बार बीजेपी नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती? जब आप जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है। जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्त्रोत होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए पीडीए के पी का नया रूप बताते हैं।
6: लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि पीडीए में पीडी पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे पीड़ा बढ़ाओगे उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा।
0: जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा उसकी सत्ता आई। 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव मुस्लिम यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं।
8: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है, और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक कहा पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
11: समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और इनका ब्राह्मण समाज से सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कन्फ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है।
0: 2014 में बीजेपी को 72% ब्राह्मण वोट मिला, समाजवादी पार्टी 5%, बीएसपी 5% और कांग्रेस को 11% ब्राह्मण वोट मिला था। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 83% ब्राह्मण वोट पाती है, बाकी समाजवादी पार्टी को 7%, बीएसपी को 2%, कांग्रेस को 1% ब्राह्मण वोट मिलता है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 84%, एसपी बीएसपी साथ लड़े तो महागठबंधन को 6% और कांग्रेस को 6% ब्राह्मण वोट मिला था। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 89%, एसपी को 6%, बीएसपी को 1% से भी कम और कांग्रेस को 1% वोट मिला। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 79% और इंडिया गठबंधन को 16% वोट मिलता है। इस पूरे चार्ट पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि 5 चुनाव से ब्राह्मण वोट बीजेपी के पास चुंबक की तरह चिपका हुआ है। 2014 से 24 के बीच ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 16% हिस्सा ही हासिल कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि सवर्णों के सबसे बड़े वर्ग में ब्राह्मण का ही कुछ वोट टूटा तो उसका वोट बढ़ेगा, सीट बढ़ेगी। इसीलिए अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन वाले मंच से चुन कर वो घटना याद दिलाते हैं जिससे ब्राह्मण वोट साधा जा सके, लेकिन बीजेपी से बेकार की कोशिश समाजवादी पार्टी की बताती है।
6: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं।
0: इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए। और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला।
6: याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है, सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में, हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है उन्हें हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें।
10: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में गांव में कहावत है, बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कालर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रही है, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृत को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं।
12: भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है।
13: ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया, क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे?
14: बड़ा असमंजस में है लोग। असमंजस में ये है कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है। आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए।
5: जेन सी, जेन अल्फा के बाद हिंदू, महिला, ब्राह्मण वोट की लड़ाई आप देख चुके हैं। अब समझिए दलित वोट की सियासत को। जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई रैली के बाद कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से किए गए शुद्धिकरण पर सियासत उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। बीएसपी के चुनावी वोट की बिसात पर पिछले कई चुनावों में कमजोर होने के बाद और इसी वोट बैंक को सब अपना बूस्टर वोट बैंक बनाना चाहते हैं।
15: दलित फिर ऐसे ही कहां मिलेंगे?
0: उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली होती है और फिर रैली स्थल का शुद्धिकरण कराया जाता है। अब नए सियासी रण की वजह उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक ये बन चुका है, जहां पहले मुद्दा संसद में उठा, सड़क पर विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर यूपी की सियासत तक इस मुद्दे की गूंज पहुंच जाती है। पहले अखिलेश यादव ने अटैक करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि कुछ प्रभुत्ववादियों ने सिर्फ इसलिए शुद्धिकरण किया क्योंकि खड़गे जी दलित समाज से आते। अखिलेश यादव लिखते हैं कि अब इस तरह के हर सामाजिक दुर्व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न के लिए पीडीए समाज एकजुट होकर जवाब देगा। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अब पीडीए समाज अपना अपमान सहने के मूड में नहीं है। तो मायावती ने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया है। मायावती ने इसे अति निंदनीय और चिंतनीय बताया, कहा कि उत्तराखंड की सरकार बिना कोई देरी किए हुए जातिवादी और सामंती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजे। अखिलेश यादव और मायावती के हमले से साफ है कि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति जोर पकड़ती दिखती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी दलित वोटर को साधने की कोशिश में लगी है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में दलित करीब 22% है। सियासी तौर पर यह दो हिस्सों में बटा है, पहला हिस्सा जाटव वोटर का जो करीब 14% है और बाकी गैर जाटव जो 8% है। एक समय यूपी के दलित वोटों पर बीएसपी की पकड़ बेहद मजबूत रही, लेकिन चुनाव दर चुनाव बीएसपी कमजोर हुई है। यही वजह है कि 2022 विधानसभा चुनाव में दलित वोट बटा नजर आया। बीते विधानसभा चुनाव में गैर जाटव दलितों की बड़ी संख्या बीजेपी के साथ गई और तब कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी के पाले में भी आया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटों के पैटर्न में बड़ा बदलाव दिखा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को गैर जाटव दलित वोट का बड़ा समर्थन मिला। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी दलित वोटों को साथ लाने के लिए दम लगा रही हैं और ऐसे में खड़गे के रैली स्थल के शुद्धिकरण ने विपक्षी दलों को बड़ा मौका दे दिया।
15: तो इस तरह के कृत्य करके वो समाज में अंदर विघटन डाल के किसी तरह से चाहते हैं राजनीतिक लाभ लेना, लेकिन हम इस मौके पे बीजेपी के लोगों से और उनके संगी साथी और नियत के लोगों से कहेंगे कि हम दलितों को, हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को जितना आप अपमानित करोगे, जितना आप जलील करोगे, हमारा संघर्ष का संकल्प उतना ही और मजबूत होता जाएगा।
16: जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ दलितों पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, कदाचार हो रहा, और अब तो हद हो गई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहाँ पर भाषण दिया था उस जगह का शुद्धिकरण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा। ये एक दलित विरोधी मानसिकता की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी हो चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, ये सरकारें शुद्ध दलित विरोधी मानसिकता।
0: जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को इसी हफ्ते उठाया तो बीजेपी ने इसकी गंभीरता को समझते हुए इसकी निंदा की, साथ ही जांच और एक्शन की बात भी कही।
17: बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। इज इज इन डेमोक्रेसी हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टू
18: क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे।
0: हालांकि बीजेपी की ओर से भरोसे के बाद भी सियासत बढ़ती जा रही है।
19: ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।
0: इस बीच रामलीला मैदान का शुद्धिकरण कराने वाले श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास का बयान भी सामने आता है। इसके अध्यक्ष गिरीश पांडे ने आरोप ये लगाया कि कांग्रेस ने जाति और धर्म के नाम पर नारे मंच से लगवाए थे।
20: हम लोगों का विरोध इसलिए था कि एक धार्मिक स्थल का जो है इस्तेमाल उन्होंने अपने राजनीतिक कारणों से किया, जैसे मैंने पहले भी अपनी बाइट में बताया है। उस मंच पे जो कि हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, उस मंच पे किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो भारत के अन्य कोनों में जाकर के हिंदू समाज की तुलना सांप से करता हो और यहाँ आकर के राजनीतिक मायने के लिए इस मंच का इस्तेमाल करता हो, ये हमारा विरोध का कारण है। कार्यक्रम के बाद उस स्थान की शुचिता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। शराब की बोतलें वहां पे मिली हैं, बॉटल्स में टॉयलेट वहां पे किया जो हमने अपने आप हटाया है, खुद वहां साफ कराया है। इन सारी विषयों को लेकर के शुद्धिकरण जो है वो यज्ञ किया गया।
0: अब सवाल है कि अभी तो बयानबाजी चल रही है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर आगे और राजनीतिक आग भड़केगी?
5: अभी के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
2: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: अनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: बिजली का बिल पेड
6: है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
7: कैसे?
6: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
7: इतना माही वे।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीति में अब वायरल होने की होड़ नेताओं पर भारी पड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस के रचनात्मक प्रकोष्ठ का अधिवेशन था, मकसद था नई राजनीति की शुरुआत, लेकिन इस मंच से जो हुआ उसने पार्टी की पूरी क्रिएटिविटी पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। मन से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की हग डिप्लोमेसी यानी गले मिलने के अंदाज पर तंज कसते हुए मिमिक्री की, तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। और हद तब हो गई जब ये सुनकर लोग ठहाके लगा रहे थे। इंदिरा गांधी की विरासत का दावा करने वाली कांग्रेस के मंच से एक महिला प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी ने बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। सवाल यह है कि क्या जेंजी को रिझाने और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने की इस दौड़ में हमारे नेता अपनी राजनीतिक मर्यादा भूलते जा रहे हैं? और सोचिए, जब बीजेपी की तरफ से हमला आया तो बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक ऐसी अमर्यादित बात लिख दी जिस पर आज चर्चा करना, कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो सिर्फ दिखाता है दोनों ही हिस्से। ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है कि राजनीति में अब कोई सीमा बची नहीं है धरातल के नीचे जाने की। केंद्र सरकार की विदेश नीति पर राहुल गांधी की व्यंगात्मक एक्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। करीब 56 सेकंड के अंदर ही इन दोनों बड़े नेताओं ने मंच से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दिया, जिसका जवाब अब कांग्रेस पार्टी इस बात से दे रही है कि आपके नेता भी तो अपशब्द बोलते हैं। लेकिन ये कोई जवाब है? सवाल है कि एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री का जिस देश के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, हम उनके नागरिकों को क्या संदेश दे रहे हैं अगर इस तरह का व्यवहार हम करते हैं? हुआ ये कि राहुल गांधी मंच से केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाने की उनकी आदत का मजाक उड़ा रहे थे। इसी एक्ट के दौरान संदीप दीक्षित ने उनसे इटली की प्रधानमंत्री या जॉर्जिया मेलोनी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी, और यहीं से संदीप दीक्षित और राहुल का राजनीतिक घेराव शुरू हो गया है। पहले सुनिए,
1: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
2: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
1: I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: सवाल तो यह है कि राजनीति में यह कहां से घुस गया कि आपको महिलाओं का अपमान करने की खुली इजाजत है। एक महिला पर संदीप दीक्षित की इस टिप्पणी ने कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम की छवि धूमिल की, और जिस तरह से मंच पर इस टिप्पणी के बाद ठहाके लगे उसने इस अधिवेशन के उद्देश्य नई तरह की राजनीति का मजाक बनाया। जिस पार्टी से इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिला प्रधानमंत्री रही हूं, उस पार्टी के एक नेता के द्वारा दूसरे देश की किसी महिला प्रधानमंत्री के लिए गलत टिप्पणी करना राजनीतिक बयानबाजी सबसे निचला स्तर है। और यही वजह है कि कल से ही भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कई पार्टियों के नेताओं ने इसकी निंदा की है और कई लोग इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। देखिए,
3: कल मैंने देखा, एक भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूं, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? कि ये भारत के विचार है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए।
4: पूरे देश की महिलाओं का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया, एक चुने हुए देश की महिला का, ननियाल देश की महिला का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया। अपनी निम्नता, घटियापन, ओछापन देश के लोगों के सामने रखने का काम राहुल गांधी ने किया, और उनके साथ में जो एक जोकर और खड़ा था वो जोकर भी इसलिए क्योंकि उसकी माताजी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, वहां पे भी उसकी मां का भी अपमान किया उस जोकर ने।
5: दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उचित टिप्पणी करें तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है, महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है, और जानबूझ के डिलिमिटेशन बिल क्यों नहीं पास होने देते ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण, ये दिखता है। लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है।
6: राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ ड्रामा कर ही रहे थे, उनके साथ उनके एक नेता ने जाकर ये कहना कि इटली की स्टेट हेड के बारे में इस तरह की बातें करना, ये क्या भारत की संस्कृति है? किस तरह की जबान बोली जा रही है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा कांग्रेसी बोल रहे हैं और एक्ट कांग्रेसी कर रहे हैं।
0: संदीप दीक्षित की महिला विरोधी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की पहली मुसीबत थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री ने भी राहुल गांधी के इस टिप्पणी पर गहरी चिंता जाहिर की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है।
7: ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है। मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहूंगा, विनम्रतापूर्वक कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी भाषा और आचरण के बाद क्या वे लोग अब लाल बाल पाल से लेकर गांधी नेहरू पटेल सुभाष बाबू राजेंद्र बाबू से लेकर शास्त्री जी नरसिम्हा राव जी से लेकर प्रणब मुखर्जी जी तक जैसे विराट व्यक्तित्वों की विरासत का वह दावा किसी भी सूरत में कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है।
0: तो संदीप दीक्षित की महिला विरोधी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की पहली मुसीबत थी। दूसरी मुसीबत राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की मिमिक्री। राहुल गांधी ने कल मंच से कहा कि केंद्र सरकार के दिमाग में घुस गया है कि विदेश नीति का मतलब है नेताओं से गले लगना। आपने राजनाथ सिंह को भी सुना, उन्होंने भी कड़े शब्दों में इस पर टिप्पणी की। उनका निशाना देखिए, राहुल गांधी का निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गले मिलने का स्वभाव है, जिसमें वो अपने समकक्ष नेता मित्रों कुछ सहयोगियों से गले मिलते हैं। राहुल गांधी ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि विदेश नीति जो है वो अब इस बात पर सीमित हो गई है कि प्रधानमंत्री सबके गले मिलते हैं, और उन्होंने बाकायदा इसकी एक्टिंग की जो आप देख रहे हैं। राहुल गांधी की एक्टिंग को नई दिल्ली की सांसद बासी सराज ने फेल्ड स्टैंडअप कॉमेडी कहा है। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने उनसे पूछा कि वो बड़े कब होंगे। इसके अलावा कई नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान को बचकाना बताया। अपने राजनाथ सिंह को सुना, वो तो कह रहे हैं कि जिसके नाम में गांधी है वो ऐसा कैसे कर सकता है।
8: जिस प्रकार की संस्कारहीन गरिमाहीन अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब बयानबाजी केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील वैल्यू के लिए करते हैं।
9: एक तो भाषा का सभ्यता रहता था, वो सभ्यता संपूर्ण उन्होंने भूल गया है क्योंकि वो सभ्यता ही नहीं है उनके पास। तो अपने आप को समझते हैं ही इज बॉर्न टू रूल, ये इनके मन में अहंकार है। जब ये पूरा नहीं हो रहा है, हताश होके अत्यंत लो लैंग्वेज फिल्दी लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं।
10: नीचता की हद है, और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते हैं।
0: लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे देश के राजनेता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह वायरल होना चाहते हैं। सोशल मीडिया को एक्सक्लूसिव कंटेंट देने के लिए भी कई चीजें की जाती हैं और इसी वजह से बहुत सारा ऐसा कंटेंट बनाया जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर हमारे नेताओं की बयानबाजी, सरकैज़म, आपने हाल में देखा होगा जेंजी आंदोलन के बाद से ज्यादा ही कोशिशें हो रही हैं कि ऐसी ऐसी बातें कही जाए जिनकी मीम्स बने, जिनका अलग अलग अंदाज में लोगों तक पहुंच बढ़े। जैसे आपने राहुल गांधी का वो मीम देखा होगा जिसमें वो कहते हैं खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय, काफी वायरल मीम है और वो कई बार इसका इस्तेमाल अपने भाषण में कर चुके हैं। कल भी उन्होंने मंच से इसी मीम को रिपीट किया, यानी उन्हें मालूम है कि उनका कौन सा कंटेंट सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा देख रहे हैं, मीम कंटेंट। सुनिए,
1: सिस्टम बदलना है, प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा, बाय बाय करना है।
11: जैसे सर ने कहा, खत्म, टाटा, बाय बाय,
1: खत्म, टाटा, बाय बाय।
12: अब तो हो गया ना, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी, ओपोजिशन, सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला वो क्या। हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे।
0: उम्रदराज नेता भी ऐसे वीडियोस बनवा रहे हैं जो जेंजी को पसंद आए, अपने भाषणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो जेंजी की बोलचाल में सामान्य मानी जाती है। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान संसद में जो चर्चा हुई थी उसमें कुछ नेताओं ने जेंजी द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। इन शब्दों का इस्तेमाल भी इसलिए किया ताकि भाई भाषणों में एक जुड़ाव जेंजी के साथ दिखे। सुनिए,
13: जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेंजी की भाषा को बोरो करूं, देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन।
14: विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेंजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको एमआईए हो गया। एमआईए क्या है? एमआईए मिसिंग इन एक्शन। आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
15: जी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है।
16: ये जो नया जेंजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा। सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। उनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा।
17: वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुईया, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन।
0: तो पिछले कुछ समय में कई बड़े और चर्चित नेताओं ने किसी इन्फ्लुएंसर की तरह वीडियोस बनाए हैं, वायरल भी हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था जिसमें दोनों बारिश में भीग रहे थे, बारिश से बचने के लिए छतरी नहीं ली थी और संसद परिसर में मौजूद ये दोनों सांसद आपस में किसी मुद्दे पर गहन बातचीत में बिजी नजर आए। ये वीडियो की रीच मिलियंस में थी। हालांकि बाद में जब वो वीडियो भी आया जिसमें आसपास लोग छतरी के साथ खड़े दिख रहे थे तो वो वीडियो भी वायरल होने लगा क्योंकि आसपास में लोग खड़े थे। हालांकि ये अलग बात है कि राहुल विरोधियों ने इस घटना का एक और वीडियो, जैसा हम बता रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। नजर आया कि जिस जगह राहुल और प्रियंका बारिश में भीग रहे थे वहां पर बहुत सारे सुरक्षाकर्मी छतरियों के साथ खड़े थे। साफ थी कि राहुल प्रियंका का ये वीडियो जो है बारिश वाला, वो रील का कंटेंट था जिसका मेन जो पॉइंट है ये था कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता करता धरता किसी गहन मुद्दे पर बात करते वक्त बारिश की भी चिंता नहीं कर रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली गए थे और वहां पर भी जब मेलेडी चॉकलेट वाला ये कंटेंट बना तो सोशल मीडिया पर ये भी बहुत देखा गया और इसे भी आप इंस्टाग्राम या फिर वीडियो कंटेंट बता सकते हैं क्योंकि मेलेडी चॉकलेट की बात हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के दोस्ती को लेकर खुद इटली की प्रधानमंत्री ने पहली बार हैशटैग मेलेडी लिखा था। जंतर मंतर पर हुए जेंजी आंदोलन के बाद तो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को साधने की नई कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब तो सोशल मीडिया पर रील स्टाइल में वीडियोस और संबोधन हो ही रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने E20 के मुद्दे पर एक वीडियो बनाया था जिसमें वो बारिश के दौरान कार के पेट्रोल टैंक के पास खड़े हैं, पेट्रोल टैंक का नॉब खोलते हैं और बाद में कहते हैं कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। इस वीडियो के करीब काफी व्यूज थे, 35 मिलियन के आसपास आप देख रहे हैं। फिर लोगों ने जूम इन किया और जूम इन करके दिखाया कि यहां पर तो E20 लिखा हुआ है, जिस एथेनॉल गाड़ी मानी E20 कंप्लायंट कार है ये। इसी तरह से एक वीडियो जब जेंजी पर हुए लाठी चार्ज को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर धरना दे रहे थे तब उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सुरक्षा कर्मी उनको ले जा रहे हैं, उसके भी लगभग 24 मिलियन व्यूज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 जुलाई वाले इंस्टाग्राम रील भी आपको याद होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक दिन पहले ये रिलीज की गई थी। ये एक सेल्फी वीडियो बताया गया था जिसमें उन्होंने जेंजी को संबोधित किया था। इसमें नकल माफिया और दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके व्यूज आप देख सकते हैं, 417 मिलियन व्यूज थे। इसके बाद लोगों ने उन्हें सेल्फी वीडियो के कुछ फ्रेम्स बताए जिस पर उन्होंने अमल भी किया और फिर अगले दिन एक वीडियो बनाया और इस वीडियो के 293 मिलियन व्यूज थे। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने घर के बाहर जाकर एक और वीडियो बनाया था और ये वीडियो के 195 व्यूज थे, मिलियन 195 मिलियन। यानी देश के नेता जेंजी को सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो साफ अब रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारे रील्स प्रभावी रहे, चाहे वो जंतर मंतर का आंदोलन है उसको लोगों तक पहुंचाने में। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी का मजाक भी कुछ इसी तरह से उड़ाया जिससे उनका ये वीडियो वायरल हो सके और काफी हद तक कामयाबी भी रही क्योंकि लगातार टीवी डिबेट्स बुलेटिन में इस पर चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पर अटैक कर रही है, उनके समर्थक ही नहीं बल्कि विरोधी भी काफी देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी को लेकर राहुल गांधी के विचार लोगों को सोशल मीडिया में वायरल होने के मिमिक्स से अगर आप इसको तुलना करें तो अलग अलग जगहों पर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विदेशों में जाकर डिप्लोमेसी में हक करने की बात की कि सबके गले लगते हैं, लेकिन अब लोग ये वीडियोस डालने लगे हैं क्योंकि विदेश नीति की कोई रणनीति के बजाय उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर भी ये वीडियो अब बीजेपी के लोग वायरल कर रहे हैं जिसमें उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को भी गले लगाया। इसके अलावा इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर सिवान, वाराणसी में हुए कार्यक्रम में दिव्यांगों को भी गले लगाया था।
18: बोलो भारत माता की।
19: সরকার সবরই প্রতীক্ষা কত দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

0: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर डाली है, जिसमें वो क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो से गले मिलते हुए दिख रही हैं। ये तस्वीर मार्च 1983 की है, जब दिल्ली में नॉन अलाइंड नेशंस कॉन्फ्रेंस की 7वीं बैठक आयोजित की गई थी। इसमें इंदिरा गांधी जैसी मंच पर जाती हैं तो फिडेल कास्ट्रो की तरफ से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन फिडेल कास्ट्रो ने उन्हें छोटी बहन की तरह गले लगा लिया। और आज इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि निशिकांत दुबे ने इस पोस्ट के साथ जिस तरह की भाषा लिखी है वो कतई एक प्रधानमंत्री के लिए, और वो भी भारत की महिला पूर्व महिला प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित है। और आज आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गले मिले थे। जुलाई 2018 के मानसून सत्र में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी बोलते बोलते अपनी सीट से उठे, वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए और उन्हें गले लगा लिया था।
1: आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। इट्स इंटरेस्टिंग, यू लाइक इट, यू विल एंजॉय दिस वन।
0: कश्मीर घाटी से एक बार फिर सनसनीखेज और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों और पंडितों को आतंकवादियों ने खुलेआम निशाना बनाने की धमकी दी है। इस बार सिर्फ जुबानी या लिखित धमकी भर नहीं है, बल्कि एक नए आतंकी संगठन के नाम से बाकायदा एक हिटलिस्ट जारी की गई है, जिसमें कई सरकारी कर्मचारियों के नाम, उनके फोन नंबर्स सार्वजनिक किए गए। इस बड़े खतरे के बाद प्रशासन ने फिलहाल हिंदू कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के निर्देश दे दिए हैं। इस बार धमकियों के पीछे लश्करे तैयबा से जुड़े एक नए आतंकी फ्रंट यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी यूएलसी का हाथ सामने आया है। यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का ही एक मुखौटा है, जो घाटी में आतंक फैलाने के इरादे से शदम नाम से काम करता है। लश्कर के इस आतंकी मुखौटे ने एक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें खास तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों समेत कई सरकारी हिंदू कर्मचारियों के नाम और उनके फोन नंबर तक सार्वजनिक कर दिए गए हैं। प्रशासन के कान इसलिए भी खड़े हो गए हैं क्योंकि पिछले ही महीने दक्षिण कश्मीर में दो बड़े आतंकी हमले हुए थे। 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी पर

0: कश्मीरी पंडित ट्रांजिट कॉलोनीज, हिंदू बहुल रिहायशी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा समीक्षा होने तक कर्मचारी अपने घरों से ही काम करें। सुरक्षा बलों की यह तैयारी और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश यूं ही नहीं है। कई बार आतंकी, खासतौर पर हिंदू कर्मचारी हों, प्रवासी मजदूर हों, उनको निशाना बना चुके हैं। अक्टूबर 2021 श्रीनगर में एक हिंदू टीचर और एक सिख प्रिंसिपल की स्कूल में घुसकर हत्या कर दी गई थी, अगर आपको याद हो। और फिर मई 2022 को बड़गांव में आतंकियों ने तहसीलदार का जो कार्यालय था, ऑफिस, उसमें घुसे, कश्मीरी पंडित कर्मचारी को चुनकर गोली मारकर हत्या कर दी। मई 2022 में ही कुलगांव में स्कूल के बाहर एक हिंदू शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। फरवरी 2023 को पुलवामा में बैंक में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से ये नया आतंकी फ्रंट क्यों सक्रिय हुआ, इसके पीछे वजह क्या है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव है। घाटी में पिछले कुछ समय से कई कश्मीरी पंडित अपनी उन संपत्तियों, उन जमीनों को कानूनी रूप से वापस पाने में सफल हो रहे हैं जिन पर स्थानीय स्तर पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बांदीपुरा के एक कश्मीरी पंडित का मामला है, जहां इन व्यक्ति ने प्रशासन की मदद से अपनी जमीन का कब्जा वापस हासिल किया। उनकी 17 कनाल कृषि भूमि उन्हें वापस सौंप दी गई। ये व्यक्ति 1990 के दशक में पलायन कर गए थे, लेकिन अब जब उन्हें कानूनी रूप से उनकी जमीन वापस मिली तो स्थानीय स्तर पर भारी विरोध भी देखने को मिला था। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, यानी ये लोग नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति वापस लौटे और अपनी जमीन पर फिर से दावा करे। अब आतंकियों ने इन्हें धमकी दी है और विशेष तौर पर इनके खिलाफ धमकी भरा एक पत्र अलग से जारी किया है। इनका जो नाम है और चेहरा है वो कई प्रिंट ऑनलाइन खबरों में सार्वजनिक कर दिया गया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इनकी पहचान हम सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, ना हम आपको उनका चेहरा दिखा रहे हैं, ना हम उनका नाम बता रहे हैं, क्योंकि आतंकियों ने सीधा नाम लेकर इनको धमकी दी है और इनको खतरा है, इनकी जान को खतरा है। देखिए
1: तो थ्री से मैं इस पर अपना जो भी है कागज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो भी थे वो सारा कुछ देख के मुझे एक पीस ऑफ लैंड आज मिला है। आज मैंने दूसरी बार ये पोजीशन ली है, फर्स्ट टाइम एनक्रोच हुई थी और मेरी लड़ाई भी बाकी है, क्योंकि 186 कनाल लैंड मुझे एक दिन तो मिलेगी नहीं। अभी मुझे पीस ऑफ लैंड मिला है, वेरी थैंकफुल टू एडमिनिस्ट्रेशन, थैंकफुल टू गवर्नमेंट, थैंकफुल टू एलजी साहब एंड ड्यू काउंसिल स्पेशली हु टुक वेरी गुड स्टेप्स।
0: पाकिस्तान समर्थित इन तत्वों को ये बात कहां से रास आएगी, और यही वजह है कि आतंकियों ने स्थानीय लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। वो कश्मीरी पंडितों के घरों और फसलों को निशाना बनाए। साफ है कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ कुछ धमकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया को बाधित करने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन इस तमाम खौफ और अनिश्चितता के बीच घाटी में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं ने जिस साहस का परिचय दिया है वो वाकई एक मिसाल है। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि वो नासमझ नहीं है। पाकिस्तान और उसके पाले हुए इन संगठनों के हर नापाक इरादे और प्रोपेगेंडा को वो अच्छे से समझते हैं, वो इस बार डरेंगे नहीं। अब आपको ये दूसरी तस्वीर भी देखनी चाहिए, जिस वक्त घाटी में कश्मीरी पंडितों को धमकी दी जा रही है जो वहां के मूल निवासी हैं। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को धमकी और आतंकी हमले किए जा रहे हैं। तब इसी जम्मू कश्मीर में बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं को उनका कोई विरोध नहीं कर रहा। जो लोग कश्मीरी पंडितों की वापसी पर दुखी हैं, उन्हें शायद घुसपैठियों से कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर में चल रहे डेमोग्राफिक शिफ्ट का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि दशकों से अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे कश्मीरी पंडित न्याय और वापसी की आस लगाए बैठे हैं, जबकि दूसरी तरफ म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए जम्मू की जमीनों पर आबाद हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू संभाग में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों समेत 13,700 से अधिक विदेशी नागरिक रूप से दर्ज हैं। विधानसभा में सरकार का जो जवाब है वही हमारा सोर्स है और उसी हवाले से हम बता रहे हैं। सबसे ज्यादा घुसपैठिए जम्मू और सांबा जिले में हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2008 से 2016 के बीच इनकी संख्या में 6,000 से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई थी। सरकारी आंकड़ों से इतर जम्मू कश्मीर में इन घुसपैठियों की संख्या काफी ज्यादा बताई जाती है, जो जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में फैल चुके हैं।

इसी महीने रामबन जिले के बनिहाल में सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान 21 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। कठुआ जिले की हीरानगर जेल को 5 मार्च 2021 को अवैध प्रवासियों को रखने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाया गया था। तब से लेकर अब तक लगभग यहां पर समझ लीजिए 275 रोहिंग्या रह रहे हैं, लेकिन इन्हें म्यांमार वापस भेजने को लेकर अभी तक कोई ठोस काम हुआ ही नहीं। तो सवाल ये भी है, ये भी एक आईना ही समझिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत को लेकर ग्लोबल मंच पर क्या सोच चल रही है? क्या दुनिया भारत के बढ़ते कदमों और ताकत को पसंद कर रही है, या उसकी सोच भारत के लिए पॉजिटिव है? प्यू रिसर्च सेंटर जिसकी ताजा सर्वे रिपोर्ट ने दुनिया के 36 देशों की लब्ज टटोली, इसके आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं और भारत की ग्लोबल कूटनीति के नए रंग दिखाने वाले भी हैं। सबसे पहले बात ग्लोबल तस्वीर की। 36 देशों के सर्वे में एक मीडियन आंकड़े के मुताबिक 45% लोगों की राय भारत के प्रति फेवरेबल, यानी ये लोग भारत को पसंद करते हैं, जबकि 41% लोग अनफेवरेबल नजर आए। लेकिन असली खेल पड़ोसी देशों में है, जहां आंकड़े एकदम उलट फेर दिखाई देते हैं। पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका में भारत के प्रति दीवानगी गजब की है। लगभग 79% लोग भारत को पसंद करते हैं। इसके अलावा कीनिया, ब्रिटेन में भी करीब 70% यानी 10 में 7 लोग भारत को पॉजिटिव नजर से देखते हैं। जर्मनी, इजराइल, इटली, स्वीडन, जापान, थाईलैंड में भी बहुमत भारत के पक्ष में ही खड़ा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। वहां सिर्फ 7% लोग भारत के पक्ष में हैं और 91% लोग भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके अलावा तुर्की में सिर्फ 15% और वेस्ट बैंक में मात्र 18% लोग भारत को अच्छा मानते हैं। बांग्लादेश में भी भारत को लेकर पिछले कुछ सालों में फेवरेबल रेटिंग 15 अंकों की गिरावट के साथ 50% से नीचे आ गई है, जबकि श्रीलंका में यह आंकड़ा 2024 के बाद से 14 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ ऊपर गया है। अमेरिका की बात करें तो यहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। आज अमेरिका में 45% लोग भारत को फेवर करते हैं, जबकि 50% अनफेवरेबल है। साल 2008 के बाद से ये आंकड़े सबसे निचले स्तर के करीब है, क्योंकि 2023 में यह आंकड़ा 51% हुआ और तब से इसमें लगातार हल्की सी गिरावट ही आ रही है। अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक और एक जेनरेशन गैप साफ दिखता है। वहां 50% डेमोक्रेट भारत को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं, जबकि 42% रिपब्लिकन ही भारत को लेकर अच्छी राय रखते हैं। उम्र की बात करें तो अमेरिका में 65 साल से ज्यादा उम्र के 50% बुजुर्ग भारत को पसंद करते हैं, जबकि 18 से 29 साल के युवाओं में यह आंकड़ा 42% है। अमेरिका के 54% लोगों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वैसा ही बना हुआ है, जबकि 30% मानते हैं कि भारत और मजबूत हुआ है। सिर्फ 13% लोगों को लगता है कि दुनिया में भारत का प्रभाव कमजोर हुआ है। जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में भारत की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। तो आइए आपको दिखाते हैं, आइडियोलॉजी की बात करें तो ये भी बड़े दिलचस्प ट्रेंड ही दिखाती है। अमेरिका और कनाडा में लेफ्ट विचारधारा वाले लोग भारत को ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अमेरिका में 54% लिबरल भारत के पक्ष में है, जबकि कंजर्वेटिव जो है वो 40% है। वहीं इसराइल में इसके बिल्कुल उलट स्थिति है। वहां 68% राइट विंगर्स भारत को पसंद करते हैं, जबकि लेफ्ट विचारधारा वाले सिर्फ 40% लोग ही भारत को लेकर अच्छी राय रखते हैं। अब प्यू रिसर्च सेंटर का ये सर्वे जाहिर करता है कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में भारत का दबदबा और सम्मान लगातार बढ़ रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में कई और दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। दुनिया की महाशक्तियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के लोगों की सोच में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां लोग चाइना के मुकाबले अमेरिका को ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। भारत में 45% लोग अमेरिका को पसंद करते हैं। इसके उलट पाकिस्तान में तस्वीर बिल्कुल अलग है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ 15% लोगों की ही अमेरिका को लेकर अच्छी राय है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 36 देशों के सर्वे में अमेरिका और चाइना की लोकप्रियता का सबसे बड़ा अंतर पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। भारत में चाइना को लेकर सिर्फ 23% लोग ही सकारात्मक राय रखते हैं और देश के अधिकतर लोग जो है वो चाइना को एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। वहीं पाकिस्तान के 75% लोग चाइना को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं। 90% लोग चाइना को ही पसंद करते हैं। हालांकि भारत के अंदर भी दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की इस रिपोर्ट के ही मुताबिक तुलनात्मक रूप से भारतीय जो मुस्लिम्स हैं वो चाइना और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर सकारात्मक रुख थोड़ा ज्यादा है। हालांकि हिंदू और मुस्लिम दोनों का नजरिया प्यू रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग के प्रति नकारात्मक ही है। दूसरी ओर रशिया के मामले में भारत का पलड़ा भारी है।
भारत के करीब 36% लोग रशिया को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं और 58% लोग रशिया तथा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति अच्छी राय रखते हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सकारात्मक राय में से एक है। आजादी के पूरे 79 साल बीत चुके हैं, पीढ़ी बदल गई, दौर बदल गया, लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान के बीच का अविश्वास कम हुआ है? प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया है, और जो जवाब दिया है वो चौंकाने वाला है, आंखें खोलने वाला भी है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक भारत के 54% लोग पाकिस्तान को देश का सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, जबकि 21% लोग चाइना को खतरे के रूप में देखते हैं। वहीं पाकिस्तान में 43% लोग भारत को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसके बाद 24% लोग इसराइल और अमेरिका को पाकिस्तान के लिए खतरा मानते हैं। और अब आपको हवा में गोते लगाने वाले एयर इंडिया के विमान के बारे में बताएंगे, जिसमें पहले एयर टर्बुलेंस, बाद में पायलट के नशे में होने का दावा किया जा रहा था। अब इसमें एक और नई बात सामने आ रही है जिसे सबको हैरान कर दिया है। एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI-2379 में सिर्फ एयर टर्बुलेंस और पायलट के नशे में होने के दावों की चर्चा थी, लेकिन अब इस विमान को बनाने वाली कंपनी एयरबस की शुरुआती जांच रिपोर्ट ने एविएशन सेक्टर में सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हवा में कुछ सेकंड्स के लिए प्लेन के सभी हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल हो गए थे, यानी कुछ पल के लिए विमान से कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। यह घटना 4 अगस्त की है, जब एयर इंडिया की यह फ्लाइट थाईलैंड के फुकेट से उड़ान भरकर दिल्ली आ रही थी। विमान जब हवा में था तो अचानक उसमें भारी हलचल और सडन लॉस ऑफ एल्टीट्यूड दर्ज किया गया। इस घटना में विमान में सवार कई यात्रियों को चोटें भी आई। शुरुआत में इसे सामान्य एयर टर्बुलेंस या मौसम की खराबी माना गया। इसके अलावा कॉकपिट के भीतर के माहौल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन जब विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सेंट्रलाइज्ड फॉल्ट डिस्प्ले सिस्टम के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तो जो सच सामने आया उसने एयरलाइंस और रेगुलेटर्स के होश उड़ा दिए। एयरबस की इनिशियल फाइंडिंग्स के अनुसार कॉकपिट के भीतर सुबह 9:32 पर खौफ का वो मंजर शुरू हुआ जिसने विमान को बड़े खतरे में डाल दिया। फ्लाइट वार्निंग सिस्टम द्वारा सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने की घोषणा की गई। विमान में ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम एक बहुत ही ताकतवर और मुख्य पावर सप्लाई होता है, जो विमान को सुरक्षित रूप से उड़ाने और जमीन पर कंट्रोल करने वाले भारी कलपुर्जों को चलाता है। विमान में ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम के बंद होते ही लेफ्ट हैंड ग्रीन एलिवेटर जो है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ग्रीन एलेरॉन और स्पॉयलर्स 1 और 5 ने काम करना बंद कर दिया। अब ये स्थिति बड़ी खतरनाक है, इतना ही हम लोग समझ सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि लेफ्ट हैंडेड ग्रीन एलिवेटर विमान को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करता है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ग्रीन एलेरॉन्स जो होते हैं वो विमान को हवा में दाईं या बाईं तरफ झुकाते हैं। स्पॉयलर 1 और 5 हवा में बहाव रोककर विमान की गति काम करने में कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब विमान के डिजाइन के मुताबिक जब यह ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ, सिस्टम का कंट्रोल बैकअप के तौर पर ब्लू और येलो हाइड्रोलिक्स पर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अगले ही एक सेकंड के अंदर ये दोनों बैकअप सिस्टम्स भी फेल हो गए। अब विमान के सबसे अहम हिस्से यानी प्लेन को ऊपर नीचे करने वाले जो एलिवेटर्स हैं, बाएं दाएं मोड़ने वाले एलेरॉन्स हैं, स्पॉयलर्स हैं, नियंत्रण पूरी तरह खत्म। एलेरॉन्स के फेल होने का सीधा मतलब था कि पायलट के पास प्लेन को बाएं या दाएं मोड़ने का कोई कंट्रोल नहीं बचा। तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुए, वजह से विमान के जो मेन कंट्रोलर्स हैं उन्होंने लगभग 7 सेकंड तक काम करना बंद कर दिया। एयरबस की इनिशियल फाइंडिंग्स बताती है कि जब विमान का नोज यानी आगे का हिस्सा खतरनाक तरीके से ऊपर उठ रहा था तो उसे रोकने के लिए तत्काल एक्शन की जरूरत थी, जबकि ऑटो पायलट पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक को पायलट की ओर से नोज डाउन का इनपुट देना शुरू किया गया ताकि प्लेन के आगे के हिस्से को नीचे किया जा सके, लेकिन बड़ी समस्या यह थी कि फ्लाइट कंट्रोल सीधे तौर पर रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे थे, सिस्टम काम कर नहीं रहा था, इसे पायलट सिर्फ कोशिश कर रहे थे और विमान अनियंत्रित गति से आगे बढ़ रहा था। क्रू और यात्रियों की किस्मत ही थी कि 9:32 और 51 सेकंड पर तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम ने अपने आप फिर से काम करना शुरू कर दिया। सिस्टम रिस्पॉन्ड करने लगा जिससे पायलट्स को प्लेन का कंट्रोल वापस मिल गया और वो दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग कर पाए। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने एयर इंडिया को तुरंत और बेहद सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एयरबस ने एयर इंडिया को इस घटना में शामिल एयरक्राफ्ट पर कई परीक्षण और निरीक्षण करने के लिए कहा है।
जिसके तहत हाइड्रोलिक सिस्टम पर 4 से 5 कड़े टेस्ट कंडक्ट करना, ऑटोमेटिक फ्लाइट सिस्टम की पूरी तरह से जांच करना, विमान की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी की जांच करना, इसके साथ ही पिछले एक महीने के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम पर किए गए मेंटेनेंस एक्टिविटीज की पूरी रिपोर्ट साझा करने के लिए कहा गया है। एयरबस ने अपने कम्युनिकेशन में साफ किया है कि इस असेसमेंट की जटिलता को देखते हुए इसकी फाइनल रिपोर्ट में ज्यादा वक्त लग सकता है। इसके परिणामों के आधार पर आगे और भी एडिशनल इंस्पेक्शन किए जा सकते हैं। अब इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक अकेली तकनीकी खराबी थी या फिर भारत में उड़ने वाले A320 नियो विमानों के फ्लीट्स में कोई गंभीर डिजाइन या सिस्टम फॉल्ट है। आज तक ने इस गंभीर मामले पर एयरबस और DGCA से कुछ सवाल पूछे हैं। ये जानने की कोशिश की गई है कि क्या इस घटना के बाद भारत में इस्तेमाल हो रहे सभी A320 नियो विमानों के बेड़े की स्पेशल ऑडिट की सिफारिश की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा की जा रही है और फिलहाल उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। शुरुआती जांच में यह निकल कर आ रहा है कि यह घटना सिर्फ एक रूटीन एयर टर्बुलेंस या सिर्फ पायलट की गलती का मामला नहीं है। यह विमान निर्माता कंपनी एयरबस की रिपोर्ट के आधार पर एक संभावित बड़े विमान हादसे की तरफ इशारा करती है, जहां महज कुछ सेकेंड्स के भीतर विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम धड़ाम हो गया। देखिए कुछ पेशेंट्स किस हालत में निकले थे। यदि सिस्टम अपने आप रिकवर ना होता तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 17.5 रुपए हम आपको जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट है। सामाजिक योजनाओं को चलाने का खर्च सरकारें टैक्स और सेस लगाकर पूरा करती है, लेकिन टैक्स और सेस किन वस्तुओं पर लगे, किस तरह का टैक्स, किस तरह का सेस लगे, कितना टैक्स लगे, कितना सेस लगे, इसका एक नैतिक, एक आर्थिक आधार होना चाहिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश में लगाए गए एक सेस की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ और विधवा सेस लागू हो गया है। आपको याद होगा 2023 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन बहाल करने जैसे वादों के साथ सरकार बनाई थी और फिर काफी मुश्किलों का अर्थव्यवस्था को वहां सामना करना पड़ा। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर पात्र महिला को 1500 रुपए प्रति महीने, युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने, ग्रामीण सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा देने के अलावा हर पशुपालक से रोजाना 10 किलो दूध खरीदने, 2 रुपए प्रति किलो के रेट से गोबर खरीदने, हर घर में 4 गाय तक की खरीद पर सब्सिडी देने का वादा किया गया था। अब ऐसे वादों पर चुनकर आई सुक्खू सरकार पिछले 3 सालों में पहले भी सरकारी कर्मचारियों को लेट सैलरी देने और सारे वादे पूरा न करने या आधा अधूरा वादा पूरा करने को लेकर सवालों के घेरे में आई। हालांकि 10 बड़े वादों में से ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे 7 वादों को पूरा करने का दावा है, लेकिन इन वादों की कीमत समझिए। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार के खर्च का 29% जो पैसा है वो अकेले पेंशन पर जाने का अनुमान है। 2026-27 में हिमाचल प्रदेश के खर्च का 88% हिस्सा सिर्फ सैलरी, पेंशन, कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च होने वाला है। हिमाचल प्रदेश का मौजूदा जो कर्ज है वो 1,04,000 करोड़ है। 2026-27 में हिमाचल प्रदेश को 13,000 करोड़ का रीपेमेंट करना है, जिसके लिए सरकार इस साल 10,000 करोड़ का कर्ज लेने की योजना बना रही है। राज्य के आर्थिक घाटे की भरपाई के लिए सुक्खू सरकार की माता पच्चियां पहले भी विवादों में आई है। अक्टूबर 2024 में हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग ने प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए महीने सीवरेज टैक्स लेने की घोषणा की थी। इस टॉयलेट टैक्स पर मचे हंगामे के बाद पहले यह दलील दी गई कि यह सामान्य सीवरेज टैक्स है, लेकिन बाद में इसे वापस लिया गया। और अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली में हुए टनल हादसे की। यह हादसा चमोली के पीपल कोटी में हुआ। यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए टनल बनाने का काम चल रहा था। टनल में पानी रिसने के बाद लैंडस्लाइड हो गया। उस वक्त वहां टनल में काम कर रहे करीब 22 मजदूर फंस गए और हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जिस टनल में हादसा हुआ है वो THDC यानी इंडिया लिमिटेड बना रहा है। ये 444 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी पानी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत अलकनंदा नदी के पानी का इस्तेमाल होना है। ये दर्दनाक हादसा इस प्रोजेक्ट के तहत बन रही टेल रेस टनल में हुआ है। ये टनल चमोली के बिरही इलाकों में पड़ती है।
और अब हम आपको ये बताते हैं कि असल में ये हादसा किस पॉइंट पर हुआ है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत चमोली के हेलांग से होती है। यहाँ अलकनंदा नदी पर एक 65 मीटर ऊंचा डैम बनाया जा रहा है। इस डैम से अलकनंदा की एक धारा का डायवर्जन किया गया है। अलकनंदा की यह धारा करीब 13 किलोमीटर लंबी हेडरेस टनल से होती हुई पीपलकोटी के हाट गांव में बन रहे अंडरग्राउंड पार हाउस में पहुंचेगी। फिर यहां से अलकनंदा की धारा करीब 3 किलोमीटर लंबी टेल रेस टनल से होते हुए मुख्य धारा में जाकर मिल जाएगी। यह हादसा इसी टेल रेस टनल में हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसा का जो लोकेशन है वो टेल रेस टनल के एग्जिट पॉइंट के करीब 1600 मीटर अंदर है, यानी जिस रेस टनल से पानी वापस अलकनंदा नदी में पहुंचाया जाना है उसके बिल्कुल बीच में हादसा हुआ। इस प्रोजेक्ट के हर चरण पर अलग अलग काम चल रहा है। साल 2009 से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिसंबर 2027 का टारगेट रखा गया, लेकिन काम की जल्दबाजी कहिए कुछ और कहिए, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया कि मॉनसून है और मॉनसून से पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है। येलो अलर्ट मौसम का जारी है, बावजूद इसके टनल बनाने का काम जारी रखा गया, रोका नहीं गया। क्या इन मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? साफ दिख रहा है, बताया जा रहा है कि टनल में करीब 1 किलोमीटर के इलाके तक पानी भरा है। कुछ जगहों पर तो पानी 5 फीट तक भर गया है। इस पानी में मलबा, मिट्टी और गाद जमा हुआ है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। क्या इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को यह पता नहीं था कि मानसून में इस बार उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है? केवल चमोली में ही इस मानसून सीजन में सामान्य से लगभग 53% ज्यादा बारिश हुई। 1 जून से लेकर 13 अगस्त के बीच 746 mm बारिश हो चुकी है, जबकि इस समय आमतौर पर 488 mm बारिश होती है। जिस दिन चमोली में हादसा हुआ उस दिन मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, यानी भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग के येलो अलर्ट का मतलब है कि बारिश से सावधान रहे, क्योंकि 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की संभावना रहती है। यहां एक और बात जान लीजिए कि मौसम विभाग ने चमोली में 1 अगस्त से कई बार येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए, 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक के लिए पहले से येलो अलर्ट है, यानी आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है। आप सोचिए कि क्या हालत है, अंधेरा है, लेकिन वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मजदूरों की जिंदगी को खतरे में डाला जाता है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जिन लोगों की निगरानी में चल रहा है उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया है। और ये विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो पार प्रोजेक्ट जो है उसका पूरा टनल हम आपको दिखा रहे हैं कि अलकनंदा नदी से होते हुए ये किस तरह से आप देख रहे हैं, इधर से अलकनंदा नदी और फिर उधर अलकनंदा नदी में मिलना है। बीच में ये हेडरेस टनल है, लगभग 13.5 किलोमीटर का सर्च शाफ्ट है और टेल रेस टनल है और अंडरग्राउंड पार हाउस 444 मेगावाट इसका कैपेसिटी है। आमतौर पर आप देखिए टनल बनाने का काम हो, पानी अचानक, मलबा आने का खतरा तो रहता ही है। पहाड़ों में ये खतरा बारिश के मौसम में इतना बढ़ जाता है। जिस टेल रेस टनल में हादसा हुआ इसमें अचानक रिसाव शुरू हो गया और इसके बाद भूस्खलन हो गया, और ये कोई पहली बार हो रहा है। लगातार हमने कई बार बारिश के मौसम में पहले भी देखा है, कई जगहों पर हमने मजदूरों का इस तरह से फंसे होना, लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन होना, सब कुछ देखा है, लेकिन बावजूद इसके सबक इसलिए नहीं सीखते हैं क्योंकि इन मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत जाहिर तौर पर इनकी नजर में है ही नहीं। और यही वजह है कि जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे उन्हें अंदाज नहीं था बारिश उनके लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर देगी। अगर मौसम विभाग की चेतावनियों को ही ध्यान में जरा रख लेते तो फिर ऐसा नहीं होता, और यही आज सबसे बड़ा सवाल है, किया नहीं गया और इसी वजह से हमने 7 मजदूरों को खो दिया है। उन परिवारों की चिंता कौन करेगा? और इसीलिए यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर इन मजदूरों की जिंदगी की जवाबदेही किसकी है, उन परिवारों को लेकर क्या कर रही है सरकार? अब सवाल तो यही है कि आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है। जिस जगह पर येलो अलर्ट हो, येलो अलर्ट, वहां पर आप ऐसा कर रहे हैं, यह अपने आप में बताता है कि किस तरह की सोच है, मजदूरों की जिंदगी को लेकर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, जैसा हमने आपको बताया इस तरह की लापरवाही पहले भी की गई है। पिछले साल ही इसी मौसम में मुझे याद है हम लोग लाइव कवरेज कर रहे थे, इसी प्रोजेक्ट में ऐसा हादसा हुआ जब चमोली के हेलांग में डैम बनाने का काम चल रहा था। 2 अगस्त को यहां काम के दौरान भूस्खलन हो गया और 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन इस हादसे से प्रोजेक्ट संभाल रहे लोगों ने कोई सीख नहीं ली। उन्हें पता होना चाहिए कि मॉनसून में जब पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश होती है, इस तरह का भूस्खलन आता है, टनल बनता है तो पानी, गाद सब कुछ आता है,
ये सुसाइड मिशन नहीं है तो क्या है? उत्तराखंड में इसी सीजन में 53 दिनों के अंदर ही 1944 सड़कें अलग अलग जगहों पर हुए भूस्खलन की वजह से बाधित हुई। अनुमान है कि इससे सरकार को करीब 217 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। जब भी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है तो सभी परेशान होते हैं, फिर चाहे पीड़ित हो, रेस्क्यू टीम्स हो या फिर प्रशासन से जुड़े लोग हो। और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच भी जाते हैं, घटनास्थल पर पहुंचे वो, कि भाई रेस्क्यू का काम कैसे चल रहा है। लेकिन कोई तो इस बात की सुध ले कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। और अब हम आपको इस हादसे की मौजूदा स्थिति पर अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बारिश ने किस तरह से टनल में तबाही मचाई।

0: कच्ची मिट्टी और पानी आ गया, जैसे आंधी तूफान आता है हवा की तरह, 10 मिनट में पूरा अफरा तफरी मच गया, किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला।
1: कितने लोग थे आप लोग टोटल?
0: देवाई पूरी शिवरी सर 20 22 आदमी।
2: मिट्टी धस गया ना, उसी में बहुत पूरा हादसा हो गया, वहाँ से पूरा आदमी को जो कि भागने के लिए कहीं चांस नहीं मिला।
3: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसमें इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी शामिल है, तो इन तीनों की परीक्षा एनटीए ने दोबारा कराने का फैसला किया है। एक कमेटी को इन परीक्षाओं में कई तथ्यात्मक, कुछ टाइपिंग, कुछ अनुवाद और व्याकरण के संबंध में कुछ गलतियां मिली, और साथ ही पहले पूछे गए सवाल भी काफी हद तक दोहराए गए थे, तो अब ये फिर से परीक्षाएं होंगी। ये 3 जो पेपर हैं वो दोबारा करवाए जाएंगे। यूजीसी नेट की ये 3 विषय हैं जिनकी परीक्षाएं दोबारा आयोजित की जाएंगी, और एनटीए ने ही इन्हें रद्द करने का फैसला लिया है। लेकिन रद्द करने के पीछे की वजह कोई इस बार पेपर लीक जैसा कुछ नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कुछ तथ्यात्मक गलतियां हैं, कुछ टाइपिंग एरर हैं, फिर अनुवाद के और व्याकरण संबंधित गलतियां जब मिली तो उसके बाद इन तीनों ही विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले पर दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया। इसे लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच में हमले तेज हैं।
7: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
8: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
9: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
8: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
10: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं, ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद करते हैं।
11: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
8: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
12: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवर ग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन ये जो दिमागी नक्सल ये अर्बन नक्सल्स हैं।
13: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
8: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
6: अब क्या है ये दिमागी नक्सल, इसको लेकर रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी बात रखी है और विपक्ष पर निशाना साधा।
14: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार में जनता कूदती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में कड़ा कड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में, इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
6: खबरों का सिलसिला जारी है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।
15: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
16: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
17: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना,
15: मतलब
17: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
15: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
17: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर। जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
4: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
2: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

सोनिया पर शाह का हमला, कहिस्पाप के माफे नहीं, बीजेपी ने की चौतरफा घेराबंदी। बंकिम चंद्र चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बयान पर चिदंबरम का पोस्ट लिखा, मुझे इस पर गर्व है, जयराम ने भी किया हमला, बीजेपी का जवाबी हमला। 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए कहा, हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती आवाज। रांची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास के घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का एनटीए का फैसला, तथ्यात्मक, टाइपिंग एरर, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का हवाला दिया।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अगस्त का आधा महीना बीत चुका, लेकिन देश के कई हिस्सों में मॉनसून कमजोर होने की जगह और शक्तिशाली नजर आ रहा है। पहाड़ से मैदान तक आसमान खुलकर बरस रहा है। कहीं नदियां उफान पर है, कहीं सड़कें जलमग्न है, कहीं बारिश और भूस्खलन ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लौटता हुआ मॉनसून और खतरनाक साबित हो सकता है।
1: कम से कम पूरे रामनगर से लेके आदि केशव घाट तक कम से कम 3,000 नावें हैं और 3,000 नावों को पूरे तरीके से आज से ही बंद कर दिया गया है।
2: गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 7 सेंटीमीटर बढ़ने से सभी घाटों का संबंध आपस में टूट चुका है, जिससे नौका विहार और जो श्रद्धालु यहां आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, उनको काफी कठिनाई महसूस हो रही है।
3: देश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल से उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक बारिश, भूस्खलन और सैलाब ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तबाही की झलक देखिए। यूपी में उफान पर 11 नदियां, वाराणसी में 100 से ज्यादा छोटे मंदिर डूबे, राज्य के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट।
4: बुरा हाल है जी, पैदल चलने वालों के लिए तो बहुत दिक्कत है इस टाइम।
5: आ रही है, चलने में पानी बहुत है, सड़क में आ रहा है नालियों से।
3: अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में बादल फटा। बादल फटने के बाद बाढ़ से 2 शेल्टर बह गए, 5 सैन्य कर्मी लापता। अपर सुबनसिरी में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश जारी है। एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में 10 करोड़ की लागत वाला ब्रिज बह गया। राजस्थान के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 114 सड़कें बंद हैं। 30 जून से बाढ़ बारिश में 78 लोगों की मौत हुई है। धर्मशाला में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड के चमोली में देखिए हजारों टन भारी पुल कैसे तिनके की तरह बह गया। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से नीचे आया भारी मलबा। पिथौरागढ़ में नदियां उफान पर है। ओडिशा में भारी बारिश से 6 जिलों में बाढ़। 41,000 लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए। 429 गांव प्रभावित हुए। तेलंगाना में बाढ़ में लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। असम में नदियां उफान पर हैं। सिक्किम में जगह जगह भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक के मॉनसून की बात करें तो देश में 12% बारिश की कमी है। आईएमडी के 4 जून से 10 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 465.9 mm बारिश हुई। सामान्य बारिश 527.2 mm होनी चाहिए थी, यानी देश भर में 13% बारिश की कमी है। देश का सबसे ज्यादा बारिश वाला राज्य कहा जाने वाला मेघालय इस बार सबसे ज्यादा बारिश की कमी झेल रहा है। मेघालय में सामान्य से 56% कम बारिश हुई। सामान्य बारिश 1739.6 mm होनी चाहिए थी, जबकि बारिश हुई 763.1 mm। उधर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी सामान्य से 36% कम बारिश हुई। बिहार में भी बारिश की कमी 36% रही। पंजाब और आंध्र प्रदेश में सामान्य से 35% कम बारिश दर्ज की गई। गोवा में भी बारिश 35% कम रही। इसके उलट ओडिशा देश का सबसे ज्यादा बारिश वाला राज्य बना हुआ है। यहाँ सामान्य से 28% ज्यादा बारिश हुई। सवाल उठता है कि आखिर मॉनसून इतना असमान क्यों है? दरअसल मॉनसून पूरे सीजन में एक जैसी रफ्तार से नहीं बरसता। मॉनसून की सक्रियता बढ़ती और घटती रहती है। मॉनसून ट्रफ की स्थिति में बदलाव और अलग अलग इलाकों में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र बारिश के वितरण को प्रभावित करते हैं। नतीजा ये होता है कि एक इलाके में मूसलाधार बारिश होती है जबकि दूसरा इलाका अपेक्षाकृत सूखा रह जाता है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में व्यापक बारिश हो सकती है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर में मॉनसून विशेष रूप से सक्रिय रहने की संभावना है। लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ कुछ दिनों की तेज बारिश से देश का 13% बारिश का घाटा खत्म नहीं होगा। इसके लिए लंबे समय तक लगातार बारिश होनी जरूरी होगी। फिलहाल देश में मॉनसून सामान्य से 13% नीचे है, लेकिन अगस्त का करीब आधा महीना और पूरा सितंबर अभी बाकी है, इसलिए मॉनसून का अंतिम रिपोर्ट कार्ड अभी लिखा जाना बाकी है।
0: पहाड़ी इलाकों में प्रचंड मॉनसून ने जैसे दूसरा राउंड शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की जा रही है। लगातार बरसात के कारण नदियां उफान पर हैं। कई जगह अचानक होने वाली तेज बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस और जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: कहीं आसमान से बरसता पानी सड़कों को सैलाब बना रहा है, कहीं पहाड़ दरककर हाईवे पर आ गिर रहे हैं, तो कहीं फ्लैश फ्लड अपने साथ पुल, गाड़ियां और भारी भरकम मशीनें तक बहा ले जा रहा है। धर्मशाला से लेकर सोलन तक, भद्रवाह से किश्तवाड़ और पिथौरागढ़ तक और चमोली में सुरंग से लेकर तमक नाले तक कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि हर तस्वीर डराने वाली है। बारिश, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और सैलाब पहाड़ों पर कुदरत का चौतरफा प्रहार हो रहा है। तेज धार, सड़कों पर सैलाब और पानी के बहाव में बहती स्कूटी। धर्मशाला में बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि देखते ही देखते सड़कें पानी की तेज धारा में तब्दील हो गई। कहीं स्कूटी पानी के बहाव में बहती नजर आई तो कहीं गाड़ियां सड़क पर खड़ी रहना भी मुश्किल हो गया। अचानक आई इस तेज धार ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया।
5: मुश्किलें आ रही है चलने में, पानी बहुत है सड़क में आ रहा है, नालियों से
4: बहुत बुरा हाल है जी। पैदल चलने वालों के लिए तो बहुत दिक्कत है इस टाइम, और ऊपर से नाला नूला बंद किए हुए इन्होंने, उसके कारण और दिक्कत हो रही है। दुकान के अंदर भी पानी आ रहा है क्योंकि बाहर से गाड़ियां आती है, सारा पानी अंदर आ रहा है।
3: धर्मशाला में बेहिसाब बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं और पानी का बहाव इतना तेज रहा कि पैदल चलना तो दूर, वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो गया। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी किया गया था और उसकी सटीक भविष्यवाणी की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। एक झटके में पहाड़ दरका और देखते ही देखते सड़क पर मलबे का सैलाब आ गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में देर रात हुए इस हाहाकारी लैंडस्लाइड ने हर किसी की सांसें रोक दी। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और भारी मलबा सीधे नेशनल हाईवे पर आ गिरा। इसी दौरान वहां से गुजर रही HRTC की बस भी इसकी चपेट में आने से बाल बाल बची। ड्राइवर ने सही समय पर बस रोक दी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश के बीच पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें भद्रवाह में आई उस तबाही की गवाही दे रही हैं, जहां बादल फटने के बाद पानी ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि गलियां देखते ही देखते सैलाब में बदल गई। पानी की ये तेज धार इतनी खतरनाक है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी अपने साथ बहा ले जाए। घरों के बाहर से गुजरती इस बेकाबू धारा के सामने इंसान बेबस नजर आ रहा है। कहीं कमर तक पानी भर गया है तो कहीं तेज बहाव ने रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया। पानी का शोर इतना भयानक है कि उसे सुनकर ही दिल दहल जाए। गली मोहल्लों में पानी की रफ्तार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने भयानक हैं। भद्रवाह में बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाजारों और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। दुकानों में रखा सामान और लोगों की संपत्ति पानी की चपेट में आ गई। तेज बारिश और फ्लैश फ्लड ने पूरे शहर में अफरा तफरी मचा दी। हालात को देखते हुए लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। इन तस्वीरों ने एक बार फिर पहाड़ों में बदलते मौसम के खतरनाक मिजाज की तस्वीर सामने रख दी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और फ्लैश फ्लड ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड ने भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई। सड़कों पर मलबा और पत्थर जमा हो गए और कई वाहन रास्ते में फंस गए। अब सड़क को दोबारा चलने लायक बनाने के लिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन का काम तेजी से जारी है। पिथौरागढ़ से ऊपर बादल फटने के बाद शहर की तस्वीर ही बदल गई है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े और भारी मलबा इतनी बड़ी मात्रा में आया कि सड़कें पूरी तरह बंद हो गई। रास्तों पर पसरा मलबा और उफनते नाले तबाही की कहानी बयान कर रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। मुनस्यारी इलाके में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश के बीच नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और उफनते नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। ये तस्वीरें चमोली की उस सुरंग की है, जहां अचानक ऐसी तबाही आई कि जिंदगी और मौत के बीच फंसे मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में सुरंग के भीतर हालात बदल गए। तेज आवाज के साथ मलबा गिरा, पानी भर गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया।
6: बहुत बहुत खराब स्थिति थी वहाँ पर, जो कि बहुत तेज से आंधी तूफान आ रहा था, जो कि ऊपर से जो मिट्टी धस गया ना, उसी में बहुत पूरा हादसा हो गया। वहाँ से पूरा आदमी को जो कि भागने के लिए कहीं चांस से नहीं मिला। जो आदमी आया वो पूरा गंभीर चोट से आया।
3: जो मजदूर कुछ पहले तक काम कर रहे थे, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला।
7: क्या सर, एकदम कच्ची मिट्टी और पानी आ गया, जैसे आंधी तूफान आता है हवा की तरह। 10 मिनट में पूरा अफरा तफरी मच गया, किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला।
3: इन तस्वीरों में हादसे के बाद का मंजर साफ नजर आ रहा है। सुरंग के मुहाने पर जमा मलबा, पानी और रेस्क्यू में जुटी टीमें इस तबाही को बताने के लिए काफी है कि सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों तक पहुँचना किस तरह सबसे बड़ी चुनौती बन गया था।
8: यही वो टनल है, देख सकते हैं, ये जो अंदर जाने के बाद लगभग 1600 मीटर पे इसी के ऊपर से कहीं से लूज गिरा है और उसी लूज के साथ भारी पानी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये टनल सीधा डाउन के लिए जा रही है, तो इसमें जो भी पानी या कुछ भी जाएगा तो वो एकदम अंदर टनल में भरता रहेगा। वही कारण है यहाँ पे जो लूज गिरा है, उसके बाद जो लोग फंसे हैं वो वहां पे फंस चुके हैं। हालांकि सबको निकाला गया, लेकिन अभी भी एक व्यक्ति लापता है।
3: उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में THDC हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है, जिसकी क्षमता होगी 444 मेगावाट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 65 मीटर ऊंचा डैम बन रहा है, जिसमें दो सुरंगें होंगी। पहली है हेड रेस टनल यानी HRT, जिसकी लंबाई है 13.4 किलोमीटर, और दूसरी है टेल रेस टनल, जिसकी लंबाई है 3.04 किलोमीटर। गुरुवार को जो हादसा हुआ वो इसी TRT सुरंग में हुआ है। 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं और 5 से ज्यादा मजदूर अब भी लापता हैं। पिछले 3 दिनों से मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है और सुरंग के भीतर भरे पानी को निकालने की कोशिश जारी है। पानी की ऐसी रफ्तार कि लोहे का मजबूत पुल भी पल भर में तिनके की तरह बह गया। सैलाब के बीच भारी भरकम JCB मशीन भी खिलौने की तरह बहती नजर आ रही है। कुछ ही सेकंड में पूरा मंजर बदल गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की नीति घाटी के तमक नाले की हैं, जहां फ्लैश फ्लड ने ऐसी तबाही मचाई कि जो भी रास्ते में आया उसे अपने साथ बहा ले गया। पुल बहने के बाद नीति घाटी के 13 गांवों का संपर्क जोशीमठ तहसील मुख्यालय से कट गया। तमक नाले का ये सैलाबी कहर एक बार फिर पहाड़ों में बदलते मौसम और फ्लैश फ्लड के खतरे की भयावह तस्वीर सामने ला रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में नाचो के पास सिनालिता बेल्ट में एक दुखद हादसा बारिश के कारण हो गया। लगातार लैंडस्लाइड के कारण कई लोग अचानक मलबे के नीचे दब गए। मलबे के नीचे दबने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।
0: अगस्त महीने की प्रचंड बारिश के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस बारिश के बाद देश भर में होने वाली बारिश का घाटा पूरा हो सकेगा। मॉनसून से पहले मौसम वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया था कि इस बार बरसात कम रहेगी, क्या अगस्त की बारिश उसकी भरपाई करने में सक्षम है।

0: देश के 17 से 18 राज्य ऐसे हैं जहां मॉनसून सक्रिय है और बादल जम कर बरस रहे हैं। इनमें से कई जगह तो हालात लैंडस्लाइड बाढ़ के कारण चिंताजनक स्थिति तक पहुंच चुके हैं। इससे ये सवाल उठता है कि क्या अगस्त की इस मूसलाधार बारिश से देश में बारिश की कमी की भरपाई हो जाएगी।
1: सिनोप्टिक सिस्टम फेवरेबल है और खास तौर से जो मध्य भारत की वर्षा है और उत्तर पश्चिम भारत की वर्षा, वहाँ पर स्पेल लाने वाले 5 से 7 दिनों में देखे जाते रहने की संभावना है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी 1 जून से लेकर के 14 अगस्त 2026 तक की बात करें तो -13% सामान्य से कम वर्षा अभी दर्ज की गई है। और सिर्फ अगस्त की बात करें 1 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक की, तो वर्षा अभी सामान्य से -13% कम है। तो ओवरऑल देखें तो वर्षा अभी सामान्य से कम ही देखी जा रही है। कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य से काफ़ी कम वर्षा दर्ज की गई है, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, बिहार, झारखंड, ये सब पॉकेट्स में वर्षा कम है। और दक्षिण प्रदेश भारत में भी देखें तो कर्नाटक उसके आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा उतनी ज़्यादा अभी दर्ज नहीं की गई है।
0: दरअसल मॉनसून के आने से पहले ही मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश कम रहने का अनुमान लगाया था। मॉनसून के शुरुआती महीने जून में देश भर में बारिश काफी कम रही थी। जून में सामान्य से 35% से अधिक बारिश की कमी दर्ज हुई। इसके बाद मॉनसून के मुख्य महीने जुलाई ने कुछ हद तक स्थिति संभाली। जुलाई में देश भर में 283.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से करीब 1% अधिक थी। इसके बावजूद जून की बड़ी कमी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी और जुलाई के अंत तक मानसूनी सीजन में बारिश की कुल कमी करीब 13% बनी रही। अगस्त के महीने में कई राज्यों में बारिश अच्छी हुई जरूर, लेकिन उसका दायरा बहुत सीमित रहा। यानी जहां बारिश हुई वहां अच्छी बारिश हुई, लेकिन देश के बड़े हिस्से तक उसका असर नहीं पहुंच पाया। 4 प्रमुख मौसम क्षेत्रों में केवल मध्य भारत समान स्थिति पर है। इसके उलट बाकी कई क्षेत्रों के हिस्से बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा कमी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में देखी गई। सितंबर के महीने में बारिश अन्य मानसूनी महीनों की तुलना में कम रहती है, जिससे अभी तक मौसम वैज्ञानिकों को बारिश कम रहने की चिंता बनी हुई है।
2: इन महीनों का असर इस बार मौजूद है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल मानसून पीरियड की बात करें तो सामान्य से कम बारिश रहने की संभावना है। जैसा कि अभी तक ये जो हमारा पूर्वानुमान है वो सही साबित हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी तक के पूर्वानुमान के हिसाब से अगर हम बात करें तो अब सितंबर माह में भी सामान्य से कम वर्षा रहने की संभावना है।
0: लेकिन इस समय एक ऐसी स्थिति भी बन रही है जो आने वाले समय में उत्तर भारत में अधिक बारिश की स्थिति का संकेत दे रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में दक्षिण एशिया के ऊपर 5000 किलोमीटर लंबी बादलों की एक पट्टी नजर आ रही है। ये पट्टी पाकिस्तान से शुरू होकर उत्तर भारत से होती हुई चीन तक जाती है। इसके लंबे फैलाव के कारण इसे मानसून रेन हाईवे कहा गया है।
2: लॉन्ग स्ट्रेच में अगर बारिश का सिलसिला हो काफी लॉन्ग रूट में, तो उसको हम मानसून रेन हाईवे कह सकते हैं।
0: जानकारों का कहना है कि ये सक्रिय मानसून पैटर्न का संकेत है। इससे इस पूरे इलाके में भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि इस पट्टी के रास्ते में कई तूफान और बारिश लाने वाले बादलों के समूह शामिल है। यानी पाकिस्तान से लेकर चीन और बीच में उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है।
1: अगस्त में आप देख ही रहे हैं कि जैसे एक के बाद एक सिस्टम बन रहा है। अभी भी अभी बंगाल में अच्छी खासी क्लाउडिंग देखी जा रही है, तो एक के बाद एक चूंकि सिस्टम मिल रहे हैं और सीयर जोन भी बना हुआ है, तो इसलिए मध्य भारत खासतौर से उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर पश्चिम भारत जो है वहाँ पर भी वर्षा आने वाले सप्ताह में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल सकती है, खासतौर से पहाड़ों पर, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी और पश्चिम हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें अगस्त के महीने में अच्छी खासी वर्षा होते रहने की संभावना है।
0: उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य आते हैं। यानी मॉनसून रेन हाईवे का बड़ा असर आने वाले दिनों में इन राज्यों में देखा जा सकता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: बिजली का बिल पेड
6: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
7: कैसे?
6: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
7: इतना माही वे।

0: ఎలక్ట్రిక్ సవారీ సోకుడు.
1: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चले.
3: बिजली का बिल पेड
4: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया.
5: कैसे?
4: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने. भीम ऐप से करो पे.
5: इत्ता माही वे.
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cola.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, असम के कई क्षेत्र मूसलाधार बरसात से बुरी तरह प्रभावित हैं। कहीं घरों में पानी घुसा है, कहीं घर ही पानी के बीच हैं। पानी का सैलाब लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा रहा है।
1: एक तरफ पहाड़ों से उतरता सैलाब तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में उफनती नदियां। कहीं घाट डूब रहे हैं, कहीं सड़कें दरिया बन गई हैं। तो कहीं बाढ़ का पानी घरों और अस्पतालों तक पहुंच चुका है। चित्रकूट से प्रयागराज, धौलपुर से जैसलमेर और ओडिशा तक बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कुदरत के इस कहर के बीच सबसे बड़ी चुनौती है लोगों की जान बचाना। ये तस्वीरें चित्रकूट की हैं। मंदाकिनी नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है और रामघाट की हर सीढ़ी पानी में डूब गई है। अब बाढ़ का पानी घाट किनारे बनी दुकानों तक पहुंच चुका है और धीरे धीरे दुकानों के अंदर घुसना शुरू हो गया है।
2: अभी बाढ़ कल शाम को 4 बजे से आना चालू हुआ है और अभी तक पानी कोई घटा हुआ नहीं है गंगा मैया का, और यहाँ व्यापारियों भाइयों का काफी नुकसान हो जाता है। दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, इनसे व्यापारी भाई काफी परेशानी में आ जाते हैं, काफी समस्याएं उनके लिए पैदा हो जाती है। और अभी भी गंगा मैया का जल स्तर कम होने की कोई संभावना नहीं है।
3: लोगों को थोड़ा कष्ट तो दिक्कत होती है, दुकानों को प्रॉब्लम होती है, लोगों को सामान समेटना पड़ता है, आवागमन रुक जाता है, परेशानी होती है। पर यह भी है कि गंगा जी बाढ़ में आ गई तो जो भी कचरा है, गंगा जी का पन्नी, पॉलीथिन, पत्तल वगैरह जो भी कुछ कचरा पड़ा होता है वो सब निकल के चला जाता है, साफ भी हो जाती है, गंगा जी की सफाई भी हो जाती है, पर स्थानीय लोगों को थोड़ा समस्या होती है।
1: चित्रकूट में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी अचानक तेजी से बढ़ा और रामघाट की सभी सीढ़ियां पानी में समा गईं।
4: बाढ़ का प्रभाव तो यहां काफी तेज रहता है और इस बार तो अभी ये तीसरी, आज की रात में तीसरी बार बाढ़ आई है और उसके बाद जलस्तर लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर कम हो जाता है और हल्की से भी बारिश होने पर तुरंत यहाँ पर उसका प्रभाव पड़ता है।
1: हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और दुकानदारों से दुकानें खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। रामघाट पर एसटीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। नदी का बढ़ता जलस्तर एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर का असर अब संगम के मैदानी इलाके में साफ दिखाई दे रहा है। संगम किनारे लगी दुकानें, तख्त और पूजा का सामान पानी की चपेट में आ गया है। कई जगह सामान पानी में डूब गया तो कुछ तख्त तेज बहाव में बहते नजर आ रहे हैं। हालत ऐसी है कि कोई तख्त बाहर निकाल रहा है तो कोई पूजा का सामान सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा है। हर कोई अपनी दुकान का सामान समेटने में लगा है क्योंकि हर किसी को बाढ़ से बर्बादी का डर सता रहा है।
5: गंगा जी आज कम कम एक हफ्ते से बढ़ रही हैं, तो रोज धीमे बढ़ती थी, आज पानी अधिक आ गया है और आने ये नुकसान हुआ। कुछ लोगों का सामान जो गठिया है ना बेचने के दुकानदारों को, कुछ बह गई हैं, मेरी भी बह जाती, मैं तभी वहाँ गया और बहा के मैं ले आया हूँ। अभी
6: आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, आधा सामान भी डूब गया है, चौकी बह गया है, आधा सामान से छूट गया है।
7: अरे तकलीफ क्या है, तो हर साल का नियम है, हम लोग को गंगा जी बढ़ती तो हटाना पड़ेगा सामान। फिर बार इस बार तो लेट है, नहीं पिछली बार तो हनुमान जी को भी नहला चुकी, हम लोग ऊपर थे पिछली बार रोड पर थे इस समय, लेकिन इस बार लेट है। अब तकलीफ तो होता ही है, सर सामान हटाना पड़ता है, अभी वहाँ से ले आए, उठा के इधर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे।
1: पानी लगातार बढ़ने से संगम क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने संगम क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस जल पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर नजर रख रही हैं। लोगों से नदी के किनारे जाने से बचने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। धौलपुर में तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया में बदल गई हैं। कहीं सड़क पर पानी का तेज बहाव है तो कहीं बाजार और निचले इलाकों में घुटनों तक पानी जमा नजर आ रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि कई जगह दुकानों और घरों में पानी घुसने की नौबत आ गई। जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर साल बारिश में कई इलाकों में पानी भरता है लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। धौलपुर में अब तक करीब 305 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है जबकि पूरे मानसून में औसतन 650 मिलीमीटर बारिश होती है। अचानक आई तेज बारिश ने जैसलमेर में ऐसा सैलाब ला दिया कि सड़कें नाले में बदल गई। नालों में पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि कुछ लोग रास्ते में फंस गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया गया। कहीं सड़क पर पानी का तेज बहाव है तो कहीं मंदिर, स्कूल और दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। जैसलमेर के जवाहर अस्पताल का हाल भी बेहद परेशान करने वाला है। अस्पताल परिसर से लेकर आईसीयू तक में पानी भर गया है।
8: बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है और ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये गाय के लिए हुई है, पशु के लिए बहुत बढ़िया हुई है, अच्छी फर्स्ट क्लास हुई है, लोगों को शांति हो गई है।
9: किसानों के चेहरे पर एक शानदार रौनक आई। ये बारिश हमारे लिए अमृत बनकर आई है। काफी समय से हमारे किसान भाइयों को बारिश का इंतजार था और जैसे बारिश में जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय हल्की पानी से लबालब है और अभी भी बारिश बरस रही है। किसानों के लिए बारिश एक अमृत की तरह है।
1: लगातार बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से तो राहत मिली लेकिन जल भराव ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गणेश मंदिर में नदी का पानी इतना बढ़ा कि मंदिर की घंटियों तक पहुंच गया। हालांकि इस बारिश से किसानों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं क्योंकि खरीफ की फसलों के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद मानी जाती है। हर तरफ पानी ही पानी है, बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है और हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी मंजिल पर शिफ्ट होना पड़ा है। ओडिशा के चार जिलों की हालत बहुत बुरी है। कई जगह पीने के पानी तक की परेशानी खड़ी हो गई है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
10: Almost 9 villages are affected till now and 10,000 people have been evacuated and settled in the temporary houses. As for the relief code, we are providing the reliefs, dry food and cooked food. All are provided to the affected people.
1: Baitarani Nadi khatre ke nishan se upar beh rahi hai. Baleshwar mein bhi halaat behad gambhir hai. राज्य के 45 पंचायत क्षेत्रों में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। कई गांव में 4 फीट तक पानी हो गया है। मयूरभंज, राउरकेला, बालेश्वर में बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों और बाढ़ राहत केंद्रों में पहुंचाना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। बारिश और उफनती नदियों ने ओडिशा के कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घरों में घुसा पानी, डूबे रास्ते और रेस्क्यू का ये मंजर साफ बता रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। प्रशासन की टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं, लेकिन अगर बारिश का दौर जारी रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को सुरक्षित रखना और बाढ़ के पानी के बीच जिंदगी को बचाना।
11: जमशेदपुर में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि सड़क और नाले का फर्श तक मिट गया है। घरों के बाहर 3-3 फीट पानी है और कई कॉलोनियां पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। सैकड़ों कच्चे मकान पानी में डूब चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए अपने ही घरों के अंदर रहना मुश्किल हो गया है।
12: भारी बरसात के चलते यहाँ पूरा जल जमा हो रखा है। लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि चल भी नहीं पा रहे हैं या सारा यातायात बंद हो रखा है। नाला सिकुड़ जाने के चलते या कंक्रीट के हो जाने के चलते पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। तो पहाड़ से जो पानी आ रहा है वो सारा पानी रोड पे आ जा रहा है और सबके घरों में घुस जा रहा है पानी।
11: बागबेड़ा, जुगसलाई, कदमा और शास्त्री नगर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच चुका है। नालों का गंदा पानी भी घरों में घुस गया है। लोग सामान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। कई परिवार सामुदायिक भवनों में शरण ले रहे हैं तो कुछ लोग घर की पहली मंजिल और छत पर रात गुजार रहे हैं।
13: उधर से लेकर के इधर तक 100-125 घर हो गए।
14: 100-125 घर में पानी घुस चुका है।
13: तो
14: प्रशासन तरफ से कोई इंतजाम किया गया?
13: कुछ नहीं कोई आया। हम 6 बजे उठे हैं, जब से देख घूम रहे हैं, लेकिन हाँ। कोई नहीं आया अभी। जी तल्ला तीन तीन तल्ला बना लिए हैं, सब ऊपर में ही सामान करके ऊपर में ही रह रहे हैं अभी। मतलब भरोसा में है कि पानी और नहीं बढ़ेगा।
11: ओडिशा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने के बाद स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। इसका सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों में दिखाई दे रहा है।
15: सरकार सोचते ही नहीं है कि इस इलाका के लिए क्या करना है।
16: सही बात।
15: ठीक है, जिस समय वोट रहेगा लेने के लिए उस समय सब लोग आएंगे। जब वोट खत्म हो जाएगा प्रशासन को ये सब
16: भूल गए,
15: सब खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। भी नीचे बस्ती में आपको
16: 30-40 हो गई,
15: 50 घर से ऊपर है, 50 घर से ऊपर में पानी घुस चुका है।
17: अभी क्या पानी बढ़ रहा है या
15: नहीं? अभी भी बढ़ ही रहा है।
18: अलाउंस भी नहीं किया कि डैम खोलने वाला है कि क्या। हम लोग निठा थे, हम बोले पानी नहीं आएगा, एक बैग आया है पानी, कितना सामान लोग निकालेगा।
17: अभी क्या पोजीशन है, पानी बढ़ रहा है?
18: अभी पानी बढ़ रहा,
17: पानी बढ़ रहा।
11: पानी बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है। राहत और बचाव के लिए टीमें सक्रिय हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही है कि पानी और बढ़ा तो इन इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
0: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में मौसम लगातार बारिश वाला बना हुआ है। काले बादल छाए हैं और जरा सी देर में इतना पानी बरस जाता है कि जगह जगह जल भराव हो जाता है। लोग बारिश से खुश भी होते हैं तो परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली का मौसम ऐसा ही बना रह सकता है।
11: दिल्ली NCR का मौसम थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है की तरह अब भी जारी है। आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासी बारिश का अलर्ट है, लेकिन इस अलर्ट के बीच कभी धूप है तो कभी बारिश। बारिश कम हो या ज्यादा, दिल्ली का जल भराव दिल्ली क्षेत्र के निवासियों का इम्तिहान लेता रहता है। ये तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली में हुई हाल की ही बारिश की है। थोड़ी देर पानी बरसा और उसके बाद राजधानी के तमाम क्षेत्रों में ये स्थिति बन गई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश भी होती रहेगी और तापमान भी 30 डिग्री से ऊपर रहेगा। यानी जब बारिश तब तापमान में गिरावट, लेकिन जब बारिश नहीं तब तापमान भी बढ़ेगा।
19: उमस भरी गर्मी तो यह है कि जैसे जैसे वर्षा होती है तो थोड़ा ठीक लगता है, और जब वर्षा रुक जाती है तो उमस होती है। ये स्पेल ऐसे ही चलता रहे, कोई खास इसमें बदलाव होने की संभावना नहीं है। मानसून अपनी एक्टिव कंडीशंस खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में बना हुआ है, और आने वाले 2 से 4 दिनों में ये एक्टिविटी बने रहने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम अभी बना हुआ है।
11: दिल्ली NCR में रुक रुक कर बूंदाबांदी, फुहारे और हल्की बारिश होने की संभावना है।
0: मौसम की चुनौतियां सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया के कई देश इससे जूझ रहे हैं। चीन में पिछले कई हफ्तों से शुरू हुआ बाढ़ का सिलसिला थम ही नहीं रहा, तो ब्रिटेन के कई हिस्से सूखे की मार झेल रहे हैं, और यूरोप में ये मौसम का सीजन अलग अलग तरह की चुनौतियां खड़ी कर रहा है।

पहाड़ी राज्यों में लगातार मूसलाधार बरसात, नदियों के उफान पर होने के कारण उत्तर और पूरब भारत के कई मैदानी इलाकों में बाढ़ का गंभीर खतरा बढ़ गया है।

0: चीन के कई राज्य लंबे समय से बाढ़ बारिश से त्रस्त हैं। हालात कितने भयानक हैं इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। टाइफून डॉल्फिन के असर से पूर्वी चीन में भारी बारिश हुई और इसका असर राजधानी बीजिंग तक पहुंचा। बीजिंग में प्रशासन को हाई लेवल रेन स्टॉर्म अलर्ट जारी करना पड़ा। करीब 250 बस रूट बंद किए गए, 150 पर्यटन स्थल बंद हुए और कई मेट्रो लाइनों की रफ्तार कम करनी पड़ी। सबसे डराने वाली बात यह कि बीजिंग के चांगपिंग इलाके में सिर्फ एक घंटे में 90.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। चीन के कई दूसरे इलाके में भी एक दिन में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई और यह आफत सिर्फ बीजिंग तक सीमित नहीं है। शंघाई, झेजियांग, फुजियान, हेनान, हुबेई सहित कई इलाकों में बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। टाइफून के आने से पहले ही पूर्वी चीन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। आने जाने के रास्तों पर पानी का सैलाब बह रहा है। बाढ़ बारिश ने चीन के कई इलाकों में बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। चीन बारिश से तबाही का मंजर देख रहा है। जापान के चिबा प्रांत में आई बाढ़ के कारण सड़कें और रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। ये स्थिति ऐसे समय बनी है जब जापान में छुट्टियों का सबसे व्यस्त सप्ताह चल रहा है। भारी बारिश के चलते नारिता एयरपोर्ट पर करीब 7,000 यात्री फंस गए। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल चिबा शहर में सैकड़ों लोगों ने रात सरकारी इमारतों में बनाए गए अस्थायी राहत केंद्रों में गुजारे। कड़ाके की परिस्थितियों के बीच लोगों को फॉयल ब्लैंकेट यानी गर्मी बनाए रखने वाली विशेष चादरों में रात बितानी पड़ी। फिनलैंड बुरी तरह से सूखे की मार झेलने को विवश है। इंग्लैंड में लंबे समय से कम बारिश और तेज गर्मी की वजह से सूखे की समस्या बढ़ गई है। सरकारी जानकारी के अनुसार इस समय करीब 71.3% हिस्सा सूखे से प्रभावित है। जुलाई के अंत में यह आंकड़ा लगभग 50% था, यानी हालात तेजी से खराब हुए हैं। करीब 4.5 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां भयंकर सूखा पड़ा हुआ है।
1: For the UK, it has been an exceptionally dry summer, quite unprecedented, particularly across England and Wales. We've seen parts of southern England not receiving any rainfall whatsoever for almost 60 days, and that's something that hasn't been recorded in our records. And rainfall records actually go back about 190 years, so we have some long records in the UK.
0: इंग्लैंड के अलावा यूरोप के कई देश भी सूखे की मार से परेशान हैं।
2: Hey, sag mal, dies Jahr ist extrem. Die lang anhaltende Hitze, nicht mal kurz mal 40 Grad oder so, ne? Jetzt haben wir schon seit, ich glaube, 7-8 Wochen diese Hitze, ja. Ja, macht Angst. Natürlich macht es Angst.
0: फसलें पानी के अभाव में खड़ी-खड़ी सूख गई। जलाशयों में पानी खत्म हो चुका है, जमीन सूखे के कारण चटक रही है। कुल मिलाकर इंग्लैंड एक मुश्किल स्थिति का सामना कर रहा है, जिसका असर खेती, पर्यावरण और जीवन तीनों पर पड़ रहा है।
3: Aber dass da 2 Monate eigentlich auch kein Niederschlag bei uns in der Region war, das war katastrophal, vor allem fürs Getreide. Wir haben mit die schlechtesten Getreideerträge seit Aufzeichnung, haben dann durch die Unwetter auch noch mit Hagelschäden regional zu kämpfen.
4: Egy szomorú és az ijesztő dolog, és egy nagyon komoly figyelmeztetés a társadalomnak, hogy csinyán kell bánnunk az erőforrásainkkal, oda kell figyelnünk jobban a környezetünkre, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly ébresztő.
0: सूखे की सबसे बड़ी वजह कम बारिश और सामान्य से अधिक तापमान है। इंग्लैंड और वेल्स में जुलाई 2026 में पिछले करीब 190 सालों में सबसे सूखा जुलाई रहा। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में तो सामान्य बारिश का सिर्फ 1% ही पानी गिरा। इस साल ब्रिटेन पांचवीं हीट वेव भी झेल रहा है। इसी कारण नदियों, तालाबों और जमीन के नीचे पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। स्पेन और खास तौर पर दक्षिणी स्पेन के जंगलों की आग ने ऐसा विकराल रूप लिया है कि फायर ब्रिगेड की टीमें भी बेबस नजर आ रही हैं। तेज हवाएं आग को लगातार नए इलाकों तक पहुंचा रही हैं। दरअसल पिछले काफी समय से स्पेन के कई हिस्सों में एक साथ जंगल धधक रहे हैं। इस साल स्पेन में अब तक 2,44,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आग की भेंट चढ़ चुकी है। लगातार हीट वेव, सूखा और तेज हवाएं जंगलों को राख कर रही हैं। यानी स्पेन में इस वक्त मुकाबला सिर्फ आग से नहीं, मुकाबला है आग, गर्मी, सूखे और तेज हवाओं के उस खतरनाक गठजोड़ से जो हर गुजरते घंटे के साथ जंगलों को राख में बदल रहा है।
5: भारत में मॉनसून सितंबर अंत तक रहने का अनुमान है। तब तक मौसम का कहां क्या असर रहेगा, हम इसकी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: अब बड़ी खबर आपको देते हैं. यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है. इसमें इंग्लिश, इसमें कॉमर्स और इसमें सोशियोलॉजी भी शामिल है. एनटीए ने इन परीक्षाओं को दोबारा कराने का फैसला लिया. इन विषयों की परीक्षा दोबारा होगी. एनटीए ने निर्णय लिया है. एक कमेटी को इन परीक्षाओं में कई तथ्यात्मक टाइपिंग और अनुवाद और व्याकरण के संबंधित गलतियां मिली. साथ ही पहले पूछे गए सवाल भी काफी हद तक दोहराए गए थे. और इसी के बाद अब एनटीए ने यह फैसला लिया कि इन 3 विषयों की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी. और उसके पीछे की वजह, उन्होंने खामियां, उसमें तकनीकी खामी है, उसमें कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स है, तथ्यात्मक गलतियां हैं, उसमें अनुवाद के संबंध में गलतियां हैं और व्याकरण संबंधित गलतियां मिली. उसके बाद एनटीए ने फैसला लिया कि तीनों ही विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई जाएगी.

0: एक और बड़ी खबर आपको देते हैं और रांची से ये बड़ी खबर है, जहां परीक्षा धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने पुतला दहन करके विरोध जताया है। कई दिनों से छात्र प्रदर्शनरत हैं, भूख हड़ताल उनके चल रहे हैं, वो विधानसभा का घेराव कर चुके हैं, तिरंगा यात्रा करके प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो मांग है सीबीआई जांच की मांग है, रिफॉर्म्स की मांग है, और इन मांगों में एक और मांग जुड़ गई है, अब वो है सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग। इतने दिनों से छात्र अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इनकी सारी मांगे माने नहीं गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार के खिलाफ, जहां राज्य में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, उनके खिलाफ गुस्सा फूटा। सीएम हेमंत सोरेन और नेता विपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन करके अपना गुस्सा उन्होंने अब जाहिर किया। छात्रों का आंदोलन निरंतर जारी है और अब राजनेताओं के खिलाफ भी विरोध शुरू हो गया है और ये पुतला दहन किया गया है। ये इस प्रोटेस्ट में पहली बार है जब राजनेताओं पर इस तरह से अब ये स्टूडेंट्स हमलावर दिख रहे हैं, क्योंकि इनका आरोप यही है कि इनकी मांगे माने नहीं जा रहे हैं। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: We are with you, friends.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। पुलिस महतो को वापस कमरे में ले जाने की कोशिश कर रही थी। महतो और उनके समर्थक अस्पताल से बाहर निकलना चाहते थे। देखते ही देखते बात धक्का मुक्की और खींचतान तक पहुंच गई। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
3: झंडा फहराने से रोका जा रहा है। ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है?
2: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है। महतो की हालत वाकई गंभीर है। तीन हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने पीने के नाम पर सिर्फ पानी। लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही। सभी डॉक्टरों की निगरानी में है। उधर अस्पताल में महतो पुलिस से उलझे तो अस्पताल के बाहर हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। 15 अगस्त को देवेंद्रनाथ महतो के बिना ही रांची में तिरंगा यात्रा निकली और आंदोलन को अब आर पार की लड़ाई में बदलने का ऐलान कर दिया गया। मांग साफ है कि जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाएं रद्द हों। छात्र कह रहे हैं कि इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। सवाल सरकार से भी है, अगर सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है तो छात्र सड़क पर क्यों हैं? और अगर बातचीत हो रही है तो आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा? छात्रों के निशाने पर राहुल गांधी भी हैं। आरोप है कि राहुल गांधी ने छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगों पर कोई समाधान नहीं निकला। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव, 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा और अब अगला निशाना मुख्यमंत्री आवास है। 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास घेरने की तैयारी में है। यानी झारखंड में छात्र आंदोलन अब सड़क से सत्ता के दरवाजे तक पहुँच चुका है और दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आकाश कुमार, रांची आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सोनिया पर शाह का हमला, काहिस्पाप के माफिया में बीजेपी ने की चौतरफा घेराबंदी, बंकिम चंद्र चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बयान पर चिदंबरम का पोस्ट लिखा, मुझे इस पर गर्व है, जयराम ने भी किया हमला, बीजेपी का जवाबी हमला। 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए कहा, हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती आवाज। रांची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास के घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का एनटीए का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग एरर, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का हवाला दिया।
1: आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। दुनिया में कहते हैं कि अगर कोई सबसे सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित प्लेन है तो वो एयरफोर्स वन है। एयरफोर्स वन नाम है उस प्लेन का जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट बैठते हैं, ये उनका सरकारी जहाज होता है। इस प्लेन के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब अभेद है, इस पर हमला, इसे मार गिराना सबसे मुश्किल काम है। दुनिया की सारी आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस एयरफोर्स वन, जिसमें दुनिया की सारी सहूलियत है। लेकिन इसी एयरफोर्स वन को जमीन से अगर कोई मिसाइल से अपना निशाना बनाए और उस डर से अमेरिकी प्रेसिडेंट को एयरफोर्स वन छोड़ना पड़े और फिर एक कैटरिंग ट्रक में बैठकर एक दूसरे प्लेन में सफर करना पड़े, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अभी हाल में एक खुलासा हुआ और यह अमेरिकी मीडिया की तरफ से हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन्होंने इस पर एक पूरी रिपोर्ट छापी। और फिर अब 11 अगस्त यानी 3 दिन पहले खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर पर मुहर लगाई और उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने एयरफोर्स वन को छोड़ा और चुपचाप दूसरे प्लेन में बैठे, इसलिए कि उन्हें सीक्रेट सर्विसेज ने ऐसा करने के लिए कहा था। वो टारगेट पर है नंबर वन और ईरान के टारगेट पर सबसे ज्यादा है। आपको याद होगा 28 फरवरी को जब अमेरिका और फिर इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और पहले ही दिन 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके कई रिलेटिव, इसके अलावा जो IRGCA ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स, उसके टॉप कमांडर, इन सारे लोगों को मार डाला था। और उससे पहले जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी, उसके पीछे भी इसराइल और अमेरिका का हाथ था। कहते हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप का थ्रेट बढ़ गया था। जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और बाकी भी जो रिपोर्ट आती थी वो ये थी कि कासिम सुलेमानी के बाद से ही ईरान के कुछ लोग ट्रंप के पीछे पड़ गए और वो उनके लिस्ट में, हिट लिस्ट में नंबर वन पर थे। अमेरिका में इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार हमला भी हुआ। लेकिन अब अचानक एयरफोर्स वन क्यों चेंज करना पड़ा? ये पूरी कहानी की शुरुआत होती है जून में, करीब 40 या उससे ज्यादा दिनों तक अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच जो जंग थी उसके ऊपर एक समझौता हुआ, शायद 17 जून, और ये हुआ कि अब जंग नहीं होगी। तो समझौता खत्म होने के बाद 7 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था, फिर से जंग शुरू हो गई, हालात खराब हो गए। 7 जुलाई से पहले यह था कि सब ठीक ठाक है, और इसी बीच में 8 जुलाई को तुर्की के अंकारा शहर में नाटो की एक समिट थी। अब इस समिट में 32 देश के लोग हिस्सा ले रहे थे, अमेरिका चूंकि इसका मेंबर है तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा शहर पहुंचना था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो, अब यह नेटो का मोटो ही अलग है, यह है कि इसके जो 32 मेंबर है अगर इन 32 देशों पर कोई दूसरा हमला करता है तो फिर ये 32 के 32 देश ये मानते हैं कि उन पर ही हमला है, तो फिर वो एक साथ मिलकर इसका बदला लेते हैं। और यही नाटो एक वजह है जो रूस और यूक्रेन के बीच आज तक जंग खत्म नहीं हुई, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन वो मेंबर बनने की तरफ बढ़ रहा था और रूस चाहता नहीं था, क्योंकि रूस को यह खतरा था कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो नाटो की जो फौज है वो यूक्रेन तक आ जाएगी और यूक्रेन के दरवाजे पर रूस है, तो फिर नाटो की फौज की आसानी से रूस तक दखल हो जाएगी। इसीलिए रूस हमेशा यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने से रोकता रहा है। तो उसी नाटो की समिट अंकारा शहर में तुर्की के, जो पहले टर्की था, अब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं तुर्की अंकारा। इत्तेफाक से जिस प्लेन से वो गए, पिछले साल कतर ने वो एयरफोर्स वन डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया था, काफी महंगा, और अमेरिकी एक कंपनी है जिसने ये सारा एयरफोर्स वन की सारी सहूलियत सारी चीजें तैयार की, फिर उसकी बाकायदा चेकिंग हुई, सारी चीजों से अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से गुजरा, फिर एयरफोर्स वन पास हुआ। इससे पहले एक बार और दौरा किया, लेकिन ये एक मेजर दौरा था डोनाल्ड ट्रंप का उसी एयरफोर्स वन से जो तुर्की ने उनको पिछले साल गिफ्ट किया। अब इसी प्लेन से वो पहुंचते हैं अपने पूरे लश्कर के साथ तुर्की अंकारा में नाटो में समिट में हिस्सा लेने के लिए। अंकारा में जिस होटल में यूएस का पूरा डेलीगेशन खुद प्रेसिडेंट ठहरे थे, इत्तेफाक से न सिर्फ उस होटल किस फ्लोर पर है, किस रूम में है, कहते हैं पूरी जानकारी ईरान तक पहुंच गई, और ये एक तरह से सुरक्षा में चूक थी क्योंकि उसे निशाना बनाया जा सकता था मिसाइल या किसी भी जरिए से। तो जब CIA को ये पता चला और सीक्रेट सर्विसेस को कि डोनाल्ड ट्रंप के पूरे रूम नंबर से लेके होटल से लेके हर चीज की जानकारी ईरान तक है, फिर इसी चीज में एक खबर आई खुफिया एजेंसी से कि एक शख्स जमीन से आसमान में मार करने वाला मिसाइल भी लेकर घूमता हुआ नजर आया, हालांकि वो पकड़ में नहीं आया। तो बात और गंभीर हो गई। फिर अचानक CIA को एक रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट ये कि जब अंकारा से डोनाल्ड ट्रंप वापस लौटेंगे तो एयरफोर्स वन को निशाना बनाया जा सकता है, और निशाना बनाया जाएगा मिसाइल से, और बहुत मुमकिन है जमीन से आसमान पे मार करने वाले मिसाइल के जरिए। अब जैसे ही ये रिपोर्ट आई, इधर होटल वाली सारी सिक्योरिटी जो है वो एक तरह से लीक है, तो लगा बड़ा खतरा है, और ईरान के हिटलिस्ट पर है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके टॉप लीडरशिप, उनके जनरल्स, इन सब की मौत के लिए ईरान अमेरिका को गुनहगार मानता है इसराइल के साथ। तब ये हुआ कि क्या किया जाए, कहते हैं कि जैसी ये रिपोर्ट आई कि एयरफोर्स वन को निशाना बनाया जाएगा, फौरन एक मीटिंग जिसमें व्हाइट हाउस के जो तमाम बड़े अफसरान हैं, CIA के हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए इसी तुर्की में, और अगले चंद घंटों में एक डोनाल्ड ट्रंप को अंकारा से हिफाजत के साथ निकाल कर ले जाने की प्लानिंग हुई। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जहां भी एयरफोर्स वन में सफर करते हैं वो अपने साथ पूरे जर्नलिस्ट को लेकर चलते हैं, जो प्रिंट के भी होते हैं, टीवी के भी होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जहां प्रेसिडेंट जाए वहां पर कैमरा और रिपोर्टर जरूर हो, ताकि पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट कब क्या कर रहे हैं उनको माइलेज मिलता रहे, फुटेज मिलता रहे, आखिर सुपर पावर है तो दिखाना भी पड़ता है। हमारे यहाँ भी था पहले, हमारे यहाँ जितने भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं वो जब भी विदेश जाते थे तो जर्नलिस्ट उनके साथ ट्रैवल करते थे। हमारे विनोद शिकारपुरी कम से कम मुझे लगता एक दर्जन बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सफर कर चुके हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या मनमोहन सिंह जी हो, उनके साथ ये ट्रैवल कर चुका है, पाकिस्तान भी गया था। अब जर्नलिस्ट को प्लेन में PM हमारे साथ नहीं ले जाते हैं, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जहां भी जाते हैं बिना जर्नलिस्ट के साथ लिए नहीं जाते, पब्लिसिटी का भी एक वो होता है। तो खैर, अब इस एयरफोर्स वन में अंकारा नाटो समिट में भी अमेरिका से बहुत सारे मीडिया के लोग आए। अब इधर अचानक पता चला कि ये खतरा है, अब क्या किया जाए। तो एक गुप्त मीटिंग हुई और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अंकारा से निकालकर अमेरिका तक ले जाने का एक ऐसा प्लान बना जिसको सिर्फ 4-5 लोग जानते थे। अब होता यह कि 8 जुलाई को प्रेसिडेंट का काफिला नाटो समिट कंप्लीट करने के बाद अंकारा के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। एयरपोर्ट पर ऑलरेडी एयरफोर्स वन है। डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से पहले ये भी कहा था कि गए तो थे वो जो कतर ने उनको गिफ्ट किया, पर उनका यह था कि पुरानी यादें ताजी करनी है, पुराने एयरफोर्स थे जो उससे पहले चलते थे, तो वापसी उसी से करेंगे अमेरिका, तो पुराना एयरफोर्स वन भी एयरपोर्ट पर। अब जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ये भी थे, एक ही प्लेन में सफर करना था, सारे मीडिया वाले थे। 8 जुलाई को सबसे आगे आगे सीक्रेट सर्विसेज के लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फिर उनके बहुत पीछे पीछे मीडिया का पूरा काफिला अलग अलग गाड़ियों में होता है। एयरपोर्ट पर एक अजीब मंजर दिखाई देता है। आमतौर पर जब अमेरिकी प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पर कभी पहुंचते हैं तो एयरफोर्स वन के इर्द गिर्द या सीक्रेट सर्विसेज या उनकी गाड़ियों के अलावा कुछ और कभी नहीं होता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एयरपोर्ट पर पहुंचे, रनवे पर पहुंचे, एयरफोर्स वन में दाखिल हुए और उस प्लेन के बराबर में एक कैटरिंग ट्रक दिखाई देता है प्लेन के दूसरी तरफ, जिधर से ये कैमरा दिख रहा है सामने से नहीं, उसके दूसरी तरफ। और वो कैटरिंग ट्रक की हाइट इतनी थी जितनी आप प्लेन में जब लैंड करता है तो सीढ़ियां लगाई जाती हैं उससे हम पैसेंजर उतरते हैं, तो उतनी कि कैटरिंग से, और वो कैटरिंग अमूमन प्लेन में खाने पीने की चीज़ें लंबे सफ़र के लिए उसी कैटरिंग ट्रक से अनलोड करते हैं फ्लाइट में। तो वो कैटरिंग ट्रक वहाँ, लेकिन ये कैटरिंग ट्रक अमूमन जब प्रेसिडेंट एयरफोर्स वन में बैठते हैं किसी भी देश में आज तक, तो फिर वहाँ ये सब नहीं होता, ये सब कुछ पहले से लोड अनलोड हो चुका होता है क्योंकि खतरा होता है, पता नहीं उस गाड़ी के पीछे कोई साजिश हो क्या हो। लेकिन ये पहली बार था, जितने भी मीडिया के लोग ट्रेवल करते हैं एयरफोर्स वन में उन्होंने कहा कि कभी इससे पहले नहीं देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी प्रेसिडेंट एयरफोर्स वन के करीब पहुंच चुके हैं, ऊपर चढ़ चुके हैं और ट्रक अब भी है कैटरिंग वाला, तो ये अनयूजुअल चीज थी। खैर अब इसके बाद बाकी जर्नलिस्ट भी ऊपर बैठे, प्लेन टेक ऑफ होता है। जैसे ही टेक ऑफ होता है तो एक कुछ बल्कि जर्नलिस्ट वो प्लेन के विंडो को खोलने की कोशिश करते हैं बाहर देखने के, एक फोटोग्राफर ने भी खोला कि बाहर के कुछ पिक्चर कैप्चर कर लें। लेकिन जैसे ही विंडो खोला अचानक सीक्रेट सर्विसेज के लोग और बाकी लोग वहां पर आते हैं। जर्नलिस्ट को जो एयरफोर्स वन में बैठाया जाता सबसे पीछे की तरफ, बाकी फिर बाकी व्हाइट हाउस के स्टाफ, फिर प्रेसिडेंट, तो बैक साइड में, तो जितने जर्नलिस्ट थे एक साथ थे बैक साइड में। अचानक जिन्होंने विंडो खोला तो उनको आकर कहा गया कि प्लीज आप विंडो मत खोलिए, कभी ऐसा होता नहीं था। उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा ये सीक्रेट सर्विस का इंस्ट्रक्शन है सेफ्टी के लिए, विंडो बंद करा दिया गया। अब जर्नलिस्ट भी हैरान कि कभी एयरफोर्स वन के अंदर ऐसा हुआ नहीं, आज विंडो बंद किया जा रहा। खैर इसके बाद ये प्लेन यहां से टेक ऑफ करता है और सारे जर्नलिस्ट को ये पता है कि अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी बैठ चुके हैं क्योंकि एयरफोर्स वन में उनको चढ़ते हुए कुछ लोगों ने देखा भी और वो चढ़े भी, कैमरे में भी है। इसके बाद ये फ्लाइट पहले ब्रिटेन पहुंचती है। जब ब्रिटेन पहुंची तब तक हर एक को गुमान यही कि डोनाल्ड ट्रंप इस फ्लाइट में एयरफोर्स वन में उनके साथ आए। अब कुछ जो मिनिस्टर थे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में वो उस प्लेन में थे जिसमें ये जर्नलिस्ट एयरफोर्स वन में बैठे हुए हैं, तो उनको भी देखकर ये किसी को शक नहीं हुआ कि भाई आधे मिनिस्टर इसमें भी बैठे हुए हैं तो उसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप भी इसी में। हालांकि अमेरिकी जो पूरा नियम कानून है उसके हिसाब से ये होता है कि जनरली अमेरिका के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट एक साथ एक प्लेन में सफ़र नहीं करते। उसकी वजह यह है कि अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए, काम करने लायक ना हो या उनकी मौत हो जाए, तो फिर अपने आप वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ का प्रेसिडेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट को कुछ हो गया है तो फिर उसके बाद जो वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके जो स्पीकर हैं वो प्रेसिडेंट के दावेदार हो जाएंगे, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद। अगर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर हैं उनको भी कुछ हो गया तो फिर जो सीनेट के प्रेसिडेंट हैं उनका नंबर आता है, और सीनेट के प्रेसिडेंट को भी कुछ हो गया तो फिर जो फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ के वो, जैसे मार्को रूबियो हैं अभी, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसलिए जनरली कोशिश करते हैं कि सभी एक फ्लाइट में ना हो। खैर इस प्लेन में अब ये लैंड किया ब्रिटेन, वहाँ थोड़ी देर के बाद अचानक पहली बार डोनाल्ड ट्रंप सामने नजर आते हैं उसी फ्लाइट में, एयरफोर्स वन में। तो अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि अंकारा से लेकर ब्रिटेन तक डोनाल्ड ट्रंप ने इसी प्लेन में सफर किया, और फिर अंकारा के बाद जो पुराना फ्लाइट था एयरफोर्स वन जो कतर ने नहीं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था पुरानी यादें उसमें सफर करेंगे, तो बाकी सब जर्नलिस्ट उसमें भी आ गए, तो वहां से फिर वॉशिंगटन तक का सफर ये पूरा हुआ। लेकिन जब प्लेन वॉशिंगटन पहुंचा कुछ मीडिया ने सवाल किए क्योंकि कुछ लोगों के जहन में था कि प्लेन के अंदर अंकारा से उड़ते वक्त, टेक ऑफ के वक्त क्यों विंडो को न खोलने की हिदायत दी थी सीक्रेट सर्विसेज ने? तो जब ये बातचीत हुई तो पता चला डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, और वो तस्वीर जो एयरपोर्ट की है वो आप खुद देख लीजिए कि एयरफोर्स वन खड़ा हुआ है, पीछे एक ट्रक है, फिर वो ट्रक वहां से निकलता है, कैटरिंग ट्रक है, और सारे सीक्रेट सर्विसेज बाकी लोग हैं। तो इसके बाद जब वॉशिंगटन पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आपने फ्लाइट बदली थी अंकारा से लेकर ब्रिटेन तक? तब डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया और फिर सामने आया ये पूरा प्लान। हुआ ये कि ईरान के हिट लिस्ट पर सीक्रेट सर्विसेज से खबर मिली एयरफोर्स वन को टारगेट किया जा सकता है। आनन फानन में एक मीटिंग हुई खुफिया एजेंसी की, व्हाइट हाउस के तमाम नुमाइंदों की, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और फिर यह तय हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन में नहीं बैठेंगे, जो अभी पिछले साल कतार ने दिया, या एयरफोर्स वन वो जो पिछले यूज करते थे पुराना उसमें भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि एयरफोर्स वन को निशाना बना सकता है ईरान। तो फिर क्या करें? तो हुआ ये कि दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम किसी और प्लेन में बैठकर जाते तो फिर खतरा उस पर था, तो इसलिए यह हुआ कि दुनिया को दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बैठेंगे तो ऐलानिया एयरफोर्स वन में। लेकिन एयरफोर्स वन के अंदर घुसते ही उन्हें चुपके से पीछे के दरवाजे से इसी कैटरिंग ट्रक से उस कैटरिंग ट्रक में ले जाया जाएगा जो खाने पीने का सामान लोड करने के लिए आया, और उसके बाद उस कैटरिंग ट्रक को उसी एयरपोर्ट पर दूसरे रनवे पर एक और प्लेन खड़ा है अमेरिका का, जो C-32A, ये भी एक बोइंग 757 है, पुराना है ये, लेकिन इसमें जनरली जो है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट सफर करते हैं, ये उनका सरकारी विमान है, जैसे एयरफोर्स वन प्रेसिडेंट का है तो C-32A अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट का सरकारी विमान होता है। तो तय ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को उसमें ले जाएंगे, प्लेन में सवार हुए, पीछे के दरवाजे से, क्योंकि सामने से तो बाकी मीडिया भी है, कैमरे भी हैं, कवर भी हो रहा है, लेकिन अगर आप प्लेन का ये विजुअल देखें तो सामने तो हम सब कुछ देख रहे हैं, पीछे की तरफ कैटरिंग ट्रक थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी हाइट इतनी है कि जो लोड अनलोड कर रहा है उस दरवाजे से कोई भी अंदर आ जा सकता है कैटरिंग ट्रक के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं अंदर और उसके बाद दूसरे दरवाजे से प्लेन के एयरफोर्स वन के उस कैटरिंग ट्रक में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद कैटरिंग ट्रक ये निकलता है, ये जो आपको निकलते हुए दिखाई दे रहा इसमें डोनाल्ड ट्रंप थे। फिर ये वहां से निकलते हैं थोड़ी दूरी पर दूसरे एक प्लेन में जो C-32A है उसमें बड़ी खामोशी से उनको बिठाया जाता है, और बिठाने के बाद वो प्लेन टेक ऑफ करता है। फिर ये प्लेन जो है ब्रिटेन के एक एयरफोर्स जो उनके सैन्य हवाई अड्डा है वहां पर लैंड करता है। इधर एयरफोर्स वन जो यहां से उड़ा अंकारा से, वो भी अब ब्रिटेन के उसी एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसके बाद जो एयरफोर्स वन पुराना है उसमें सारे लोग बैठे, फिर अचानक खामोशी से ट्रंप भी उसी एयरफोर्स वन में सवार हो जाते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग पीछे की तरफ हैं, दरवाजा आगे से जब आप बैठते हैं तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स की जितनी भी चीजें हैं, जो जानकारी है, वो एक पर्दे में होती है, जर्नलिस्ट लोग भी होते हैं, वो उस तरफ तो आप देख नहीं पाते हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को रात करीब 10:10 पर ब्रिटेन के टाइम के हिसाब से दूसरे प्लेन से फिर इसमें बैठाया गया। एक तरह से तीन प्लेन चेंज किया उस दिन उन्होंने, अंकारा वाला अपने एयरफोर्स वन छोड़कर, फिर C-32A, फिर ये तीसरा, और उसके बाद वो बैठकर फिर पहुंचते हैं वॉशिंगटन। और जब वहां रिपोर्टर पूछता है आपने बदला, तब वो कहते हैं कि मुझे ऐसा सीक्रेट सर्विसेज ने कहने के लिए कहा था, और मुझे बहुत धमकियां मिलती हैं, मैं ईरान के हिट लिस्ट पे हूं, और अगर मैं मरूंगा तो फिर आप लोग भी मरते हैं। ये जर्नलिस्ट के लिए कहा, क्योंकि उसी प्लेन में सवार थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हालांकि एयरफोर्स वन छोड़कर मैंने जो दूसरे प्लेन में मुझे बिठाया गया उस पर कहीं ज्यादा खतरा था इससे। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, ये मैं आपको सुनाता हूं।
2: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
3: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but They wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
4: What's the nature of the threat?
3: I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats.
2: Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but
3: well,
2: not
3: I don't
2: too
3: know.
2: Dangerous
3: I,
2: for
3: I
2: the threat?
3: I think actually the plane that I flew on was at greater risk.
2: Why
3: I think
2: do you
3: it was
2: say
3: at
2: that?
3: Greater risk because that would be the plane I think that we that they would be more likely to go for.
1: तो आपने सुना अभी ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है एयरफोर्स वन में इस तरह का हेर फेर या इन वक्त पे ऑपरेशन चेंज हुआ है प्लान चेंज हुआ है कई बार हुआ जब भी अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी वॉर जोन में जाते हैं जैसे इराक या अफगानिस्तान तब भी बड़ी एहतियात बरती जाती है एयरफोर्स वन के नाम पे अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी और जहाज में सवार हो जाते हैं ताकि ये लगे कि एयरफोर्स वन में वो बैठे हैं अगर टारगेट भी कोई करता है तो वो बच जाएंगे 2000 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे इंडिया आना था उनको फिर ये था कि थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान भी जाएंगे हालांकि उन्हें सलाह दी गई मत जाइए क्योंकि पाकिस्तान में तमाम बहुत सारे टेरर ग्रुप हैं निशाना बना सकते हैं फिर उधर तालिबान और बाकी सारी चीज़ें थी तय हुआ कि नहीं

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या हुर्मुज को सच में अमेरिका का हिस्सा बनाने के अभियान पर डोनाल्ड ट्रंप निकल गए हैं, या फिर ये किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और उसी के तहत बयान दिया गया है। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन उनके इस बयान के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में तल्खियां बढ़ गई हैं। हुर्मुज के समंदर में हर दूसरे दिन हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब इस बयान ने चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया है।

0: قريباً.
1: सामने आया ट्रंप का सबसे विनाशकारी ऐलान, समंदर में मचने वाला है भयंकर कोहराम, अमेरिका का हिस्सा बनने वाला है हॉर्मुज, अब ट्रंप की निगहबानी में चलेगा हॉर्मुज। हॉर्मुज के समंदर के इन लहरों की शांति तूफान से ठीक पहले की है, क्योंकि ट्रंप ने जो ऐलान कर दिया है उससे न सिर्फ ईरान को बुरी तरह चिढ़ा दिया है बल्कि सीज फायर पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आपको सुना देते हैं ट्रंप का वो बयान जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है।
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
1: सुना आपने, ट्रंप जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान करने वाले हैं। कुछ लोग ट्रंप के इस विनाशकारी बयान को उनके बड़बोलेपन से जोड़कर देख रहे हैं, तो कईयों को इसमें सीज फायर के खात्मे और भयंकर युद्ध फिर से शुरू होने के संकेत दिख रहे हैं। ट्रंप ने इसके साथ ही अपने लोगों से महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार रहने की अपील भी की है, यानी ट्रंप को भी कहीं न कहीं युद्ध के अभी से लंबा खींचने की आशंका लग रही है। ट्रंप इस महंगाई को सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
2: So I just say this. So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing. You just have to remember that what we're doing is a great service for the world, not only for ourselves, for the world. And we're really doing a great job.
1: इस बीच ट्रंप के हॉर्मुज वाले बयान को लेकर ईरान ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री कंजेम घरीबाबादी ने ट्रंप के इस बयान की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान की हार के बाद वो जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका के हिस्से के रूप में घोषित कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्वीट से सीज नहीं किया जा सकता, ना ही एयरक्राफ्ट करियर से, ना ही एक आदेश जारी करके और ना ही किसी चुनावी भाषण के जरिए। कहने को दोनों देशों के बीच इस वक्त सीज फायर चल रहा है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। अब तो ईरान के विदेश मंत्रालय ने हॉर्मुज में तनाव बढ़ाने का सारा ठीकरा अमेरिका के सिर ही फोड़ दिया है।
3: وضعیت ناامنی در تنگه هرمز منحصرا نتیجه اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح بین المللی خیلی وقتها به نحوی موضوع رو مطرح میکنن، القا میکنن که گویا این ایران هست که باعث ناامنی در تنگه هرمز شده. همه ما میدونیم که تنگه هرمز تا قبل از 9 اسفند 404 هیچ مشکلی نداشت، باز بود. سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از این آبراه برای حمله به ایران.
1: इस बीच हूती के जबरदस्त हमले में यमन से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। धू धू कर चल रहे जहाज, टूटे हुए उपकरण, धुआं धुआं हो रहे पूरे परिसर की ये तस्वीरें साबित कर रही हैं

0: कि ईरान ने हूतियों के जरिए कितनी भारी तबाही मचाई है। हूती ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें सरकारी पोर्ट पर दागी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
1: रूस और यूक्रेन के बीच घमासान भयंकर हो गया है। रूस ने कीव के आसमान में जबरदस्त बमबारी की, आसपास के इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की गई, जबकि यूक्रेन ने मॉस्को रीजन में मिसाइलों और ड्रोन से बम बरसाकर तबाही मचाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो हथियारों के होड़ को और तेज करने का ऐलान भी कर दिया।
2: मिसाइलों और ड्रोन से बमों की बरसात, कीव में रूसी हमलों से बढ़ी आफत। यूक्रेन ने मॉस्को रीजन में की एयर स्ट्राइक। ना तो हमले रोकने के लिए रूस तैयार है, ना ही घुटने टेकने को यूक्रेन तैयार। नतीजा इन तस्वीरों के तौर पर आपके सामने है। आग की लपटों में घिरे इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों की तबाही की गवाही दे रहे हैं। हर दूसरे दिन मिसाइलें बम बरसा रही हैं, हर दूसरे दिन ड्रोन डरा रहे हैं और तेल डिपो से लेकर रिहायशी इलाकों में तबाही का तांडव मचा रहे हैं। यूक्रेन के जेपोरिजिया में रूसी हथियारों ने ताजा हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर डाला है। कीव रीजन के कई इलाकों को रूस ने एक साथ निशाना बनाया। इन हमलों में इस्कांदर एम, S-400 और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया। आसमान तक उठती आग और धुएं के इस गुब्बार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान झेलना पड़ा होगा। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हर हमले का उसकी सेनाएं जवाब दे रही हैं। मॉस्को रीजन में यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोनों से एयर स्ट्राइक की। रूस का कहना है कि उसने 100 से ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी कई ड्रोन बम बरसाने और तबाही मचाने में कामयाब हो गए। मॉस्को के पास कोलेदिनो इलाके में वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब में लगी ये आग कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। हजारों स्क्वायर फीट में फैले इस सेंटर में एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरा परिसर आग की लपटों में घिर गया। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में काफी ऊंचाई तक फैल गया। इसके अलावा यूक्रेन ने समारा इलाके में फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला किया। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी सेना ने यूक्रेनी सरहद से करीब 900 किलोमीटर दूर बने रूसी ठिकाने को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ उन्होंने हथियारों की होड़ में यूक्रेन के और मजबूती से आगे बढ़ने का दावा भी किया है।
3: Ещё одне. Ми продовжуємо роботу заради ППО для України. Ракет, які необхідні для захисту життя і домовленості заради виробництва в Україні. Це все буде. Це не просто, але все це буде. За час війни ми вже багато разів говорили про зброю, засоби, техніку, про які спершу чули, що це начебто неможливо. І потім чули, українці начебто не зможуть, бо потрібні десятиліття, щоб змогли.
0: Зеленський є дава भले ही करें, लेकिन वो जानते हैं कि किस कदर एंटी मिसाइल सिस्टम की कमी रूस के सामने यूक्रेन की बेचारगी लगातार बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

से तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, का हिसाब के माफिया में बीजेपी ने की चौतरफा घेराबंदी। बंकिम चंद्र चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बयान पर चिदंबरम का पोस्ट लिखा, मुझे इस पर गर्व है, जयराम ने भी किया हमला, बीजेपी का जवाबी हमला। 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए कहा, हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती आवाज। कराची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास के घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का एनटीए का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग एरर, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का हवाला दिया।

0: देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। कहीं सड़कें दरिया बन गए हैं, कहीं पर नदियां किनारों को काट कर बह रही हैं। लेकिन बाढ़ बारिश के साथ ही भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टाने चटक रहे हैं और लोग मुश्किल में हैं।
1: कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टाने चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिंडी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं। जब रविवार को ये पहाड़ दरका ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सांवरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसी चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी THGC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था। 12 लोग घायल थे।
1: पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं, थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफी वहाँ पर दबी हुई है। जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी उनको सफाई करेगी तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी उसमें।
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, सरते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय तो ही दलदल हो रही है। पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा, फंस जा रहा है उसमें। तो इसमें होगा तो जल्द से जल्द उस चीजों को जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविकेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए। ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: एक तरफ जमीन खिसक रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी ओर मूसलाधार बरसात और बेहिसाब बाढ़ की वजह से पुल जमींदोज हो रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां तेज जलधारा ने पुलों को ध्वस्त कर दिया है। क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला जारी है।
4: पुलों
0: करते ये पुल ढह गया। लोग देख रहे थे इस पुल को ढहने को, लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें यकीन था ये पुल अब गिरा कि तब गिरा। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा के ठासरा की है। यहाँ दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बना हुआ था, मगर जोरदार बरसात और नदी की जलधारा ने इस पुल की नींव को धरका दिया और देखते ही देखते ये पुल ढह गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अलबत्ता पुल के ढहने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बारा में जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बना ये हाई लेवल ब्रिज भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तहार है। अभी डेढ़ महीने पहले ही 28 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पार्वती की लहरों ने ऐसे हिलोरे मारी कि पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। ये शुक्र था कि जिस वक्त ये पुल ढहा इस पर कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें देखिए, ऐसी दरारें जैसे जमीन फट गई हो। अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
4: अभी ये पुलिया में जो बनी है नई, तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत उस साइड में भी, और ये वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रोड बंद करे और दोनों साइड होगा पक्का काम करे।
5: उनके महीने में लास्ट जून में उद्घाटन हुआ था इसका, और 17 अगस्त है अभी, वहाँ से बिखर चुकी है पुलिया। इधर साइडों में भी दो जगह मतलब जुड़ा हुआ है साइडों में दो तरफ, तो इसका धसलने की संभावना है इसकी भी।
6: तो आपका कहना है कि ये भी गिर सकती है?
5: ये भी गिर सकती है।
7: ये और भी जब जर्जर हो रही है, ये भी की दो दो इंच छूट चुकी है।
6: अच्छा,
7: साइडों में झुका हुआ है।
0: पुल के शुरू होने से अटरू और बारा से मध्य प्रदेश की सीमा तक आने जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी, लेकिन अब ये पुल धंस चुका है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ नदी पर बना ये पुल बह गया। हैरानी इस बात की है कि इस पुल का निर्माण 10 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन ये 10 बरसात भी नहीं झेल सका। निर्माण के बाद से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पुल पर जहाँ तहाँ दरारें दिखाई दे रही थी। दो दिन पहले बरसात हुई और सुबह जब लोगों की आंखें खुली और नदी की ओर गए तो पुल बह चुका था। ये नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए। जिस पुल से होकर दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही होती थी, वो देखते ही देखते पानी की तेज धारा में गायब हो चुका था। कहीं पिलर उखड़े पड़े थे, कहीं स्लैब पानी में समा गई थी और पुल का लंबा हिस्सा नदी की धार में बह चुका था। अब लोग निर्माण एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण पुल पहले से ही कमजोर हो चुका था। वाहनों की आवाजाही के साथ पुल के अलग अलग हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी थी और समय के साथ इसकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति बन रही है और अलग अलग शहरों से पुल के ढहने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो।
3: पहाड़ों पर भूस्खलन और बाढ़ का खतरा है, तो मैदानी इलाकों में जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कुछ घंटों की बरसात ने शहरों में सैलाब चला दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में तो सुबह चंद घंटे की बरसात हुई और उसके बाद शहर समंदर में तब्दील हो गया। बिल्कुल यही हाल इटावा का भी रहा, जहां जरा सी बरसात के बाद सड़कों पर बेहिसाब पानी भरा दिखा।

तलैया झरना सागर दरिया दरिया लखनऊ। हाँ जी, यकीन कीजिए ये आपका अपना अदब का शहर है लखनऊ। लखनऊ वाले रविवार की सुबह जब सो के उठे तो उन्हें मालूम चला कि उनका अपना प्यारा लखनऊ तो इटली का वेनिस हो गया है। पानी की लहरों पर उतराने वाला शहर, देखिए ना ये बच्चे जिस गली से गुजर रही है वहाँ घुटने तक पानी। अब सड़क का हाल देखिए, सड़क को सड़क नहीं समंदर कहिए, यहाँ डूब डूब आइए डूब डूब जाइए। इन भाई साहब की बाइक बंद पड़ गई, अब पानी में ये इसे खींचते हुए बढ़े जा रहे हैं। अब एक नजर इन तस्वीरों पर डाल लीजिए, इतनी बरसात हुई है कि ये घर लबालब है, घर में पानी भर गया है, घर के सामान पानी में उतरा रहे हैं। कुछ घंटों की बरसात ने लखनऊ को पानी पानी कर दिया। अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात कैसे बने।

0: आप प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, यहाँ गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। देखिए घाटों तक पानी चढ़ाया है, पंडा पुरोहित जहाँ बैठते हैं वहाँ तक गंगा चढ़ाई है।
1: गंगा जी के तो जलस्तर कल से काफी तेज हुआ है, परसों से बढ़ 2-3 दिन से बढ़ी, लेकिन कल जलस्तर लगभग 4 फीट की ऊंचाई में बढ़ा हुआ, आज भी जल तेज से ही है, लगभग 1 फीट जलाया सुबह से। अरे तकलीफ क्या है, तो हर साल का नियम ही है, हम लोग को गंगा जी बांधते तो हटाना पड़ेगा सामान, फिर वाल इस बार तो लेट है, नहीं पिछली बार तो हनुमान जी को भी नहला चुकी, हम लोग ऊपर थे पिछली बार रोड पर थे इस समय, लेकिन इस बार लेट है, अब तकलीफ तो होता ही है, सर सामान हटाना पड़ता है, अभी वहाँ से ले आए उठा के इधर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे।
2: परसों से गंगा जी काफ़ी तेजी से जो है रफ्तार से बढ़ रही हैं, और हमारे पंडा समाज के लोगों का जो है अब वो सामान जाने वाला है ऊपर, किसी गंगा जी का जो ये रूप है, और हमारे का दो रोज के अंदर गंगा जी ऊपर भी चली जाएंगे।
0: अब यूपी के ही इटावा की तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर के लिए बरसात क्या हुई, मानो पानी नहीं मुसीबत बरसी है, देखिए सड़कें किस तरह लबालब। इसी तालाब के बीच में लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं, देखिए ये स्कूली बच्चे पानी के बीच से कैसे निकल रहे हैं।
3: देखिए बरसात का मौसम चल रहा है और हमारी जो लाइन पार की मुख्य समस्या है वो यही है कि पचावली क्षेत्र जो है पूरा जलमग्न हो जाता है। विजयनगर चौराहे से आप अगर पचावली क्षेत्र देखेंगे तो अभी गाड़ियों की दुर्दशा आप देख रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं जा पा रहे, स्कूल ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, कोई दवाई लेने जा पा रहा, कोई अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को ये सारी समस्या दिखती है फिर भी वो इसका कोई समाधान नहीं निकालते, ये बड़ी शर्म की बात है।
4: बारिश बहुत कर रहे होने की वजह से यहाँ पे पानी उतना भर चुका है कि टम्पुआ में पूरे ऊपर तक सीटों तक पानी आ रहा है, पानी टम्पुआ के भीतर तक आ रहा है, और समय जी मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पैरों तक ऊपर पानी आता है।
5: ये पानी पुल में भर गया है।
6: अच्छा पानी। कितना पानी भरा होगा लगभग?
5: कम से कम ये समझो सर इतना है,
6: 4 फुट,
5: 4 से 5 फुट है पानी।
6: तो ये रास्ता बंद कराया गया है क्या?
5: हाँ कराया है।
6: क्या दिक्कत क्या उसकी?
5: ये लोग बांध फंस जाते हैं, बांध फंसते हैं, पब्लिक को परेशानी होती है, जाते हैं तो गाड़ी बंद हो होने लगती है, तो वो चक्कर से सुरक्षा के चक्कर से हम लोग खड़े हैं।
0: अब हरियाणा के अम्बाला की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी थोड़ी देर की बरसात ने तबाही मचा दी, सड़कें पूरी तरह से लबालब हैं, जहाँ रास्ते थे वहाँ सिर्फ पानी नजर आ रहा है, इतना पानी भरा हुआ है कि आना जाना मुश्किल है, देखिए सड़कों पर जलधारा है और इसी के बीच से लोग गुजर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
7: दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कुदरत कहर बरपा रहे हैं। चीन में खौफनाक बाढ़ से तबाही है, तो ब्रिटेन और यूरोप में सूखे ने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है, कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा, तो कहीं जंगलों में आग, मौसम का मूड बिगड़ा हुआ है।

0: चीन के कई राज्य लंबे समय से बाढ़ बारिश से त्रस्त हैं। हालात कितने भयानक हैं इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। टाइफून डॉल्फिन के असर से पूर्वी चीन में भारी बारिश हुई और इसका असर राजधानी बीजिंग तक पहुंचा। बीजिंग में प्रशासन को हाई लेवल रेन स्टॉर्म अलर्ट जारी करना पड़ा। करीब 250 बस रूट बंद किए गए, 150 पर्यटन स्थल बंद हुए और कई मेट्रो लाइनों की रफ्तार कम करनी पड़ी। सबसे डराने वाली बात यह कि बीजिंग के चांगपिंग इलाके में सिर्फ एक घंटे में 90.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। चीन के कई दूसरे इलाके में भी एक दिन में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई और यह आफत सिर्फ बीजिंग तक सीमित नहीं है। शंघाई, झेजियांग, फुजियान, हेनान, हुबेई सहित कई इलाकों में बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। टाइफून के आने से पहले ही पूर्वी चीन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। आने जाने के रास्तों पर पानी का सैलाब बह रहा है। बाढ़ बारिश ने चीन के कई इलाकों में बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। चीन बारिश से तबाही का मंजर देख रहा है। जापान के चिबा प्रांत में आई बाढ़ के कारण सड़कें और रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। ये स्थिति ऐसे समय बनी है जब जापान में छुट्टियों का सबसे व्यस्त सप्ताह चल रहा है। भारी बारिश के चलते नारिता एयरपोर्ट पर करीब 7,000 यात्री फंस गए।
1: 降ってなかったんですよ。夜になって降り始めて、様子を見に来たんですけど、もう夜中がすごい降って、本当にもうなんなかったです。3年前にも一度、あの、線状降水帯、あれによって、もう、浸水してます。今回の方が、被害がひどいです。そうですね、家の中にいても雷と、あと雨の音がすごくて、
0: सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल चिबा शहर में सैकड़ों लोगों ने रात सरकारी इमारतों में बनाए गए अस्थाई राहत केंद्रों में गुजारे। कड़ाके की परिस्थितियों के बीच लोगों को फॉयल ब्लैंकेट यानी गर्मी बनाए रखने वाली विशेष चादरों में रात बितानी पड़ी। फिनलैंड बुरी तरह से सूखे की मार झेलने को विवश है। इंग्लैंड में लंबे समय से कम बारिश और तेज गर्मी की वजह से सूखे की समस्या बढ़ गई है। सरकारी जानकारी के अनुसार इस समय करीब 71.3% हिस्सा सूखे से प्रभावित है। जुलाई के अंत में यह आंकड़ा लगभग 50% था, यानी हालात तेजी से खराब हुए हैं। करीब 4.5 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां भयंकर सूखा पड़ा हुआ है।
2: For the UK, it has been an exceptionally dry summer, quite unprecedented, particularly across England and Wales. We've seen parts of southern England not receiving any rainfall whatsoever for almost 60 days, and that's something that, hasn't been recorded in our records. And rainfall records actually go back about 190 years, so we have some long records in the UK.
0: इंग्लैंड के अलावा यूरोप के कई देश भी सूखे की मार से परेशान हैं।
3: Ja, ich sag mal, dieses Jahr ist extrem. Die lang anhaltende Hitze, nicht mal kurz mal 40 Grad oder so. Ne? Jetzt haben wir schon seit, ich glaube, 7-8 Wochen diese Hitze. Ja. Ja, macht Angst. Natürlich macht es Angst.
0: फसलें पानी के अभाव में खड़ी-खड़ी सूख गईं। जलाशयों में पानी खत्म हो चुका है, जमीन सूखे के कारण चटक रही है। कुल मिलाकर इंग्लैंड एक मुश्किल स्थिति का सामना कर रहा है, जिसका असर खेती, पर्यावरण और जीवन तीनों पर पड़ रहा है।
4: Aber dass da zwei Monate eigentlich auch kein Niederschlag bei uns in der Region war, das war katastrophal, vor allem fürs Getreide. Wir haben mit die schlechtesten Getreideerträge seit Aufzeichnung. haben dann durch die Unwetter auch noch mit Hagelschäden regional zu kämpfen.
1: Egy szomorú és az ijesztő dolog, és egy nagyon komoly figyelmeztetés a társadalomnak, hogy csinyán kell bánnunk az erőforrásainkkal, oda kell figyelnünk jobban a környezetünkre, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly ébresztő.
0: सूखे की सबसे बड़ी वजह कम बारिश और सामान्य से अधिक तापमान है। इंग्लैंड और वेल्स में जुलाई 2026 में पिछले करीब 190 सालों में सबसे सूखा जुलाई रहा। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में तो सामान्य बारिश का सिर्फ 1% ही पानी गिरा। इस साल ब्रिटेन पांचवी हीट वेव भी झेल रहा है। इसी कारण नदियों, तालाबों और जमीन के नीचे पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। स्पेन और खास तौर पर दक्षिणी स्पेन के जंगलों की आग ने ऐसा विकराल रूप लिया है कि फायर ब्रिगेड की टीमें भी बेबस नजर आ रही हैं। तेज हवाएं आग को लगातार नए इलाकों तक पहुंचा रही हैं। दरअसल पिछले काफी समय से स्पेन के कई हिस्सों में एक साथ जंगल धधक रहे हैं। इस साल स्पेन में अब तक 2,44,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आग की भेंट चढ़ चुकी है। लगातार हीट वेव, सूखा और तेज हवाएं जंगलों को राख कर रही हैं। यानी स्पेन में इस वक्त मुकाबला सिर्फ आग से नहीं, मुकाबला है आग, गर्मी, सूखे और तेज हवाओं के उस खतरनाक गठजोड़ से जो हर गुजरते घंटे के साथ जंगलों को राख में बदल रहा है।
5: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
8: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
7: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
9: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
10: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
11: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
12: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
7: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सॉरी।

0: We are with you, friends.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वंदे मातरम विवाद पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप की माफी नहीं। बीजेपी ने चौतरफा घेराबंदी की, बंकिम चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बैन पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम रमेश ने भी किया हमला तो बीजेपी का जवाबी हमला। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। रांची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास, घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाज शास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला, कांग्रेस ने एनटीए को घेरा।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीति में अब वायरल होने की होड़ नेताओं पर भारी पड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस के रचनात्मक प्रकोष्ठ का अधिवेशन था, मकसद था नई राजनीति की शुरुआत, लेकिन इस मंच से जो हुआ उसने पार्टी की पूरी क्रिएटिविटी पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। मन से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की हग डिप्लोमेसी यानी गले मिलने के अंदाज पर तंज कसते हुए मिमिक्री की, तो वही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। और हद तब हो गई जब ये सुनकर लोग ठहाके लगा रहे। इंदिरा गांधी की विरासत का दावा करने वाली कांग्रेस के मंच से एक महिला प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी ने बीजेपी को बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। सवाल यह है कि क्या जेंजी को रिझाने और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने की इस दौड़ में हमारे नेता अपनी राजनीतिक मर्यादा भूलते जा रहे हैं? और सोचिए, जब बीजेपी की तरफ से हमला आया तो बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक ऐसी अमर्यादित बात लिख दी जिस पर आज चर्चा करना, कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो सिर्फ दिखाता है दोनों ही हिस्से। ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है कि राजनीति में अब कोई सीमा बची नहीं है धरातल के नीचे जाने की। केंद्र सरकार की विदेश नीति पर राहुल गांधी की व्यंगात्मक एक्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। करीब 56 सेकंड के अंदर ही इन दोनों बड़े नेताओं ने मंच से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दिया, जिसका जवाब अब कांग्रेस पार्टी इस बात से दे रही है कि आपके नेता भी तो अपशब्द बोलते हैं। लेकिन ये कोई जवाब है? सवाल है कि एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री का जिस देश के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, हम उनके नागरिकों को क्या संदेश दे रहे हैं अगर इस तरह का व्यवहार हम करते हैं? हुआ ये कि राहुल गांधी मंच से केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाने की उनकी आदत का मजाक उड़ा रहे थे। इसी एक्ट के दौरान संदीप दीक्षित ने उनसे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी और यहीं से संदीप दीक्षित और राहुल का राजनीतिक घेराव शुरू हो गया है। पहले सुनिए,
1: इनके इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
2: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
1: आई हैव नॉट रीच देयर येट, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: सवाल तो यह है कि राजनीति में यह कहां से घुस गया कि आपको महिलाओं का अपमान करने की खुली इजाजत है। एक महिला पर संदीप दीक्षित की इस टिप्पणी ने कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम की छवि धूमिल की और जिस तरह से मंच पर इस टिप्पणी के बाद ठहाके लगे उसने इस अधिवेशन के उद्देश्य नई तरह की राजनीति का मजाक बनाया। जिस पार्टी से इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिला प्रधानमंत्री रही हूं, उस पार्टी के एक नेता के द्वारा दूसरे देश की किसी महिला प्रधानमंत्री के लिए गलत टिप्पणी करना राजनीतिक बयानबाजी सबसे निचला स्तर है। और यही वजह है कि कल से ही भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कई पार्टियों के नेताओं ने इसकी निंदा की है और कई लोग इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। देखिए,
3: कल मैंने देखा, एक भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूं, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? कि ये भारत के विचार है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए।
4: पूरे देश की महिलाओं का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया, एक चुने हुए देश की महिला का, ननियाल देश की महिला का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया। अपनी निम्नता, घटियापन, ओछापन देश के लोगों के सामने रखने का काम राहुल गांधी ने किया, और उनके साथ में जो एक जोकर और खड़ा था वो जोकर भी इसलिए क्योंकि उसकी माताजी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, वहां पे भी उसकी मां का भी अपमान किया उस जोकर ने।
5: दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उचित टिप्पणी करें तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है, और जानबूझ के डिलिमिटेशन बिल क्यों नहीं पास होने देते ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण, ये दिखता है। लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है।
6: राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ ड्रामा कर ही रहे थे, उनके साथ उनके एक नेता ने जाकर ये कहना कि इटली की स्टेट हेड के बारे में इस तरह की बातें करना, ये क्या भारत की संस्कृति है? किस तरह की जबान बोली जा रही है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा कांग्रेसी बोल रहे हैं और एक्ट कांग्रेसी कर रहे हैं।
0: संदीप दीक्षित की महिला विरोधी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की पहली मुसीबत थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री ने भी राहुल गांधी के इस टिप्पणी पर गहरी चिंता जाहिर की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है।
7: ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है। मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहूंगा, विनम्रतापूर्वक कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी भाषा और आचरण के बाद क्या वे लोग अब लाल बाल पाल से लेकर गांधी नेहरू पटेल सुभाष बाबू राजेंद्र बाबू से लेकर शास्त्री जी नरसिम्हा राव जी से लेकर प्रणब मुखर्जी जी तक जैसे विराट व्यक्तित्वों की विरासत का वह दावा किसी भी सूरत में कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है।
0: तो संदीप दीक्षित की महिला विरोधी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की पहली मुसीबत थी। दूसरी मुसीबत राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की मिमिक्री। राहुल गांधी ने कल मंच से कहा कि केंद्र सरकार के दिमाग में घुस गया है कि विदेश नीति का मतलब है नेताओं से गले लगना। आपने राजनाथ सिंह को भी सुना, उन्होंने भी कड़े शब्दों में इस पर टिप्पणी की। उनका निशाना देखिए, राहुल गांधी का निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गले मिलने का स्वभाव है, जिसमें वो अपने समकक्ष नेता मित्रों कुछ सहयोगियों से गले मिलते हैं। राहुल गांधी ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि विदेश नीति जो है वो अब इस बात पर सीमित हो गई है कि प्रधानमंत्री सबके गले मिलते हैं, और उन्होंने बाकायदा इसकी एक्टिंग की जो आप देख रहे हैं। राहुल गांधी की एक्टिंग को नई दिल्ली की सांसद बासी स्वराज ने फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडी कहा है। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने उनसे पूछा कि वो बड़े कब होंगे। इसके अलावा कई नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान को बचकाना बताया। अपने राजनाथ सिंह को सुना, वो तो कह रहे हैं कि जिसके नाम में गांधी है वो ऐसा कैसे कर सकता है।
8: जिस प्रकार की संस्कारहीन गरिमाहीन अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब बयानबाजी केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील वैल्यू के लिए करते हैं।
9: एक तो भाषा का सभ्यता रहता था, वो सभ्यता संपूर्ण उन्होंने भूल गया है क्योंकि वो सभ्यता ही नहीं है उनके पास। तो अपने आप को समझते हैं ही इज बॉर्न टू रूल, ये इनके मन में अहंकार है। जब ये पूरा नहीं हो रहा है हताश होके अत्यंत लो लैंग्वेज फिल्दी लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं।
10: नीचता की हद है, और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते हैं।
0: लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे देश के राजनेता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह वायरल होना चाहते हैं। सोशल मीडिया को एक्सक्लूसिव कंटेंट देने के लिए भी कई चीजें की जाती हैं और इसी वजह से बहुत सारा ऐसा कंटेंट बनाया जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर हमारे नेताओं की बयानबाजी, सरकाज्म, आपने हाल में देखा होगा जेन ज़ी आंदोलन के बाद से ज्यादा ही कोशिशें हो रही हैं कि ऐसी ऐसी बातें कही जाएं जिनकी मीम्स बने, जिनका अलग अलग अंदाज में लोगों तक पहुंच बढ़े। जैसे आपने राहुल गांधी का वो मीम देखा होगा जिसमें वो कहते हैं खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय, काफी वायरल मीम है और वो कई बार इसका इस्तेमाल अपने भाषण में कर चुके हैं। कल भी उन्होंने मंच से इसी मीम को रिपीट किया, यानी उन्हें मालूम है कि उनका कौन सा कंटेंट सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा देख रहे हैं, मीम कंटेंट। सुनिए,
11: सिस्टम बदलना है प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा, बाय बाय करना है।
12: जैसे सर ने कहा खत्म, टाटा, बाय बाय,
11: खत्म, टाटा, बाय बाय।
1: अब तो हो गया ना, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी, ओपोजिशन, सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला वो क्या। हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे।
0: उम्रदराज नेता भी ऐसे वीडियोस बनवा रहे हैं जो जेंजी को पसंद आए, अपने भाषणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो जेंजी की बोलचाल में सामान्य मानी जाती है। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान संसद में जो चर्चा हुई थी उसमें कुछ नेताओं ने जेंजी द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। इन शब्दों का इस्तेमाल भी इसलिए किया ताकि भाई भाषणों में एक जुड़ाव जेंजी के साथ दिखे। सुनिए,
13: जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेंजी की भाषा को बोरो करूं, देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन।
14: विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेंजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको एमआईए हो गया। एमआईए क्या है? एमआईए मिसिंग इन एक्शन। आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
15: जेंजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है।
16: ये जो नया जेंजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा। सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शोर। शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा।
17: वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुईया, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन।
0: तो पिछले कुछ समय में कई बड़े और चर्चित नेताओं ने किसी इन्फ्लुएंसर की तरह वीडियोस बनाए हैं, वायरल भी हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था जिसमें दोनों बारिश में भीग रहे थे, बारिश से बचने के लिए छतरी नहीं ली थी और संसद परिसर में मौजूद ये दोनों सांसद आपस में किसी मुद्दे पर गहन बातचीत में बिजी नजर आए। ये वीडियो की रीच मिलियंस में थी। हालांकि बाद में जब वो वीडियो भी आया जिसमें आसपास लोग छतरी के साथ खड़े दिख रहे थे तो वो वीडियो भी वायरल होने लगा क्योंकि आसपास में लोग खड़े थे। हालांकि ये अलग बात है कि राहुल विरोधियों ने इस घटना का एक और वीडियो, जैसा हम बता रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। नजर आया कि जिस जगह राहुल और प्रियंका बारिश में भीग रहे थे वहां पर बहुत सारे सुरक्षाकर्मी छतरियों के साथ खड़े थे। साफ थी कि राहुल प्रियंका का ये वीडियो जो है बारिश वाला, वो रील का कॉन्टेंट था जिसका मेन जो पॉइंट है ये था कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता, कर्ता धरता, किसी गहन मुद्दे पर बात करते वक्त बारिश की भी चिंता नहीं कर रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली गए थे और वहां पर भी जब मेलेडी चॉकलेट वाला ये कंटेंट बना तो सोशल मीडिया पर ये भी बहुत देखा गया। और इसे भी आप इंस्टाग्राम या फिर वीडियो कंटेंट बता सकते हैं, क्योंकि मेलेडी चॉकलेट की बात हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के दोस्ती को लेकर खुद इटली की प्रधानमंत्री ने पहली बार हैशटैग मेलेडी लिखा था। जंतर मंतर पर हुए जेंजी आंदोलन के बाद तो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को साधने की नई कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब तो सोशल मीडिया पर रील स्टाइल में वीडियोस और संबोधन हो ही रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने E20 के मुद्दे पर एक वीडियो बनाया था जिसमें वो बारिश के दौरान कार के पेट्रोल टैंक के पास खड़े हैं, पेट्रोल टैंक का नॉब खोलते हैं और बाद में कहते हैं कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। इस वीडियो के करीब काफी व्यूज थे, 35 मिलियन के आसपास आप देख रहे हैं। फिर लोगों ने जूम इन किया और जूम इन करके दिखाया कि यहां पर तो E20 लिखा हुआ है, जिस एथेनॉल गाड़ी मानी E20 कंप्लायंट कार है ये। इसी तरह से एक वीडियो जब जेंजी पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर धरना दे रहे थे तब उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सुरक्षाकर्मी उनको ले जा रहे हैं, उसके भी लगभग 24 मिलियन व्यूज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 जुलाई वाले इंस्टाग्राम रील भी आपको याद होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक दिन पहले ये रिलीज की गई थी। ये एक सेल्फी वीडियो बताया गया था जिसमें उन्होंने जेंजी को संबोधित किया था। इसमें नकल माफिया और दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके व्यूज आप देख सकते हैं, 417 मिलियन व्यूज थे। इसके बाद लोगों ने उन्हें सेल्फी वीडियो के कुछ फ्रेम्स बताए जिस पर उन्होंने अमल भी किया और फिर अगले दिन एक वीडियो बनाया और इस वीडियो के 293 मिलियन व्यूज थे। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने घर के बाहर जाकर एक और वीडियो बनाया था और ये वीडियो के 195 मिलियन। यानी देश के नेता जेंजी को सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो साफ अब रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारे रील्स प्रभावी रहे, चाहे वो जंतर मंतर का आंदोलन है उसको लोगों तक पहुंचाने में। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी का मजाक भी कुछ इसी तरह से उड़ाया जिससे उनका ये वीडियो वायरल हो सके और काफी हद तक कामयाबी भी रही, क्योंकि लगातार टीवी डिबेट्स बुलेटिन्स में इस पर चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पर अटैक कर रही है, उनके समर्थक ही नहीं बल्कि विरोधी भी काफी देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी को लेकर राहुल गांधी के विचार लोगों को सोशल मीडिया में वायरल होने के मिमिक्स से अगर आप इसको तुलना करें तो अलग अलग जगहों पर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विदेशों में जाकर डिप्लोमेसी में हक करने की बात की कि सबके गले लगते हैं, लेकिन अब लोग ये वीडियोस डालने लगे हैं क्योंकि विदेश नीति की कोई रणनीति के बजाय उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर भी ये वीडियो अब बीजेपी के लोग वायरल कर रहे हैं जिसमें उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को भी गले लगाया। इसके अलावा इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर सिवान, वाराणसी में हुए कार्यक्रम में दिव्यांगों को भी गले लगाया था।
18: बोलो भारत माता की।
19: সরকার সবরই প্রতীক্ষা কত দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

0: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर डाली है, जिसमें वो क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो से गले मिलते हुए दिख रही हैं। ये तस्वीर मार्च 1983 की है, जब दिल्ली में नॉन अलाइंड नेशंस कॉन्फ्रेंस की 7वीं बैठक आयोजित की गई थी। इसमें इंदिरा गांधी जैसी मंच पर जाती हैं तो फिडेल कास्ट्रो की तरफ से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन फिडेल कास्ट्रो ने उन्हें छोटी बहन की तरह गले लगा लिया। और आज इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि निशिकांत दुबे ने इस पोस्ट के साथ जिस तरह की भाषा लिखी है वो कतई एक प्रधानमंत्री के लिए, और वो भी भारत की महिला पूर्व महिला प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित है। और आज आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गले मिले थे। जुलाई 2018 के मानसून सत्र में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी बोलते बोलते अपनी सीट से उठे, वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए और उन्हें गले लगा लिया था।
1: आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। इट्स इंटरेस्टिंग, यू लाइक इट, यू विल एंजॉय दिस वन।
0: कश्मीर घाटी से एक बार फिर सनसनीखेज और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों और पंडितों को आतंकवादियों ने खुलेआम निशाना बनाने की धमकी दी है। इस बार सिर्फ जुबानी या लिखित धमकी भर नहीं है, बल्कि एक नए आतंकी संगठन के नाम से बाकायदा एक हिटलिस्ट जारी की गई है, जिसमें कई सरकारी कर्मचारियों के नाम, उनके फोन नंबर्स सार्वजनिक किए गए। इस बड़े खतरे के बाद प्रशासन ने फिलहाल हिंदू कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के निर्देश दे दिए हैं। इस बार धमकियों के पीछे लश्करे तैयबा से जुड़े एक नए आतंकी फ्रंट यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी यूएलसी का हाथ सामने आया है। यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का ही एक मुखौटा है, जो घाटी में आतंक फैलाने के इरादे से शदम नाम से काम करता है। लश्कर के इस आतंकी मुखौटे ने एक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें खास तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों समेत कई सरकारी हिंदू कर्मचारियों के नाम और उनके फोन नंबर तक सार्वजनिक कर दिए गए हैं। प्रशासन के कान इसलिए भी खड़े हो गए हैं क्योंकि पिछले ही महीने दक्षिण कश्मीर में दो बड़े आतंकी हमले हुए थे। 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी पर गोलीबारी की गई। 31 जुलाई 2026 को कुलगांव में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया, जिसमें दोनों ने अपनी जान गंवा दी। एक के बाद एक आतंकी घटनाओं और ताजा धमकी के बाद शेखपुरा समेत तमाम कश्मीरी पंडित ट्रांजिट कॉलोनीज, हिंदू बहुल रिहायशी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा समीक्षा होने तक कर्मचारी अपने घरों से ही काम करें। सुरक्षा बलों की यह तैयारी और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश यूं ही नहीं है। कई बार आतंकी खास तौर पर हिंदू कर्मचारी हों, प्रवासी मजदूर हों, उनको निशाना बना चुके हैं। अक्टूबर 2021 श्रीनगर में एक हिंदू टीचर और एक सिख प्रिंसिपल की स्कूल में घुसकर हत्या कर दी गई थी, अगर आपको याद हो। और फिर मई 2022 को बडगांव में आतंकियों ने तहसीलदार का जो कार्यालय था, ऑफिस, उसमें घुसे, कश्मीरी पंडित कर्मचारी को चुनकर गोली मारकर हत्या कर दी। मई 2022 में ही कुलगांव में स्कूल के बाहर एक हिंदू शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। फरवरी 2023 को पुलवामा में बैंक में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से ये नया आतंकी फ्रंट क्यों सक्रिय हुआ, इसके पीछे वजह

0: हूफे रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव है। घाटी में पिछले कुछ समय से कई कश्मीरी पंडित अपनी उन संपत्तियों, उन जमीनों को कानूनी रूप से वापस पाने में सफल हो रहे हैं जिन पर स्थानीय स्तर पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बांदीपुरा के एक कश्मीरी पंडित का मामला है, जहां इन व्यक्ति ने प्रशासन की मदद से अपनी जमीन का कब्जा वापस हासिल किया। उनकी 17 कनाल कृषि भूमि उन्हें वापस सौंप दी गई। ये व्यक्ति 1990 के दशक में पलायन कर गए थे, लेकिन अब जब उन्हें कानूनी रूप से उनकी जमीन वापस मिली तो स्थानीय स्तर पर भारी विरोध भी देखने को मिला था। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, यानी ये लोग नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति वापस लौटे और अपनी जमीन पर फिर से दावा करें। अब आतंकियों ने इन्हें धमकी दी और विशेष तौर पर इनके खिलाफ धमकी भरा एक पत्र अलग से जारी किया है। इनका जो नाम है और चेहरा है वो कई प्रिंट ऑनलाइन खबरों में सार्वजनिक कर दिया गया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इनकी पहचान हम सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, ना हम आपको उनका चेहरा दिखा रहे हैं, ना हम उनका नाम बता रहे हैं, क्योंकि आतंकियों ने सीधा नाम लेकर इनको धमकी दी है और इनको खतरा है, इनकी जान को खतरा है। देखिए
1: थ्री से मैं इस पे अपना जो भी है कागज वागज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो भी थे वो सारा कुछ देख के मुझे एक पीस ऑफ लैंड आज मिला है। आज मैंने दूसरी बार ये पोजीशन ली है, फर्स्ट टाइम एनक्रोच हुई थी और मेरी लड़ाई भी बाकी है, क्योंकि 186 कनाल लैंड मुझे एक दिन तो मिलेगी नहीं। अभी मुझे पीस ऑफ लैंड मिला है, वेरी थैंकफुल टू एडमिनिस्ट्रेशन, थैंकफुल टू गवर्नमेंट, थैंकफुल टू LG साहब एंड डिवकॉन्स स्पेशली हु टेक वेरी गुड स्टेप्स।
0: पाकिस्तान समर्थित इन तत्वों को ये बात कहां से रास आएगी, और यही वजह है कि आतंकियों ने स्थानीय लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। वो कश्मीरी पंडितों के घरों और फसलों को निशाना बनाए। साफ है कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ कुछ धमकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया को बाधित करने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन इस तमाम खौफ और अनिश्चितता के बीच घाटी में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं ने जिस साहस का परिचय दिया है वो वाकई एक मिसाल है। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि वो नासमझ नहीं है। पाकिस्तान और उसके पाले हुए इन संगठनों के हर नापाक इरादे और प्रोपेगेंडा को वो अच्छे से समझते हैं, वो इस बार डरेंगे नहीं। अब आपको ये दूसरी तस्वीर भी देखनी चाहिए, जिस वक्त घाटी में कश्मीरी पंडितों को धमकी दी जा रही है जो वहां के मूल निवासी हैं। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को धमकी और आतंकी हमले किए जा रहे हैं। तब इसी जम्मू कश्मीर में बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं को उनका कोई विरोध नहीं कर रहा। जो लोग कश्मीरी पंडितों की वापसी पर दुखी हैं, उन्हें शायद घुसपैठियों से कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर में चल रहे डेमोग्राफिक शिफ्ट का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि दशकों से अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे कश्मीरी पंडित न्याय और वापसी की आस लगाए बैठे हैं, जबकि दूसरी तरफ म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए जम्मू की जमीनों पर आबाद हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू संभाग में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों समेत 13,700 से अधिक विदेशी नागरिक रूप से दर्ज हैं। विधानसभा में सरकार का जो जवाब है वही हमारा सोर्स है और उसी हवाले से हम बता रहे हैं। सबसे ज्यादा घुसपैठिए जम्मू और सांबा जिले में हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2008 से 2016 के बीच इनकी संख्या में 6,000 से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई थी। सरकारी आंकड़ों से इतर जम्मू कश्मीर में इन घुसपैठियों की संख्या काफी ज्यादा बताई जाती है, जो जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में फैल चुके हैं। इसी महीने रामबन जिले के बनिहाल में सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान 21 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। कठुआ जिले की हीरानगर जेल को 5 मार्च 2021 को अवैध प्रवासियों को रखने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाया गया था। तब से लेकर अब तक लगभग यहां पर समझ लीजिए 275 रोहिंग्या रह रहे हैं, लेकिन इन्हें म्यांमार वापस भेजने को लेकर अभी तक कोई ठोस काम हुआ ही नहीं। तो सवाल ये भी है, ये भी एक आईना ही समझिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत को लेकर ग्लोबल मंच पर क्या सोच चल रही है? क्या दुनिया भारत के बढ़ते कदमों और ताकत को पसंद कर रही है, या उसकी सोच भारत के लिए पॉजिटिव है? प्यू रिसर्च सेंटर जिसकी ताजा सर्वे रिपोर्ट ने दुनिया के 36 देशों की लपस टटोली, इसके आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं और भारत की ग्लोबल कूटनीति के नए रंग दिखाने वाले भी हैं। सबसे पहले बात ग्लोबल तस्वीर की, 36 देशों के सर्वे में एक मीडियन आंकड़े के मुताबिक 45% लोगों की राय भारत के प्रति फेवरेबल, यानी ये लोग भारत को पसंद करते हैं, जबकि 41% लोग अनफेवरेबल नजर आए। लेकिन असली खेल पड़ोसी देशों में है, जहां आंकड़े एकदम उलटफेर दिखाई देते हैं। पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका में भारत के प्रति दीवानगी गजब की है। लगभग 79% 79% लोग भारत को पसंद करते हैं। इसके अलावा केन्या, ब्रिटेन में भी करीब 70% यानी 10 में 7 लोग भारत को पॉजिटिव नजर से देखते हैं। जर्मनी, इजराइल, इटली, स्वीडन, जापान, थाईलैंड में भी बहुमत भारत के पक्ष में ही खड़ा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। वहां सिर्फ 7% लोग भारत के पक्ष में है और 91% लोग भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके अलावा तुर्की में सिर्फ 15% और वेस्ट बैंक में मात्र 18% लोग भारत को अच्छा मानते हैं। बांग्लादेश में भी भारत को लेकर पिछले कुछ सालों में फेवरेबल रेटिंग 15 अंकों की गिरावट के साथ 50% से नीचे आ गई है, जबकि श्रीलंका में यह आंकड़ा 2024 के बाद से 14 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ ऊपर गया है। अमेरिका की बात करें तो यहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। आज अमेरिका में 45% लोग भारत को फेवर करते हैं, जबकि 50% अनफेवरेबल है। साल 2008 के बाद से ये आंकड़े सबसे निचले स्तर के करीब है, क्योंकि 2023 में ये आंकड़ा 51% हुआ और तब से इसमें लगातार हल्की सी गिरावट ही आ रही है। अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक और एक जेनरेशन गैप साफ दिखता है। वहां 50% डेमोक्रेट भारत को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं, जबकि 42% रिपब्लिकन ही भारत को लेकर अच्छी राय रखते हैं। उम्र की बात करें तो अमेरिका में 65 साल से ज्यादा उम्र के 50% बुजुर्ग भारत को पसंद करते हैं, जबकि 18 से 29 साल के युवाओं में यह आंकड़ा 42% है। अमेरिका के 54% लोगों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वैसा ही बना हुआ है, जबकि 30% मानते हैं कि भारत और मजबूत हुआ है। सिर्फ 13% लोगों को लगता है कि दुनिया में भारत का प्रभाव कमजोर हुआ है। जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में भारत की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। तो आइए आपको दिखाते हैं, आइडियोलॉजी की बात करें तो ये भी बड़े दिलचस्प ट्रेंड ही दिखाती है। अमेरिका और कनाडा में लेफ्ट विचारधारा वाले लोग भारत को ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अमेरिका में 54% लिबरल भारत के पक्ष में है, जबकि कंजर्वेटिव जो है वो 40% है। वहीं इसराइल में इसके बिल्कुल उलट स्थिति है। वहां 68% राइट विंगर्स भारत को पसंद करते हैं, जबकि लेफ्ट विचारधारा वाले सिर्फ 40% लोग ही भारत को लेकर अच्छी राय रखते हैं। अब प्यू रिसर्च सेंटर का यह सर्वे जाहिर करता है कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में भारत का दबदबा और सम्मान लगातार बढ़ रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में कई और दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। दुनिया की महाशक्तियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के लोगों की सोच में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां लोग चाइना के मुकाबले अमेरिका को ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। भारत में 45% लोग अमेरिका को पसंद करते हैं। इसके उलट पाकिस्तान में तस्वीर बिल्कुल अलग है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ 15% लोगों की ही अमेरिका को लेकर अच्छी राय है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि 36 देशों के सर्वे में अमेरिका और चाइना की लोकप्रियता का सबसे बड़ा अंतर पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। भारत में चाइना को लेकर सिर्फ 23% लोग ही सकारात्मक राय रखते हैं और देश के अधिकतर लोग जो है वो चाइना को एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। वहीं पाकिस्तान के 75% लोग चाइना को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं। 90% लोग चाइना को ही पसंद करते हैं। हालांकि भारत के अंदर भी दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की इस रिपोर्ट के ही मुताबिक तुलनात्मक रूप से भारतीय जो मुस्लिम्स हैं वो चाइना और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर सकारात्मक रुख थोड़ा ज्यादा है। हालांकि हिंदू और मुस्लिम दोनों का नजरिया प्यू रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग के प्रति नकारात्मक ही है। दूसरी ओर रशिया के मामले में भारत का पलड़ा भारी है। भारत के करीब 36% लोग रशिया को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं और 58% लोग रशिया तथा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति अच्छी राय रखते हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सकारात्मक राय में से एक है। आजादी के पूरे 79 साल बीत चुके हैं, पीढ़ी बदल गई, दौर बदल गया, लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान के बीच का अविश्वास कम हुआ है? प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया है और जो जवाब दिया है वो चौंकाने वाला है, आंखें खोलने वाला भी है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक भारत के 54% लोग पाकिस्तान को देश का सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, जबकि 21% लोग चाइना को खतरे के रूप में देखते हैं। वहीं पाकिस्तान में 43% लोग भारत को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसके बाद 24% लोग इसराइल और अमेरिका को पाकिस्तान के लिए खतरा मानते हैं। और अब आपको हवा में गोते लगाने वाले एयर इंडिया के विमान के बारे में बताएंगे, जिसमें पहले एयर टर्बुलेंस, बाद में पायलट के नशे में होने का दावा किया जा रहा था। अब इसमें एक और नई बात सामने आ रही है जिसे सबको हैरान कर दिया है। एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI 2379 में सिर्फ एयर टर्बुलेंस और पायलट के नशे में होने के दावों की चर्चा थी। लेकिन अब इस विमान को बनाने वाली कंपनी एयरबस की शुरुआती जांच रिपोर्ट ने एविएशन सेक्टर में सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हवा में कुछ सेकेंड्स के लिए प्लेन के सभी हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल हो गए थे, यानी कुछ पल के लिए विमान से कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। यह घटना 4 अगस्त की है, जब एयर इंडिया की यह फ्लाइट थाईलैंड के फुकेट से उड़ान भरकर दिल्ली आ रही थी। विमान जब हवा में था तो अचानक उसमें भारी हलचल और सडन लॉस ऑफ एल्टीट्यूड दर्ज किया गया। इस घटना में विमान में सवार कई यात्रियों को चोटें भी आई। शुरुआत में इसे सामान्य एयर टर्बुलेंस या मौसम की खराबी माना गया। इसके अलावा कॉकपिट के भीतर के माहौल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी। लेकिन जब विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सेंट्रलाइज्ड फॉल्ट डिस्प्ले सिस्टम के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तो जो सच सामने आया उसने एयरलाइंस और रेगुलेटर्स के होश उड़ा दिए। एयरबस की इनिशियल फाइंडिंग्स के अनुसार कॉकपिट के भीतर सुबह 9:32 और 44 सेकंड पर खौफ का वो मंजर शुरू हुआ जिसने विमान को बड़े खतरे में डाल दिया। फ्लाइट वार्निंग सिस्टम द्वारा सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने की घोषणा की गई। विमान में ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम एक बहुत ही ताकतवर और मुख्य पावर सप्लाई होता है जो विमान को सुरक्षित रूप से उड़ाने और जमीन पर कंट्रोल करने वाले भारी कलपुर्जों को चलाता है। विमान में ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम के बंद होते ही लेफ्ट हैंड ग्रीन एलिवेटर जो है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ग्रीन एलेरॉन और स्पॉयलर्स 1 और 5 ने काम करना बंद कर दिया। अब ये स्थिति बड़ी खतरनाक है, इतना ही हम लोग समझ सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि लेफ्ट हैंडेड ग्रीन एलिवेटर विमान को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करता है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ग्रीन एलेरॉन्स जो होते हैं वो विमान को हवा में दाई या बाई तरफ झुकाते हैं। स्पॉयलर 1 और 5 हवा में बहाव रोककर विमान की गति काम करने में कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब विमान के डिजाइन के मुताबिक जब यह ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ, सिस्टम का कंट्रोल बैकअप के तौर पर ब्लू और येलो हाइड्रोलिक्स पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अगले ही एक सेकंड के अंदर ये दोनों बैकअप सिस्टम्स भी फेल हो गए। अब विमान के सबसे अहम हिस्से यानी प्लेन को ऊपर नीचे करने वाले जो एलिवेटर्स हैं, बाएं दाएं मोड़ने वाले एलेरॉन्स हैं, स्पॉयलर्स हैं, नियंत्रण पूरी तरह खत्म। एलेरॉन्स के फेल होने का सीधा मतलब था कि पायलट के पास प्लेन को बाएं या दाएं मोड़ने का कोई कंट्रोल नहीं बचा। तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुए, वजह से विमान के जो मेन कंट्रोलर्स हैं उन्होंने लगभग 7 सेकंड तक काम करना बंद कर दिया। एयरबस की इनिशियल फाइंडिंग्स बताती है कि जब विमान का नोज यानी आगे का हिस्सा खतरनाक तरीके से ऊपर उठ रहा था तो उसे रोकने के लिए तत्काल एक्शन की जरूरत थी, जबकि ऑटो पायलट पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक को पायलट की ओर से नोज डाउन का इनपुट देना शुरू किया गया ताकि प्लेन के आगे के हिस्से को नीचे किया जा सके। लेकिन बड़ी समस्या यह थी कि फ्लाइट कंट्रोल सीधे तौर पर रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे थे, सिस्टम काम कर नहीं रहा था, इसे पायलट सिर्फ कोशिश कर रहे थे और विमान अनियंत्रित गति से आगे बढ़ रहा था। क्रू और यात्रियों की किस्मत ही थी कि 9:32 और 51 सेकंड पर तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम ने अपने आप फिर से काम करना शुरू कर दिया। सिस्टम रिस्पॉन्ड करने लगा जिससे पायलट्स को प्लेन का कंट्रोल वापस मिल गया और वो दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग कर पाए। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने एयर इंडिया को तुरंत और बेहद सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एयरबस ने एयर इंडिया को इस घटना में शामिल एयरक्राफ्ट पर कई परीक्षण और निरीक्षण करने के लिए कहा है, जिसके तहत हाइड्रोलिक सिस्टम पर 4 से 5 कड़े टेस्ट कंडक्ट करना, ऑटोमेटिक फ्लाइट सिस्टम की पूरी तरह से जांच करना, विमान की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी की जांच करना, इसके साथ ही पिछले 1 महीने के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम पर किए गए मेंटेनेंस एक्टिविटीज की पूरी रिपोर्ट साझा करने के लिए कहा गया है। एयरबस ने अपने कम्युनिकेशन में साफ किया है कि इस असेसमेंट की जटिलता को देखते हुए इसकी फाइनल रिपोर्ट में ज्यादा वक्त लग सकता है। इसके परिणामों के आधार पर आगे और भी एडिशनल इंस्पेक्शंस किए जा सकते हैं। अब इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक अकेली तकनीकी खराबी थी या फिर भारत में उड़ने वाले A320 नियो विमानों के फ्लीट्स में कोई गंभीर डिजाइन या सिस्टम फॉल्ट है। आज तक ने इस गंभीर मामले पर एयरबस और DGCA से कुछ सवाल पूछे हैं। ये जानने की कोशिश की गई है कि क्या इस घटना के बाद भारत में इस्तेमाल हो रहे सभी A320 नियो विमानों के बेड़े की स्पेशल ऑडिट की सिफारिश की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा की जा रही है और फिलहाल उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। शुरुआती जांच में यह निकल कर आ रहा है कि यह घटना सिर्फ एक रूटीन एयर टर्बुलेंस या सिर्फ पायलट की गलती का मामला नहीं है, ये विमान निर्माता कंपनी एयरबस की रिपोर्ट के आधार पर एक संभावित बड़े विमान हादसे की तरफ इशारा करती है, जहां महज कुछ सेकेंड्स के भीतर विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम धड़ाम हो गया। देखिए कुछ पेशेंट्स किस हालत में निकले थे। यदि सिस्टम अपने आप रिकवर ना होता तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 17.5 रुपए हम आपको जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट है। सामाजिक योजनाओं को चलाने का खर्च सरकारें टैक्स और सेस लगाकर पूरा करती है, लेकिन टैक्स और सेस किन वस्तुओं पर लगे, किस तरह का टैक्स किस तरह का सेस लगे, कितना टैक्स लगे कितना सेस लगे, इसका एक नैतिक एक आर्थिक आधार होना चाहिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश में लगाए गए एक सेस की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ और विधवा सेस लागू हो गया है। आपको याद होगा 2023 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन बहाल करने जैसे वादों के साथ सरकार बनाई थी और फिर काफी मुश्किलों का अर्थव्यवस्था को वहां सामना करना पड़ा। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर पात्र महिला को 1500 रुपए प्रति महीने, युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने, ग्रामीण सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा देने के अलावा हर पशुपालक से रोजाना 10 किलो दूध खरीदने, 2 रुपए प्रति किलो के रेट से गोबर खरीदने, हर घर में 4 गाय तक की खरीद पर सब्सिडी देने का वादा किया गया। अब ऐसे वादों पर चुनकर आई सुक्खू सरकार पिछले 3 सालों में पहले भी सरकारी कर्मचारियों को लेट सैलरी देने और सारे वादे पूरा न करने या आधा अधूरा वादा पूरा करने को लेकर सवालों के घेरे में आई। हालांकि 10 बड़े वादों में से ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे 7 वादों को पूरा करने का दावा है, लेकिन इन वादों की कीमत समझिए। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार के खर्च का 29% जो पैसा है वो अकेले पेंशन पर जाने का अनुमान है। 2026-27 में हिमाचल प्रदेश के खर्च का 88% हिस्सा सिर्फ सैलरी पेंशन कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च होने वाला है। हिमाचल प्रदेश का मौजूदा जो कर्ज है वो 1,04,000 करोड़ है। 2026-27 में हिमाचल प्रदेश को 13,000 करोड़ का रीपेमेंट करना है, जिसके लिए सरकार इस साल 10,000 करोड़ का कर्ज लेने की योजना बना रही है। राज्य के आर्थिक घाटे की भरपाई के लिए सुख सरकार की माता पच्चियां पहले भी विवादों में आई है। अक्टूबर 2024 में हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग ने प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए महीने सीवरेज टैक्स लेने की घोषणा की थी। इस टॉयलेट टैक्स पर मचे हंगामे के बाद पहले यह दलील दी गई कि यह सामान्य सीवरेज टैक्स है, लेकिन बाद में इसे वापस लिया गया। और अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली में हुए टनल हादसे की। यह हादसा चमोली के पीपल कोटी में हुआ। यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए टनल बनाने का काम चल रहा था। टनल में पानी रिसने के बाद लैंडस्लाइड हो गया। उस वक्त वहां टनल में काम कर रहे करीब 22 मजदूर फंस गए और हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जिस टनल में हादसा हुआ है वो THDC यानी इंडिया लिमिटेड बना रहा है। ये 444 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी पानी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत अलकनंदा नदी के पानी का इस्तेमाल होना है। ये दर्दनाक हादसा इस प्रोजेक्ट के तहत बन रही टेल रेस टनल में हुआ है। ये टनल चमोली के बिरही इलाकों में पड़ती है और अब हम आपको ये बताते हैं कि असल में ये हादसा किस पॉइंट पर हुआ है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत चमोली के हेलांग से होती है। यहां अलकनंदा नदी पर एक 65 मीटर ऊंचा डैम बनाया जा रहा है। इस डैम से अलकनंदा की एक धारा का डायवर्जन किया गया है। अलकनंदा की यह धारा करीब 13 किलोमीटर लंबी हेडरेस टनल से होती हुई पीपल कोटी के हाट गांव में बन रहे अंडरग्राउंड पार हाउस में पहुंचेगी। फिर यहां से अलकनंदा की धारा करीब 3 किलोमीटर लंबी टेल रेस टनल से होते हुए मुख्य धारा में जाकर मिल जाएगी। यह हादसा इसी टेल रेस टनल में हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसा का जो लोकेशन है वो टेल रेस टनल के एग्जिट पॉइंट के करीब 1600 मीटर अंदर है, यानी जिस रेस टनल से पानी वापस अलकनंदा नदी में पहुंचाया जाना है उसके बिल्कुल बीच में हादसा हुआ। इस प्रोजेक्ट के हर चरण पर अलग अलग काम चल रहा है। साल 2009 से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिसंबर 2027 का टारगेट रखा गया, लेकिन काम की जल्दबाजी कहिए कुछ और कहिए, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया कि मॉनसून है और मॉनसून से पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है। येलो अलर्ट मौसम का जारी है, बावजूद इसके टनल बनाने का काम जारी रखा गया, रोका नहीं गया। क्या इन मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? साफ दिख रहा है, बताया जा रहा है कि टनल में करीब 1 किलोमीटर के इलाके तक पानी भरा है, कुछ जगहों पर तो पानी 5 फीट तक भर गया है। इस पानी में मलबा, मिट्टी और गाद जमा हुआ है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। क्या इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को यह पता नहीं था कि मॉनसून में इस बार उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है? केवल चमोली में ही इस मॉनसून सीजन में सामान्य से लगभग 53% ज्यादा बारिश हुई। 1 जून से लेकर 13 अगस्त के बीच 746 mm बारिश हो चुकी है, जबकि इस समय आमतौर पर 488 mm बारिश होती है। जिस दिन चमोली में हादसा हुआ, उस दिन मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, यानी भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग के येलो अलर्ट का मतलब है कि बारिश से सावधान रहें, क्योंकि 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की संभावना रहती है। यहां एक और बात जान लीजिए कि मौसम विभाग ने चमोली में 1 अगस्त से कई बार येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए, 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक के लिए पहले से येलो अलर्ट है, यानी आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है। आप सोचिए कि क्या हालत है, अंधेरा है, लेकिन वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मजदूरों की जिंदगी को खतरे में डाला जाता है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जिन लोगों की निगरानी में चल रहा है, उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया है। और ये विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, उसका पूरा टनल हम आपको दिखा रहे हैं कि अलकनंदा नदी से होते हुए ये किस तरह से आप देख रहे हैं, इधर से अलकनंदा नदी और फिर उधर अलकनंदा नदी में मिलना है। बीच में ये हेडरेस टनल है, लगभग 13.5 किलोमीटर का सर्च शाफ्ट है और टेल रेस टनल है और अंडरग्राउंड पावर हाउस 444 मेगावाट इसका कैपेसिटी है। आमतौर पर आप देखिए, टनल बनाने का काम हो, पानी अचानक, मलबा आने का खतरा तो रहता ही है। पहाड़ों में ये खतरा बारिश के मौसम में इतना बढ़ जाता है। जिस टेल रेस टनल में हादसा हुआ, इसमें अचानक रिसाव शुरू हो गया और इसके बाद भूस्खलन हो गया, और ये कोई पहली बार हो रहा है। लगातार हमने कई बार बारिश के मौसम में पहले भी देखा है, कई जगहों पर हमने मजदूरों का इस तरह से फंसे होना, लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन होना, सब कुछ देखा है। लेकिन बावजूद इसके सबक इसलिए नहीं सीखते हैं क्योंकि इन मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत जाहिर तौर पर इनकी नजर में है ही नहीं। और यही वजह है कि जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे, उन्हें अंदाज नहीं था बारिश उनके लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर देगी। अगर मौसम विभाग की चेतावनियों को ही ध्यान में जरा रख लेते तो फिर ऐसा नहीं होता। और यही आज सबसे बड़ा सवाल है, किया नहीं गया और इसी वजह से हमने 7 मजदूरों को खो दिया है। उन परिवारों की चिंता कौन करेगा? और इसीलिए यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर इन मजदूरों की जिंदगी की जवाबदेही किसकी है, उन परिवारों को लेकर क्या कर रही है सरकार? अब सवाल तो यही है कि आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है, जिस जगह पर येलो अलर्ट हो, येलो अलर्ट, वहां पर आप ऐसा कर रहे हैं। यह अपने आप में बताता है कि किस तरह की सोच है, मजदूरों की जिंदगी को लेकर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, जैसा हमने आपको बताया, इस तरह की लापरवाही पहले भी की गई है। पिछले साल ही इसी मौसम में, मुझे याद है, हम लोग लाइव कवरेज कर रहे थे, इसी प्रोजेक्ट में ऐसा हादसा हुआ जब चमोली के हिलांग में डैम बनाने का काम चल रहा था। 2 अगस्त को यहां काम के दौरान भूस्खलन हो गया और 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन इस हादसे से प्रोजेक्ट संभाल रहे लोगों ने कोई सीख नहीं ली। उन्हें पता होना चाहिए कि मॉनसून में जब पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश होती है, इस तरह का भूस्खलन आता है, टनल बनता है तो पानी, गाद, सब कुछ आता है। ये सुसाइड मिशन नहीं है तो क्या है? उत्तराखंड में इसी सीजन में 53 दिनों के अंदर ही 1944 सड़कें अलग अलग जगहों पर हुए भूस्खलन की वजह से बाधित हुई। अनुमान है कि इससे सरकार को करीब 217 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। जब भी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है तो सभी परेशान होते हैं, फिर चाहे पीड़ित हो, रेस्क्यू टीम्स हो या फिर प्रशासन से जुड़े लोग हो। और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच भी जाते हैं, घटना स्थल पर पहुंचे वो, कि भाई रेस्क्यू का काम कैसे चल रहा है। लेकिन कोई तो इस बात की सुध ले कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। और अब हम आपको इस हादसे की मौजूदा स्थिति पर अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बारिश ने किस तरह से टनल में तबाही मचाई।

0: कच्ची मिट्टी और पानी आ गया, जैसे आंधी तूफान आता है हवा की तरह, 10 मिनट में पूरा अफरा तफरी मच गया, किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला।
1: कितने लोग थे आप लोग टोटल?
0: देवाई पूरी शिव के साथ 22 आदमी।
2: मिट्टी धस गया ना, उसी में बहुत पूरा हादसा हो गया, वहाँ से पूरा आदमी को जो कि भागने के लिए कहीं चांस से नहीं मिला।
3: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
4: एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
5: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
4: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
6: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई नहीं था।
4: कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
7: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रोका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
4: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंदर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
8: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
4: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसने देश की सियासत को गर्मा दिया है। विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया और इसे लेकर बीजेपी विपक्ष के बीच में अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं।
9: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
10: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
11: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
10: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
12: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद करते हैं।
13: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
10: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था। अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
14: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन ये जो दिमागी नक्सल, ये अर्बन नक्सल्स हैं।
15: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
10: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
4: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिमागी नक्सल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है।
16: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खान पान देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। ये वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार में जनता उबती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबार में खड़ा खड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में, इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
4: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
0: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस
3: में कोई नहीं था।
0: कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
4: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंदर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
5: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
0: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
6: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसने देश की सियासत को गर्मा दिया है, विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया और इसे लेकर बीजेपी विपक्ष के बीच में अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं।
7: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
8: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदम्बरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदम्बरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
9: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदम्बरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
8: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
10: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं, ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं।
11: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
8: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
12: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन ये जो दिमागी नक्सल ये अर्बन नक्सल्स हैं।
13: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
8: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिमागी नक्सल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है।
14: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। ये वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार में जनता कूदती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में कड़ा कड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में, इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
0: रांची में छात्रों का आंदोलन जारी और आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगे मानी नहीं गई तो वो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अब की बार उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी मांगा है, साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर भी वो अड़ गए हैं।
15: तेईस दिन से इसी तरह बैठे हैं छात्र, इसी तरह कर रहे हैं अनशन और इसी तरह झारखंड सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और 13 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल, लेकिन अब छात्रों की दशा बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक जी सकेंगे।
16: धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है, सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है, मेरी जान, अब नहीं लगता है कि हम ज्यादा जी पाएंगे, स्थिति बहुत ही गंभीर है।
15: छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता छात्र मरे या बचे।
16: बुखार भी आ रही, सरकार को कोई चिंता नहीं, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो को ले गए फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे।
15: प्रेम नायक अकेले नहीं है जिनकी स्थिति बिगड़ गई है, छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल की भी स्थिति नाजुक है। तीनों का इलाज रांची सदर अस्पताल के HDU में चल रहा है। इसी अस्पताल में एक दिन पहले हंगामा हुआ था। ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
17: झंडा फहराने से रोका जा रहा
18: है,
17: ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है?
15: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
19: तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
15: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने के नाम पर सिर्फ पानी, लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में है। उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करे और CBI जांच की मांग को माने, वरना 20 अगस्त को CM आवास का घेराव किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
6: देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। कहीं सड़कें दरिया बन गए हैं, कहीं पर नदियां किनारों को काटकर बह रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टाने चटक रहे हैं, लोग मुश्किल में।
15: कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टाने चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिम्बी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं। जब रविवार को ये पहाड़ दरका ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सावरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसी चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी TSGC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था। 12 लोग घायल थे।
1: तो पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी भी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफी वहाँ पर दबी हुई है। जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी उनको सफाई करेगी तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी उसमें।
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, सरते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय दो ही दलदल हो रही है। पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा, फंस जा रहा है उसमें। तो इसमें होगा तो जल्द से जल्द उस चीजों को जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविकेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए। ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: एक तरफ जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो दूसरी ओर मूसलाधार बरसात और बेहिसाब बाढ़ की वजह से पुल जमींदोज हो रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तेज जल धारा ने पुलों को ध्वस्त कर दिया है। क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, पुलों के ध्वस्त होने का जो सिलसिला है जारी है।
0: hey! देखते ये पुल ढह गया। लोग देख रहे थे इस पुल को ढहने को, लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें यकीन था ये पुल अब गिरा कि तब गिरा। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा के ठासरा की है। यहाँ दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बना हुआ था, मगर जोरदार बरसात और नदी की जलधारा ने इस पुल की नींव को धरका दिया और देखते ही देखते ये पुल ढह गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अलबत्ता पुल के ढहने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बारा में जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बना ये हाई लेवल ब्रिज भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तहार है। अभी डेढ़ महीने पहले ही 28 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पार्वती की लहरों ने ऐसे हिलोरे मारी कि पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। ये शुक्र था कि जिस वक्त ये पुल ढहा इस पर कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें देखिए, ऐसी दरारें जैसे जमीन फट गई हो। अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
4: अभी ये पुलिया में जो बनी है नई, तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत उस साइड में भी, और ये वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रोड बंद करे और दोनों साइड हुआ पक्का काम करे।
5: उनके महीने में लास्ट जून में उद्घाटन हुआ था इसका, और अभी 17 अगस्त है, अभी वहाँ से लगभग हट चुकी है पुलिया। इधर साइडों में भी दो जगह मतलब जुड़ा हुआ है साइडों में दो तरफ, तो इसका ढसलने की संभावना है इसकी भी।
6: तो आपका कहना है कि ये भी गिर सकती है?
5: ये भी गिर सकती है,
7: ये और भी जब इसे जर्जर हो रही है, ये भी की दो दो इंच सूख चुकी है।
6: अच्छा,
5: साइडों में झुका,
7: साइडों में झुका हुआ है।
0: पुल के शुरू होने से अटरू और बारा से मध्य प्रदेश की सीमा तक आने जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी, लेकिन अब ये पुल धंस चुका है।

0: यहाँ नदी पर बना ये पुल बह गया। हैरानी इस बात की है कि इस पुल का निर्माण 10 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन ये 10 बरसात भी नहीं झेल सका। निर्माण के बाद से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पुल पर जहाँ तहाँ दरारें दिखाई दे रही थी। 2 दिन पहले बरसात हुई और सुबह जब लोगों की आंखें खुली और नदी की ओर गए तो पुल बह चुका था। ये नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए। जिस पुल से होकर दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही होती थी, वो देखते ही देखते पानी की तेज धारा में गायब हो चुका था। कहीं पिलर उखड़े पड़े थे, कहीं स्लैब पानी में समा गई थी और पुल का लंबा हिस्सा नदी की धार में बह चुका था। अब लोग निर्माण एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण पुल पहले से ही कमजोर हो चुका था। वाहनों की आवाजाही के साथ पुल के अलग अलग हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी थीं और समय के साथ इसकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति बन रही है और अलग अलग शहरों से पुल के ढहने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज तक ब्यूरो।
1: मैदानी इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ घंटों की बरसात ने शहरों में सैलाब ला दिया है। चाहे यूपी की राजधानी लखनऊ हो, जहां सुबह चंद घंटों की बारिश हुई और उसमें पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया। बिल्कुल यही हाल इटावा का भी रहा, जहां जरा सी बारिश के बाद सड़कों पर बेहिसाब पानी भर गया।

तरैया, झरना, सागर, दरिया, दरिया, लखनऊ। हाँ जी, यकीन कीजिए, यह आपका अपना अदब का शहर है लखनऊ। लखनऊ वाले रविवार की सुबह जब सो के उठे तो उन्हें मालूम चला कि उनका अपना प्यारा लखनऊ तो इटली का वेनिस हो गया है। पानी की लहरों पर उतराने वाला शहर, देखिए ना, ये बच्चे जिस गली से गुजर रही है वहां घुटने तक पानी। अब सड़क का हाल देखिए, सड़क को सड़क नहीं समंदर कहिए, यहाँ डूब डूब आइए, डूब डूब जाइए। इन भाई साहब की बाइक बंद पड़ गई, अब पानी में जैसे खींचते हुए बढ़े जा रहे हैं। अब एक नजर इन तस्वीरों पर डाल दीजिए, इतनी बरसात हुई है कि ये घर लबालब है, घर में पानी भर गया है, घर के सामान पानी में उतरा रहे हैं। कुछ घंटों की बरसात ने लखनऊ को पानी पानी कर दिया, अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात कैसे बने।

0: अब प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, यहाँ गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। देखिए घाटों तक पानी चढ़ाया है, पंडा पुरोहित जहाँ बैठते हैं वहाँ तक गंगा चढ़ाई है।
1: गंगा जी के तो जलस्तर कल से काफी तेज हुआ है, परसों से बढ़ दो तीन दिन से बढ़े, लेकिन कल जलस्तर लगभग 4 फीट की ऊंचाई में बढ़ा हुआ, आज भी जल तेज से ही है, लगभग 1 फीट जलाया है सुबह से। अरे तकलीफ क्या है, तो हर साल का नियम ही है, हम लोग को गंगा जी बांधते तो हटाना पड़ेगा सामान, फिर वाल इस बार तो लेट है, नहीं पिछली बार तो हनुमान जी को भी नहला चुकी, हम लोग ऊपर थे पिछली बार रोड पर थे इस समय, लेकिन इस बार लेट है, अब तकलीफ तो होता ही है, सर सामान हटाना पड़ता है, अभी वहाँ से ले आए उठा के इधर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे।
2: परसों से गंगा जी काफ़ी तेजी से जो है रफ्तार से बढ़ रही हैं, और हमारे पंडा समाज के लोगों का जो है अब वो सामान जाने वाला ऊपर किसी गंगा जी का जो ये रूप है, और हमारे का दो रोज के अंदर गंगा जी ऊपर भी चली जाएंगे।
0: अब यूपी के ही इटावा की तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर के लिए बरसात क्या हुई, मानो पानी नहीं मुसीबत बरसी है। देखिए सड़कें किस तरह लबालब, इसी तालाब के बीच में लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए ये स्कूली बच्चे पानी के बीच से कैसे निकल रहे हैं।
3: देखिए बरसात का मौसम चल रहा है और हमारी जो लाइन पार की मुख्य समस्या है वो यही है कि पचावली क्षेत्र जो है पूरा जलमग्न हो जाता है, विजयनगर चौराहे से आप अगर

0: देखेंगे तो अभी गाड़ियों की दुर्दशा आप देख रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं जा पा रहे, स्कूल ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, कोई दवाई लेने जा पा रहा, कोई अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को ये सारी समस्या दिखती है फिर भी वो इसका कोई समाधान नहीं निकालते, ये बड़ी शर्म की बात है।
1: बारिश बहुत कर रहे होने की वजह से यहाँ पे पानी उतना भर चुका है कि टम्पुआ में पूरे ऊपर तक सीटों तक पानी आ रहा है, पानी टम्पुआ के भीतर तक आ रहा है, और समय जी मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पैरों तक ऊपर पानी आता है।
2: ये पानी पुल में भर गया है।
3: अच्छा, कितना पानी भरा होगा लगभग?
2: कम से कम ये समझो सर इतना है,
3: 4 फुट,
2: 4 से 5 फुट है पानी।
3: तो ये रास्ता बंद कराया गया है क्या?
2: हाँ कराया है।
3: क्या दिक्कत क्या उसकी?
2: ये बांध फंस जाते हैं, बांध फंसते हैं, पब्लिक को परेशानी होती है, जाते हैं तो गाड़ी बंद हो होने लगती है, तो वो चक्कर से सुरक्षा के चक्कर से हम लोग खड़े हैं।
4: अब हरियाणा के अम्बाला की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी थोड़ी देर की बरसात ने तबाही मचा दी, सड़कें पूरी तरह से लबालब हैं, जहाँ रास्ते थे वहाँ सिर्फ पानी नजर आ रहा है, इतना पानी भरा हुआ है कि आना जाना मुश्किल है। देखिए सड़कों पर जलधारा है और इसी के बीच से लोग गुजर रहे हैं। आज तक ब्यूरो
5: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम विवाद पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप की माफी नहीं। बीजेपी ने चौतरफा घेराबंदी की, बंकिम चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बैन पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम रमेश ने भी किया हमला तो बीजेपी का जवाबी हमला। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। रांची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास, घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाज शास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला, कांग्रेस ने एनटीए को घेरा। एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया, कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था, चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
0: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस
3: उसमें कोई नहीं था।
0: कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
4: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रोका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंदर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
5: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
0: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसने देश की सियासत को गर्मा दिया है। विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया और इसे लेकर बीजेपी विपक्ष के बीच में अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं।
3: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
6: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
7: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है। ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
6: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
8: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद करते हैं।
9: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
6: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
10: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन ये जो दिमागी नक्सल ये अर्बन नक्सल्स हैं।
11: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
6: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिमागी नक्सल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है।
12: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार से जनता कूपती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में खड़ा खड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में, इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
0: रांची में छात्रों का आंदोलन जारी और आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगे मानी नहीं गई तो वो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अब की बार उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी मांगा है, साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर भी वो अड़ गए हैं।
13: तेईस दिन से इसी तरह बैठे हैं छात्र, इसी तरह कर रहे हैं अनशन और इसी तरह झारखंड सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और 13 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल, लेकिन अब छात्रों की दशा बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक जी सकेंगे।
14: धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है, मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज्यादा जी पाएंगे, स्थिति बहुत ही गंभीर है।
13: छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता छात्र मरे या बचे।
14: बुखार भी आ रही, सरकार को कोई चिंता नहीं, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर मैं नहीं गया, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो को ले गए फिर आने नहीं दे रहे, ये लोग का मनसा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे।
13: प्रेम नायक अकेले नहीं है जिनकी स्थिति बिगड़ गई है, छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल की भी स्थिति नाजुक है। तीनों का इलाज रांची सदर अस्पताल के एचडीयू में चल रहा है। इसी अस्पताल में एक दिन पहले हंगामा हुआ था, ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
15: झंडा फहराने से रोका जा रहा
16: है,
15: ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है।
13: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
17: तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
13: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने के नाम पर सिर्फ पानी, लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करे और सीबीआई जांच की मांग को माने, वरना 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध समेत कई किसानी मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व एक बार फिर से आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया है। अब किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया, मगर रास्ते में बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं।
18: ये हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर है, देखिए इस बॉर्डर को किस तरह से बंद किया गया है। बॉर्डर को 5 लेयर में सील किया गया है, बैरिकेडिंग की गई, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, वाटर कैनन वाली गाड़ियां खड़ी की गई, कंटेनर खड़े किए गए, कंटीली तार लगाई गई। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में आज से किसान बचाओ यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में शुरू हुई है। किसानों की ये यात्रा दाता सिंह वाला से शुरू हुई है और 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचना चाह रही है, लेकिन किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट, सीमाओं पर अवरोधक लगा दिए गए हैं। देखना होगा कि प्रशासन किसानों को रोक पाता है या नहीं। सुनील कुमार, जींद आज तक।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है, कहीं सड़कें दरिया बन गए हैं, कहीं पर नदियां किनारों को काट कर बह रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टाने चटक रहे हैं, लोग मुश्किल में।
19: कुदरत
16: जब कहर भर पाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टानें चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिम्बी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए, तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश में आई है। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं, जब रविवार को ये पहाड़ दरका ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सावरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसे चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी THDC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था, 12 लोग घायल थे।
1: तो पानी लगभग साफ हो चुका है, अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं, थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी भी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफ़ी वहाँ पर दबी हुई है, जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी उनको सफाई करेगी तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी उसमें।
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, सरते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय दो ही दलदल हो रही है, पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा, फंस जा रहा है उसमें, तो इसमें होगा तो जल्द से जल्द उस चीजों को जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविकेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए, ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है, कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: एक तरफ जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो दूसरी ओर मूसलाधार बरसात और बेहिसाब बाढ़ की वजह से पुल जमींदोज हो रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तेज जल धारा ने पुलों को ध्वस्त कर दिया है। क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, पुलों के ध्वस्त होने का जो सिलसिला है जारी है।
0: पुल ढह गया। लोग देख रहे थे इस पुल को ढहने को, लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें यकीन था ये पुल अब गिरा कि तब गिरा। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा के ठासरा की है। यहाँ दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बना हुआ था, मगर जोरदार बरसात और नदी की जलधारा ने इस पुल की नींव को धरखा दिया और देखते ही देखते ये पुल ढह गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अलबत्ता पुल के ढहने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बारा में जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बना ये हाई लेवल ब्रिज भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तहार है। अभी डेढ़ महीने पहले ही 28 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पार्वती की लहरों ने ऐसे हिलोरे मारी कि पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। ये शुक्र था कि जिस वक्त ये पुल ढहा इस पर कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें देखिए, ऐसी दरारें जैसे जमीन फट गई हो। अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
4: अभी ये पुलिये में जो बनी है नई, तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत तो उस साइड में भी, और ये वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये रोड बंद करे और दोनों साइड होगा पक्का काम करे।
5: उनके मैंने लास्ट जून में उद्घाटन हुआ 10 का, और 17 अगस्त है अभी, वहाँ से हट चुकी है पुलिया। साइडों में भी दो जगह जुड़ा हुआ है साइडों में दो ही तरफ, तो इसका ढसलने की संभावना है इसकी भी।
6: तो आपका कहना है कि ये भी गिर सकती है?
5: ये भी गिर सकती है,
7: ये और भी जब जर्जर हो रही है, ये भी क्योंकि दो दो इंच छूट चुकी है।
6: अच्छा,
5: साइडों में झुका,
7: साइडों में झुका हुआ है।
0: पुल के शुरू होने से अटरू और बारा से मध्य प्रदेश की सीमा तक आने जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी, लेकिन अब ये पुल धंस चुका है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ नदी पर बना ये पुल बह गया। हैरानी इस बात की है कि इस पुल का निर्माण 10 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन ये 10 बरसात भी नहीं झेल सका। निर्माण के बाद से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पुल पर जहाँ तहाँ दरारें दिखाई दे रही थी। दो दिन पहले बरसात हुई और सुबह जब लोगों की आंखें खुली और नदी की ओर गए तो पुल बह चुका था। ये नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए। जिस पुल से होकर दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही होती थी, वो देखते ही देखते पानी की तेज धारा में गायब हो चुका था। कहीं पिलर उखड़े पड़े थे, कहीं स्लैब पानी में समा गई थी, और पुल का लंबा हिस्सा नदी की धार में बह चुका था। अब लोग निर्माण एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण पुल पहले से ही कमजोर हो चुका था। वाहनों की आवाजाही के साथ पुल के अलग अलग हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी थी और समय के साथ इसकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति बन रही है और अलग अलग शहरों से पुल के ढहने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो।
3: मैदानी इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ घंटों की बरसात ने शहरों में सैलाब ला दिया है। चाहे यूपी की राजधानी लखनऊ हो, जहां सुबह चंद घंटों की बारिश हुई और उसमें पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया, बिल्कुल यही हाल इटावा का भी रहा, जहां जरा सी बारिश के बाद सड़कों पर बेहिसाब पानी भर गया।

दरिया झरना सागर दरिया दरिया लखनऊ। हाँ जी, यकीन कीजिए यह आपका अपना अदब का शहर है लखनऊ। लखनऊ वाले रविवार की सुबह जब सो के उठे तो उन्हें मालूम चला कि उनका अपना प्यारा लखनऊ तो इटली का वेनिस हो गया है। पानी की लहरों पर उतराने वाला शहर, देखिए ना ये बच्चे जिस गली से गुजर रही है वहां घुटने तक पानी। अब सड़क का हाल देखिए, सड़क को सड़क नहीं समंदर कहिए, यहाँ डूब डूब आइए डूब डूब जाइए। इन भाई साहब की बाइक बंद पड़ गई, अब पानी में जैसे खींचते हुए बढ़े जा रहे हैं। अब एक नजर इन तस्वीरों पर डाल लीजिए, इतनी बरसात हुई है कि ये घर लबालब है, घर में पानी भर गया है, घर के सामान पानी में उतरा रहे हैं। कुछ घंटों की बरसात ने लखनऊ को पानी पानी कर दिया, अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात कैसे बने।

0: अब प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, यहाँ गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। देखिए घाटों तक पानी चढ़ाया है, पंडा पुरोहित जहाँ बैठते हैं वहाँ तक गंगा चढ़ाई है।
1: गंगा जी के तो जलस्तर कल से काफी तेज हुआ है, परसों से बढ़ दो तीन दिन से बढ़े, कल जलस्तर लगभग 4 फीट की ऊंचाई में बढ़ा हुआ, आज भी जल तेज से ही है, लगभग 1 फीट जलाया है सुबह से। अरे तकलीफ क्या है, तो हर साल का नियम ही है, हम लोग को गंगा जी बांधते तो हटाना पड़ेगा सामान, फिर वाल इस बार तो लेट है, नहीं पिछली बार तो हनुमान जी को भी नहला चुकी, हम लोग ऊपर थे पिछली बार रोड पर थे इस समय, लेकिन इस बार लेट है, अब तकलीफ तो होता ही है, सब सामान हटाना पड़ता है, अभी वहाँ से ले आए उठा के इधर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे।
2: परसों से गंगा जी काफ़ी तेजी से जो है रफ्तार से बढ़ रही हैं और हमारे पंडा समाज के लोगों का जो है अब वो सामान जाने वाला है ऊपर, किसी गंगा जी का जो ये रूप है और हमारे का दो रोज के अंदर गंगा जी ऊपर भी चली जाएंगे।
0: अब यूपी के ही इटावा की तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर के लिए बरसात क्या हुई, मानो पानी नहीं मुसीबत बरसी है, देखिए सड़कें किस तरह लबालब। इसी तालाब के बीच में लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं, देखिए ये स्कूली बच्चे पानी के बीच से कैसे निकल रहे हैं।
3: देखिए बरसात का मौसम चल रहा है और हमारी जो लाइन पार की मुख्य समस्या है वो यही है कि पचावली क्षेत्र जो है पूरा जलमग्न हो जाता है, विजयनगर चौराहे से आप अगर पचावली क्षेत्र देखेंगे तो अभी गाड़ियों की दुर्दशा आप देख रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं जा पा रहे, स्कूल ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, कोई दवाई लेने जा पा रहा, कोई अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन जन प्रतिनिधियों को ये सारी समस्या दिखती है फिर भी वो इसका कोई समाधान नहीं निकालते, ये बड़ी शर्म की बात है।
4: बारिश बहुत कर रहे होने की वजह से यहाँ पे पानी उतना भर चुका है कि टम्पुआ में पूरे ऊपर तक सीटों तक पानी आ रहा है, पानी टम्पुआ के भीतर तक आ रहा है, और समय जी मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पैरों तक ऊपर पानी आता है,
5: ये पानी पुल में भर गया है।
6: अच्छा कितना पानी भरा होगा लगभग?
5: कम से कम ये समझो सर इतना है,
6: 4 फुट,
5: 4 से 5 फुट है पानी।
6: तो ये रास्ता बंद कराया गया है क्या?
5: हाँ कराया है।
6: क्या दिक्कत क्या उसकी?
5: ये लोग बांध फंस जाते हैं, बांध फंसते हैं, पब्लिक को परेशानी होती है, जाते हैं तो गाड़ी बंद हो जा होने लगती है, तो वो चक्कर से सुरक्षा के चक्कर से हम लोग खड़े हैं।
0: अब हरियाणा के अम्बाला की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी थोड़ी देर की बरसात ने तबाही मचा दी, सड़कें पूरी तरह से लबालब हैं, जहाँ रास्ते थे वहाँ सिर्फ पानी नजर आ रहा है, इतना पानी भरा हुआ है कि आना जाना मुश्किल है, देखिए सड़कों पर जलधारा है और इसी के बीच से लोग गुजर रहे हैं। आज तक ब्यूरो
7: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम विवाद पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप की माफी नहीं। बीजेपी ने चौतरफा घेरा बंदी की, बंकिम चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बैन पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम रमेश ने भी किया हमला तो बीजेपी का जवाबी हमला। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। रांची में हेमंत सोरेन राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास, घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी कॉमर्स समाज शास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला, कांग्रेस ने एनटीए को घेरा। एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया, कांग्रेस की सफाई भी आई लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था, चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
0: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस उसमें कोई
0: नहीं था। कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
3: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंदर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
4: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
0: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसने देश की सियासत को गर्मा दिया है। विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया और इसे लेकर बीजेपी विपक्ष के बीच में अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं।
5: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
6: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
7: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदम्बरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
6: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
8: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद करते हैं।
9: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
6: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
10: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन ये जो दिमागी नक्सल ये अर्बन नक्सल्स हैं।
11: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
6: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिमागी नक्सल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है।
12: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार में जनता कूदती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में खड़ा खड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में, इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
0: रांची में छात्रों का आंदोलन जारी और आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगे मानी नहीं गई तो वो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अब की बार उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी मांगा है, साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर भी वो अड़ गए हैं।
13: तेईस दिन से इसी तरह बैठे हैं छात्र, इसी तरह कर रहे हैं अनशन और इसी तरह झारखंड सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और 13 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल, लेकिन अब छात्रों की दशा बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक जी सकेंगे।
14: धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है, मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज्यादा जी पाएंगे, स्थिति बहुत ही गंभीर है।
13: छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता छात्र मरें या बचें।
14: बुखार भी आ रही, सरकार को कोई चिंता नहीं, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर मैं नहीं गया, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मनसा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे।
13: प्रेम नायक अकेले नहीं है जिनकी स्थिति बिगड़ गई है, छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल की भी स्थिति नाजुक है। तीनों का इलाज रांची सदर अस्पताल के एचडीयू में चल रहा है। इसी अस्पताल में एक दिन पहले हंगामा हुआ था, ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
15: झंडा फहराने से रोका जा रहा
16: है,
15: ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है।
13: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
17: तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
13: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने के नाम पर सिर्फ पानी, लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करे और सीबीआई जांच की मांग को माने, वरना 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है, कहीं सड़कें दरिया बन गए हैं, कहीं पर नदियां किनारों को काटकर बह रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टाने चटक रही हैं, लोग मुश्किल में हैं।
13: कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टाने चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा, जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिंडी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं। जब रविवार को ये पहाड़ दरका ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सावरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसे चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी TSGC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था। 12 लोग घायल थे।
1: तो पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी भी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफी वहाँ पर दबी हुई है। जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी उनको सफाई करेगी तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी उसमें।
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, सरते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय दो ही दलदल हो रही है। पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा, फंस जा रहा है उसमें। तो इसमें होगा तो जल्द से जल्द उस चीजों को जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविगेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए। ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: एक तरफ जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो दूसरी ओर मूसलाधार बरसात और बेहिसाब बाढ़ की वजह से पुल जमींदोज हो रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तेज जल धारा ने पुलों को ध्वस्त कर दिया है। क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, पुलों के ध्वस्त होने का जो सिलसिला है जारी है।
4: पुल ढह गया। लोग देख रहे थे इस पुल को ढहने को, लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें यकीन था ये पुल अब गिरा कि तब गिरा। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा के ठासरा की है। यहाँ दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बना हुआ था, मगर जोरदार बरसात और नदी की जलधारा ने इस पुल की नींव को धरका दिया और देखते ही देखते ये पुल ढह गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अलबत्ता पुल के ढहने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बारा में जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बना ये हाई लेवल ब्रिज भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तहार है। अभी डेढ़ महीने पहले ही 28 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पार्वती की लहरों ने ऐसे हिलोरे मारी कि पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। ये शुक्र था कि जिस वक्त ये पुल ढहा इस पर कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें देखिए, ऐसी दरारें जैसे जमीन फट गई हो। अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
5: अभी ये पुलिया में जो बनी है नई, तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत उस साइड में भी, और ये वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रोड बंद करे और दोनों साइड होगा पक्का काम करे।
6: उनके महीने में लास्ट जून में उद्घाटन हुआ था इसका, और अभी 17 अगस्त है, अभी वहाँ से लगभग हट चुकी है पुलिया। इधर साइडों में भी दो जगह जुड़ा हुआ है साइडों में दो तरफ, तो इसका धसलने की संभावना है इसकी भी।
7: तो आपका कहना है कि ये भी गिर सकती है?
6: ये भी गिर सकती
8: है, और भी जब जर्जर हो रही है, ये भी की 2-2 इंच सूख चुकी है।
7: अच्छा,
6: साइडों में झुका,
8: साइडों में झुका हुआ है।
4: पुल के शुरू होने से अटरू और बारा से मध्य प्रदेश की सीमा तक आने जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी, लेकिन अब ये पुल धंस चुका है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर

0: निर्माण के बाद से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पुल पर जहां तहां दरारें दिखाई दे रही थी। दो दिन पहले बरसात हुई और सुबह जब लोगों की आंखें खुली और नदी की ओर गए तो पुल बह चुका था। ये नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए। जिस पुल से होकर दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही होती थी वो देखते ही देखते पानी की तेज धारा में गायब हो चुका था। कहीं पिलर उखड़े पड़े थे, कहीं स्लैब पानी में समा गई थी और पुल का लंबा हिस्सा नदी की धार में बह चुका था। अब लोग निर्माण एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण पुल पहले से ही कमजोर हो चुका था। वाहनों की आवाजाही के साथ पुल के अलग अलग हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी थी और समय के साथ इसकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति बन रही है और अलग अलग शहरों से पुल के ढहने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज तक ब्यूरो।
1: मैदानी इलाकों में जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ घंटों की बरसात ने शहरों में सैलाब ला दिया है। चाहे यूपी की राजधानी लखनऊ हो, जहां सुबह चंद घंटों की बारिश हुई और उसमें पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया। बिल्कुल यही हाल इटावा का भी रहा, जहां जरा सी बारिश के बाद सड़कों पर बेहिसाब पानी भर गया।

तरैया झरना सागर दरिया दरिया लखनऊ। हाँ जी, यकीन कीजिए यह आपका अपना अदब का शहर है लखनऊ। लखनऊ वाले रविवार की सुबह जब सो के उठे तो उन्हें मालूम चला कि उनका अपना प्यारा लखनऊ तो इटली का वेनिस हो गया है। पानी की लहरों पर उतराने वाला शहर, देखिए ना ये बच्चे जिस गली से गुजर रही है वहाँ घुटने तक पानी। अब सड़क का हाल देखिए, सड़क को सड़क नहीं समंदर कहिए, यहाँ डूब डूब आइए डूब डूब जाइए। इन भाई साहब की बाइक बंद पड़ गई, अब पानी में ये इसे खींचते हुए बढ़े जा रहे हैं। अब एक नजर इन तस्वीरों पर डाल लीजिए, इतनी बरसात हुई है कि ये घर लबालब है, घर में पानी भर गया है, घर के सामान पानी में उतरा रहे हैं। कुछ घंटों की बरसात ने लखनऊ को पानी पानी कर दिया, अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात कैसे बने।

0: आप प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, यहाँ गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। देखिए घाटों तक पानी चढ़ाया है, पंडा पुरोहित जहाँ बैठते हैं वहाँ तक गंगा चढ़ाई है।
1: गंगा जी के तो जलस्तर कल से काफी तेज हुआ है, परसों से बढ़ 2-3 दिन से बढ़ी, लेकिन कल जलस्तर लगभग 4 फीट की ऊंचाई में बढ़ा हुआ, आज भी जल तेज से ही है, लगभग 1 फीट जलाया सुबह से। अरे तकलीफ क्या है, तो हर साल का नियम ही है, हम लोग को गंगा जी बारती तो हटाना पड़ेगा सामान, फिर वाल इस बार तो लेट है, नहीं पिछली बार तो हनुमान जी भी नहला चुकी, हम लोग ऊपर थे पिछली बार रोड पर थे इस समय, लेकिन इस बार लेट है, अब तकलीफ तो होता ही है, सर सामान हटाना पड़ता है, अभी वहाँ से ले आए उठा के इधर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे।
2: परसों से गंगा जी काफ़ी तेजी से जो है रफ्तार से बढ़ रही हैं और हमारे पंडा समाज के लोगों का जो है अब वो सामान जाने वाला है ऊपर, किसी गंगा जी का जो ये रूप है और हमारे का दो रोज के अंदर गंगा जी ऊपर भी चली जाएंगे।
0: अब यूपी के ही इटावा की तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर के लिए बरसात क्या हुई, मानो पानी नहीं मुसीबत बरसी है। देखिए सड़कें किस तरह लबालब, इसी तालाब के बीच में लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए ये स्कूली बच्चे पानी के बीच से कैसे निकल रहे हैं।
3: देखिए बरसात का मौसम चल रहा है और हमारी जो लाइन पार की मुख्य समस्या है वो यही है कि पचावली क्षेत्र जो है पूरा जलमग्न हो जाता है। विजयनगर चौराहे से आप अगर पचावली क्षेत्र देखेंगे तो अभी गाड़ियों की दुर्दशा आप देख रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं जा पा रहे, स्कूल ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, कोई दवाई लेने जा पा रहा, कोई अपना काम ही नहीं कर पा रहा है।

0: लेकिन जन प्रतिनिधियों को ये सारी समस्या दिखती है फिर भी वो इसका कोई समाधान नहीं निकालते, ये बड़ी शर्म की बात है।
1: बारिश बहुत कर रहे होने की वजह से यहाँ पे पानी इतना भर चुका है कि टम्पुआ में पूरे ऊपर तक सीटों तक पानी आ रहा है, पानी टम्पुआ के भीतर तक आ रहा है। और समय जी मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पैरों तक ऊपर पानी आता है।
2: ये पानी पुल में भर गया है।
3: अच्छा, कितना पानी भरा होगा लगभग?
2: कम से कम ये समझो सर इतना इतना है,
3: 4 फुट,
2: 4 से 5 फुट है पानी।
3: तो ये रास्ता बंद कराया गया है क्या?
2: हाँ कराया है।
3: क्या दिक्कत क्या उसकी?
2: ये बांध फंस जाते हैं, बांध फंसते हैं, पब्लिक को परेशानी होती है, जाते हैं तो गाड़ी बंद हो होने लगती है, तो वो चक्कर से सुरक्षा के चक्कर से हम लोग खड़े हैं।
4: अब हरियाणा के अम्बाला की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी थोड़ी देर की बरसात ने तबाही मचा दी। सड़कें पूरी तरह से लबालब हैं, जहाँ रास्ते थे वहाँ सिर्फ पानी नजर आ रहा है। इतना पानी भरा हुआ है कि आना जाना मुश्किल है। देखिए सड़कों पर जलधारा है और इसी के बीच से लोग गुजर रहे हैं। आज तक ब्यूरो
5: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम विवाद पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप की माफी नहीं। बीजेपी ने चौतरफा घेराबंदी की, बंकिम चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बयान पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम रमेश ने भी किया हमला तो बीजेपी का जवाबी हमला। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। रांची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास, घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाज शास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला, कांग्रेस ने एनटीए को घेरा। एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था, चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
0: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई
0: नहीं था। कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
3: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रोका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंतर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
4: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
0: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसने देश की सियासत को गर्मा दिया है। विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया और इसे लेकर बीजेपी विपक्ष के बीच में अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं।
5: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
6: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
7: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है। ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
6: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
8: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद करते।
9: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
6: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
10: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवर ग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन ये जो दिमागी नक्सल, ये अर्बन नक्सल्स हैं।
11: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
6: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिमागी नक्सल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है।
12: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। ये वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार में जनता उबती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में खड़ा खड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में। इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
0: रांची में छात्रों का आंदोलन जारी और आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगे मानी नहीं गई तो वो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अब की बार उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी मांगा है, साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर भी वो अड़ गए हैं।
13: तेईस दिन से इसी तरह बैठे हैं छात्र, इसी तरह कर रहे हैं अनशन और इसी तरह झारखंड सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और 13 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल, लेकिन अब छात्रों की दशा बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक जी सकेंगे।
14: धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है, मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज्यादा जी पाएंगे। स्थिति बहुत ही गंभीर है।
13: छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता छात्र मरे या बचे।
14: बुखार भी आ रही, सरकार को कोई चिंता नहीं। यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो को ले गए फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मनसा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे।
13: प्रेम नायक अकेले नहीं है जिनकी स्थिति बिगड़ गई है। छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल की भी स्थिति नाजुक है। तीनों का इलाज रांची सदर अस्पताल के एचडीयू में चल रहा है। इसी अस्पताल में एक दिन पहले हंगामा हुआ था। ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
15: झंडा फहराने से रोका जा रहा है, ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है।
13: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
16: तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
13: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने के नाम पर सिर्फ पानी। लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करे और सीबीआई जांच की मांग को माने, वरना 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। कहीं सड़कें दरिया बन गए हैं, कहीं पर नदियां किनारों को काटकर बह रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें चटक रही हैं, लोग मुश्किल में हैं।
13: कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टानें चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिंडी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये। ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं। जब रविवार को ये पहाड़ दरका ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सावरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसे चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी THGC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था। 12 लोग घायल थे।
1: तो पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफ़ी वहाँ पर दबी हुई है। जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी उनको सफाई करेगी तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी उसमें।
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, बशर्ते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है, पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय दो ही दलदल हो रही है। पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा, फंस जा रहा है उसमें। तो इसमें होगा तो जल्द से जल्द उस चीजों को जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविकेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए। ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: एक तरफ जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो दूसरी ओर मूसलाधार बरसात और बेहिसाब बाढ़ की वजह से पुल जमींदोज हो रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तेज जल धारा ने पुलों को ध्वस्त कर दिया है। क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, पुलों के ध्वस्त होने का जो सिलसिला है जारी है।
4: पुल ढह गया। लोग देख रहे थे इस पुल को ढहने को, लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें यकीन था ये पुल अब गिरा कि तब गिरा। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा के ठासरा की है। यहाँ दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बना हुआ था, मगर जोरदार बरसात और नदी की जलधारा ने इस पुल की नींव को धरका दिया और देखते ही देखते ये पुल ढह गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अलबत्ता पुल के ढहने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बारा में जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बना ये हाई लेवल ब्रिज भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तहार है। अभी डेढ़ महीने पहले ही 28 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पार्वती की लहरों ने ऐसे हिलोरे मारी कि पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। ये शुक्र था कि जिस वक्त ये पुल ढहा इस पर कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें देखिए, ऐसी दरारें जैसे जमीन फट गई हो। अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
5: अभी ये पुलिया में जो बनी है नई, तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत उस साइड में भी हो रही है, वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रोड बंद करे और दोनों साइड होगा पक्का काम करे।
6: उनके महीने में लास्ट जून में उद्घाटन हुआ था इसका, और 17 अगस्त है अभी, वहाँ से ढह चुकी है पुलिया। इधर साइडों में भी दो जगह मतलब जुड़ा हुआ है साइडों में दो ही तरफ, तो इसका ढसने की संभावना है इसकी भी।
7: तो आपका कहना है कि ये भी गिर सकती है?
6: हाँ, ये भी गिर सकती है।
8: ये और भी जब जर्जर हो रही है, ये भी की 2-2 इंच टूट चुकी है।
7: अच्छा,
6: साइडों में झुका,
8: साइडों में झुका हुआ है।
4: पुल के शुरू होने से अटरू और बारा से मध्य प्रदेश की सीमा तक आने जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी, लेकिन अब ये पुल धंस चुका है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ नदी पर बना ये पुल बह गया। हैरानी इस बात की है कि इस पुल का निर्माण 10 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन ये 10 बरसात भी नहीं झेल सका। निर्माण के बाद से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पुल पर जहाँ तहाँ दरारें दिखाई दे रही थी। 2 दिन पहले बरसात हुई और सुबह जब लोगों की आंखें खुली और नदी की ओर गए तो पुल बह चुका था। ये नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए। जिस पुल से होकर दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही होती थी, वो देखते ही देखते पानी की तेज धारा में गायब हो चुका था। कहीं पिलर उखड़े पड़े थे, कहीं स्लैब पानी में समा गई थी और पुल का लंबा हिस्सा नदी की धार में बह चुका था। अब लोग निर्माण एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण पुल पहले से ही कमजोर हो चुका था। वाहनों की आवाजाही के साथ पुल के अलग अलग हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी थी और समय के साथ इसकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति बन रही है और अलग अलग शहरों से पुल के ढहने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या हुर्मुज को सच में अमेरिका का हिस्सा बनाने के अभियान पर डोनाल्ड ट्रंप निकल गए हैं, या फिर ये किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और उसी के तहत बयान दिया गया है? बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन उनके इस बयान के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में तल्खियां बढ़ गई हैं। हुर्मुज के समंदर में हर दूसरे दिन हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब इस बयान ने चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया है।
9: सामने आया ट्रंप का सबसे विनाशकारी ऐलान। समंदर में मचने वाला है भयंकर कोहराम। अमेरिका का हिस्सा बनने वाला है हुर्मुज। अब ट्रंप की निगहबानी में चलेगा हुर्मुज। हुर्मुज के समंदर की इन लहरों की शांति तूफान से ठीक पहले की है, क्योंकि ट्रंप ने जो ऐलान कर दिया है उससे न सिर्फ ईरान को बुरी तरह चिढ़ा दिया है, बल्कि सीज फायर पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आपको सुना देते हैं ट्रंप का वो बयान जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है।
10: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait, a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
9: सुना आपने, ट्रंप जल्द ही हुर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान करने वाले हैं। कुछ लोग ट्रंप के इस विनाशकारी बयान को उनके बड़बोलेपन से जोड़कर देख रहे हैं, तो कईयों को इसमें सीज फायर के खात्मे और भयंकर युद्ध फिर से शुरू होने के संकेत दिख रहे हैं। ट्रंप ने इसके साथ ही अपने लोगों से महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार रहने की अपील भी की है, यानी ट्रंप को भी कहीं न कहीं युद्ध के अभी से लंबा खींचने की आशंका लग रही है। ट्रंप इस महंगाई को सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
10: So I just say this. So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not I'll never apologize. I did the right thing. You just have to remember that what we're doing is a great service for the world, not only for ourselves, for the world. And we're really doing a great job.
9: इस बीच ट्रंप के हॉर्मुज वाले बयान को लेकर ईरान ने सख्त तेवर अपना लिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री कंजेम घरीबाबादी ने ट्रंप के इस बयान की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान की हार के बाद वो जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका के हिस्से के रूप में घोषित कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्वीट से सीज नहीं किया जा सकता, ना ही एयरक्राफ्ट करियर से, ना ही एक आदेश जारी करके और ना ही किसी चुनावी भाषण के जरिए। कहने को दोनों देशों के बीच इस वक्त सीज फायर चल रहा है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। अब तो ईरान के विदेश मंत्रालय ने हॉर्मुज में तनाव बढ़ाने का सारा ठीकरा अमेरिका के सिर ही फोड़ दिया है।
11: وضعیت ناامنی در تنگه هرمز منحصرا نتیجه اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح بین المللی خیلی وقتها به نحوی موضوع رو مطرح میکنن، القا میکنن که گویا این ایران هست که باعث ناامنی در تنگه هرمز شده. همه ما میدونیم که تنگه هرمز تا قبل از 9 اسفند 404 هیچ مشکلی نداشت، باز بود. سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از این آبراه برای حمله به ایران.
9: इस बीच हूती के जबरदस्त हमले में यमन से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। धू धू कर जल रहे जहाज, टूटे हुए उपकरण, धुआं धुआं हो रहे पूरे परिसर की ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि ईरान ने हूतियों के जरिए कितनी भारी तबाही मचाई है। हूती ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें सरकारी पोर्ट पर दागी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। आज तक ब्यूरो
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम विवाद पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप की माफी नहीं। बीजेपी ने चौतरफा घेराबंदी की, बंकिम चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बैन पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम रमेश ने भी किया हमला तो बीजेपी का जवाबी हमला। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। रांची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास, घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाज शास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला, कांग्रेस ने एनटीए को घेरा। एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था, चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
0: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद सवाल नहीं होता, कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस
3: में कोई नहीं था।
0: कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
4: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंतर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
5: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
6: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
0: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसने देश की सियासत को गर्मा दिया है। विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया और इसे लेकर बीजेपी विपक्ष के बीच में अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं।
7: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
8: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
9: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है। ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
8: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
10: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद करते हैं।
11: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
8: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
12: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन ये जो दिमागी नक्सल, ये अर्बन नक्सल्स हैं।
13: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
8: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिमागी नक्सल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है।
14: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। ये वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार से जनता उबती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में कड़ा कड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में, इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
0: रांची में छात्रों का आंदोलन जारी और आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगे मानी नहीं गई तो वो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अब की बार उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी मांगा है, साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर भी वो अड़ गए हैं।
15: तेईस दिन से इसी तरह बैठे हैं छात्र, इसी तरह कर रहे हैं अनशन और इसी तरह झारखंड सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और 13 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल, लेकिन अब छात्रों की दशा बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक जी सकेंगे।
16: धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है, मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज्यादा जी पाएंगे। स्थिति बहुत ही गंभीर है।
15: छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता छात्र मरे या बचे।
16: बुखार भी आ रही, सरकार को कोई चिंता नहीं। यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो को ले गए फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मनसा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे।
15: प्रेम नायक अकेले नहीं है जिनकी स्थिति बिगड़ गई है। छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल की भी स्थिति नाजुक है। तीनों का इलाज रांची सदर अस्पताल के एचडीयू में चल रहा है। इसी अस्पताल में एक दिन पहले हंगामा हुआ था। ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
17: झंडा फहराने से रोका जा रहा
18: है,
17: ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है।
15: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
19: तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
15: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने के नाम पर सिर्फ पानी। लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करे और सीबीआई जांच की मांग को माने, वरना 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध समेत कई किसानी मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व एक बार फिर से आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया है। अब किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया, मगर रास्ते में बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं।
6: ये हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर है। देखिए इस बॉर्डर को किस तरह से बंद किया गया है। बॉर्डर को 5 लेयर में सील किया गया है, बैरिकेडिंग की गई, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, वाटर कैनन वाली गाड़ियां खड़ी की गई, कंटेनर खड़े किए गए, कंटीली तार लगाई गई। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में आज से किसान बचाओ यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में शुरू हुई है। किसानों की ये यात्रा दाता सिंह वाला से शुरू हुई है और 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचना चाह रही है, लेकिन किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट, सीमाओं पर अवरोधक लगा दिए गए। देखना होगा कि प्रशासन किसानों को रोक पाता है या नहीं। सुनील कुमार, जींद आज तक।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। कहीं सड़कें दरिया बन गए हैं, कहीं पर नदियां किनारों को काटकर बह रही हैं, लेकिन बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टाने चटक रहे हैं, लोग मुश्किल में।
15: खुद
18: कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टाने चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिंडी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं। जब रविवार को ये पहाड़ दरका ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सावरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसी चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी THGC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था। 12 लोग घायल थे।
1: पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं, थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी भी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफी वहाँ पर दबी हुई है। जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी उनको सफाई करेगी तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी। उसमें
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, बशर्ते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है, पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय 2 ही दलदल हो रही है। पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा, फंस जा रहा है उसमें, तो इसमें होगा तो जल्द से जल्द उस चीजों को जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविकेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए। ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: एक तरफ जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो दूसरी ओर मूसलाधार बरसात और बेहिसाब बाढ़ की वजह से पुल जमींदोज हो रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तेज जल धारा ने पुलों को ध्वस्त कर दिया है। क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, पुलों के ध्वस्त होने का जो सिलसिला है जारी है।
0: में ये पुल ठह गया। लोग देख रहे थे इस पुल को ठहरने को, लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें यकीन था ये पुल अब गिरा कि तब गिरा। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा के ठासरा की है। यहाँ दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बना हुआ था, मगर जोरदार बरसात और नदी की जलधारा ने इस पुल की नींव को धरका दिया और देखते ही देखते ये पुल ढह गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अलबत्ता पुल के ढहने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बारा में जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बना ये हाई लेवल ब्रिज भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तहार है। अभी डेढ़ महीने पहले ही 28 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पार्वती की लहरों ने ऐसे हिलोरे मारी कि पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। ये शुक्र था कि जिस वक्त ये पुल ढहा इस पर कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें देखिए, ऐसी दरारें जैसे जमीन फट गई हो। अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
4: अभी ये पुलिया में जो बनी है नई, तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत उस साइड में भी हो रही है, वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रोड बंद करे और दोनों साइड होगा पक्का काम करे।
5: उनके महीने में लास्ट जून में उद्घाटन हुआ था इसका, और 17 अगस्त है अभी, वहाँ से ढह चुकी है पुलिया। इधर साइडों में भी दो जगह जुड़ा हुआ है साइडों में दो तरफ, तो इसका ढसने की संभावना है इसकी भी।
6: तो आपका कहना है कि ये भी गिर सकती है?
5: ये भी गिर सकती है।
7: ये और भी जब जर्जर हो रही है, ये भी क्योंकि 2-2 इंच टूट चुकी है।
6: अच्छा,
5: साइडों में झुका,
7: साइडों में झुका हुआ है।
0: पुल के शुरू होने से अटरू और बारा से मध्य प्रदेश की सीमा तक आने जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी, लेकिन अब ये पुल धंस चुका है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ नदी पर बना ये पुल बह गया। हैरानी इस बात की है कि इस पुल का निर्माण 10 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन ये 10 बरसात भी नहीं झेल सका। निर्माण के बाद से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पुल पर जहाँ तहाँ दरारें दिखाई दे रही थी। 2 दिन पहले बरसात हुई और सुबह जब लोगों की आँखें खुली और नदी की ओर गए तो पुल बह चुका था। ये नजारा

0: कहीं पिलर उखड़े पड़े थे, कहीं स्लैब पानी में समा गई थी और पुल का लंबा हिस्सा नदी की धार में बह चुका था। अब लोग निर्माण एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण पुल पहले से ही कमजोर हो चुका था। वाहनों की आवाजाही के साथ पुल के अलग अलग हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी थी और समय के साथ इसकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति बन रही है और अलग अलग शहरों से पुल के ढहने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो।
1: मैदानी इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ घंटों की बरसात ने शहरों में सैलाब ला दिया है। चाहे यूपी की राजधानी लखनऊ हो, जहां सुबह चंद घंटों की बारिश हुई और उसमें पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया। बिल्कुल यही हाल इटावा का भी रहा, जहां जरा सी बारिश के बाद सड़कों पर बेहिसाब पानी भर गया।

तलैया झरना सागर दरिया दरिया लखनऊ। हाँ जी, यकीन कीजिए यह आपका अपना अदब का शहर है लखनऊ। लखनऊ वाले रविवार की सुबह जब सो के उठे तो उन्हें मालूम चला कि उनका अपना प्यारा लखनऊ तो इटली का वेनिस हो गया है। पानी की लहरों पर उतराने वाला शहर, देखिए ना, ये बच्चे जिस गली से गुजर रही है वहाँ घुटने तक पानी है। अब सड़क का हाल देखिए, सड़क को सड़क नहीं समंदर कहिए, यहाँ डूब डूब आइए डूब डूब जाइए। इन भाई साहब की बाइक बंद पड़ गई, अब पानी में जैसे खींचते हुए बढ़े जा रहे हैं। अब एक नजर इन तस्वीरों पर डाल लीजिए, इतनी बरसात हुई है कि ये घर लबालब है, घर में पानी भर गया है, घर के सामान पानी में उतरा रहे हैं। कुछ घंटों की बरसात ने लखनऊ को पानी पानी कर दिया। अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात कैसे बने।

0: आप प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, यहाँ गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। देखिए घाटों तक पानी चढ़ाया है, पंडा पुरोहित जहाँ बैठते हैं वहाँ तक गंगा चढ़ाई है।
1: गंगा जी के तो जलस्तर कल से काफी तेज हुआ है, परसों से बढ़ दो तीन दिन से बढ़ी ले, कल जलस्तर लगभग 4 फीट की ऊंचाई में बढ़ा हुआ, आज भी जल तेज से ही है, लगभग 1 फीट जलाया सुबह से। अरे तकलीफ क्या है, तो हर साल का नियम ही है, हम लोग को गंगा जी बारती तो हटाना पड़ेगा सामान, फिर वाल इस बार तो लेट है, नहीं पिछली बार तो हनुमान जी को भी नहला चुकी, हम लोग ऊपर थे पिछली बार रोड पर थे इस समय, लेकिन इस बार लेट है, अब तकलीफ तो होता ही है, सर सामान हटाना पड़ता है, अभी वहाँ से ले आए उठा के इधर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे।
2: परसों से गंगा जी काफ़ी तेजी से जो है रफ्तार से बढ़ रही हैं और हमारे पंडा समाज के लोगों का जो है अब वो सामान जाने वाला ऊपर किसी गंगा जी का जो ये रूप है और हमारे का दो रोज के अंदर गंगा जी ऊपर भी चली जाएंगे।
0: अब यूपी के ही इटावा की तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर के लिए बरसात क्या हुई, मानो पानी नहीं मुसीबत बरसी है, देखिए सड़कें किस तरह लबालब। इसी तालाब के बीच में लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं, देखिए ये स्कूली बच्चे पानी के बीच से कैसे निकल रहे हैं।
3: देखिए बरसात का मौसम चल रहा है और हमारी जो लाइन पार की मुख्य समस्या है वो यही है कि पचावली क्षेत्र जो है पूरा जल नहीं जा पाते हैं, कोई दवाई लेने जा पा रहा, कोई अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को ये सारी समस्या दिखती है फिर भी वो इसका कोई समाधान नहीं निकालते, ये बड़ी शर्म की बात है।
4: बारिश बहुत कर रहे होने की वजह से यहाँ पे पानी उतना भर चुका है कि टम्पुआ में पूरे ऊपर तक सीटों तक पानी आ रहा है, पानी टम्पुआ के भीतर तक आ रहा है, और समय जी मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पैरों तक ऊपर पानी आता है।
5: ये पानी पुल में भर गया है।

0: अच्छा, कितना पानी भरा होगा लगभग?
1: कम से कम ये समझो सर इतना इतना है,
0: 4 फुट,
1: 4 से 5 फुट है पानी।
0: तो ये रास्ता बंद कराया गया है क्या?
1: हाँ कराया है।
0: क्या दिक्कत क्या उसकी?
1: ये बांध फंस जाते हैं, बांध फंसते हैं, पब्लिक को परेशानी होती है, जाते हैं तो गाड़ी बंद हो होने लगती है, तो बूथ चक्कर से, सुरक्षा के चक्कर से हम लोग खड़े हैं।
2: अब हरियाणा के अम्बाला की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी थोड़ी देर की बरसात ने तबाही मचा दी। सड़कें पूरी तरह से लबालब हैं, जहाँ रास्ते थे वहाँ सिर्फ पानी नजर आ रहा है। इतना पानी भरा हुआ है कि आना जाना मुश्किल है। देखिए सड़कों पर जलधारा है और इसी के बीच से लोग गुजर रहे हैं। आज तक ब्यूरो
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम विवाद पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप की माफी नहीं। बीजेपी ने चौतरफा घेराबंदी की, बंकिम चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बयान पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम रमेश ने भी किया हमला तो बीजेपी का जवाबी हमला। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। रांची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास, घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाज शास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला, कांग्रेस ने एनटीए को घेरा। एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था, चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
0: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस कोई
0: नहीं था। कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
3: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रोका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंतर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
4: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
0: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसने देश की सियासत को गर्मा दिया है। विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया और इसे लेकर बीजेपी विपक्ष के बीच में अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं।
5: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
6: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
7: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है। ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
6: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
8: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद करते।
9: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
6: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था। अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
10: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन ये जो दिमागी नक्सल, ये अर्बन नक्सल्स हैं।
11: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
6: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिमागी नक्सल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है।
12: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। ये वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार में जनता उबती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में कड़ा कड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में। इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
0: रांची में छात्रों का आंदोलन जारी और आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगे मानी नहीं गई तो वो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अब की बार उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी मांगा है, साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर भी वो अड़ गए हैं।
13: तेईस दिन से इसी तरह बैठे हैं छात्र, इसी तरह कर रहे हैं अनशन और इसी तरह झारखंड सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और 13 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल, लेकिन अब छात्रों की दशा बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक जी सकेंगे।
14: धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है, मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज्यादा जी पाएंगे, स्थिति बहुत ही गंभीर है।
13: छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता छात्र मरे या बचे।
14: बुखार भी आ रही, सरकार को कोई चिंता नहीं, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर मैं नहीं, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो को ले गए फिर आने नहीं दे रहे। ये लोग का मनसा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे।
13: प्रेम नायक अकेले नहीं है जिनकी स्थिति बिगड़ गई है, छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल की भी स्थिति नाजुक है। तीनों का इलाज रांची सदर अस्पताल के एचडीयू में चल रहा है। इसी अस्पताल में एक दिन पहले हंगामा हुआ था, ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
15: झंडा फहराने से रोका जा रहा
16: है,
15: ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है।
13: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
17: तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
13: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने के नाम पर सिर्फ पानी, लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करे और सीबीआई जांच की मांग को माने, वरना 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है, कहीं सड़कें दरिया बन गए हैं, कहीं पर नदियां किनारों को काटकर बह रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें चटक रही हैं, लोग मुश्किल में हैं।
13: कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टानें चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा, जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिंदी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये। ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं। जब रविवार को ये पहाड़ दरका ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सावरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसे चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी TSGC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था। 12 लोग घायल थे।
1: तो पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहां पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं। थोड़ी परेशानी हो रही है लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी भी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफ़ी वहाँ पर दबी हुई है। जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी उनको सफाई करेगी तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी उसमें।
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, बशर्ते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है, पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय दो ही दलदल हो रही है। पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा, फंस जा रहा है उसमें। तो इसमें होगा तो जल्द से जल्द उस चीजों को जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविकेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए। ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: एक तरफ जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो दूसरी ओर मूसलाधार बरसात और बेहिसाब बाढ़ की वजह से पुल जमींदोज हो रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तेज जल धारा ने पुलों को ध्वस्त कर दिया है। क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, पुलों के ध्वस्त होने का जो सिलसिला है जारी है।
0: hey! देखते ये पुल ढह गया। लोग देख रहे थे इस पुल को ढहने को, लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें यकीन था ये पुल अब गिरा कि तब गिरा। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा के ठासरा की है। यहाँ दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बना हुआ था, मगर जोरदार बरसात और नदी की जलधारा ने इस पुल की नींव को धरखा दिया और देखते ही देखते ये पुल ढह गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अलबत्ता पुल के ढहने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बारा में जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बना ये हाई लेवल ब्रिज भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तहार है। अभी डेढ़ महीने पहले ही 28 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पार्वती की लहरों ने ऐसे हिलोरे मारी कि पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। ये शुक्र था कि जिस वक्त ये पुल ढहा इस पर कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें देखिए, ऐसी दरारें जैसे जमीन फट गई हो। अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
4: अभी ये पुलिया जो बनी है नई, तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत उस साइड में भी हो रही है, वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये रोड बंद करे और दोनों साइड होगा पक्का काम करे।
5: उनके महीने में लास्ट जून में उद्घाटन हुआ था इसका, और अभी 17 अगस्त है, अभी वहाँ से ढह चुकी है पुलिया। इधर साइडों में भी दो जगह जुड़ा हुआ है साइडों में दो तरफ, तो इसका ढसने की संभावना है इसकी भी।
6: तो आपका कहना है कि ये भी गिर सकती है?
5: हाँ, ये भी गिर सकती है।
7: ये और भी जब जर्जर हो रही है, ये भी की 2-2 इंच छूट चुकी है।
6: अच्छा,
5: साइडों में झुका,
7: साइडों में झुका हुआ है।
0: पुल के शुरू होने से अटरू और बारा से मध्य प्रदेश की सीमा तक आने जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी, लेकिन अब ये पुल धंस चुका है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ नदी पर बना ये पुल बह गया। हैरानी इस बात की है कि इस पुल का निर्माण 10 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन ये 10 बरसात भी नहीं झेल सका। निर्माण के बाद से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पुल पर जहाँ तहाँ दरारें दिखाई दे रही थी। 2 दिन पहले बरसात हुई और सुबह जब लोगों की आंखें खुली और नदी की ओर गए तो पुल बह चुका था। ये नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए। जिस पुल से होकर दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही होती थी, वो देखते ही देखते पानी की तेज धारा में गायब हो चुका था। कहीं पिलर उखड़े पड़े थे, कहीं स्लैब पानी में समा गई थी और पुल का लंबा हिस्सा नदी की धार में बह चुका था। अब लोग निर्माण एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण पुल पहले से ही कमजोर हो चुका था। वाहनों की आवाजाही के साथ पुल के अलग अलग हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी थी और समय के साथ इसकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति बन रही है और अलग अलग शहरों से पुल के ढहने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या हुर्मुज को सच में अमेरिका का हिस्सा बनाने के अभियान पर डोनाल्ड ट्रंप निकल गए हैं, या फिर ये किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और उसी के तहत बयान दिया गया है? बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन उनके इस बयान के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में तल्खियां बढ़ गई हैं। हुर्मुज के समंदर में हर दूसरे दिन हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब इस बयान ने चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया है।

0: मरीला।
1: सामने आया ट्रंप का सबसे विनाशकारी ऐलान, समंदर में मचने वाला है भयंकर कोहराम, अमेरिका का हिस्सा बनने वाला है हॉर्मुज, अब ट्रंप की निगहबानी में चलेगा हॉर्मुज। हॉर्मुज के समंदर की इन लहरों की शांति तूफान से ठीक पहले की है, क्योंकि ट्रंप ने जो ऐलान कर दिया है उससे न सिर्फ ईरान को बुरी तरह चिढ़ा दिया है बल्कि सीज फायर पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आपको सुना देते हैं ट्रंप का वो बयान जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है।
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
1: सुना आपने, ट्रंप जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान करने वाले हैं। कुछ लोग ट्रंप के इस विनाशकारी बयान को उनके बड़बोलेपन से जोड़कर देख रहे हैं, तो कईयों को इसमें सीज फायर के खात्मे और भयंकर युद्ध फिर से शुरू होने के संकेत दिख रहे हैं। ट्रंप ने इसके साथ ही अपने लोगों से महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार रहने की अपील भी की है, यानी ट्रंप को भी कहीं न कहीं युद्ध के अभी से लंबा खींचने की आशंका लग रही है। ट्रंप इस महंगाई को सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
2: For you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing. You just have to remember that what we're doing is a great service for the world, not only for ourselves, for the world. And we're really doing a great job.
1: इस बीच ट्रंप के हॉर्मुज वाले बयान को लेकर ईरान ने सख्त तेवर अपना लिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री कंजेम घरीबाबादी ने ट्रंप के इस बयान की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान की हार के बाद वो जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका के हिस्से के रूप में घोषित कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्वीट से सीज नहीं किया जा सकता, ना ही एयरक्राफ्ट करियर से, ना ही एक आदेश जारी करके और ना ही किसी चुनावी भाषण के जरिए। कहने को दोनों देशों के बीच इस वक्त सीज फायर चल रहा है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। अब तो ईरान के विदेश मंत्रालय ने हॉर्मुज में तनाव बढ़ाने का सारा ठीकरा अमेरिका के सिर ही फोड़ दिया है।
3: وضعیت ناامنی در تنگه هرمز منحصرا نتیجه اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح بین المللی خیلی وقتها به نحوی موضوع رو مطرح میکنن، القا میکنن که گویا این ایران هست که باعث ناامنی در تنگه هرمز شده. همه ما میدونیم که تنگه هرمز تا قبل از 9 اسفند 404 هیچ مشکلی نداشت، باز بود. سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از این آبراه برای حمله به ایران.
1: इस बीच हूती के जबरदस्त हमले में यमन से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। धू धू कर जल रहे जहाज, टूटे हुए उपकरण, धुआं धुआं हो रहे पूरे परिसर की ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि ईरान ने हूतियों के जरिए कितनी भारी तबाही मचाई है। हूती ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें सरकारी पोर्ट पर दागी जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। आज तक ब्यूरो
4: रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम विवाद पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप की माफी नहीं। बीजेपी ने चौतरफा घेराबंदी की, बंकिम चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बैन पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम रमेश ने भी किया हमला तो बीजेपी का जवाबी हमला। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। रांची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास, घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाज शास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला, कांग्रेस ने एनटीए को घेरा। एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था, चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
0: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस
3: में कोई नहीं था।
0: कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
4: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंतर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
5: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
0: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसने देश की सियासत को गर्मा दिया है। विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया और इसे लेकर बीजेपी विपक्ष के बीच में अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं।
6: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
7: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
8: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है। ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
7: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
9: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद करते हैं।
10: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
7: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
11: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन ये जो दिमागी नक्सल, ये अर्बन नक्सल्स हैं।
12: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
7: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिमागी नक्सल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है।
13: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। ये वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार से जनता उबती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में कड़ा कड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में। इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
0: रांची में छात्रों का आंदोलन जारी और आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगे मानी नहीं गई तो वो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अब की बार उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी मांगा है, साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर भी वो अड़ गए हैं।
14: तेईस दिन से इसी तरह बैठे हैं छात्र, इसी तरह कर रहे हैं अनशन और इसी तरह झारखंड सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और 13 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल, लेकिन अब छात्रों की दशा बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक जी सकेंगे।
15: धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है, सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान, अब नहीं लगता है कि हम ज्यादा जी पाएंगे, स्थिति बहुत ही गंभीर है।
14: छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता छात्र मरें या बचें।
15: बुखार भी आ रही, सरकार को कोई चिंता नहीं, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो को ले गए फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मनसा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे।
14: प्रेम नायक अकेले नहीं है जिनकी स्थिति बिगड़ गई है, छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल की भी स्थिति नाजुक है। तीनों का इलाज रांची सदर अस्पताल के एचडीयू में चल रहा है। इसी अस्पताल में एक दिन पहले हंगामा हुआ था, ये तस्वीरें 15 अगस्त की है। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
16: झंडा फहराने से रोका जा रहा है, ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को, आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है।
14: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
17: तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
14: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने के नाम पर सिर्फ पानी, लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करे और सीबीआई जांच की मांग को माने, वरना 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध समेत कई किसानी मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व एक बार फिर से आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया है। अब किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया, मगर रास्ते में बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं।
18: ये हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर है, देखिए इस बॉर्डर को किस तरह से बंद किया गया है। बॉर्डर को 5 लेयर में सील किया गया है, बैरिकेडिंग की गई, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, वाटर कैनन वाली गाड़ियां खड़ी की गई, कंटेनर खड़े किए गए, कंटीली तार लगाई गई। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में आज से किसान बचाओ यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में शुरू हुई है। किसानों की ये यात्रा दाता सिंह वाला से शुरू हुई है और 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचना चाह रही है, लेकिन किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट, सीमाओं पर अवरोधक लगा दिए गए। देखना होगा कि प्रशासन किसानों को रोक पाता है या नहीं। सुनील कुमार, जींद आज तक।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है, कहीं सड़कें दरिया बन गए हैं, कहीं पर नदियां किनारों को काटकर बह रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टाने चटक रहे हैं, लोग मुश्किल में।
19: कुदरत जब कहर भर पाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टाने चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिंडी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं। जब रविवार को ये पहाड़ दरका ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सावरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसी चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी PHGC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था। 12 लोग घायल थे।
1: पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी भी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफी वहाँ पर दबी हुई है। जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी उनको सफाई करेगी तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी। उसमें
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, बशर्ते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है, पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय दो ही दलदल हो रही है। पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी, क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा, फंस जा रहा है उसमें, तो इसमें होगा तो जल्द से जल्द उस चीजों को जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविकेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए। ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: एक तरफ जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो दूसरी ओर मूसलाधार बरसात और बेहिसाब बाढ़ की वजह से पुल जमींदोज हो रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तेज जल धारा ने पुलों को ध्वस्त कर दिया है। क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, पुलों के ध्वस्त होने का जो सिलसिला है जारी है।
0: देखते ये पुल ठह गया। लोग देख रहे थे इस पुल को ठहरने को, लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें यकीन था ये पुल अब गिरा कि तब गिरा। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा के ठासरा की है। यहाँ दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बना हुआ था, मगर जोरदार बरसात और नदी की जलधारा ने इस पुल की नींव को धरका दिया और देखते ही देखते ये पुल ढह गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अलबत्ता पुल के ढहने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बारा में जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बना ये हाई लेवल ब्रिज भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तहार है। अभी डेढ़ महीने पहले ही 28 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पार्वती की लहरों ने ऐसे हिलोरे मारी कि पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। ये शुक्र था कि जिस वक्त ये पुल ढहा इस पर कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें देखिए, ऐसी दरारें जैसे जमीन फट गई हो। अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
4: अभी ये पुलिया में जो बनी है नई, तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत उस साइड में भी, और ये वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रोड बंद करें और दोनों साइड होगा पक्का काम करें।
5: उनके महीने में लास्ट जून में उद्घाटन हुआ 10 का, और 17 अगस्त है अभी, वहाँ से बिखर चुकी है पुलिया। इधर साइडों में भी दो जगह जुड़ा हुआ है साइडों में दो तरफ, तो इसका ढसने की संभावना है इसकी भी।
6: तो आपका कहना है कि ये भी गिर सकती है?
5: ये भी गिर सकती है,
7: ये और भी जब जर्जर हो रही है, ये भी क्योंकि 2-2 इंच सूख चुकी है।
6: अच्छा,
5: साइडों में झुका
7: है।
0: पुल के शुरू होने से अटरू और बारा से मध्य प्रदेश की सीमा तक आने जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी, लेकिन अब ये पुल धंस चुका है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ नदी पर बना ये पुल बह गया। हैरानी इस बात की है कि इस पुल का निर्माण 10 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन ये 10 बरसात भी नहीं झेल सका। निर्माण के बाद से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पुल पर जहाँ तहाँ दरारें दिखाई दे रही थी। 2 दिन पहले बरसात हुई और सुबह जब लोगों की आंखें खुली और नदी की ओर गए तो पुल बह चुका था। ये नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए। जिस पुल से होकर दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही होती थी, वो देखते ही देखते पानी की तेज धारा में गायब हो चुका था। कहीं पिलर उखड़े पड़े थे, कहीं स्लैब पानी में समा गई थी और पुल का लंबा हिस्सा नदी की धार में बह चुका था। अब लोग निर्माण एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण

0: दिखाई देने लगी थी और समय के साथ इसकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति बन रही है और अलग अलग शहरों से पुल के ढहने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज तक ब्यूरो।
1: मैदानी इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ घंटों की बरसात ने शहरों में सैलाब ला दिया है। चाहे यूपी की राजधानी लखनऊ हो, जहां सुबह चंद घंटों की बारिश हुई और उसमें पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया। बिल्कुल यही हाल इटावा का भी रहा, जहां जरा सी बारिश के बाद सड़कों पर बेहिसाब पानी भर गया।

तलैया झरना सागर दरिया दरिया लखनऊ। हाँ जी, यकीन कीजिए यह आपका अपना अदब का शहर है लखनऊ। लखनऊ वाले रविवार की सुबह जब सो के उठे तो उन्हें मालूम चला कि उनका अपना प्यारा लखनऊ तो इटली का वेनिस हो गया है। पानी की लहरों पर उतराने वाला शहर, देखिए ना ये बच्चे जिस गली से गुजर रही है वहां घुटने तक पानी। अब सड़क का हाल देखिए, सड़क को सड़क नहीं समंदर कहिए, यहाँ डूब डूब आइए डूब डूब जाइए। इन भाई साहब की बाइक बंद पड़ गई, अब पानी में ये इसे खींचते हुए बढ़े जा रहे हैं। अब एक नजर इन तस्वीरों पर डाल लीजिए, इतनी बरसात हुई है कि ये घर लबालब है, घर में पानी भर गया है, घर के सामान पानी में उतरा रहे हैं। कुछ घंटों की बरसात ने लखनऊ को पानी पानी कर दिया, अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात कैसे बने।

0: आप प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, यहाँ गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। देखिए घाटों तक पानी चढ़ाया है, पंडा पुरोहित जहाँ बैठते हैं वहाँ तक गंगा चढ़ाई है।
1: गंगा जी के तो जलस्तर कल से काफी तेज हुआ है, परसों से बढ़ दो तीन दिन से बढ़े, कल जलस्तर लगभग 4 फीट की ऊंचाई में बढ़ा हुआ, आज भी जल तेज से ही है, लगभग 1 फीट जलाया सुबह से। अरे तकलीफ क्या है, तो हर साल का नियम ही है, हम लोग को गंगा जी बारती तो हटाना पड़ेगा सामान, फिर वाल इस बार तो लेट है, नहीं पिछली बार तो हनुमान जी को भी नहला चुकी, हम लोग ऊपर थे पिछली बार रोड पर थे इस समय, लेकिन इस बार लेट है, अब तकलीफ तो होता ही है, सामान हटाना पड़ता है, अभी वहाँ से ले आए उठा के इधर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे।
2: परसों से गंगा जी काफी तेजी से जो है रफ्तार से बढ़ रही हैं, और हमारे पंडा समाज के लोगों का जो है अब वो सामान जाने वाला है ऊपर, किसी गंगा जी का जो ये रूप है, और हमारे का दो रोज के अंदर गंगा जी ऊपर भी चली जाएंगे।
0: अब यूपी के ही इटावा की तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर के लिए बरसात क्या हुई, मानो पानी नहीं मुसीबत बरसी है, देखिए सड़कें किस तरह लबालब। इसी तालाब के बीच में लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं, देखिए ये स्कूली बच्चे पानी के बीच से कैसे निकल रहे हैं।
3: देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, और हमारी जो लाइन पार की मुख्य समस्या है वो यही है कि पचालू क्षेत्र जो है पूरा जलमग्न हो जाता है। विजयनगर चौराहे से आप अगर पचालू क्षेत्र देखेंगे तो अभी गाड़ियों की दुर्दशा आप देख रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं जा पा रहे, स्कूल ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, कोई दवाई लेने जा पा रहा, कोई अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को ये सारी समस्या दिखती है फिर भी वो इसका कोई समाधान नहीं निकालते, ये बड़ी शर्म की बात है।
4: बारिश बहुत कर रहे होने की वजह से यहाँ पे पानी उतना भर चुका है कि टम्पुआ में पूरे ऊपर तक सीटों तक पानी आ रहा है, पानी टम्पुआ के भीतर तक आ रहा है, और समय जी मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पैरों तक ऊपर पानी आता है।
5: ये पानी पुल में भर गया है।
6: अच्छा, कितना पानी भरा होगा लगभग?
5: कम से कम ये समझो सर इतना है,
6: 4 फुट,
5: 4 से 5 फुट है पानी।
6: तो ये रास्ता बंद कराया गया है क्या?
5: हाँ कराया है।
6: क्या दिक्कत क्या उसकी?
5: ये बांध फंस जाते हैं, बांध फंसते हैं, पब्लिक को परेशानी होती है, जाते हैं तो गाड़ी बंद होने लगती है।

0: तो बूथ चक्कर से सुरक्षा के चक्कर से हम लोग खड़े हैं।
1: अब हरियाणा के अंबाला की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी थोड़ी देर की बरसात ने तबाही मचा दी। सड़कें पूरी तरह से लबालब हैं, जहाँ रास्ते थे वहाँ सिर्फ पानी नजर आ रहा है। इतना पानी भरा हुआ है कि आना जाना मुश्किल है। देखिए, सड़कों पर जलधारा है और इसी के बीच से लोग गुजर रहे हैं। आज तक ब्यूरो
2: रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: वंदे मातरम विवाद पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप की माफी नहीं। बीजेपी ने चौतरफा घेराबंदी की, बंकिम चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बैन पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम रमेश ने भी किया हमला तो बीजेपी का जवाबी हमला। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। रांची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास, घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाज शास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला, कांग्रेस ने एनटीए को घेरा। एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था, चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को रोकना, गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
0: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस
3: में कोई नहीं था।
0: कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
4: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंदर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
5: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
0: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हो और उसने देश की सियासत को गर्मा दिया है, विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया और इसे लेकर बीजेपी विपक्ष के बीच में अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं।
6: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
7: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
8: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
7: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
9: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं, ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद करते हैं।
10: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
7: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
11: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन ये जो दिमागी नक्सल ये अर्बन नक्सल्स हैं।
12: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
7: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिमागी नक्सल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है।
13: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खान पान देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। ये वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार में जनता कूदती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में कड़ा कड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में, इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
0: रांची में छात्रों का आंदोलन जारी और आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगे मानी नहीं गई तो वो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अब की बार उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी मांगा है, साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर भी वो अड़ गए हैं।
14: तेईस दिन से इसी तरह बैठे हैं छात्र, इसी तरह कर रहे हैं अनशन और इसी तरह झारखंड सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और 13 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल, लेकिन अब छात्रों की दशा बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक जी सकेंगे।
15: धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है, मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज्यादा जी पाएंगे, स्थिति बहुत ही गंभीर है।
14: छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता छात्र मरे या बचे।
15: बुखार भी आ रही, सरकार को कोई चिंता नहीं, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर मैं नहीं गया, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो को ले गए फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे।
14: प्रेम नायक अकेले नहीं है जिनकी स्थिति बिगड़ गई है, छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल की भी स्थिति नाजुक है। तीनों का इलाज रांची सदर अस्पताल के एचडीयू में चल रहा है। इसी अस्पताल में एक दिन पहले हंगामा हुआ था, ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
16: झंडा फहराने से रोका जा रहा
17: है,
16: ये क्या, यही आजादी है क्या? आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है।
14: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
18: तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
14: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने के नाम पर सिर्फ पानी, लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करे और सीबीआई जांच की मांग को माने, वरना 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है, कहीं सड़कें दरिया बन गए हैं, कहीं पर नदियां किनारों को काटकर बह रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टाने चटक रहे हैं, लोग मुश्किल में।
14: कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टाने चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिम्बी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ कई घरों को नुकसान भी पहुँचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए, तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई है। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं। जब रविवार को ये पहाड़ दरका, ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सांवरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसे चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी THGC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था। 12 लोग घायल थे।
1: तो पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी भी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफी वहाँ पर दबी हुई है, जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी उनको सफाई करेगी तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी। उसमें
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, सरते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है, पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय दो ही दलदल हो रही है, पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी, क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा, फंस जा रहा है उसमें, तो इसमें होगा तो जल्द से जल्द उस चीजों को जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविकेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए, ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: एक तरफ जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो दूसरी ओर मूसलाधार बरसात और बेहिसाब बाढ़ की वजह से पुल जमींदोज हो रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर तेज जल धारा ने पुलों को ध्वस्त कर दिया है। क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, पुलों के ध्वस्त होने का जो सिलसिला है जारी है।
0: hey! देखते ये पुल ढह गया। लोग देख रहे थे इस पुल को ढहने को, लोग वीडियो बना रहे थे, उन्हें यकीन था ये पुल अब गिरा कि तब गिरा। तस्वीरें गुजरात के खेड़ा के ठासरा की है। यहाँ दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल बना हुआ था, मगर जोरदार बरसात और नदी की जलधारा ने इस पुल की नींव को धरखा दिया और देखते ही देखते ये पुल ढह गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अलबत्ता पुल के ढहने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बारा में जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बना ये हाई लेवल ब्रिज भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तेहार है। अभी डेढ़ महीने पहले ही 28 जून को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पार्वती की लहरों ने ऐसे हिलोरे मारी कि पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। ये शुक्र था कि जिस वक्त ये पुल ढहा इस पर कोई नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुल की एक तरफ की रिटेनिंग दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीरें देखिए, ऐसी दरारें जैसे जमीन फट गई हो। अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
4: अभी ये पुलिये में जो बने नहीं तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत उस साइड में भी, और ये वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रोड बंद करे और दोनों साइड का पक्का काम करे।
5: उनके मैंने लास्ट जून में उद्घाटन हुआ था इसका, और 17 अगस्त है अभी, वहाँ से लगभग हट चुकी है पुलिया। इधर साइड में भी दो जगह जुड़ा हुआ है साइड में दो तरफ, तो इसका ढसने की संभावना है इसकी भी।
6: तो आपका कहना है कि ये भी गिर सकती है?
5: ये भी गिर सकती है,
7: ये और भी जब जर्जर हो रही है, ये भी की दो दो इंच छूट चुकी है।
6: अच्छा,
5: साइडों में झुका,
7: साइडों में झुका हुआ है।
0: पुल के शुरू होने से अटरू और बारा से मध्य प्रदेश की सीमा तक आने जाने में लोगों को सुविधा मिलने लगी थी, लेकिन अब ये पुल धंस चुका है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ नदी पर बना ये पुल बह गया। हैरानी इस बात की है कि इस पुल का निर्माण 10 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन ये 10 बरसात भी नहीं झेल सका। निर्माण के बाद से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पुल पर जहाँ तहाँ दरारें दिखाई दे रही थी। दो दिन पहले बरसात हुई और सुबह जब लोगों की आंखें खुली और नदी की ओर गए तो पुल बह चुका था। ये नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए। जिस पुल से होकर दर्जनों गांवों के लोगों की आवाजाही होती थी, वो देखते ही देखते पानी की तेज धारा में गायब हो चुका था। कहीं पिलर उखड़े पड़े थे, कहीं स्लैब पानी में समा गई थी, और पुल का लंबा हिस्सा नदी की धार में बह चुका था। अब लोग निर्माण एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण पुल पहले से ही कमजोर हो चुका था। वाहनों की आवाजाही के साथ पुल के अलग अलग हिस्सों में दरारें दिखाई देने लगी थी और समय के साथ इसकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बरसात के बाद बाढ़ की स्थिति बन रही है और अलग अलग शहरों से पुल के ढहने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो।
3: मैदानी इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ घंटों की बरसात ने शहरों में सैलाब ला दिया है। चाहे यूपी की राजधानी लखनऊ हो, जहां सुबह चंद घंटों की बारिश हुई और उसमें पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया, बिल्कुल यही हाल इटावा का भी रहा, जहां जरा सी बारिश के बाद सड़कों पर बेहिसाब पानी भर गया।

तलैया झरना सागर दरिया दरिया लखनऊ। हाँ जी, यकीन कीजिए यह आपका अपना अदब का शहर है लखनऊ। लखनऊ वाले रविवार की सुबह जब सो के उठे तो उन्हें मालूम चला कि उनका अपना प्यारा लखनऊ तो इटली का वेनिस हो गया है। पानी की लहरों पर उतराने वाला शहर, देखिए ना ये बच्चे जिस गली से गुजर रही है वहां घुटने तक पानी। अब सड़क का हाल देखिए, सड़क को सड़क नहीं समंदर कहिए, यहाँ डूब डूब आइए डूब डूब जाइए। इन भाई साहब की बाइक बंद पड़ गई, अब पानी में जैसे खींचते हुए बढ़े जा रहे हैं। अब एक नजर इन तस्वीरों पर डाल लीजिए, इतनी बरसात हुई है कि ये घर लबालब है, घर में पानी भर गया है, घर के सामान पानी में उतरा रहे हैं। कुछ घंटों की बरसात ने लखनऊ को पानी पानी कर दिया, अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात कैसे बने।

0: अब प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, यहाँ गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। देखिए घाटों तक पानी चढ़ाया है, पंडा पुरोहित जहाँ बैठते हैं वहाँ तक गंगा चढ़ाई है।
1: गंगा जी के तो जलस्तर कल से काफी तेज हुआ है, परसों से बढ़ दो तीन दिन से बढ़े, लेकिन कल जलस्तर लगभग 4 फीट की ऊंचाई में बढ़ा हुआ, आज भी जल तेज से ही है, लगभग 1 फीट जलाया है सुबह से। अरे तकलीफ क्या है, तो हर साल का नियम ही है, हम लोग को गंगा जी बांधते तो हटाना पड़ेगा सामान, फिर वाल इस बार तो लेट है, नहीं पिछली बार तो हनुमान जी को भी नहला चुकी, हम लोग ऊपर थे पिछली बार रोड पर थे इस समय, लेकिन इस बार लेट है, अब तकलीफ तो होता ही है, सब सामान हटाना पड़ता है, अभी वहाँ से ले आए उठा के इधर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे।
2: परसों से गंगा जी काफी तेजी से जो है रफ्तार से बढ़ रही हैं, और हमारे पंडा समाज के लोगों का जो है अब वो सामान जाने वाला है ऊपर, किसी गंगा जी का जो ये रूप है, और हमारे का दो रोज के अंदर गंगा जी ऊपर भी चली जाएंगे।
0: अब यूपी के ही इटावा की तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर के लिए बरसात क्या हुई, मानो पानी नहीं मुसीबत बरसी है, देखिए सड़कें किस तरह लबालब। इसी तालाब के बीच में लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं, देखिए ये स्कूली बच्चे पानी के बीच से कैसे निकल रहे हैं।
3: रूस और यूक्रेन के बीच घमासान भयंकर हो गया है, रूस ने कीव के आसमान में जबरदस्त बमबारी की, आसपास के इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की गई, जबकि यूक्रेन ने मॉस्को रीजन में मिसाइलों और ड्रोन से बम बरसाकर तबाही मचाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो हथियारों के होड़ को और तेज करने का ऐलान भी कर दिया है।
4: मिसाइलों और ड्रोन से बमों की बरसात, कीव में रूसी हमलों से बढ़ी आफत, यूक्रेन ने मॉस्को रीजन में की एयर स्ट्राइक, ना तो हमले रोकने के लिए रूस तैयार है, ना ही घुटने टेकने को यूक्रेन तैयार। नतीजा इन तस्वीरों के तौर पर आपके सामने है, आग की लपटों में घिरे इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों की तबाही की गवाही दे रहे हैं। हर दूसरे दिन मिसाइलें बम बरसा रही हैं, हर दूसरे दिन ड्रोन डरा रहे हैं, और तेल डिपो से लेकर रिहायशी इलाकों में तबाही का तांडव मचा रहे हैं। यूक्रेन के जेपोरिजिया में रूसी हथियारों ने ताजा हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर डाला है। कीव रीजन के कई इलाकों को रूस ने एक साथ निशाना बनाया। इन हमलों में स्कंदर एम, S-400 और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया। आसमान तक उठती आग और धुएं के इस गुब्बार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान झेलना पड़ा होगा। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हर हमले का उसकी सेनाएं जवाब दे रही हैं। मॉस्को रीजन में यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोनों से एयर स्ट्राइक की। रूस का कहना है कि उसने 100 से ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी कई ड्रोन बम बरसाने और तबाही मचाने में कामयाब हो गए। मॉस्को के पास कोलेदिनो इलाके में वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब में लगी ये आग कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। हजारों स्क्वायर फीट में फैले इस सेंटर में एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरा परिसर आग की लपटों में घिर गया। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में काफी ऊंचाई तक फैल गया। इसके अलावा यूक्रेन ने समारा इलाके में फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला किया। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी सेना ने यूक्रेनी सरहद से करीब 900 किलोमीटर दूर बने रूसी ठिकाने को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ उन्होंने हथियारों की होड़ में यूक्रेन के और मजबूती से आगे बढ़ने का दावा भी किया है।
5: Ещё одне. Ми продовжуємо роботу заради ППО для України. Ракет, які необхідні для захисту життя і домовленості заради виробництва в Україні. Це все буде. Це не просто, але все це буде. За час війни ми вже багато разів говорили про зброю, засоби, техніку, про які спершу чули, що це начебто неможливо. І потім чули, Українці начебто не зможуть, бо потрібні десятиліття, щоб змогли.
4: Зеленський є дава भले ही करें, लेकिन वो जानते हैं कि किस कदर एंटी मिसाइल सिस्टम की कमी रूस के सामने यूक्रेन की बेचारगी लगातार बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बैन पर चिदंबरम का पोस्ट लिखा, मुझे इस पर गर्व है, जयराम रमेश ने भी किया हमला तो बीजेपी का जवाबी हमला। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती उनकी आवाज। रांची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास, घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाज शास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला, कांग्रेस ने एनटीए को घेरा। एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया, कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था, चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
0: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस उसमें कोई नहीं था।
0: कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
3: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रोका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंदर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
4: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
0: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसने देश की सियासत को गर्मा दिया है। विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया और इसे लेकर बीजेपी विपक्ष के बीच में अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं।
5: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा।
6: लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया तो सियासत सुलग उठी। आज कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम का ये ट्वीट आया तो बीजेपी की ओर से भी करारा हमला हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू ने चिदंबरम को दिमागी नक्सल का हेडमास्टर बता दिया।
7: गोली वाले नक्सलिज्म खत्म हो गया, बंदूक वाला वो खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने, पर यो दिमाग है वो जो उसके सरगना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो वो चिदंबरम जैसे लोग हैं जिनका उन्होंने बात की है, ये लोग हैं जो नीचे तक ये नक्सलिज्म का दिमाग और ये उसके हेडमास्टर हैं।
6: बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष कह रहा है कि इस शब्द के बहाने प्रधानमंत्री का टारगेट सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं।
8: दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं, हमारे देश को बर्बाद करते हैं।
9: जिनको जमीनी नक्सल कहा फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी, नौजवानों को नक्सल कहा फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं, नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं।
6: ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने देश विरोधी सोच रखने वालों पर आक्रामक अंदाज में टारगेट किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने अक्सर अर्बन नक्सलियों का जिक्र किया था, अब उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर ऐसे विचार रखने वालों को घेरा है।
10: ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो प्रधानमंत्री जी का वो है जो मानसिक रूप से जो ओवरग्राउंड है नक्सली विचारधारा, और यही लोग नक्सलवाद को बढ़ाते रहे और नक्सलवाद खत्म हो गया। लेकिन ये जो दिमागी नक्सल, ये अर्बन नक्सल्स हैं।
11: किसान मजदूर के अधिकारों की मांग करना, बेरोजगारी पे सवाल करना या संविधान की रक्षा की बात करना, इसमें कौन सी चीज नक्सलवाद है, कौन सी चीज दिमागी नक्सल हो गई है? लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है।
6: 15 अगस्त पर पीएम मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल वाले हमले पर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिमागी नक्सल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है।
12: जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है, वो लोग जो दिल्ली मुंबई पटना कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। ये वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार में जनता उबती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में कड़ा कड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में, इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।
0: रांची में छात्रों का आंदोलन जारी और आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी मांगे मानी नहीं गई तो वो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अब की बार उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी मांगा है, साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर भी वो अड़ गए हैं।
13: तेईस दिन से इसी तरह बैठे हैं छात्र, इसी तरह कर रहे हैं अनशन और इसी तरह झारखंड सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और 13 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल, लेकिन अब छात्रों की दशा बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रेम नायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक जी सकेंगे।
14: धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है, मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज्यादा जी पाएंगे, स्थिति बहुत ही गंभीर है।
13: छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता छात्र मरे या बचे।
14: बुखार भी आ रही है, सरकार को कोई चिंता नहीं, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर मैं नहीं गया, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो को ले गए फिर आने नहीं दे रहे, ये लोग का मनसा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे।
13: प्रेम नायक अकेले नहीं है जिनकी स्थिति बिगड़ गई है, छात्र नेता देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल की भी स्थिति नाजुक है। तीनों का इलाज रांची सदर अस्पताल के एचडीयू में चल रहा है। इसी अस्पताल में एक दिन पहले हंगामा हुआ था, ये तस्वीरें 15 अगस्त की हैं। जगह है रांची का अस्पताल और बीच में है झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्रनाथ महतो। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की तबीयत खराब है, लेकिन तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद ने अस्पताल में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पुलिस और महतो आमने सामने आ गए। महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन उन्हें झंडा तक नहीं फहराने दिया गया।
15: झंडा फहराने से रोका जा रहा
16: है,
15: ये क्या यही आजादी है? क्या आज हमको इस आजादी को आजाद पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है?
13: लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मामला सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प का नहीं है, महतो की हालत वाकई गंभीर है।
17: तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते।
13: 3 हफ्ते से भूख हड़ताल और खाने के नाम पर सिर्फ पानी, लंबे समय तक खाना नहीं मिलने से शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। महतो के अलावा हबीबा और राहुल की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करे और सीबीआई जांच की मांग को माने, वरना 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध समेत कई किसानी मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व एक बार फिर से आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया है। अब किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया, मगर रास्ते में बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं।
18: ये हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर है, देखिए इस बॉर्डर को किस तरह से बंद किया गया है। बॉर्डर को 5 लेयर में सील किया गया है, बैरिकेडिंग की गई, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, वाटर कैनन वाली गाड़ियां खड़ी की गई, कंटेनर खड़े किए गए, कंटीली तार लगाई गई। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में आज से किसान बचाओ यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में शुरू हुई है। किसानों की ये यात्रा दाता सिंह वाला से शुरू हुई है और 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचना चाह रही है, लेकिन किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट, सीमाओं पर अवरोधक लगा दिए गए। देखना होगा कि प्रशासन किसानों को रोक पाता है या नहीं। सुनील कुमार, जींद आज तक।
0: देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है, कहीं सड़कें दरिया बन गए हैं, कहीं पर नदियां किनारों को काट कर बह रहे हैं, लेकिन बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें चटक रही हैं, लोग मुश्किल में।
19: कुदरत जब कहर भर पाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चट्टाने चटक रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर गिर रहे हैं। सबसे पहले असम की तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सिक्किम के रिम्बी की तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ जंगलों को साथ लेकर चल पड़ा है। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पेड़ पौधों के साथ बहने लगा। जैसे धीरे धीरे पहाड़ से उतरता है पानी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जंगलों को साथ लेकर खुद उतरने लगा पहाड़। भूस्खलन की ये तस्वीरें भयानक हैं। असम के रिम्बी में करीब 30 घर और सिंगली टाम में 8 घर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहां कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है।

0: अब लैंडस्लाइड से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। तबाही की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाचो अपर सुबनसिरी में एक दिन पहले हुए भूस्खलन की तस्वीरें हैं ये यहाँ सिनालिका बेल्ट में भयानक भूस्खलन हुआ जिसमें कई मजदूर दब गए। देखिए सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। यहाँ नजर आता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। इस भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि कई मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। सोलन से आई ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए भूस्खलन हुआ और कैसे यहाँ दहशत मच गई। लोग जहाँ तहाँ जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहे थे और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। देखते ही देखते यहाँ चीख पुकार मच गई। अब एक और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर की हैं। जब रविवार को ये पहाड़ दरका ऐसा भयानक भूकंप कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस भयानक भूस्खलन को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पल भर में यहाँ मलबे का ढेर लग गया और यातायात ठप हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही कोठियाल सैन सावरी सेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डाइवर्ट की जा रही है। तहसील प्रशासन के अनुसार मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा में भूस्खलन की चपेट में ये ट्रक आ गया। ये वही जगह है जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करते हुए इसे ठीक किया था। इसी चमोली की एक और तस्वीर देखिए। चमोली में पीपल कोटी THGC टनल में रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। यहां 3 दिन पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें 7 लोगों का शव निकाला गया था। 12 लोग घायल थे।
1: तो पानी लगभग साफ हो चुका है। अब जो वहाँ पे मलबा रह गया उसमें काफी मतलब जा रहे हैं तो पैर धस जा रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्चिंग हमारी जो है कि पूरी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक हो चुकी है और लगातार अभी भी सर्चिंग चल रही है। मशीनें काफी वहाँ पर दबी हुई है। जब तक वो मशीनें वहाँ पर जाएगी उनको सफाई करेगी तब जाके हमारी टीम को थोड़ी राहत मिलेगी उसमें।
0: बताया जा रहा है कि अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: देखिए अभी तो अंदर काफी मलबा है, सरते आज काफी पंप के द्वारा पानी कम कर दिया गया है पर मलबा काफी है, बहुत दलदल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ इस समय दो ही दलदल हो रही है। पूरी रेस्क्यू एजेंसियां जितने भी अंदर काम कर रही है और साथ ही साथ जो HCC के कर्मचारी भी जो अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है वो दलदल। तो अगर उम्मीद है कि थोड़ा सा दलदल में कुछ चलने लायक वो चीजें होंगी क्योंकि इसमें पैर बहुत धस रहा है, आदमी स्टक हो जा रहा है, फंस जा रहा है उसमें। तो इसमें होगा तो जल्द से जल्द उस चीजों को जो लोग मिसिंग है उन लोगों को जल्द से जल्द एविगेट कर लिया जाएगा।
0: एक और तस्वीर देखिए। ये जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के नेशनल हाईवे की है। एक दिन पहले यहाँ फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तबाही मचाई जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। अब इसे साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि रास्ता खुल सके। तो कुदरत का कहर अलग अलग राज्यों में जारी है। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी को संकट में डाल रखा है। आज तक ब्यूरो।
3: रूस और यूक्रेन के बीच घमासान भयंकर हो गया है। रूस ने कीव के आसमान में जबरदस्त बमबारी की, आसपास के इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की गई, जबकि यूक्रेन ने मॉस्को रीजन में मिसाइलों और ड्रोन से बम बरसाकर तबाही मचाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो हथियारों के होड़ को और तेज करने का ऐलान भी कर दिया।
4: मिसाइलों और ड्रोन से बमों की बरसात। कीव में रूसी हमलों से बढ़ी आफत। यूक्रेन ने मॉस्को रीजन में की एयर स्ट्राइक। ना तो हमले रोकने के लिए रूस तैयार है, ना ही घुटने टेकने को यूक्रेन तैयार। नतीजा इन तस्वीरों के तौर पर आपके सामने है। आग की लपटों में घिरे इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों की तबाही की गवाही दे रहे हैं। हर दूसरे दिन मिसाइलें बम बरसा रही हैं, हर दूसरे दिन ड्रोन डरा रहे हैं और तेल डिपो से लेकर रिहायशी इलाकों में तबाही का तांडव मचा रहे हैं। यूक्रेन के जेपोरिजिया में रूसी हथियारों ने ताजा हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर डाला है। कीव रीजन के कई इलाकों को रूस ने एक साथ निशाना बनाया। इन हमलों में इस्कांदर एम S-400 और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया। आसमान तक उठती आग और धुएं के इस गुब्बार को देखकर अंदाजा लगा

0: एक के बाद एक कई ड्रोनों से एयर स्ट्राइक की। रूस का कहना है कि उसने 100 से ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी कई ड्रोन बम बरसाने और तबाही मचाने में कामयाब हो गए। मॉस्को के पास कोलेदिनो इलाके में वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक हब में लगी ये आग कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। हजारों स्क्वायर फीट में फैले इस सेंटर में एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरा परिसर आग की लपटों में घिर गया। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में काफी ऊंचाई तक फैल गया। इसके अलावा यूक्रेन ने समारा इलाके में फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला किया। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी सेना ने यूक्रेनी सरहद से करीब 900 किलोमीटर दूर बने रूसी ठिकाने को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ उन्होंने हथियारों की होड़ में यूक्रेन के और मजबूती से आगे बढ़ने का दावा भी किया है।
1: І домовленості заради виробництва в Україні. Це все буде. Це не просто, але все це буде. За час війни ми вже багато разів говорили про зброю, засоби, техніку, про які спершу чули, що це начебто неможливо. І потім чули, українці начебто не зможуть, бо потрібні десятиліття, щоб змогли.
0: Зеленський є дава भले ही करें, लेकिन वो जानते हैं कि किस कदर एंटी मिसाइल सिस्टम की कमी रूस के सामने यूक्रेन की बेचारगी लगातार बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व? इस बार नाग पंचमी पर बन रहे हैं कौन से संयोग? भगवान शिव और सर्पों की पूजा का क्या है विधान? और भगवान शिव की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
2: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
3: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
4: नहीं सर।
3: 12th किससे की हो?
4: 12th सर मेरा PCM से रहा।
3: कंपाउंड क्या होता है?
4: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
3: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
2: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
3: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।

वंदे मातरम विवाद पर बढ़ा सियासी तकरार, सोनिया पर शाह का हमला, कहा इस पाप की माफी नहीं। बीजेपी ने चौतरफा घेराबंदी की, बंकिम चैटर्जी परिवार ने गांधी परिवार को लिखा पत्र। लाल किले से प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बैन पर चिदंबरम का पोस्ट, लिखा मुझे इस पर गर्व है, जयराम रमेश ने भी किया हमला तो बीजेपी का जवाबी हमला। पुणे में 22 अगस्त को राहुल करेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए, कहा हमें हर युवा पर गर्व, दबाई नहीं जा सकती।

0: सकती है उनकी आवाज। रांची में हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने पुतला फूंक कर जताया विरोध, 18 अगस्त तक परीक्षा रद्द करने का दिया अल्टीमेटम, 20 को सीएम आवास, घेराव का ऐलान। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स, समाज शास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का फैसला, तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया गया हवाला, कांग्रेस ने एनटीए को घेरा। एक गीत जिसके आगे कभी अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता बौनी पड़ गई थी, एक गीत जिसे आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया, उसी वंदे मातरम के सामने सोनिया गांधी की कुछ सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। आज वही गीत सत्ता और विपक्ष की सियासत को सुलगा रहा है। पंद्रह अगस्त को जब देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के इस वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया गया। कांग्रेस की सफाई भी आई, लेकिन अब विवाद सफाई से आगे निकल चुका है। लेकिन आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा।
1: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
0: बीजेपी का हमला अब सोनिया गांधी तक सीमित नहीं, पूरा निशाना कांग्रेस की राजनीति पर है। सवाल उछाले जा रहे हैं, आखिर वंदे मातरम के गायन के वक्त सोनिया गांधी बात क्यों कर रही थी? क्या कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर असहजता थी? कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ एक वीडियो पर सफाई देने की नहीं है, चुनौती ये है कि बीजेपी के धारदार नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए।
2: आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद सवाल नहीं उठता, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस उसमें कोई नहीं था।
0: कांग्रेस सफाई में भले ही नए तर्क गढ़ रही है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ उसकी सच्चाई खुद कांग्रेस के सांसद बता रहे हैं।
3: नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी जो मेन मुद्दा है उसको ये भटकाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले।
0: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज को भी इस विवाद ने अंदर तक हिला दिया। यही वजह है कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे तो सोनिया गांधी की साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार बार की कोशिशों से बहुत दुख हुआ है।
4: ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो फैमिली है, उन्होंने काली सोनिया जी और खाड़गे जी को पत्र लिख के इसका विरोध भी किया है और उनको माफी मांगने के लिए उनको मांग भी किया है।
0: इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
5: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसने देश की सियासत को गरमा दिया है। विवाद खड़ा हो गया, विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस